वह सपूर्णाम वष्टयासिचम तस्मा एतम भरत तद्वशो ददिर्होत्रात् सोमं द्रविणोदः पिब ऋतुभिः। हे धन प्रदाता अग्निदेव, होताओं के द्वारा समर्पित किए गए सोमरस का प्रसन्न

पूर्व महुवे तमिदं हुवे सेदु हव्यो ददिर्यो नाम पत्यते अध्वर्युभिः प्रस्थितं सोम्यं मधु पोत्रात् सोमं द्रविणोदः पिब ऋतुभिः। जिन अग्निदेव को हमने पहले भी बुलाया था उन्हें अब भी आवाहित कर

0: सोमम द्रविडोदः पिब ऋतुभिः। हे द्रविडोदादेव, आप जिस अश्व पर आरूढ़ होते हैं वह तृप्त हो। हे वनस्पति देव, आप हमें हिंसित न करके शक्तिशाली बनाएं। हे शत्रुनाशक देव, आप यज्ञ में पधार कर याज्ञिकों द्वारा समर्पित किए गए सोमरस का पान ऋतु के अनुरूप करें। अपाद्धोत्रादुत पोत्रादमत्तोत्त नेष्ट्रादजुषत प्रयोहितम् तुरीयम् पात्र ममृक्त ममर्त्यम् द्रविडोदाह पिबतु द्राविडोदसः। जो द्रविडोदादेव नेष्ट्रा के यज्ञ में पवित्र सोमरस का पान करके आनंदित हुए, वे धन प्रदाता देव भली भांति शोधित किए गए अमरत्व प्रदान करने वाले सोमरस का पान करें। अर्वांच मध्य ययम नृवाहणम रथम युञ्जाथा मिह वाम विमोचनम प्रिंतम हवींषि मधुना ही कम गतमथा सोमम पिबतम वाजिनी वसु। हे अश्विनी कुमारो, आप अपने अभीष्ट स्थान पर ले जाने वाले द्रुतगामी रथ को हमारे यज्ञ स्थल में आने के लिए नियोजित करें। हमारे यज्ञ में आकर हमारे हविष्यान्न को सुस्वादु बनाएं। हे आश्रय प्रदाता अश्विनी कुमारो, आप दोनों सोमरस का पान करें। जोष्यग्ने समिधम जोष्याहुतिम जोशी ब्रह्मजन्यम जोशी सुष्टुतिम विश्वेभिर्विश्वाम ऋतुना वसो मह उषंदेवाम उषतः पायया हविः। हे अग्निदेव, आप हमारी समिधाओं से प्रदीप्त होकर आहुतियों को ग्रहण कर याजकों द्वारा की गई सुंदर स्तुतियों को स्वीकार करें। सोमपान की अभिलाषा वाले हे अग्निदेव, आप सभी के आश्रय दाता हैं। आप सभी देवों ऋभुओं और विश्वे देवों के साथ सोमरस का पान करें।
1: अभी आप सुन रहे थे ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के सूक्त 37 से वाचन, प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी।
2: साहस की बुलंद शुरुआत से लेकर आसमान की असीम ऊंचाइयों तक 8 अक्टूबर को पूरा देश मना रहा है भारतीय वायुसेना का 94वां वायुसेना दिवस।
3: वर्ष 1947-48, 1965 और 1971 के ऐतिहासिक युद्धों से लेकर ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन सफेद सागर तक विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायु सेना ने हर पल कर दिखाया है अदम्य पराक्रम, अत्याधुनिक तकनीक और सर्वोच्च बलिदान।
2: तो मध्य प्रदेश के जाबाज युवाओं, क्या आप तैयार हैं? बादलों को चीरकर देश का मान बढ़ाने के लिए तो बनिए अग्निवीर वायु, हासिल कीजिए वो मुकाम जो जिंदगी भर की पहचान बन जाए और गर्व से कीजिए भारत माँ की सेवा।
3: भर्ती और पात्रता से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए
2: 15 एयरमैन चयन केंद्र के इंस्टाग्राम पेज 15ASC_भोपाल और आधिकारिक वेबसाइट IAFRecruitment.edcil.co.in पर विजिट करें।
3: नभस प्रशम दीप्तम।
2: जय हिंद।
4: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के प्रसारण के साथ। मैं हूं आपकी रेडियो मित्र भारती। अब वक्त हो चला है कार्यक्रम भक्ति संगीत सुनने का। भगवत आराधना के सुमधुर स्वर सुनिए कार्यक्रम भक्ति संगीत में। हमारी वजह से कोई रोए तो हम व्यर्थ हैं, हमारे लिए कोई रोए तो समझ लो हमारे जीवन का बहुत अर्थ है।

जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक चलिए, आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद खुद ब खुद दिखने लगेगा।

एक समय में सभी को खुश रखने का प्रयास मत कीजिए। जो काम हाथ में है केवल उसके ऊपर लक्ष्य रखिए, बाकी सब समय के हाथ में छोड़ दीजिए।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भक्ति संगीत 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए, रेडियो आजाद हिंद।
1: गली में मार फेरे, पास आने को मेरे।
2: मैं हूं सोना महापात्रा और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है।

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

0: पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।
1: सुनकर

0: नमस्कार, मैं हूं गोविंद नामदेव और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नब्बे दशमलव आठ मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है कार्यक्रम वतन का राग।

आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।

भारतीय स्वाधीनता संघर्ष का इतिहास अविस्मरणीय घटनाओं का दस्तावेज है और हमारी इस स्वाधीनता की लड़ाई पर यदि किसी घटना ने सबसे अधिक प्रभाव डाला तो वो घटना थी जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसकी गूंज बरसों बरस बनी रही। एक ऐसी हृदय विदारक घटना जिसके बाद भारत में ब्रिटिश राज के अंत की शुरुआत हुई। जलियांवाला बाग की चर्चा शुरू होते ही सबसे पहले जो नाम याद आता है वो है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू का, जो जलियांवाला बाग के हीरो कहलाए। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने रोलेट एक्ट का विरोध करते हुए ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी। वो एक महान स्वाधीनता संग्राम सेनानी, खिलाफत आंदोलन के नेता, एक प्रसिद्ध वकील और महान राष्ट्रवादी नायक के रूप में याद किए जाते हैं। सैफुद्दीन किचलू का जन्म 15 जनवरी सन 1888 को पंजाब के अमृतसर में हुआ। उनके पिता का नाम अजीजुद्दीन किचलू और माता का नाम दानबीवी था। उनके पिता का पश्मीना और केसर का व्यवसाय था, जो मूल रूप से बारामूला के ब्राह्मण परिवार से संबद्ध थे। सैफुद्दीन किचलू बचपन से ही अत्यंत होनहार विद्यार्थी थे। उनकी आरंभिक शिक्षा अमृतसर में ही हुई। आगे की पढ़ाई के लिए वो कैम्ब्रिज गए, जहां से उन्होंने वकालत की पढ़ाई पूरी की और फिर जर्मनी से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो भारत वापस लौटे तथा अमृतसर आकर उन्होंने वकालत शुरू की। अपने छात्र जीवन से ही वो पराधीन भारत की स्थिति को लेकर अत्यंत संवेदनशील थे। अपने देश पर विदेशियों का राज उनसे सहन नहीं होता था। कैम्ब्रिज में शिक्षा के दौरान ही उनके भीतर क्रांति की चिंगारी सुलगने लगी थी। विदेश में पढ़ रहे भारतीय छात्रों ने पराधीन भारत की दशा पर विमर्श के लिए मजलिस नाम की एक सोसाइटी बनाई थी। सैफुद्दीन किचलू इसमें नियमित रूप से शामिल होते रहे। कैम्ब्रिज में शिक्षा के दौरान ही उन्होंने वैश्विक क्रांति से संबद्ध अनेक पुस्तकें पढ़ी। वो फ्रांसीसी क्रांति से अत्यंत प्रभावित थे। इस तरह उनके भीतर स्वातंत्र्य चेतना और राष्ट्रवाद का जन्म हुआ।

जर्मनी से डॉक्टरेट की उपाधि ग्रहण करने के बाद डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू अमृतसर आकर वकालत अवश्य करने लगे, लेकिन उनकी नजर देश की हालत पर थी। देश की आर्थिक स्थिति बहुत विकट हो रही थी। सूद और अन्य मदों में बड़ी धनराशि बाहर जा रही थी। उस पर हर साल अनाज और कपास आदि कच्चे मालों का निर्यात देश को कंगाल बना रहा था। गांव में सेना की नई भर्ती भी हुई, परिणाम स्वरूप खेती करने वालों की संख्या भी कम हो गई। स्वाभाविक रूप से इन परिस्थितियों में अनाज की उपज कम हुई, इसलिए अनाज बहुत अधिक महंगा हो गया। उस समय के सरकारी आंकड़े बताते हैं कि उस दौरान अनाज की कीमत 93% तक बढ़ गई थी। कपड़ों के दाम भी दुगने हो गए थे। महंगाई बढ़ने के साथ साथ अनाज और कपड़ा लगभग दुर्लभ सा हो गया था, जिसके कारण आम जन का जीवन बहुत कठिन हो गया। यही वो समय था जब मजदूर संघों की स्थापना हुई और जगह जगह हड़तालें हुई। उधर पूंजीवादियों पर भी अतिरिक्त लाभ कर लगा दिया गया था। इस तरह जनता की बेचैनी और प्रतिक्रिया बढ़ती ही जा रही थी। इन्हीं परिस्थितियों में इंग्लैंड के हाईकोर्ट के जज सर सिडनी रॉलेट के सभापतित्व में रॉलेट कमेटी बनी। इस समिति ने जो सिफारिशें दी वो रॉलेट एक्ट कहलाया, जिसे काला कानून कहा गया। इस कानून से ब्रिटिश सरकार को ये अधिकार प्राप्त हो गया कि वो किसी भी भारतीय पर अदालत में मुकदमा चलाए बिना उसे जेल में बंद कर सकती है। राजद्रोह के मुकदमे की सुनवाई के लिए एक अलग न्यायालय स्थापित हुआ। मुकदमे के फैसले के बाद किसी उच्च न्यायालय में अपील का अधिकार भी छीन लिया गया। सरकार को ये अधिकार मिल गया कि वो बलपूर्वक प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार छीन ले और अपनी इच्छानुसार किसी व्यक्ति को कारावास की सजा दे दे या देश से निष्कासित कर दे। ऐसे कई प्रावधान इस कानून में थे। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जनता के भीतर गहरा असंतोष और रोष व्याप्त था। कुल मिलाकर सरकार इस कानून के माध्यम से अपने खिलाफ होने वाले आंदोलनों को कुचल देना चाहती थी। इस कानून के माध्यम से वो चाहती थी कि भारतीय किसी भी आंदोलन में भाग न लें। देश भर में इस कानून का विरोध हुआ। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने लोगों से आग्रह किया कि वे अपने सभी काम छोड़कर हड़ताल करें, सरकार के विरुद्ध सत्याग्रह में भाग लें। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू गांधी जी से अत्यंत प्रभावित थे। उनकी अपील ने पंजाब के लोगों में जोश भर दिया। 30 मार्च सन 1919 को उन्होंने सार्वजनिक सभा की, जिसमें 30,000 लोग शामिल हुए। उनके दमदार भाषण ने लोगों को जगाकर खड़ा कर दिया। 9 अप्रैल सन 1919 को डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल ने अमृतसर के बीचों बीच एक सरकार विरोधी जुलूस निकाला। इस जुलूस में अनगिनत लोग शामिल हुए। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध ये जनता का प्रबल प्रतिकार था।

रोलेट एक्ट के विरुद्ध जो आंदोलन खड़ा हुआ था उसकी शुरू से ही ये विशेषता थी कि उसमें हिंदू, मुसलमान और सिख सभी मन से एक होकर सम्मिलित हो गए थे। 9 अप्रैल को जो जुलूस निकला था उसमें भी जितने हिंदू थे उतने ही मुसलमान भी थे। ये रामनवमी का दिन था। इस अवसर पर त्योहार तो हर साल ही मनाया जाता था, लेकिन उस समय नगरवासियों ने उसे एक राष्ट्रीय त्योहार जैसा बना दिया। इस जुलूस का नेतृत्व डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल कर रहे थे। जुलूस बहुत बड़ा लेकिन शांतिपूर्ण था। चारों ओर महात्मा गांधी की जय, डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की जय के नारे लग रहे थे।

जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा आयोजित थी। कुछ लोग यूं ही त्योहार मनाते हुए भी वहां पहुंच गए थे कि तभी ब्रिगेडियर जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचा और एकत्रित भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दिया। और वो बर्बर नरसंहार की घटना इतिहास में दर्ज हुई, जिसे याद करके आज भी भारत की मिट्टी का मन भीग जाता है। दिसंबर सन 1919 में डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू रिहा किए गए। जैसे ही वो जेल से बाहर आए, अमृतसर में भारी भीड़ जमा हो गई और उन्हें अपने कंधों पर बैठाकर शहर भर में जुलूस निकला। गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन आरंभ किया, तब डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू भी इसमें शामिल हुए। सन 1919 में ही वो अमृतसर शहर के नगर आयुक्त भी चुने गए थे। स्वाधीनता आंदोलन में शामिल होने के लिए उन्होंने अपनी वकालत भी छोड़ दी थी। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को अखिल भारतीय खिलाफत समिति का प्रमुख भी नियुक्त किया गया था। हालांकि तुर्की की बदलती परिस्थितियों के कारण भारत में खिलाफत आंदोलन विफल हो गया, लेकिन डॉक्टर किचलू ने एकजुट राष्ट्रवाद की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन ब्रिटिश साम्राज्यवाद है, हम सभी को एक साथ मिलकर इसे हराना होगा। वो धार्मिक आधार पर भारत के विभाजन के भी विरोधी थे। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू जामिया मिलिया विश्वविद्यालय के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और वो अपने जीवन के अंतिम दिनों तक इससे जुड़े रहे। उन्होंने तंजीम नाम से एक पत्रिका भी निकाली तथा इसके माध्यम से मुसलमानों से राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होने की अपील की। डॉक्टर किचलू सरदार भगत सिंह की नौजवान भारत सभा के भी संस्थापक सदस्य थे। भारत की आजादी के बाद डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने शांति की बहाली और सोवियत भारत संबंधों को फिर से परिभाषित करने के लिए काम करना जारी रखा। सन 1952 में वो लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने। एकता, सद्भाव और शांति के लिए हर पल प्रयास करते हुए 9 अक्टूबर सन 1963 को वो इस संसार से विदा हो गए। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर।

0: दोपहिया वाहन की सवारी करते समय हेलमेट जरूर पहनें। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।
1: साहस की बुलंद शुरुआत से लेकर आसमान की असीम ऊंचाइयों तक 8 अक्टूबर को पूरा देश मना रहा है भारतीय वायुसेना का 94वां वायुसेना दिवस।
2: वर्ष 1947-48, 1965 और 1971 के ऐतिहासिक युद्धों से लेकर ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन सफेद सागर तक विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायु सेना ने हर पल कर दिखाया है अदम्य पराक्रम, अत्याधुनिक तकनीक और सर्वोच्च बलिदान।
1: तो मध्य प्रदेश के जाबाज युवाओं, क्या आप तैयार हैं? पागलों को चीरकर देश का मान बढ़ाने के लिए तो बनिए अग्निवीर वायु, हासिल कीजिए वो मुकाम जो जिंदगी भर की पहचान बन जाए और गर्व से कीजिए भारत माँ की सेवा।
2: भर्ती और पात्रता से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए
1: 15 एयरमैन चयन केंद्र के इंस्टाग्राम पेज 15ASC_भोपाल और आधिकारिक वेबसाइट IAFRecruitment.edcil.co.in पर विजिट करें।
2: नभास प्रशम दीप्तम।
3: जय हिंद।
4: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून इन किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आमने सामने।

पद्मश्री नेचुरली मैन जो मुझे मिला, और वो भी मेरे बहुत प्रिय प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम जी से जब मुझे मिला, तो मुझे बहुत फख्र हो रही थी, गर्व भी हो रहा था। और फिर एक एक्चुअली स्ट्रेंज है कि उस टाइम से एक भारतीय होने के नाते एक गर्व था कि ओके आई बिलोंग टू दिस कंट्री, मैं भारतीय हूँ, मैं भारत में रहती हूँ और भारत ने मुझे मेरा काम रिकग्नाइज किया है।

0: कॉलेज में हेमंत कुमार जी मिले, उनके साथ स्टेज पे गाते गाते एक दिन अचानक हेमंत कुमार जी का फ़ोन आया कि कल कॉलेज मत जाओ, राजकमल स्टूडियो में आ जाओ, गाना है। तो चार लाइन लिखवाया उन्होंने और लता जी के साथ मैंने टैगोर सॉन्ग गाया।
1: ये बातचीत हमने उनसे की जब वो भोपाल आई स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आज़ादी का महापर्व कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति देने।

0: कविता जी से बातचीत के बीच में आप उन गीतों को भी सुनेंगे जिन गीतों की प्रस्तुति हुई कार्यक्रम आजादी का महापर्व में। तो आइए सुनते हैं मशहूर पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति से ये बातचीत।
1: थोड़ा सा आपको बचपन में लेके जाऊंगा मैं, क्योंकि आप लोग धरोहर हैं, आपका बचपन कहाँ बीता? हालांकि हम लोगों को मालूम है, लेकिन पीढ़ियों के लिए हमारे पास आपकी रिकॉर्डिंग्स रहनी चाहिए। बचपन कहाँ बीता, क्या संगीत का माहौल था, क्या किस्मत आपको संगीत में ले आई?
2: मैं दिल्ली में पैदा हुई हूँ और बिल्कुल टिपिकल साउथ इंडियन फैमिली, तमिलियन फैमिली में, और मेरे हमारे बहुत क्लोज फ्रेंड्स जो एक ही घर में हम रहते थे, बंगाली भट्टाचार्यस, हम कृष्णमूर्ति, तो दो दो माएँ, दो दो फादर्स के साथ बड़ी हुई हूँ। तो दोनों कल्चर में आप जानते हैं कि संगीत बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। तो होते होते मेरे फादर गवर्नमेंट सर्विस में थे, फिर भी जब मैं 7-8 साल की थी, पहले मैं टैगोर सॉन्ग, रविंद्र संगीत सीखती थी, क्योंकि कालीबाड़ी के पास रहती थी। वहाँ मुझे एक अवार्ड मिला पहले कंपटीशन में, मैं कह रही हूँ मुझे अवार्ड मिला होगा 1960 में। तो उसके बाद म्यूज़िक टीचर ढूंढ के हिंदुस्तानी, हालांकि मम्मी को कर्नाटक म्यूज़िक आता है, पर वो बोली नहीं तुम दिल्ली में हो तो यहाँ हिंदुस्तानी म्यूज़िक के टीचर बेटर मिलेंगे आपको, तो यहाँ से हिंदुस्तानी शुरू करते हैं। तो मेरे बलरामपुरी मेरे सबसे पहले गुरुजी, और फिर गंधर्व महाविद्यालय जाके मैं एग्ज़ाम से थी, तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। पर कोई फिल्म म्यूज़िक में आने का कुछ था नहीं, क्योंकि माहौल तो था नहीं, और मैं सोची इंडियन फॉरेन सर्विस जाऊँगी, मेरा वही शौक था। लेकिन हमारे इलाके में रहती थी हेमा मालिनी जी लेक स्क्वायर में रहती थी, बचपन की दोस्त हैं मेरी सिस्टर और वो बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो हेमा मालिनी जी ड्रीम गर्ल बन गई, बहुत बड़ी स्टार बन गई। तो ये मेरी आंटी हैं, बंगाली आंटी हैं, जिनको मैं मामूनी कहती हूँ, उन्होंने कहा नहीं मैं तुम्हारी फ्यूचर प्लेबैक सिंगिंग में देख रही हूँ। तो स्कूल ख़त्म होते ही उन्होंने मेरे फादर को कहा कि मेरी बेटी तो आपकी बेटी और आपकी बेटी मेरी बेटी, तो मैं इसको तो बॉम्बे लेके जाऊँगी। तो बॉम्बे गई मैं, वहाँ पे कुछ पेइंग गेस्ट के हिसाब से यहाँ वहाँ रहे, हेमा जी का सब और हेमा जी की मम्मी जया चक्रवर्ती जी का सपोर्ट रहा, तो उन्होंने कुछ लोगों से इंट्रोड्यूस करवाया। तो यहाँ प्रोग्राम्स, फिर कॉलेज में ग्रेजुएशन करना सेंट जेवियर्स में, कॉलेज में हेमंत कुमार जी मिले, उनके साथ स्टेज पे गाते गाते एक दिन अचानक हेमंत कुमार जी का फ़ोन आया कि कल कॉलेज मत जाओ, राजकमल स्टूडियो में आ जाओ, गाना है। तो चार लाइन लिखवाया उन्होंने और लता जी के साथ मैंने टैगोर सॉन्ग गाया श्रीमान पृथ्वीराज फिल्म में। वहीं से मेरी करियर आस्ते आस्ते आस्ते आस्ते बढ़ती बढ़ती गई। और जब कॉलेज ख़त्म किया, मेरे फादर तब स्विट्ज़रलैंड में थे, वो इंटरनेशनल वाइपो में थे, तो उन्होंने मेरे लिए एक सीट लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में रखा था। पर मैंने फादर को कहा, मैंने कहा फादर यू प्लीज़ गिव अवे द सीट, आई वॉन्ट टू डू माई म्यूज़िक, आई डोंट वॉन्ट टू डू माई मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स, आई वॉन्ट टू डू माई म्यूज़िक। तो उन्होंने वो सीट सरेंडर, ही सेज़ आर यू श्योर यू वांट टू डू योर सिंगिंग, आई सेड यस एब्सोल्युटली। तो वो मतलब वहाँ से मेरी यूएस की टूर्स मन्नादा के साथ, फिर थोड़ा यहाँ जिंगल्स गाना ऐसे करते करते
1: भाई वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। एक बीच में आपसे एक सवाल ज़रूर पूछूंगा, अभी आपने भी कहा था क्लासिकल सिंगिंग और फिल्मी सिंगिंग, तो उस ज़माने में मन्नाडे जी हैं, रफ़ी साहब हैं, एक लंबी लिस्ट से लता जी हैं, सब सीख के ही आए, और अब इतने बरस बीत गए हैं, अभी आपने जिक्र किया, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं, तो क्या क्या कुछ आप फ़र्क महसूस करती हैं आपने, क्योंकि खयाम साहब का जिक्र किया, नौशाद साहब हैं, सब

0: शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
1: अगर आप अपने संगीत सफर पर और कुछ कहें, रियाज को लेकर कुछ बातें हमारे श्रोताओं से साझा करना चाहें तो।
2: पहले नेचुरली रियाज ज़्यादा होता था, अब रोज़ एक कैप्सूल के तरह रियाज होता है, क्योंकि जब जैसे आज गाना है मुझे, तो मैं बहुत ज़्यादा रियाज करूँगी सुबह, तो स्टेज पे आते आते थक जाऊँगी। इसलिए एक छोटा सा मेरा स्वर साधना होता है, जिसमें नॉर्मली स्टैंडिंग नोट्स का, क्योंकि एक स्टैंडिंग नोट ही स्पेशली हर संगीत में, लाइट म्यूजिक में भी स्टैंडिंग नोट का बहुत स्टेडी होना ज़रूरी है। तो वो स्टेडीनेस के लिए जैसे योगा होता है, वैसे ही ब्रीदिंग सिंगिंग की जो होती है, तो उसके लिए एक लॉन्ग नोट का, प्लस फिल्म गानों में रेंज बहुत ज़रूरी होते हैं, तो फिर ऊपर की नोट्स खुला रहे, इसलिए एक नीचे से मंत्र सप्तक से तार सप्तक तक एक जो रन जो होता है वो करना बहुत ज़रूरी होता है, वो एक मेंटेन होता है वॉइस उससे, तो वो मैं रोज़ करती हूँ। और बाकी यहाँ वहाँ गाना हो जाता है, पर घर पे भी हूँ तो संगीत का एटमॉस्फेयर है मेरे घर पे। एक्चुअली आफ्टर आई मैरिड माय हस्बैंड, उसके बाद ग्लोबल म्यूज़िक की तरफ ज़्यादा मैं मुड़ी, और उनके वजह से बहुत सिम्फनी ऑर्केस्ट्रास के साथ, कुछ जैज़ आर्टिस्टों के साथ काम करने का मौका मिला, तो बहुत मेरी आँख, मैं कहती हूँ, खुली भी है, क्योंकि हम पहले ज़्यादा फिल्मी म्यूज़िक के तरफ मेरा ध्यान था, उसके बाद मैंने देखा कि ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंटलिस्ट से मिली जो अपनी ज़िंदगी अपने इंस्ट्रूमेंट के लिए दे चुके हैं, और फिर वो इंस्ट्रूमेंट ह्यूमन वॉइस के तरह बोलता है, और अक्रॉस द लैंग्वेजेस बैरियर्स भी, जब संगीत एक स्टेज पे आते हैं लगता है कि लैंग्वेज या रिलीजन कोई भी बैरियर नहीं होता है, ये बाउंड्री सब क्रॉस हो जाता है, संगीत वो सात सुर में हम इंटरनेशनली लोगों से मिल सकते हैं। और सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा में भी, जैसे एक भारत सिम्फनी करके है और नवग्रह सिम्फनी है जो मेरे हस्बैंड ने मेरे वॉइस के लिए लिखा है, उसमें मैंने देखा कि अलग प्रांतों का, जैसे कजाकिस्तान में गई मैं, तो वहाँ के जो क्वायर है वो मेरे साथ संस्कृत के श्लोक गा रहे थे, उनको मैंने थोड़ा उच्चारण बताया, पर अपने से उठाकर एकदम सही गाते हैं, और तब इतना अच्छा लगता है कि उनकी आवाज़ से संस्कृत के श्लोक जब मैं सुनती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आई फील कि म्यूज़िक इज़ इंटरनेशनल, और इससे बहुत बियॉन्ड बॉर्डर्स जो बोलते हैं, इट गोज़ बियॉन्ड बॉर्डर्स।
1: जब 90 का दशक आया और वो जो दौर था, फ्यूचर, अगर मैं सीधा पूछूं जो फ्यूचर है सिंगिंग का, उसको आप कैसे देखती हैं?
2: पर मुझे लगता है कि फ्यूचर जो होना भी चाहिए कि इंडिपेंडेंट म्यूज़िक का होना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो हैं वो भी मेहनत कर रहे हैं अपने हिसाब से, तो उनके जो गाने हैं वो YouTube में डालना, फिर उनका चैनल शुरू करना, उसमें से जो अच्छे गाते हैं बच्चे अवार्ड्स में, उनको अवार्ड्स मिलना, तो इंडिपेंडेंट म्यूज़िक का ही फ्यूचर मैं देख रही हूँ। वो ज़माना चला गया जब लोग को लगे कि मैं फिल्मों में गाऊँ तभी मेरा नाम होगा, फिल्मों में 4-5 गाने हिट हो जाएं तो मेरा फ्यूचर बन गया। अभी वो नहीं हो सकता, क्योंकि फिल्म आता है जाता है, पता भी नहीं चलता उसमें क्या गाना है, तो फिल्मों के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए। इंडिपेंडेंट म्यूज़िक मेहनत करते, इंडियन इंडिपेंडेंट म्यूज़िक अपना चैनल, अपना स्टाइल बरकरार रखते होते, पता चला एक दिन वो स्टाइल लोगों को पसंद है, तो दैट इज़ द ओनली फ्यूचर आई एम सीइंग, इंडिपेंडेंट म्यूज़िक। देखिए, वैसे मैं आजकल के बच्चों को कुछ सिखा नहीं सकती, क्योंकि वो बहुत तेज़ हैं, और जो रियलिटी कॉन्टेस्ट में जो बच्चे गाते हैं, तो मैं तो दंग रह जाती हूँ उनका गाना सुनकर। और ये डेफिनेटली सोशल मीडिया या इंस्टाग्राम या यूट्यूब के वजह से, वो जो गाते हैं सुन सुन सुन के उन्होंने इंटरनेशनल म्यूज़िक सुना है जो हम बचपन में नहीं सुने, हमको ये मौका नहीं था, उस सबको सुन के कुछ अपने हिसाब से तैयार होते हैं, और अपनी तैयारी से वो गाते हैं, तो उस हिसाब से दे आर वेरी वेरी स्मार्ट। उनको मैं कुछ एडवाइस दे नहीं सकती, पर ये कहूँगी कि गुरु शिष्य परंपरा हमारे देश की एक बहुत बड़ी पूंजी है, हमारे देश नहीं पूरे इंटरनेशनल में भी, जहाँ पे भी लोग अपना कला, अपनी लेगेसी बच्चों को, ग्रैंड चिल्ड्रन को, स्टूडेंट्स को बांटा है, ये बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुरु के साथ कैसे बैठना, कैसे उठना, कैसे गाना सीखना, और फिर उसे टेप नहीं करना, कानों से सुनकर याद रखना, हमारे ज़माने टेप रिकॉर्डर नहीं था, तो एक आदत सी हो जाती है कि सुन सुन के याद करने की, अल्फाज हो या गाना भी हो, सुन सुन के, तो वो सब है वो अपने आप को और भी मजबूत बनाता है। तो गुरु शिष्य परंपरा इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, आप सीख लो वो, उसके बाद अपना जो भी कुछ आप करना चाहते हो करो, पर बेसिक फाउंडेशन तो मेरे हिसाब से वो होना चाहिए।
0: एंड नाउ फॉर आवर नेक्स्ट सॉन्ग।

0: शुक्रिया, थैंक यू।
1: कार्यक्रम आमने सामने में आप सुन रहे थे मशहूर प्लेबैक सिंगर कविता कृष्णमूर्ति से बातचीत। हमें उम्मीद है आपको यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आमने सामने। यह है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद पर मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
2: ये मेरा इंडिया।
1: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
3: साहस की बुलंद शुरुआत से लेकर आसमान की असीम ऊंचाइयों तक 8 अक्टूबर को पूरा देश मना रहा है भारतीय वायुसेना का 94वां वायुसेना दिवस।
4: वर्ष 1947-48, 1965 और 1971 के ऐतिहासिक युद्धों से लेकर ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन सफेद सागर तक विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायु सेना ने हर पल कर दिखाया है अदम्य पराक्रम, अत्याधुनिक तकनीक और सर्वोच्च बलिदान।
3: तो मध्य प्रदेश के जाबाज युवाओं, क्या आप तैयार हैं? बादलों को चीरकर देश का मान बढ़ाने के लिए तो बनिए अग्निवीर वायु, हासिल कीजिए वो मुकाम जो जिंदगी भर की पहचान बन जाए और गर्व से कीजिए भारत माँ की सेवा।
4: भर्ती और पात्रता से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए
3: 15 एयरमैन चयन केंद्र के इंस्टाग्राम पेज 15ASC_भोपाल और आधिकारिक वेबसाइट IAFRecruitment.edcil.co.in पर विजिट करें।
4: नभास प्रशम दीप्तम।
3: जय हिंद।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। खुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

0: दोपहिया वाहन की सवारी करते समय हेलमेट जरूर पहने। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के प्रसारण के साथ, देश का चैनल देश के लिए। आनंद लीजिए कार्यक्रम वागर्द का।

0: इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं रचना पाठ, व्याख्यान और बहुत कुछ। आज आपको लिए चल रहे हैं मुशायरे में
1: कि हर शख्स दौड़ता है यहाँ भीड़ की तरफ, फिर ये भी चाहता है उसे रास्ता मिले।
2: आए, वाह वाह,
1: हर शख्स दौड़ता है यहाँ भीड़ की तरफ।
2: क्या कहने से, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह।
1: हर शख्स दौड़ता है यहाँ भीड़ की तरफ, फिर ये भी चाहता है उसे रास्ता मिले।
0: ये अखिल भारतीय मुशायरा आयोजित किया गया मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी, मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद, संस्कृति विभाग द्वारा, कार्यक्रम यादे बशीर बद्र के तहत।

0: तो आइए चलते हैं कुछ पलों के लिए मुशायरे में।
1: जोरदार तालियों से इस्तकबाल कर लीजिए जनाबे चित्रांश खरे।
2: एक मतलब और दो चार शेर देखें कि बहुत दिन से किनारा कर रहे हैं, बहुत दिन से किनारा कर रहे हैं, बिछड़ने का इरादा कर रहे हैं। बहुत दिन से किनारा कर रहे हैं, मोहब्बत दिल की बीमारी है जिसमें सब अपना वक्त जाया कर रहे हैं। मोहब्बत दिल की बीमारी है जिसमें सब अपना वक्त जाया कर रहे हैं। और शेर सुने कि मोहब्बत चल रही है रफ्ता रफ्ता, मोहब्बत चल रही है रफ्ता रफ्ता, मगर दो दिल तमाशा कर रहे हैं। मोहब्बत चल रही है रफ्ता रफ्ता, मगर दो दिल तमाशा कर रहे हैं। तुम्हें कुछ दिन निभाना चाहिए था, तुम्हें कुछ दिन निभाना चाहिए था, मुझे भी आजमाना चाहिए था। तुम्हें कुछ दिन निभाना चाहिए था, मुझे भी आजमाना चाहिए था। और शेर सुने कि मैं अब कमजोर साबित हो चुका हूँ, मैं अब कमजोर साबित हो चुका हूँ, मुझे आंसू छुपाना चाहिए था।
1: वाह वाह।
2: मैं अब कमजोर साबित हो चुका हूँ, शुक्रिया
1: मुझे,
2: मैं अब कमजोर साबित हो चुका हूँ, मुझे आंसू छुपाना चाहिए था। शेर सुने कि तेरे जलवों में बस चिंगारियां थीं, तेरे जलवों में बस चिंगारियां थीं, मुझे लहजा पुराना चाहिए था। तेरे जलवों में बस चिंगारियां थीं, मुझे लहजा पुराना चाहिए था। और शेर सुने कि नजाकत और बढ़ जाती तुम्हारी, नजाकत और बढ़ जाती तुम्हारी, जरा सा रूठ जाना चाहिए था।
1: वाह वाह वाह वाह वाह।
2: नजाकत और बढ़ जाती तुम्हारी, जरा सा रूठ जाना चाहिए था। अब थोड़ी बड़ी बहर की तरफ बढ़ता हूँ, ये गजल सुने कि दिल की धड़कन और फिर आंखों का पानी हो गए। बशीर बदर साहब के साथ मेरा बहुत बैठना उठना रहा है शुरुआती दौर में, और मेरी ये खुशनसीबी है कि मुझे बशीर बदर साहब का भी साया मिला, और वसीम साहब के साथ तो मैंने 13-13, 14-14 दिन एक साथ हम लोग रहे और काम किया।
1: क्या बात,
2: मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण लम्हात हैं ये।
1: क्या बात।
2: सुने कि दिल की धड़कन और फिर आंखों का पानी हो गए, तुम जुदा भी तब हुए जब जिंदगानी हो गए।
1: वाह वाह वाह वाह।
2: दिल की धड़कन और फिर आंखों का पानी हो गए, तुम जुदा भी तब हुए जब जिंदगानी हो गए। शेर सुने कि दिल मेरा कब से इसी गम के कफस में कैद है, दिल मेरा कब से इसी गम के कफस में कैद है, तुम भला कैसे हकीकत से कहानी हो गए। दिल मेरा कब से इसी गम के कफस में कैद है, तुम भला कैसे हकीकत से कहानी हो गए। और ये शेर सुने कि वो मोहब्बत के सफर से रूबरू होता गया, वो मोहब्बत के सफर से रूबरू होता गया, याद मेरे शेर जिसको मुंह जबानी हो गए।
1: क्या कहने है?
2: वो मोहब्बत के सफर से रूबरू होता गया, याद मेरे शेर जिसको मुंह जबानी हो गए।
1: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खूब पढ़ा आपने। ये थे जनाबे चित्रांश खरे।

0: जोरदार तालियों में इस्तकबाल कर लीजिए जनाबे फरहान मंजर।
1: गजल का मतलब पेश कर रहा हूं, बतौर खास समात फरमाइएगा। अर्ज किया है कि तेरी एक निगाह अमीक ने मुझे क्या से क्या ये बना दिया, तेरी एक निगाह अमीक ने मुझे क्या से क्या ये बना दिया, मैंने जो पढ़ा था भुला दिया, मैंने जो लिखा था मिटा दिया। तेरी एक निगाह अमीक ने मुझे क्या से क्या ये बना दिया, मैंने जो पढ़ा था भुला दिया, मैंने जो लिखा था मिटा दिया। बहुत शुक्रिया हजरत, ये शेर भी आपकी समातों के हवाले। मेरे तजुर्बे ने कहा यही जिसे सोजे दिल की खबर नहीं, मेरे तजुर्बे ने कहा यही जिसे सोजे दिल की खबर नहीं, वो चराग कोई चराग है जिसे आंधियों ने बुझा दिया। मेरे तजुर्बे ने कहा यही, मेरे तजुर्बे ने कहा यही जिसे सोजे दिल की खबर नहीं, नवाजिश। वो चराग कोई चराग है जिसे आंधियों ने बुझा दिया, जिसे आंधियों ने बुझा दिया। और हजरत ये शेर भी समाप्त फरमाइएगा कि तेरी एक नजर का कमाल है भला और किसकी मजाल है, तेरी एक नजर का कमाल है भला और किसकी मजाल है, जिसे तूने चाहा उठा दिया, जिसे तूने चाहा गिरा दिया। तेरी एक नजर का कमाल है, तेरी एक नजर का कमाल है भला और किसकी मजाल है, जिसे तूने चाहा उठा दिया, जिसे तूने चाहा गिरा दिया, जिसे तूने चाहा उठा दिया, जिसे तूने चाहा गिरा दिया। जो किनारे नाव लगी मेरी तू कहा शनावर वक्त ने, जो किनारे नाव लगी मेरी तू कहा शनावर वक्त ने, तेरा डूबना तो नसीब था तुझे पार किसने लगा दिया।
0: वाह वाह वाह वाह वाह।
1: जो किनारे नाव लगी मेरी तू कहा शनावर वक्त ने, तेरा डूबना तो नसीब था तुझे तुझे पार किसने लगा दिया, तुझे पार किसने लगा दिया। नवाजिश। और ये इस गजल का आखिरी शेर के रहो उम्र भर मेरे साथ साथ मुझे तुमसे कोई गिला नहीं, रहो उम्र भर मेरे साथ साथ मुझे तुमसे कोई गिला नहीं, मगर आफतो ये बता तो दो मेरे घर का किसने पता दिया। रहो उम्र भर मेरे साथ साथ मुझे तुमसे कोई गिला नहीं, मगर आफतो ये बता तो दो मेरे घर का किसने पता दिया, मेरे घर का किसने पता दिया। बड़ी ही खूबसूरती के साथ आप समाअत फरमा रहे हैं हजरत। एक गजल पढ़ने से कबल दो चार शेर और आपकी समातों के हवाले। अर्ज किया है कि बहुत छोटी सी बहर में गजल कहने की कोशिश की है। अर्ज किया है कि लुत्फे दीदारे यार टूटेगा, लुत्फे दीदारे यार टूटेगा ख्वाब का जब हिसार टूटेगा, लुत्फे दीदारे यार टूटेगा ख्वाब का जब हिसार टूटेगा, कैसे धड़केगा ये किसी के लिए, कैसे धड़केगा ये किसी के लिए दिल अगर बार बार टूटेगा। लुत्फ दीदारे यार टूटेगा, नवाजिश। लुत्फ दीदारे यार टूटेगा ख्वाब का जब हिसार टूटेगा, कैसे धड़केगा ये किसी के लिए दिल अगर बार बार टूटेगा, दिल अगर बार बार टूटेगा, फिर तुझे इंतजार है उसका फिर तेरा एतबार टूटेगा, फिर तुझे इंतजार है उसका,
0: फिर तेरा एतबार,
1: तुझे इंतजार है उसका, फिर तुझे इंतजार है उसका, फिर तेरा एतबार टूटेगा, फिर तेरा एतबार टूटेगा। मतलब पढ़ता हूं कि उजाले भर गई जब से हयात आंखों में, उजाले भर गई जब से हयात आंखों में, सिमट के आ गई कुल कायनात आंखों में, उजाले भर गई जब से हयात आंखों में, सिमट के आ गई कुल कायनात आंखों में, हमारी आंखों को इतना तो जब्त लाजिम है कि कोई पढ़ न सके मुश्किलात आंखों में, हमारी आंखों को इतना तो जब्त लाजिम है कि कोई पढ़ ना सके मुश्किलात आंखों में, कि कोई पढ़ ना सके मुश्किलात आंखों में। और ये मक्ता पढ़ता हूँ हजरत और आपकी जहमत तमाम के, कि कोई पढ़ ना सके मुश्किलात आंखों में, यकीन दिलाते हो जिस बात का हमें फरहान, यकीन दिलाते हो जिस बात का हमें फरहान, दिखाई दे भी तो हमको वो बात आंखों में, दिखाई दे भी तो हमको। बहुत बहुत शुक्रिया सर।
0: वाह वाह वाह वाह। दोस्तों ये थे जनाब फरहान मंजर साहब, जिनका कोरवाई से ताल्लुक़ था और अपने कलाम से नवाज रहे थे और आपको महसूस कर रहे थे।

0: मोहतरमा ज्योति आजाद खत्री ने कलाम से नवाजा।
1: मतलब अर्ज किया है, दिल को एक दिल का तलबगार किया जाता है, दिल को एक दिल का तलबगार किया जाता है, इस तरह हिजर से भी प्यार किया जाता है।
0: वाह।
1: दिल को एक दिल का तलबगार किया जाता है, इस तरह हिजर से भी प्यार किया जाता है। और शेर मुलायजा फरमाए, उसको समझाओ खुली आंखें कोई शर्त नहीं, उसको समझाओ खुली आंखें कोई शर्त नहीं, बंद आंखों से भी दीदार किया जाता है। उसको समझाओ खुली आंखें कोई शर्त नहीं, बंद आंखों से भी दीदार किया जाता है। और एक ही बात को हम थक गए कहते कहते, एक ही बात को हम थक गए कहते कहते, और कैसे भला इंकार किया जाता है। एक ही बात को हम थक गए कहते कहते, और कैसे भला इंकार किया जाता है। मतला चंशेर और देखें, कोई अव्वल है न सानी है तुम्हें देखना है, कोई अव्वल है न सानी है तुम्हें देखना है, कितना इन बातों में मानी है तुम्हें देखना है।
0: वाह।
1: कोई अव्वल है न सानी है तुम्हें देखना है, कितना इन बातों में मानी है तुम्हें देखना है। और शेर देखें कि हम तो हर हाल में राजी हैं निभाने को मगर, हम तो हर हाल में राजी हैं निभाने को मगर, किस तरह तुमने निभानी है तुम्हें देखना है। कि हम तो हर हाल में राजी हैं निभाने को मगर, किस तरह तुमने निभानी है तुम्हें देखना है। और मैंने तो रंग गिराए हैं फकत कागज पर, मैंने तो रंग गिराए हैं फकत कागज पर, किसकी तस्वीर बनानी है तुम्हें देखना है।
0: वाह वाह।
1: कि मैंने तो रंग गिराए हैं फकत कागज पर, किसकी तस्वीर बनानी है तुम्हें देखना है। ये गजल से चंद अशआर और देखें। मतला है कि ऐसा नहीं कि मुझको पुकारा नहीं गया, ऐसा नहीं कि मुझको पुकारा नहीं गया, उस समत दिल ही मेरा दोबारा नहीं गया, ऐसा नहीं कि मुझको पुकारा नहीं गया, उस समत दिल ही मेरा दोबारा नहीं गया, आंखों में ख्वाब इसलिए जिंदा रखे गए, आंखों में ख्वाब इसलिए जिंदा रखे गए, अरमान दिल में कोई भी मारा नहीं गया। कि आंखों में ख्वाब इसलिए जिंदा रखे गए, अरमान दिल में कोई भी मारा नहीं गया, ऐसा नहीं कि मुझको पुकारा नहीं गया, उस संत दिल ही मेरा दोबारा नहीं गया।
0: क्या कहने हैं भाई, वाह वाह वाह वाह वाह वाह।
1: मतला चंशेर और देखें। हो इजाजत तो कुछ सुनाऊं मैं, हो इजाजत तो कुछ सुनाऊं मैं, तेरी मुश्किल का हल बताऊं मैं।
0: वाह।
1: हो इजाजत तो कुछ सुनाऊं मैं, तेरी मुश्किल का हल बताऊं मैं, जब ठिकाना कोई मेरा पूछे, जब ठिकाना कोई मेरा पूछे, क्या तेरे दिल को घर बताऊं मैं। कि जब ठिकाना कोई मेरा पूछे, क्या तेरे दिल को घर बताऊं मैं। और अब तो आंसू भी आहें भरने लगे, अब तो आंसू भी आहें भरने लगे, हाल दिल का अगर सुनाऊं मैं। कि अब तो आंसू भी आहें भरने लगे, हाल दिल का अगर सुनाऊं मैं। आखिरी गजल से चंद अशआर
0: जी शाद।
1: मतला अर्ज किया है, तसव्वुरात की जागीर देखते रहना, तसव्वुरात की जागीर देखते रहना, हमारे ख्वाब की ताबीर देखते रहना, तसव्वुरात की जागीर देखते रहना, हमारे ख्वाब की ताबीर देखते रहना। शेर मुलाहजा फरमाए कि मैं सामने हूँ अभी गुफ्तगू करो मुझसे, मैं सामने हूँ अभी गुफ्तगू करो मुझसे, कि बाद में मेरी तस्वीर देखते रहना।
0: वाह,
1: बहुत शुक्रिया। कि मैं सामने हूँ अभी गुफ्तगू करो मुझसे, कि बाद में मेरी तस्वीर देखते रहना। और शेर की, मैं अपनी आंखों से दुनिया को जीत लाऊंगी, मैं अपनी आंखों से दुनिया को जीत लाऊंगी, तू मेरे पाँव की जंजीर देखते रहना।
0: भाई वाह वाह वाह वाह वाह।
1: मैं अपनी आंखों से दुनिया को जीत लाऊंगी, तू मेरे पाँव की जंजीर देखते रहना, तसव्वुरात की जागीर देखते रहना, हमारे ख्वाब की ताबीर देखते रहना। बहुत शुक्रिया।
0: वाह वाह वाह वाह। ये थी मोहतरमा ज्योति आज़ाद खत्री साहिबा।

0: दरख्त जब कलम बन जाए तो वो जनाबे प्रोफेसर वसीम बरेलवी का रूप धार लेते हैं।
1: पेश करता हूं कि दियों का कद घटाने के लिए
0: रातें

0: इन आंखों को तो बसाता है, बरसातें बड़ी करना, मोहब्बत में बिछड़ने का हुनर सबको नहीं आता।
1: वाह,
0: मोहब्बत में बिछड़ने का हुनर सबको नहीं आता, किसी को छोड़ना हो तो मुलाकातें बड़ी करना। मोहब्बत में बिछड़ने का हुनर सबको नहीं आता,
1: जिंदाबाद,
0: जिंदाबाद, सबको नहीं आता। मोहब्बत में बिछड़ने का हुनर सबको नहीं आता, किसी को छोड़ना हो तो
1: मुलाकातें
0: बड़ी करना, किसी को छोड़ना हो तो मुलाकातें बड़ी करना। आइए अब मतलब सुनाता हूँ, पेश करता हूँ कि फैसला हो ही नहीं पाया बहुत बातों के बाद।
1: वाह,
0: फैसला हो ही नहीं पाया बहुत बातों के बाद, कौन खुलता है यहाँ कितनी मुलाकातों के बाद। फैसला हो ही नहीं पाया बहुत बातों के बाद, कौन खुलता है यहाँ कितनी मुलाकातों के बाद, कौन खुलता है यहाँ कितनी मुलाकातों के बाद। आंसुओं के सामने पत्थर दिली की क्या बिसात, आंसुओं के सामने पत्थर दिली की क्या बिसात, अच्छे अच्छे घर दरक जाते हैं बरसातों के बाद। आंसुओं के सामने पत्थर दिली की क्या बिसात, अच्छे अच्छे घर दरक जाते हैं बरसातों के बाद, अच्छे अच्छे घर दरक जाते हैं बरसातों के बाद। कि हर शख्स दौड़ता है यहाँ भीड़ की तरफ, फिर ये भी चाहता है उसे रास्ता मिले।
1: रास्ता आए, वाह वाह,
0: हर शख्स दौड़ता है यहाँ भीड़ की तरफ।
1: क्या कहने से, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह।
0: हर शख्स दौड़ता है यहाँ भीड़ की तरफ, फिर ये भी चाहता है उसे रास्ता मिले। पेश करता हूँ कि मालिक तेरा करम कि बड़ी लंबी उम्र दी।
1: आहा,
0: सुने बहुवाल, मालिक तेरा करम के बड़ी लंबी उम्र दी, और उस पे ये के बोझ किसी पर नहीं हुए।
1: वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह वाह वाह वाह सर, वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह सर, वाह वाह वाह वाह वाह वाह।
0: मालिक तेरा करम के बड़ी लंबी उम्र दी, और इस पे ये के बोझ किसी पर नहीं हुए। आखिर में तीन चार शेर और सुनाऊंगा, ये भी नई गजल सुनाऊंगा। मतलब सुनिए, बहुत अच्छा सुना है आप, आपने वहां पहुंचा दिया जहां पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी था। अना को राह में आने न देना, अना को
1: राह में आने न देना,
0: आने न देना। साहब वो शायरी ही नहीं होती जो बनाई जाए, शायरी वही होती जो होती है।
1: वाह,
0: आइए, मैं तो एक एक लफ्ज का गुलाम हूँ, पूरी जिंदगी एक एक लफ्ज मैं तो क्या कह सकता था, बस मुझे उसने कहा है, मैंने नहीं कहा, लफ्जों ने मुझे कहा।
1: क्या बात है,
0: पेश करता हूँ कि अना के बीच, मैंने अर्ज किया था आपसे कि अना को राह में आने न देना, कोई आवाज दे तो लौट आना।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह,
0: राह में आने न देना, वाह वाह वाह वाह, अना को राह में आने न देना, कोई आवाज दे तो
1: लौट आना।
0: अना को राह में आने न देना, कोई आवाज दे तो लौट आना। ताल्लुक जिंदा रखने को बहुत है, गजल वालों, भोपाल वालों, गजल वालों सुनो, कि ताल्लुक जिंदा रखने को बहुत है, ताल्लुक जिंदा रखने को बहुत है, बिछड़ते वक्त आंखें भीग जाना।
1: वाह,
0: ताल्लुक जिंदा रखने को बहुत है,
1: बिछड़ते वक्त आंखें भीग जाना,
0: बहुत है, बिछड़ते वक्त आंखें भीग जाना।
1: क्या कैफियत है सर, हाँ,

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम।
1: श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। मैं हूं आपका रेडियो मित्र प्रमोद शर्मा।
2: और मैं हूं मोनिका तिवारी।
1: और श्रोताओं, कार्यक्रम है देश का रतन रतन टाटा। श्रोताओं, स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध लेखक कार्लाइल ने मैनचेस्टर में दिए अपने भाषण में कहा था कि जिस देश का लोहे पर नियंत्रण हो जाता है, उसका शीघ्र ही सोने पर भी नियंत्रण हो जाता है।
2: श्रोताओं, मैनचेस्टर में दिए इस भाषण को भारत के एक नवयुवक ने भी सुना और बहुत प्रभावित भी हुआ। उसने अपने व्यापार को एक नई दिशा दी और आगे चलकर भारतीय औद्योगिक विकास की एक महत्वपूर्ण कड़ी बन गया। नाम था उसका जमशेद जी नौशेरवान जी टाटा, टाटा समूह का संस्थापक।
1: श्रोता, गुजरात के पारसी खानदान में जन्मे जमशेद जी की फितरत कुछ अलग ही थी। शिक्षा पूरी होने के बाद उनके पिता ने उन्हें एक वकील के साथ लगा दिया, लेकिन उनका दिल तो व्यापार में लगा था। उन्होंने वकील का दफ्तर छोड़ा और पिताजी का कारोबार संभाल लिया।
2: कारोबार को भारत से बाहर भी फैलाने के लिए वो चीन और हांगकांग गए, वहाँ अपनी शाखाएं खोली। इसी कड़ी में आगे वो इंग्लैंड भी गए। उस समय उनकी उम्र महज 25 साल की थी। 4 सालों तक वो वहाँ के सूती वस्त्र उद्योग का अध्ययन करते रहे।
1: और श्रोता, उन्होंने पाया कि इंग्लैंड वाले भारत से कपास कोड़ियों के मोल खरीदते हैं और अपनी मिलों में इससे कपड़ा बना करके भारत को कई गुना ज्यादा कीमतों पर बेच देते हैं। उनका मन बहुत दुखी हुआ। यह तो देश के संसाधनों की लूट है। उन्होंने इरादा किया कि ऐसी ही मिलें वे भारत में भी खोलेंगे।
2: सन 1877 में उन्होंने नागपुर में एम्प्रेस मिल नाम से एक सूती मिल खोली। कठिनाइयां बहुत आईं, लेकिन स्वदेशी का जुनून उन्हें आगे बढ़ाता गया। 3 साल बाद उनके मन में इस्पात उद्योग की अभिलाषा उत्पन्न हुई। अंग्रेज सरकार से इतने बड़े उद्योग को स्वीकृति करना आसान नहीं था उनके लिए। काफी संघर्ष के बाद उन्हें इसकी इजाजत मिली।
1: और श्रोताओं, इसके बाद खनिज सर्वेक्षण का काम शुरू हुआ, लेकिन इसी बीच उनकी मृत्यु हो गई। तब यह काम उनके छोटे बेटे दोराब जी टाटा ने पूरी की। 1911 में टाटा आयरन स्टील की स्थापना की गई। जमशेद जी का यह महान सपना पूरा हुआ। आज के झारखंड के साक्ची गांव में जंगलों को साफ करके यह कारखाना लगाया गया। और श्रोताओं, यह गांव आज एक महानगर का रूप ले चुका है, जिसका नाम भी जमशेदपुर रखा गया है। चलिए श्रोताओं, बात करते हैं रतन टाटा जी के बारे में। श्रोताओं, आपने कहावत सुनी होगी, लीक छोड़ी तीनों चले सायर सिंह सपूत, यानी कि सागर सिंह और सुपुत्र, ये तीनों परंपराओं के बंदी नहीं होते हैं, ये तो खुद नई परंपराएं बनाते हैं। भारत के विशालकाय टाटा समूह के चेयरमैन रहे रतन टाटा पर यह उक्ति पूरी तरह से लागू होती है। सन 2012 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन के पद से रिटायर हो चुके हैं वे, लेकिन आभा मंडल उनका अब भी उतना ही विराट है।
2: श्रोताओं, रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर सन 1937 को सूरत शहर में हुआ था। पिता का नाम था नवल टाटा। जब वो 10 साल के थे और उनके छोटे भाई जिमी 7 साल के थे, तब उनके माता पिता एक दूसरे से अलग हो गए। तब दोनों भाइयों का लालन पालन उनकी दादी नवजबाई टाटा ने किया।
1: रतन टाटा की शुरुआती पढ़ाई मुंबई के कैंपियन स्कूल में हुई और उनकी माध्यमिक शिक्षा कैथेड्रल एंड जॉन कनन स्कूल में हुई। और इसके बाद उन्होंने अपना बीएस वास्तुकला में और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के साथ कॉर्मल यूनिवर्सिटी से किया और फिर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से 1975 में एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया।
2: भारत लौटने से पहले रतन टाटा ने लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में कुछ समय काम किया। उन्होंने टाटा ग्रुप के साथ अपने करियर की शुरुआत सन 1961 में की थी। शुरुआती दिनों में उन्होंने टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम किया था। इसके बाद वो अपने ग्रुप की अन्य कंपनियों से जुड़ गए।
1: श्रोता, 1971 में उन्हें नालको में डायरेक्टर इन इंचार्ज बनाया गया। उस समय यह कंपनी भारी घाटे में चल रही थी, लेकिन रतन टाटा के आते ही इसकी हालत बदलने लगी और इसका मार्केट 2% से बढ़कर के 25% हो गया। लेकिन इसके बाद इमरजेंसी लग गई और नई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो गई। यह कंपनी एक बार फिर टूटने के कगार पर पहुंच गई।
2: वर्ष 1991 में जेआरडी टाटा ने टाटा ग्रुप का अध्यक्ष पद छोड़ा और रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने नई बुलंदियों को छुआ। टाटा कंसल्टेंसी ने पब्लिक इशू जारी किया। टाटा मोटर्स न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध की गई।
1: श्रोता, 1998 में टाटा मोटर्स ने अपनी पहली पूर्णतः भारतीय कार इंडिका पेश की। तत्पश्चात टाटा की टेटली, टाटा मोटर्स ने जैगवार लैंड रोवर, टाटा स्टील ने कोरस का अधिग्रहण किया। 2008 में आई टाटा नैनो रतन टाटा के सपने के पूरा होने जैसा था।
2: 2012 में रतन टाटा रिटायर हो गए। हालांकि टाटा ग्रुप इसके पहले दो और बार इस मोड पर आ चुका था, लेकिन हर बार उन्होंने उन्हें जाने से रोक लिया। सर्वप्रथम उनका रिटायरमेंट 2002 में शेड्यूल किया गया था, जब वो 65 साल के थे, लेकिन टाटा सन्स ने फटाफट उन्हें नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में अगले 5 सालों के लिए उन्हें रीडेजिग्नेट कर दिया।
1: 3 साल बाद बोर्ड ने नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के रिटायरमेंट एज बढ़ाकर के 75 साल कर दी। संदेश बिल्कुल साफ था कि रतन टाटा को छोड़ना संभव नहीं है कंपनी के लिए। केवल बोर्ड ही ऐसा नहीं चाहता था, बल्कि शेयर होल्डर्स भी समर्थन में चिल्ला रहे थे। टाटा स्टील के एजीएम के एक शेयर होल्डर ने तो यहाँ तक कह दिया था कि हम अपना रतन खो नहीं सकते।
2: सचमुच टाटा ग्रुप के रतन ही थे वो। हालांकि वर्ष 1991 में इस ग्रुप के चेयरमैन वो इसलिए बने थे कि उनका सरनेम टाटा था, लेकिन लगभग 20 सालों के काम के दौरान उन्होंने ये साबित कर दिया था कि इस सरनेम से हटकर भी बहुत कुछ है वो। उनके कार्यकाल में टाटा ग्रुप का रेवेन्यू 40 गुना बढ़ गया और शुद्ध मुनाफा 4 गुना बढ़ गया था।
1: श्रोताओं, रतन टाटा की उपलब्धियों को देखते हुए उन्हें भारी संख्या में पुरस्कार और सम्मान मिले। कई यूनिवर्सिटीज ने उन्हें मानद उपाधियां प्रदान की। भारत सरकार भी उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित कर चुकी है। चलिए श्रोताओं, अब एक विषय को हम और उठाते हैं कि अपनी विरासत अपने बेटों को सौंपने की परंपरा नहीं है टाटा परिवार में।
2: श्रोताओं, आपको सुनकर शायद आश्चर्य होगा कि भारत के सबसे बड़े औद्योगिक घरानों में एक टाटा ग्रुप में इसके फाउंडर मेंबर को छोड़कर किसी भी चेयरमैन का बेटा या बेटी उसका वारिस नहीं बना है।
1: हाँ श्रोताओं, 1887 में टाटा एंड सन्स की स्थापना करने वाले जमशेद जी नुसेरवान जी, टाटा की विरासत उनके बड़े बेटे सर दोराब जी टाटा को मिली थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। अतः 1932 में उनकी मृत्यु के बाद कंपनी की कमान उनकी बहन के बेटे सर नावरोजी सकटवाला को दी गई और सन 1938 में सर नावरोजी सकटवाला की आकस्मिक मृत्यु के बाद यह कमान जेआरडी टाटा के हाथों में आ गई। जेआरडी टाटा जमशेद जी टाटा के चचेरे भाई थे, जिन्होंने भारत में पहली एयरलाइंस की सुविधा मुहैया कराई थी। लेकिन अफसोस कि जेआरडी टाटा के भी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए 1991 में कंपनी की कमान रतन टाटा को सौंपी गई। वे नवल टाटा के बेटे थे, जिन्हें जेआरडी टाटा ने गोद लिया था।
2: अगर रतन टाटा ने शादी की होती और उनकी अपनी संतान होती तो स्वाभाविक रूप से वही उनकी उत्तराधिकारी होती, लेकिन तब इतिहास अपने आप को दोहरा ना पाता। वर्ष 2012 में उनके रिटायरमेंट के बाद उनकी विरासत साइरस मिस्त्री को मिली। साइरस मिस्त्री रतन टाटा के सौतेले भाई के सगे साले हैं।
1: चलिए श्रोताओं, बात करते हैं रतन टाटा की ड्रीम कार नैनो कार की कहानी के बारे में। श्रोताओं, रतन टाटा का नाम नैनो से अभिन्न रूप से जुड़ा है। यह उन्हीं का सपना था और उन्हीं की लगन से संभव भी हुआ, लेकिन इसकी एक लंबी कहानी है जो संक्षेप में हम आपको सुनवाते हैं।
2: श्रोताओं, मुनाफा कमाने से बढ़कर लोगों की सेवा करना ही रतन टाटा की दिली इच्छा रही है। उनकी इस इच्छा का परिणाम थी नैनोकार। एक पत्रिका के अनुसार एक बार रतन जी टाटा जब बेंगलुरु की ट्रैफिक में फंस गए तब उन्होंने एक पूरे परिवार को एक स्कूटर पर जाते हुए देखा। यहीं से उनके मन में नैनो कार का विचार कौन था। और श्रोताओं, एक इंटरव्यू में रतन टाटा ने कहा,
1: मेरे अंतर मन के कोने में हमेशा एक बात रही है कि भारत के लिए कुछ करना चाहिए। क्योंकि ट्रांसपोर्ट मेरी दिलचस्पी का क्षेत्र है, इसलिए मुझे लगता है कि मैं इसमें कुछ कर सकता हूं। शहरीकरण जब रफ्तार पकड़ता है तो प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स एक बड़ा मुद्दा बन जाता है, खास करके उस समय जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुलभ न हो। दो पहिया वाहन जिसे पिता चलाता है, बड़ी संतान आगे खड़ी होती है और बच्चे को गोद में लिए पत्नी पीछे बैठती है, भारत के जीवन में रच बस गया है। लेकिन दो पहिया वाहन परिवार को कहीं ले जाने के लिए अपेक्षाकृत असुरक्षित माध्यम है। और इससे मेरे मन में यह विचार आया कि ट्रांसपोर्ट की अपेक्षाकृत एक सुरक्षित मोड़ का निर्माण करना चाहिए।
2: शुरू में रतन टाटा स्कूटर की टेढ़ी मेढ़ी डिजाइनें खींचा करते थे ताकि लोग सुरक्षित यात्रा कर सकें। उन्होंने एक उद्योग संघ से संपर्क किया और टाटा मोटर्स के साथ मिलकर एक एशियाई कार बनाने का सुझाव दिया। एक ऐसी कार जिसका बड़े पैमाने पर उत्पादन हो, जिसमें तमाम देश शामिल हों और विभिन्न विभिन्न लोग विभिन्न विभिन्न पुर्जे बनाएं।
1: लेकिन उन्हें ये निराशाजनक उत्तर मिला। टाटा मोटर्स ने जब इंडिका बनाने का फैसला किया था तो उस समय भी ऐसा ही निराशाजनक उत्तर उन्हें मिला था। रतन टाटा ने एक औद्योगिक संस्था के सामने प्रस्ताव रखा कि क्यों न पार्टनरशिप में एक ऐसी कार बनाई जाए जो भारत में ही अभिकल्पित और विकसित व पूरी तरह से निर्मित हो। इसे याद करते हुए वे बताते हैं, हर एक ने मेरी हंसी उड़ाई, कुछ ने तो कटाक्ष भी किए, लेकिन टाटा मोटर्स निराश नहीं हुई। इंडिका कार बाजार में आई 1998 में और इसकी सफलता से उत्साहित होकर के टाटा मोटर्स और उसकी टीम ने एक असाधारण काम करने के बारे में सोचने लगे। कम कीमत वाली एक ऐसी कार जो व्यक्तिगत गतिशीलता के क्षेत्र में क्रांति ला दे।
2: श्रोताओं, वर्ष 2003 में जेनेवा मोटर शो में रतन टाटा ने एक अनौपचारिक टिप्पणी की जिसने नैनो की कीमत 1,00,000 रुपए तय करने के विचार को जन्म दिया था। ब्रिटिश समाचार पत्र फाइनेंशियल टाइम्स द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने सहज ढंग से कहा कि उनकी कार की कीमत $2,500 के आसपास हो सकती है।
1: श्रोता, अगले दिन अखबारों में खबर छपी कि टाटा समूह लखटकिया कार के निर्माण की योजना बना रहा है। इस तरह 1,00,000 रुपए कीमत की कार बनाना उनका लक्ष्य बन गया है और यह वादा जैसे निभाना उनके लिए जरूरी भी था।
2: उनकी टीम उनके इस लक्ष्य को पूरा करने में जुट गई। हालांकि ऑटोमोबाइल उद्योग के हर पेशेवर ने लखटकिया कार के उनके इस लक्ष्य का खूब मजाक उड़ाया। भारत में सबसे बड़ी विदेशी कार निर्माता कंपनी सुजुकी के चेयरमैन ओसामू सुजुकी ने घोषणा की कि इस लागत पर कार बनाना संभव ही नहीं है।
1: श्रोताओं, लागत की सीमा के कारण रतन टाटा ने परियोजना के प्रारंभिक चरण में एक ग्रामीण कार की परिकल्पना की थी। एक ऐसी कार जिसमें दरवाजे व खिड़कियां ना हो, संभवतः नीचे सरकाए जाने लायक प्लास्टिक के पर्दे हों। यह वस्तुतः ऑटो रिक्शे का चार पहिए वाला एक बेहतर संस्करण था।
2: लेकिन जब परियोजना ने मूर्त रूप लेना शुरू किया तब टाटा मोटर्स के इंजीनियरों ने महसूस किया कि यह उनकी परीक्षा की घड़ी है और प्लास्टिक के पर्दे जैसी बकवास चीजों को छोड़ दिया जाए। राय ये बनी कि यह सचमुच की कार होनी चाहिए, न कि नाम की कार।
1: हाँ श्रोताओं, और यह बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार था। समय बीतने के साथ महंगाई बढ़ रही थी लेकिन लागत को स्थिर रखना था, फीचर्स भी बढ़ाने थे। रतन टाटा के उर्वर दिमाग से तमाम आइडियाज निकल रहे थे। एक विचार यह बना कि इंजीनियरिंग प्लास्टिक और नए पदार्थों का इस्तेमाल करके यह कार बनाई जाए जिसमें वेल्डिंग की जगह विमानन में प्रयुक्त चिपकने वाले पदार्थ इस्तेमाल किए जाए और एक पुर्जा कई सारे काम करे। लेकिन ये सब विचार यथार्थ की कठोर धरातल का सामना नहीं कर सके। प्लास्टिक का विचार छोड़ दिया गया क्योंकि यह पाया गया कि पेंट की हुई प्लास्टिक इस्पात के मुकाबले महंगी पड़ेगी।
2: श्रोताओं, एक विचार ये भी आया कि लागत कम रखने के लिए चौपहिया साइकिल कार बनाई जानी चाहिए। सुरक्षा के लिए शटर लगाने का भी सुझाव दिया गया। शुरुआती ड्राइंग्स को देखने पर समझ आता है कि इनमें से कोई भी ड्राइंग आज की नैनो कार से बिल्कुल भी नहीं मिलती है।
1: बड़े पैमाने पर उत्पादन नैनो के समीकरण का अंग था। रतन टाटा ने बताया कि हर साल 2 लाख कारों का उत्पादन करना चाहिए, लेकिन वे संतुष्ट न हुए। वे चाहते थे कि या तो हर साल 10 लाख कारों का उत्पादन हो या एक भी नहीं। प्रतिवर्ष एक ही मॉडल की 10 लाख कारें, भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ था और इसके लिए अरबों डॉलर के निवेश की आवश्यकता थी। नैनो के विकास की कहानी शुरू से लेकर के आखिर तक रोमांच और अनूठेपन से भरी रही। टाटा मोटर्स नैनो को सही मायने में एक आधुनिक उत्पाद बनाने की कोशिश कर रहा था। शुरुआती अनिश्चितताएं हट जाने के बाद एक चीज स्पष्ट थी कि नैनो एक वास्तविक कार होगी। और रतन टाटा ने स्पष्ट कहा कि हम आधी कार नहीं बनाने जा रहे हैं, हम पूरी कार बनाने जा रहे हैं।
2: श्रोताओं, अप्रैल 2003 में रतन टाटा के साथ स्मॉल कार टीम की बैठक से समझ में आता जा रहा था कि कार अब भी इन्वेंशन की स्टेज पर ही थी। इस बैठक में अनेक प्रकार की डिजाइनों पर चर्चा हुई। बैठक रतन टाटा के इस सुझाव के साथ खत्म हुई कि टीम 6 महीनों तक इस परियोजना पर पूर्णकालिक काम करेगी। टीम को भी नए तरह से पुनर्गठित किया गया था।
1: श्रोताओं, कार की डिजाइनिंग में सुरक्षा मानकों, इंजन की क्वालिटी और उत्सर्जन स्तर सहित तमाम आधुनिकताओं को शामिल करने पर ध्यान दिया गया। रतन टाटा किसी भी तरह के कंप्रोमाइज के मूड में बिल्कुल नहीं थे। सस्ती कार तो चाहते थे वो, लेकिन घटिया कार नहीं चाहते थे। ग्राहकों की नब्ज वे पहचानते थे।
2: 2005 में छोटी कार का एक शुरुआती संस्करण तैयार किया गया जो सिंगल सिलेंडर वाला था। रतन टाटा का ड्राइविंग एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा। लंबे डील डोल वाले रतन टाटा इस कार में कैसे बैठे, ये भी एक रहस्य ही है। लेकिन कार से निकलने के बाद उन्होंने कहा, मुझे इसे चलाना ही नहीं चाहिए था।
1: और श्रोताओं, इस तरह समय बीतता गया, हताशा बढ़ती गई। कुछ दिनों बाद छोटी कार का दूसरा संस्करण सामने आ गया। 2 सिलेंडर वाला था वो। पहले वाले से ये कुछ बेहतर था, लेकिन इसमें भी सुधार की जरूरत थी।
2: परियोजना बिना किसी मानक के कोरे कागज पर शुरू हुई थी, लेकिन टाटा मोटर्स के इंजीनियर्स जानते थे कि उन्हें मारुति 800 का मुकाबला करना है। इसके लिए इंजीनियरिंग का कमाल दिखाना बहुत जरूरी हो गया था। नैनो के एक्सलोरेशन, ड्राइविंग कंफर्ट, स्पेस और रंग रोगन सब कुछ को बेहतर बनाना था, वो भी अपने प्रतिद्वंदी की आधी से भी कम कीमत पर।
1: और रतन टाटा तो इस परियोजना में गले तक डूबे हुए थे, लेकिन वे टीम लीडर के बजाय टीम प्लेयर की भूमिका में अधिक थे। युवा इंजीनियर उन्हें अपने बीच पाकर के उत्साहित हो जाते थे। 98 से अधिक कंपनियों और 3.5 लाख से अधिक कर्मचारियों का नेतृत्व करने वाला यह व्यक्ति अपना बहुमूल्य समय निकाल करके उन्हें दे रहा था। यह बात उन्हें जोश और श्रद्धा से भर देती है। यह बेमेल संबंध समय गुजरने के साथ साथ एकात्मकता व प्रगाढ़ता में बदल गया। रतन टाटा और टीम के बीच संवाद ईमेल या फोन पर नहीं होता, बल्कि काम के माहौल में आमने सामने बैठ करके होता। खैर, रतन टाटा ने इस परियोजना में स्वयं को पूरी तरह से झोंक दिया और नतीजा यह हुआ कि अगले परीक्षण के बाद नैनो में सुधार होता गया। रतन टाटा ने ग्राहकों से किया अपना वादा निभाया और 2008 में 1 लाख रुपए में नैनो कार बाजार में उतार दी। इसमें डबल सिलेंडर वाला 623 सीसी का इंजन था और इसका माइलेज 25-30 किलोमीटर प्रति लीटर था। चलिए श्रोताओं, बात करते हैं रतन टाटा बनाम जीआरडी टाटा की।
2: श्रोताओं, टाटा समूह में रतन टाटा का जिक्र होते ही जेआरडी टाटा से उनकी सहज तुलना होने लगती है। दोनों महान हस्तियां थे, स्वप्नदर्शी थे। दोनों ने टाटा समूह को बुलंदियों पर पहुंचा दिया।
1: जेआरडी टाटा समूह का पूरा नाम जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा था और रतन टाटा रतन नावल जी टाटा थे, यानी कि रतन कॉमन था इनमें। और इसी तरह इनके व्यक्तित्व में भी कुछ समानताएं और कुछ असमानताएं थीं। दोनों बहुत सहज और जमीनी व्यक्ति थे। उन्हें लोगों का अपने पीछे भागना पसंद बिल्कुल नहीं था। दोनों ने ही जीवन का अधिकांश समय कंपनी के किराए के मकान में ही गुजारा था। लेकिन दोनों के व्यक्तित्व में कई सारी असमानताएं भी थी। जैसे जीआरडी टाटा बहिर्मुखी थे, लोगों से मिलने जुलने वाले व खुलकर बात करने वाले थे, जबकि रतन टाटा अंतर्मुखी थे। पार्टियों में जीआरडी टाटा हर तरह के लोगों से मिलकर के बात करना पसंद करते थे, जबकि रतन टाटा चुनिंदा लोगों के साथ ही डिनर करना पसंद करते थे। उनकी चलती तो वे अकेले ही डिनर कर लेते थे, पार्टी में जाना उन्हें पसंद नहीं था। छुट्टियों के दिनों में जीआरडी टाटा जमशेदपुर जाते और जनजातीय कल्याण संघों सहित अस्पताल तक के तमाम लोगों से मिलते जुलते थे। रतन टाटा इसके उलट पुणे स्थित लोक हाउस पर ही जाते थे।
2: हालांकि जीआरडी टाटा और रतन टाटा दोनों ही लाइसेंसधारी पायलट थे, 70 के दशक तक जीआरडी टाटा एयर इंडिया के प्रमुख रहे। रतन टाटा भी कुछ समय के लिए इसके चेयरमैन हुए, लेकिन एरोनॉटिक्स जहां जीआरडी टाटा का जुनून था, वहीं रतन टाटा की अधिक दिलचस्पी ऑटोमोबाइल सेक्टर में थी।
1: चर्चा, अब हम अंत में बात करते हैं रतन टाटा के कुछ प्रेरणादायक विचारों पर। श्रोताओं, लोग आते हैं चले जाते हैं, लेकिन उनके विचार भावी पीढ़ियों का मार्गदर्शन करते रहते हैं। हमारी तमाम सुक्तियां इन्हीं में से ही बनती हैं। तो सुनते हैं रतन टाटा के प्रेरणादायी विचार, हो सकता है इनमें से कोई आपके जीवन की भी दशा बदल दे।
2: मैं कभी भी सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता, मैं निर्णय लेकर उसे सही साबित करने में विश्वास करता हूँ।
1: जीवन में आगे बढ़ने के लिए उतार चढ़ाव बड़ा महत्व है, यहाँ तक कि ईसीजी में भी सीधी लकीर मौत की ओर इशारा करती है।
2: उन सारे पत्थरों को अपने पास रख लें जिन्हें लोग आपस में फेंकते हैं, उनका प्रयोग कर एक मजबूत इमारत बनाएं।
1: लोहे को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता, यह कार्य उसका अपना जंग ही करता है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता सिवाय उसकी मानसिकता के।
2: अगर आप तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चलिए, लेकिन अगर आप दूर तक जाना चाहते हैं तो साथ साथ चलिए।
1: हमें चाहिए कि हम वे प्रश्न पूछे जो अभी तक पूछे नहीं गए हैं, नए विचारों को आगे रखें, नए आइडियाज पर विमर्श करें, ताकि दुनिया को और भी बेहतरीन बनाया जा सके।
2: लोगों की सेवा करने के लिए व्यवसायियों को अपने कंपनी हितों से ऊपर उठने की जरूरत होती है।
1: मैं उन लोगों की प्रशंसा करता हूं जो बहुत सफल हैं, लेकिन अगर वह सफलता निर्ममता से पाई गई है तो मैं उस व्यक्ति की प्रशंसा तो करूंगा किंतु आदर नहीं करूंगा। श्रोताओं, ये थे भारत के रत्न रतन टाटा। श्रोताओं, इस कार्यक्रम को अब हम यही समाप्त करते हैं। नमस्कार, नमस्कार।

अभी आपने सुना हमारा विशेष कार्यक्रम 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

नमस्कार, मैं हूं अन्नू कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूं साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

मैं हूँ मितुल प्रदीप। आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए। देश को आज़ादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है। जिन्होंने भारत माता को अंग्रेज़ों के चंगुल से आज़ाद कराया, उनकी कुर्बानी हमेशा याद रहेगी। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून इन किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। नगर की साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों पर केंद्रित प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम परिक्रमा।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून इन किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। शहर की सांस्कृतिक, सामाजिक और साहित्यिक गतिविधियों पर केंद्रित हमारा कार्यक्रम परिक्रमा लेकर मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो मित्र डॉक्टर रानी रैखवार भारती। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या कुछ खास रहा भोपाल शहर में और क्या कुछ खास रहेगा। वन विहार में बुधवार को वन्य जीव सप्ताह 2026 का समापन हुआ। मुख्य अतिथि प्रधान मुख्य वन संरक्षक मनोज कुमार अग्रवाल ने कहा कि वन्य जीव संरक्षण केवल वन विभाग ही नहीं बल्कि संपूर्ण समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। स्वागत उद्बोधन उद्यान संचालक विजय कुमार ने दिया। इसके बाद सभी उपस्थितों को पर्यावरण और वन्य जीव सुरक्षा की शपथ दिलाई गई। सप्ताह भर चली विभिन्न शैक्षणिक एवं जागरूकता प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया और अंत में सहायक संचालक डॉक्टर रूही हक ने आभार व्यक्त किया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी भोपाल में फिलेटेलिक सोसाइटी ऑफ के सहयोग से 7 और 8 अक्टूबर को 2 दिवसीय फिलेटेलिक प्रदर्शनी एवं कार्यशाला हुई। सोसाइटी की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर प्रदर्शनी में दुर्लभ डाक टिकटों, डाक कलाकृतियों और इतिहास, संस्कृति, कला, फैशन, वस्त्र, हथकरघा, हस्तशिल्प व खादी से जुड़े संग्रह को रखा गया। संस्थापक आशीष भंडारी जैन ने संवाद सत्र में विद्यार्थियों को फिलेटेली के महत्व से परिचय कराया। उन्होंने बताया कि डाक टिकट केवल संग्रह की वस्तु नहीं बल्कि किसी देश के इतिहास, संस्कृति और सामाजिक विकास की छोटी सी तस्वीर भी होते हैं। प्रदर्शन में दुनिया के पहले डाक टिकट पैनी ब्लैक की प्रतिकृति विशेष आकर्षण रही। इसे 6 मई 1840 को ब्रिटेन में जारी किया गया था। वहीं सोसाइटी की दूसरी वर्षगांठ पर अन्वय जैन द्वारा डिजाइन किया गया विशेष स्मारक पोस्ट कार्ड भी जारी किया गया। नाटक जंगल ब्यूटी ने ग्रामीण जीवन, परदेश में बसे लोगों की तन्हाई और बेटियों को अनजान रिश्तों में सौंप देने की सामाजिक परंपरा को संवेदनशील ढंग से सामने रखा। मंच पर कलाकारों ने अपनी कला के माध्यम से विषय को जीवंत कर दिया। मानवीय जीवन और संवेदनाओं के बीच का ये ताना बाना रहा। नाटक की अंगूरी का विवाह गाँव के शहर में कर दिया जाता है। पति कौन है, कैसा है, वो नहीं जानती है। इन्हीं सवालों के बीच अंगूरी के पास अपने मन की बात कहने वाला कोई नहीं। प्रस्तुति का सबसे मार्मिक दृश्य बेटी को अनजान व्यक्ति के हाथ सौंपने का है। नाटक सवाल उठाता है कि जिस तरह गाय भैंस को रस्सी के साथ दूसरे मालिक को सौंप दिया जाता है, क्या उसी तरह बेटी को भी बिना जाने समझे किसी के हाथ सौंप देना उचित। और आपको बता दें 11 अक्टूबर शाम 4 बजे से KKFC स्टूडियो खासियत में किशोर कुमार संगीत अकादमी द्वारा आयोजित किया जाएगा संगीतमय कार्यक्रम, जिसमें विभिन्न गायक शामिल होंगे और अपनी प्रस्तुतियां देंगे। 11 अक्टूबर को शाम 6 बजे से जनजातीय संग्रहालय शामला हिल्स में रमा दुबे और साथियों का बघेली गायन, सागर के दुर्वा नामदेव का नौरता नृत्य और उज्जैन की कलाकार तृप्ति नागर का मटकी नृत्य देखने को मिलेगा। और वहीं अगर हम तापमान की बात करें तो आज का तापमान 35.8 अधिकतम रहा, रात को 8.0 न्यूनतम रहा। शहर में आज भी मिला जुला मौसम रहने की संभावना है और हल्के बादल भी छाए रह सकते हैं। तो आप भी मौसम का लीजिए आनंद। शहर की सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों पर आधारित हमारे कार्यक्रम परिक्रमा को यहीं समाप्त करने की अनुमति दीजिए अपनी रेडियो मित्र डॉक्टर रानी रैखवार को। फिर मिलेंगे, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।

अभी आपने सुना कार्यक्रम परिक्रमा 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है, देश का चैनल, देश के लिए। सुनते रहिए।

0: मैं हूं पिनाज मसानी और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद।
1: दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको, दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको।

0: रेडियो आजाद हिंद के सभी सुनने वालों फिनाज मसानी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून इन किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है रेडियो रिपोर्ट।

इसका निर्देशन किया कुलदीप कुणाल ने। आइए चलते हैं कुछ पलों के लिए रविंद्र भवन सभागार में और सुनते हैं इस नाटक के संपादित अंश।

0: नाविल लिखी है हमने।
1: उपन्यास है।
0: उपन्यास ना है, नाविल है। मोटी भाई किताब कहानी।
1: ठीक है भाई, नाविल है तो नाविल है, करना क्या है इसका?
0: तो तुम तो पढ़े लिखे हो, पढ़ के बताई देते कैसी लिखी।
1: अच्छा, पढ़ के बताना है। अरे अब इसको भाई दिन भर ऑफिस में लिए लिए कहाँ घूमूंगा मैं। एक काम कर, तू इसको अभी अपने पास रख, जब मैं शाम को लौटूंगा तब मैं फिर से ले लूंगा। ठीक है
0: सांझ को।
1: हाँ सांझ को।
0: तो तुम तो जानता हो कहाँ रहता है।
1: वो टेंट हाउस में रहता है ना।
0: हाँ हाँ, टेंट हाउस में, गोदाम में।
1: अच्छा गोदाम में रहता है।
0: हाँ
1: ठीक है, वहीं से ले लूंगा। ठीक है
0: कहता आ जाएगा।
1: हाँ चलो ध्यान रखो।
0: जा खेलो, आ जाओ प्रताप बाबू।

तू क्या कहता था? तू पूरी रात इसमें गुस्तर के गाने गाता है और ये

come

0: अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं कार्यक्रम रेडियो रिपोर्ट। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: फिर से अनूप भट्ट हास से हनाद होवे, फिर से

कि मैं हूँ मुकेश खन्ना, आपका शक्तिमान, या आप कह लो भीष्म पितामह, और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आज़ाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई। रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
1: तो सुनते रहिए रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

0: जिंदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम हिंदुस्तान हमारा।

0: हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।
1: भारत की आजादी का एक कारण भारत के लोकमानस में आई आजादी की वो चेतना थी जो सुदूर वन प्रांतरों में बसे टोलों में स्वतंत्रता के लिए पनपी थी। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह के जरिए ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दी तो मध्य प्रदेश में नमक की जगह जंगल सत्याग्रह ने ले ली। प्रदेश भर में ये आंदोलन बड़े उत्साह के साथ चलाया गया। अनेकों देशभक्त शहीद हुए, लाठियां खाई, जेल की यातनाएं भोगी, पर टस से मस नहीं हुए। आंदोलन के इस दौर में सिवनी जिले का विशिष्ट योगदान रहा है। सिवनी जिले के ग्राम टूरिया में उठी आंदोलन की आंधी बिना प्रशिक्षण और बिना किसी योजना के उठी एक ऐसी चिंगारी थी जिसने अंग्रेजों के पूरे साम्राज्य को हिलाकर रख दिया था। सत्याग्रह के तहत सिवनी जिले के स्वयंसेवक शासकीय जंगल चंदन बगीचा में जाकर घास काटकर सत्याग्रह करते। इसकी कार्यवाही के तहत सरकार द्वारा फॉरेस्ट एक्ट के अंतर्गत मुकदमा चलाया जाता व सजा तथा जुर्माना तय किया जाता। जुर्माने की वसूली अत्यंत निर्ममता से की जाती। इसमें संपत्ति, जानवर, जमीन, बर्तन सब कुछ कुड़की में नीलाम कर दिए जाते। बावजूद इसके आंदोलनकारी नहीं रुके, उनका जत्था दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। 9 अक्टूबर 1930 को चंदन बगीचा में घास काटकर सत्याग्रह किया जाना तय हुआ। इस अभियान में लगभग 500 व्यक्ति शामिल थे। पुलिस ने उन्हें जोर जबरदस्ती से रोकने का प्रयास किया, मगर सत्याग्रही भला कब रुकने वाले थे। पुलिस ने आंदोलन के नेतृत्वकर्ता मुका को गिरफ्तार कर लिया। इस पर लोग भड़क उठे। लोगों की उत्तेजना के विरोध में उन पर गोलियां बरसाई गईं। आंदोलनकारियों को वृक्षों से बांधकर कोड़े मारे गए। लहूलुहान आजादी के दीवानों को कांजी हाउस में बंद कर दिया गया। टूरिया गांव चीत्कार कर उठा। मगर अमर शहीदों के खून से भीगी जंगल की देह ने अपनी सशक्त भागीदारी सुनिश्चित करते हुए पीढ़ियों तक आक्रांताओं के खिलाफ आवाज उठाकर अपनी गौरव गाथा को बरकरार रखा। स्वाधीनता के लिए उठा ये विप्लव देश की आजादी तक नहीं थमा।

0: यार ये गजबी काका का खाना इतना लजीज बनता है, क्या बताए।
1: अरे वो इसलिए कि काका केवल खाना ही नहीं देते बल्कि उसमें अपने पन का बघार भी लगाते हैं।
0: बिल्कुल सचमुच ऐसा खाना मिले तो यार मैं तो कभी शादी ही ना करूं।
1: बिल्कुल सही। अरे जब काका का खाना हो तो फिर शादी की जरूरत ही क्या है।
0: सही बात है।
1: लेकिन यार आज पूरा वातावरण महक रहा है, ऐसी कौन सी अगरबत्ती लगाई है काका ने?
0: अरे अभी पूछ लेते हैं। काका, ओ काका, अरे ये तो बताओ आज आपने कौन सी अगरबत्ती जलाई है जो पूरे वातावरण को महका रही है?
2: ये चंदन की अगरबत्ती है बेटा।
0: चंदन की अगरबत्ती? क्या इस अगरबत्ती से आपका कोई खास लगाव है?
2: अब क्या बताएं बेटा, चंदन की अगरबत्ती जलती है तो न जाने कितनी आहें इतिहास से टकरा कर लौट आती हैं।
0: क्या चंदन की इस अगरबत्ती का भी कोई इतिहास है काका?
2: लगता है आज एक बार फिर तुम सब ने मिलकर काका को फंसा ही लिया। अब तुम्हें चंदन के जंगल और टुरिया सत्याग्रह के बारे में सब कुछ बताना ही होगा।
0: हाँ काका बताओ ना, यही तो हम सुनने आए हैं, हमें अच्छा लगेगा अपने पुरखों का इतिहास जानकर।
2: तो सुनो, ये कहानी है जंगल सत्याग्रह की।
0: अच्छा।
2: इसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि किस तरह अंग्रेज हम भारतीयों पर जुल्म ढाते थे, किस तरह निर्दोषों पर गोली चलाकर उन्हें मार डालने में कोताही नहीं बरतते थे।
0: अच्छा।
2: फिर चाहे वो डिप्टी कमिश्नर सीमेन हो या फिर पुलिस इंस्पेक्टर सदरुद्दीन, आतंक का चेहरा सब तरफ एक जैसा ही होता है।
3: अरे ये तो हद हो गई भैया।
1: अरे ऐसा का हुआ जो इतना चिल्ला रहे हो?
3: क्या, अरे तुम्हें पता नहीं ये जो अंग्रेज अब हमारे जंगल पर भी अपना अधिकार जमाने लगे हैं?
1: वो तो हमारे देश में मेहमान बनकर आए और अब पूरे देश पर कब्जा जमा लिया।
3: हा?
1: तो जंगल भी उन्हीं के होंगे ना?
3: पर भैया ये तो अति हो गई। जब जंगल पर ही उनका कब्जा हो जाएगा तो हम लकड़ी कहाँ से लाएंगे और हमारे पशु कहाँ चरेंगे?
1: कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा।
3: अच्छा सुनो।
1: हाँ।
3: तुम्हें पता है कि हमारे गांधी बापू ने कोई सत्याग्रह किया है?
1: हाँ, नमक बनाने के लिए उन्होंने दांडी यात्रा की थी। इस तरह से उन्होंने अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ जंग ही छेड़ दी। मुझे तो बस इतना ही मालूम है।
3: अच्छा, इससे अधिक जानकारी हमें भाई मूका और राम प्रसाद से ही मिल पाएगी।
1: हाँ।
3: है ना, वो ही हमें बताएंगे क्योंकि वो आसपास ही नहीं पूरी दुनिया की खबर रखते हैं।
1: तो फिर चलो उनसे ही पूछते हैं।
3: हाँ।
1: इसका कोई उपाय है भी? हाँ। या नहीं?
3: चलो चलो
1: चलो चलो।
2: तो ये थी एक चिंगारी जो मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के ग्राम टुरिया से उठी। यह चिंगारी आग बनकर जंगल सत्याग्रह के रूप में पूरे देश में फैल गई। सन 1929-30 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक नया आंदोलन प्रारंभ किया।
0: अच्छा।
2: जिसे नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता था। इस नमक सत्याग्रह को मध्य प्रदेश में एक नया स्वरूप दिया गया जिसे आज जंगल सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है।
3: तो मूका भाई, आप ही हमें कुछ सलाह दो ताकि हम इन अंग्रेजों के अत्याचार से मुक्त हो सकें।
4: अंग्रेजों का अत्याचार तो कभी कम नहीं होगा साथियों, हमें ही कुछ करना होगा।
3: आप तो देख ही रहे हैं मूका भाई, अभी कुछ ही दिनों पहले ही अंग्रेजों के पिट्ठू बने हमारे ही भारतीय भाइयों ने किस तरह से हमारे साथियों को पेड़ों पर बांध कर 40-40 कोड़े मारकर उन्हें लहूलहान कर दिया।
1: कुछ को तो कांजी हाउस में ही बंद कर दिया गया और उन्हें वहाँ भी कोड़े फटकारे गए।
5: भाई यदि हमें भोजन के लिए ईंधन और पशुओं के लिए चारे की पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो मजबूरन हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा।
4: हमें जंगल सत्याग्रह करना पड़ेगा ताकि हम ईंधन और चारे की सुविधाएं प्राप्त कर सकें।
3: ये कैसे होगा मुका भाई, अरे आखिर हमें भी तो कुछ बताएं।
5: देखो भाई, हमें गांधी जी को अपना आदर्श मानकर बिना अस्त्र और शस्त्र लिए चंदन के बगीचों में जाकर घास काटने का काम करना होगा।
4: और हाँ, ये काम हम छोटे छोटे टुकड़ों में मिलकर करेंगे ताकि भीड़ इकट्ठी ना हो। इससे अंग्रेज और अधिक आक्रामक हो जाएंगे।
5: जिस तरह से गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा नमक पर कर लगाने के विरोध में दांडी यात्रा की और नमक बनाया, उसी तरह हम अपने जंगल में घास काटकर विरोध दर्ज करेंगे ताकि अंग्रेजों को पता चल जाए कि हम में भी एकता है। हमारा नारा होगा आदिवासियों की हुंकार,
6: डोलेगी गोरी सरकार।
7: आदिवासियों की हुंकार,
8: डोलेगी गोरी सरकार।
9: आदिवासियों की हुंकार,
8: डोलेगी गोरी सरकार।

0: लो भाई, जंगल सत्याग्रह तो शुरू हो ही गया।
1: ये दुर्गा शंकर मेहता जी भी कमाल के आदमी हैं। कांग्रेस कार्यालय में शिविर प्रारंभ कर आदिवासियों के उत्थान के लिए लगातार हमारे अधिकारों के बारे में बता रहे हैं।
0: भैया कितनी अच्छी बात है।
1: हाँ।
0: कि हमारे साथी चंदन बागीचे में रोज ही जाकर घास काटने का काम कर रहे हैं।
1: अरे घास काटने के पहले नोटिस भी तो देते हैं, तभी तो चार पांच लोग मिलकर जा पाते हैं।
0: इसके एवज में जुर्माना जो भरना पड़ता है वो?
1: अरे वो तो हमें भरना ही पड़ेगा, आखिर देश के लिए हमारा भी तो कुछ कर्तव्य है कि नहीं।
0: तुमने देखा
1: क्या,
0: पहले तो इन अंग्रेजों ने हम पर जुर्माना किया।
1: हाँ।
0: फिर हमारे बर्तन भाड़े रख लिए। लेकिन अब जब सत्याग्रहियों की संख्या बढ़ गई तो सबको गिरफ्तार नहीं करते, बल्कि जंगल में ही कहीं दूर ले जाकर छोड़ देते हैं।
1: इन्हें भी पता चल गया है कि हमारे मूका भाई की ताकत दिनों दिन बढ़ रही है। लोग उनकी एक आवाज पर मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं।
0: सही कहा।
2: इधर जंगल सत्याग्रह चल ही रहा था, पर अंग्रेज सरकार भला कैसे चुप रह सकती थी। वो भी ताक में थी कि किस तरह ये आदिवासी भड़कें और गोरी सरकार अपना वास्तविक रूप दिखा सके। तब वहां डिप्टी कमिश्नर सीमेन थे। उन्हें जब मूका एवं उसके साथियों द्वारा किए जा रहे जंगल सत्याग्रह करने की बात का पता चला, तब उसने भी कुछ करने की ठान ली।
3: अच्छा।
2: उसकी इस जिद ने टुरिया सत्याग्रह की नींव रखी।
4: सदरुद्दीन
5: जी साहब,
4: ये क्या हो रहा है?
5: टुरिया में लोग जमा हो रहे हैं साहब।
4: तुम क्यों कुछ नहीं करते?
5: मैं अकेले क्या कर सकता हूँ साहब?
4: क्यों, तुम्हारे साथ रेंजर मेहता नहीं है क्या?
5: वो तो हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं साहब।
4: तो फिर कमी किस बात की है?
5: बात ये है साहब कि आदिवासी कई बार आक्रामक हो उठते हैं, हमारे पास ऐसा कोई आदेश नहीं है कि हम उन पर गोली चला सकें। ऐसे में हम पर कभी भी हमला हो सकता है।
4: तुम चिंता मत करो, तुमको आदेश भी मिलेगा और पुलिस फोर्स भी।
5: थैंक यू साहब, तब तो समझो काम हो गया।
4: सद्दुद्दीन, तुम इन आदिवासियों को ऐसा सबक सिखाना ताकि और कोई आदिवासी सर न उठा सके।
5: जी साहब।
4: टीच देम ए लेसन, समझा?
5: जी साहब।
4: तुमको आदेश चाहिए, ये लो आदेश।
5: समझ गया साहब, समझ गया। चलो मेहता, अब हमें कोई डर नहीं है, साहब भी हमारे साथ हैं। अब तो जो भी सामने आएगा उसे भून कर रख देंगे।
6: पर इंस्पेक्टर साहब, आदिवासियों में जबरदस्त एकता है, उसका क्या करें?
5: उनकी एकता के पीछे मुंह का लोहार है, उसको गिरफ्तार कर लो, बस काम पूरा।
6: ऐसे में कहीं स्थिति विस्फोटक हो गई तो?
5: अरे उससे निपटने के लिए हमारे पास बंदूकें तो हैं ही। तुम चिंता मत करो मेहता, मेरे पास सीमेन साहब का ये लिखित आदेश है कि टूरिया गांव के लोगों को जोरदार सबक सिखाना है ताकि फिर कभी कोई मुंह का लोहार पैदा ही ना हो पाए।
6: कैसा आदेश है साहब?
5: ये देख रहे हो?
6: हाँ।
5: ये सीमेन साहब का आदेश।
6: अच्छा।
5: जिसमें साफ साफ लिखा है कि टूरिया गांव के लोगों को ऐसा सबक सिखाओ जिससे कभी कोई सर ऊंचा ना कर पाए।
6: यार सदरुद्दीन, ये सीमेन तो बहुत ही कमीना साहब है यार।
5: अरे ये तो इतना कमीना है कि जब भी वाइसराय को चिट्ठी लिखता है तो गांधी जी के मरने की कामना करता है।
6: हम ऐसे ही कमीने अफसर के साथ कब तक काम करते रहेंगे यार?
7: क्या करें यार, अंग्रेजों की खा रहे हैं ना, तो उनकी बजानी भी होगी।
6: हाँ।
0: भैया सुना?
1: हाँ।
0: ये इंस्पेक्टर सदरुद्दीन के नखरे आजकल बहुत ही बढ़ गए हैं।
1: अरे जब से वो सीमेन साहब से मिलकर आया है ना, तब से न जाने कहाँ से उसके पर उगाए हैं। हमेशा मार डालने की धमकी देता रहता है।
0: मार डालने की धमकी देता है, यूँ नहीं देगा, पर जिस दिन वो मूका भाई के हत्थे चढ़ गया ना, तो सारी हेकड़ी निकल जाएगी।
1: पर मूका है कहाँ? आजकल वो कर क्या रहा है पता ही नहीं चलता।
0: अरे वो आजकल गांव गांव घूमकर लोगों को जागृत कर रहे हैं ताकि ये गोरी सरकार कुछ सबक सीख सके।
1: हाँ, लगता है अब कुछ ना कुछ होकर रहेगा।
0: ऐसा कैसे कह रहे हो भाई?
1: मुझे लगता है कि सदरुद्दीन के तेवर कुछ और ही कह रहे हैं।
0: हे ईश्वर, हमारे गांव को बुरी नजर से बचाना।
1: अरे भाई, बुरी नजर तो लग ही गई है, अब तो कुछ होकर ही रहेगा।
0: तुमने सुना है, जंगल सत्याग्रह की आग अब पूरे देश में फैल रही है।
1: हाँ,
3: सुनो साथियों, बैतूल के पास चिकलार गांव में 22 अगस्त को हमारा एक साथी शहीद हो चुका है।
0: अरे, ये आपको कैसे पता चला मूका भाई?
3: वहां से मुझ तक खबर आई कि दीपचंद गोठी के नेतृत्व में बैतूल के पास चिकलार ग्राम में और गंजन सिंह कोरकू के नेतृत्व में बंजारी ढाल में जंगल सत्याग्रह हो चुका है। इसी में हमारे साथी कोका गौंड पुलिस की गोली से शहीद हो चुके हैं।
1: अब तो हमें भी कुछ करना ही होगा, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे।
3: तो हम सब मिलकर तय करते हैं कि 9 अक्टूबर 1930 को हम सब घास सत्याग्रह करेंगे।
1: हाँ,
3: इसके लिए गोरी सरकार को नोटिस भेजने का काम मैं कर देता हूँ। धरती की माटी है, साधारण वस्तु नहीं, सोने चांदी से अधिक कीमती माटी है। जो मूल्यवान सर्वाधिक प्राण हुआ करते, वे प्राण धरा हित देने की परिपाटी है। जिस धरती की है गंध हमारी सांसों में, अभिमान उसी के प्रति अपना अपनापन है। उस माँ के प्रति ममता वो सबसे बड़ा गर्व, उसका कहलाना ही गौरव संवर्धन है।
0: चलो भाई, आज 9 अक्टूबर है, सब नदी किनारे चलो।
1: वहाँ
0: आज मूका भाई और राम प्रसाद सत्याग्रह करेंगे। इसके लिए उसने गोरी सरकार को नोटिस भी दे दिया है।
1: तभी मैं सोचूं कि आज हमारे गांव के आसपास इतनी पुलिस क्यों दिखाई दे रही है।
0: अरे वो तो आएगी ही, आखिर उन्हें भी तो अपनी ड्यूटी करनी ही है।
1: हाँ चलो, सभी लोग उसी ओर जा रहे हैं, अपन भी चलते हैं। चलो
0: हाँ, हाँ, चलो भाई आओ चलो। अरे वाह, इसमें तो औरतें भी शामिल हैं।
1: अरे उधर देखो, वो बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल हैं।
0: अरे आखिर ऐसा क्या होने वाला है भाई?
1: अरे भाई, हमारे मूका भाई और राम प्रसाद जी अपना भाषण करेंगे और बताएंगे कि ये आंदोलन कितना जरूरी है।
0: हाँ, चलो, चलो,
1: चलो चलो,
0: आज नहीं जाएंगे तो फिर कब जाएंगे। हाँ चलो, उठो बैठे।
2: आज की ये तारीख एक इतिहास रचने जा रही है। पूरा गांव ही इस नदी के किनारे जमा हो गया है, पुलिस भी अपनी तैयारी में है।
7: अच्छा,
2: कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। इतिहास ऐसे ही नहीं रचे जाते, कई कुर्बानियों के बाद ही इतिहास रचा जाता है। पुलिस इस सत्याग्रह को रोकने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रही थी। ग्रामीणों से मारपीट तो अब आम बात हो गई थी, लोगों का आक्रोश उबल पड़ने को तैयार था। पूरा गांव ही मानो बारूद के ढेर पर बैठ गया था। किसी को भी अपनी जान की फिक्र नहीं थी, सभी के सर पर मौत का कफन था।
8: मीटिंग बड़ी जोरदार होने वाली है, मूका भाई जो है ना।
3: साथियों, ये गोरी सरकार हम पर लगातार जुल्म ढा रही है। हमें जंगल से लकड़ी और घास काटने की इजाजत नहीं मिलती। आखिर हमें भी तो भोजन के लिए लकड़ी और हमारे पशुओं के लिए चारा चाहिए, हम कहां से लाएं ये सब? यदि इस जंगल पर हम आदिवासियों का हक नहीं होगा तो आखिर किसका होगा? बोलो साथियों।
5: बिल्कुल सही कह रहे आपने, सही कह रहे हैं मूका भाई।
3: इसी भूमि पर हम पैदा हुए, बड़े हुए, अब इस जंगल पर हमारा नहीं तो फिर किसका अधिकार होगा? आखिर हम इस जंगल के पेड़ों को तो नहीं काट रहे, हम तो यहाँ से लकड़ी और घास ही तो काट रहे हैं। फिर ये गोरी सरकार हम पर क्यों जुल्म करती है? ये कौन होती है हमारा हक मारने वाली? साथियों, आज तो हम घास काट कर सत्याग्रह करके ही रहेंगे।
5: बिल्कुल
9: बिल्कुल,
3: चाहे
9: बिल्कुल,
3: इसके लिए हमें अपनी जान की बाजी ही क्यों नहीं लगानी पड़े। साथियों, बस मुझे इतना ही कहना है, जो कुछ बच गया है उसे भाई राम प्रसाद पूरा करेंगे।
5: मूका भाई, हम तुम्हारे साथ हैं।
10: हम तुम्हारे साथ हैं मूका भाई।
5: मूका भाई, हम तुम्हारे साथ हैं।
11: हम तुम्हारे साथ हैं।
12: साथियों, भाई मूका सच कह रहे हैं।

0: मूका, तुम घास नहीं काट सकते, तुम्हें अपनी गिरफ्तारी देनी होगी।
1: गिरफ्तारी? आखिर किस जुर्म में? मैंने तो कोई जुर्म नहीं किया।
0: इतने सारे लोगों को सरकार के खिलाफ भड़काते हो और कह रहे हो मैंने कोई जुर्म नहीं किया।
2: लोगों को उनके अधिकारों के बारे में बताना जुर्म नहीं है?
0: ये तुमसे ज्यादा हम अच्छी तरह से जानते हैं।
1: तुम क्या जानोगे क्या होती है देशभक्ति? तुम तो बिक चुके हो, हमारे ही साथी होकर हम पर बंदूक तानते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती?
0: लगता है बहुत गर्मी चढ़ गई है, इन्हें गिरफ्तार कर लो। मूका, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है।
1: कर लो गिरफ्तार।
0: सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो उनको।
1: कर लो गिरफ्तार, इसका परिणाम भी सोच लो।
0: वह तो बाद में देख ही लेंगे।
3: अरे साथियों, सुना तुमने, हमारे मूका भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब वो गोरी सरकार के कैदी बन गए हैं, उनके साथ कुछ भी हो सकता है, इसलिए चलो उनके आखिरी दर्शन तो कर लें, क्या पता अब उनसे कब भेंट हो पाए। तो चलो साथियों, चलो उठो, आओ चलो चलो।
4: रेंजर मेहता
0: जी,
4: देख रहे हो इस जनसराब को?
0: हाँ देख रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब, भीड़ का गुस्सा भी देख रहा हूँ।
4: जानते हो इनसे कैसे निपटना है?
0: हमारे पास इन बंदूकों के सिवाय और कुछ भी नहीं है इंस्पेक्टर साहब।
4: नहीं मेहता, तुम भूल रहे हो, हमारे पास पूरी पुलिस फोर्स है।
0: वो तो है इंस्पेक्टर साहब, पर भीड़ को देखते हुए हमारी फोर्स बहुत कम दिखाई देती है।
4: अरे मेहता, तुम कैसी बेवकूफी जैसी बात कर रहे हो, हमारे जवानों के पास भरी हुई बंदूकें भी तो हैं।
0: ये सभी मूका के दर्शन के लिए जा रहे हैं, ये उसका अभिवादन करना चाहते हैं। एक गिरफ्तार व्यक्ति का अभिवादन, यही है हमारी भारतीय परंपरा।
4: अरे तुम देखते रहो मेहता, कौन किसका किस तरह से अभिनंदन करता है।
0: हे भगवान।
4: सिपाहियों तैयार हो जाओ, इस भीड़ पर अत्याचार शुरू कर दो।
0: देख रहे इंस्पेक्टर साहब, लोग अत्याचार सहकर भी हमारे सिपाहियों का मुकाबला कर रहे हैं।
4: वही तो मैं चाहता हूँ रेंजर मेहता, ये लोग उत्तेजित होकर कुछ ऐसा करें कि गोली चलाने के लिए मेरे हाथ खुल जाएं।
0: तुम हाथ खुलने की बात कर रहे हो सदरुद्दीन, उधर लोग हसिया लेकर के इधर ही पड़ रहे हैं।
4: मुझे तो इसी घड़ी का इंतजार था। सिपाहियों तैयार हो जाओ, ये लोग उस पॉइंट से आगे बढ़े तो गोली चला देना।
0: अरे ये तो आगे बढ़ रहे हैं, अरे सदरुद्दीन ये तो आगे बढ़ रहे हैं, कुछ करो वरना हमारी भी जान खतरे में।
4: सिपाहियों फायर।
5: तो इस तरह से गोरी सरकार ने जो चाहा वो होकर रहा। अंततः इस मनोरम शांतिपूर्ण घाटी में पुलिस की बंदूकें गरज उठी, परिणाम स्वरूप 4 लोग शहीद हो गए।
6: अरे?
5: और 30 लोग घायल हो गए।
6: ओ।
5: विशाल जन समुदाय पर गोली चलाकर आखिर ये गोरी सरकार क्या समझती थी कि उसने कोई तीर मार लिया? इस अंधाधुंध गोलीबारी में एक महिला ने तो घटना स्थल पर ही दम तोड़ दिया। 2 अन्य महिलाओं एवं एक पुरुष को सिवनी अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। इन 4 शहीदों के नाम थे गुड्डेबाई साकिन खामरीट, श्रीमती रेनीबाई साकिन खंबा, श्रीमती देवोबाई साकिन भीलवा और बिरजू भोई साकिन मुरझोड़। ये 4 अमर शहीद आदिवासी थे। जंगल सत्याग्रह की लपटें सतपुड़ा के जंगलों में उठी तो खंडवा, बुरहानपुर, रुस्तमपुर, मूंदी, पंधाना, हरसूद, डोंगरगांव आदि स्थानों पर आंदोलन तेज हो गया। क्रांतिकारी चेतना को लोक आश्रय मिला, हुकूमत के प्रतिरोध की भावना को पंख लग गए। 103 सेनानी जेल पहुंचे। अंग्रेजों के जुल्म की ये दास्तां यहीं खत्म नहीं होती।
3: अरे भाई सुना, ये सदरुद्दीन ने जो गोली चलाई,
6: हाँ,
3: उससे कितने लोग मारे गए हैं?
6: हाँ 4 लोग मारे गए हैं और 30 लोग घायल भी हुए हैं। पर ये गोरी सरकार तो बहुत ही जल्लाद निकली।
3: क्यों, क्या हुआ क्या?
6: अरे तुमने नहीं सुना, अभी तक शहीदों की लाश उनके परिवार वालों को नहीं दी गई है। यही नहीं, घायलों से भी नहीं मिलने दिया जा रहा है।
3: हाँ हाँ हाँ, ये तो सुना, और ये भी सुना कि सिवनी अस्पताल में भी कड़ा पहरा लगा रखा है।
6: पर ऐसा आदेश दिया किसने होगा?
3: अरे वही है पुलिस कप्तान पैरी, ये उसी की हरकत है।
6: कैसे कैसे लोग होते हैं, इन्हें ना तो लाशों पर दया आती है और ना ही विवश घायलों पर, पूरी कौम ही जल्लाद है।
3: अरे भाई, विदेशी सरकार के स्वदेशी पुलिस कर्मियों के बारे में ये कहा जाता है कि वे साम्राज्य के प्रति इतने अधिक वफादार होते हैं जितना कि खुद सम्राट भी नहीं होगा।
6: इसीलिए सदरुद्दीन ने सीमेन के आदेश का बहुत ही अच्छी तरह से पालन किया और उनके सबक सिखाने का आदेश अपने पास सुरक्षित रख लिया था, ताकि यदि मुकदमा चले तो उसके आधार पर खुद को बचाया जा सके।
3: पर भाई, अब होगा क्या? अरे हमें मिलाकर पूरे 18 लोगों पर मुकदमा चलाने का आदेश सीमेन ने जो दिया है।
6: सीमेन अपने को जितना चतुर समझता है ना, वो है नहीं। देखना वो अपने ही जाल में किस तरह से फंसता है। हमारे क्षेत्र के दो वकीलों प्रभाकर जठार और नितेंद्र नाथ शील ने हम लोगों का मुकदमा लड़ने का फैसला किया है।
3: अरे वाह, देश को ऐसे ही देशभक्तों की आवश्यकता है।
6: अब देखना भाई, ये दोनों किस तरह से अदालत में पुलिस कर्मियों की बर्बरता का कच्चा चिट्ठा खोलते हैं।

0: इस तरह से उन दो वकीलों ने ग्रामीणों का बचाव करने के लिए मुकदमा लड़ना शुरू किया। सीमेन का तबादला सिवनी से कहीं और हो गया।
1: अच्छा,
0: पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र ने अपनी किताब लिविंग इन एरा में इस घटना का जिक्र पृष्ठ क्रमांक 166 पर विस्तार से किया है।
1: अच्छा,
0: यद्यपि कुछ ब्रिटिश अधिकारी भारतीय सत्याग्रहियों और राजनीतिक बंदियों, खास तौर से बड़े नेताओं के प्रति सहानुभूति बरतते थे, लेकिन सीमेन उन कट्टर अधिकारियों में से था जो महात्मा गांधी और उनके अनुयायियों के प्रति अत्यधिक सख्ती बरतने का हामी था। शुक्ल जी ने अपने अभिनंदन ग्रंथ में भी इस घटना का जिक्र किया है।
1: अच्छा,
0: तो ऐसा था अंग्रेजों का शासन, देखा कितना जुल्म ढाते थे वे हम पर।
1: पर काका, मूका लोहार और रामप्रसाद जी का क्या हुआ?
0: रामप्रसाद जी को गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलाया गया।
1: अच्छा,
0: फिर उन्हें 6 माह की सजा दे दी गई। रही बात मूका लोहार की, तो तुम्हें बताएं कि देश को आजादी मिलने के बाद 26 जनवरी 1950 को टुरिया के जंगल में सत्याग्रहियों के स्मारक का उद्घाटन भव्य समारोह के साथ किया गया।
1: अच्छा,
0: इसमें टुरिया एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से हजारों लोगों ने भाग लिया और अमर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। टुरिया ग्राम के पटेल सीताराम ने टुरिया जंगल सत्याग्रह के नेता मुका लुहार तथा उनके साथियों को महाकौशल प्रांतीय प्रतीक स्वरूप ताम्र पत्र भेंट कर उन्हें सम्मानित किया।
1: वाह काका वाह, आज तो आपने हमें इतिहास की बड़ी मूल्यवान जानकारी दी है।
0: देखो बेटा, आखिर ये आजादी हमें इतने सस्ते में तो मिली नहीं।
1: हाँ,
0: कि इसका सही मूल्य भी न जान पाए। लाखों कुर्बानियों के बाद हमें ये आजादी मिली है, इसे हमें ही संभाल कर रखना पड़ेगा बेटा।
2: निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम हिंदुस्तान हमारा, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है, देश का चैनल देश के लिए।
4: नमस्ते भोपाल, मैं हूं कैलाश खेर और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पर, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून इन किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है कार्यक्रम कला कल्लोलनी।
1: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है कार्यक्रम कला कल्लोलनी।
2: हाजिर है कला, संस्कृति और अदब का आपका पसंदीदा कार्यक्रम कला कल्लोलिनी, जहां कला लहर बनकर बहती है और कलाकारों की आवाज वक्त की बंदिशों को तोड़कर सदियों तक गूंजती रहती है। आज की विशेष कड़ी किसी आम सफर की नहीं, बल्कि भारतीय रंगमंच के उस वट वृक्ष की दास्तान है, जिसने आधी सदी से भी ज्यादा समय तक अपनी सांसों से थिएटर को सींचा है। जी हाँ, रंगमंच महज लकड़ी का एक बेजान तख्ता या कुछ चमकदार रोशनियों का कौतूहल नहीं है। यह मनुष्य की आत्मा का वह खुला चौक है, जहां समाज अपनी तमाम अच्छाइयों और बुराइयों के साथ नग्न खड़ा होता है। जब थिएटर का पर्दा उठता है तो सिर्फ एक नाटक शुरू नहीं होता, बल्कि जिंदगी अपने सारे मुखौटे उतारकर सच से आंखें मिलाती है। सिनेमा जहां कट और रीटेक के कंक्रीट के पीछे छुप सकता है, वही रंगमंच एक जलती हुई भट्टी है और यहाँ वही टिक सकता है जो तपने का मादा रखता हो। इस भट्टी में तपकर जो कुंदन बना और जिसने भारतीय थिएटर को एक नई गरिमा, एक नया अनुशासन और एक नया दर्शन दिया, उस महानायक का नाम है राम गोपाल बजाज। बजाज साहब का रंगमंच पर होना ऐसा है जैसे किसी घने पुराने जंगल में एक शांत और विशाल वटवृक्ष का होना।
3: वक्त की इस नाव पर सवार होकर आज हम सब रुक करते हैं बिहार के सहरसा जिले के उस कोशी अंचल की तरफ, जहां की लहरों में जितना बहाव है, आदरणीय बजाज साहब के भीतर की कला में भी उतनी ही गहराई है। 1 जुलाई 1940 को इसी अंचल की गोद में एक ऐसे बालक का जीवन शुरू हुआ जिसका बचपन बाहरी पाबंदियों से कहीं ज्यादा अपने भीतर के एक अनकहे सन्नाटे से गुजरा। राम गोपाल बजाज का बचपन घोर अभाव में बीता था। गांव या मोहल्लों में रामलीला का मंचन सजता या कोई पारंपरिक नौटंकी आती तो ये बालक सब कुछ भूलकर अपनी पढ़ाई की किताबें छोड़कर बस उन कलाकारों के चेहरों, उनकी बुलंद आवाजों और मंच की उस तिलिस्मी रोशनी को निहारता रहता। घर से डांट पड़ती, पाबंदियां लगती, मगर जो चिंगारी भीतर सुलग रही हो उसे बाहर की पाबंदियां भला कैसे बुझा सकती थी। वो छुप छुप कर नाटकों की किताबें पढ़ते और बचपन का यही मानसिक और कलात्मक संघर्ष दरअसल उनके भीतर के उस महान रंगकर्मी को जन्म दे रहा था।
2: रंगमंच की तरफ पहला झुकाव बजाज साहब ने खुद बताया था कि बचपन में उनके घर के पास एक मारवाड़ी पुस्तकालय था और पास में ही ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय या स्थानीय क्लबों के माध्यम से कभी कभी नाटक होते थे। बचपन में उन्होंने जहां पारसी थिएटर शैली के नाटक और स्थानीय रामलीलाएं देखी, उन नाटकों के संवादों का लहजा और मंच की दुनिया उनके बाल मन में ठहर गई थी। वह छुपकर नाटक देखने जाते थे क्योंकि घर में पता चलने पर सख्त मनाही थी। उनके भीतर कला को लेकर एक अजीब सी तड़प थी। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था और कोशी अंचल की मिट्टी में पला बढ़ा वो मासूम बालक अब धीरे धीरे किशोरावस्था की दहलीज लांघकर जवानी के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। इस उम्र में जहां अमूमन लड़के दुनियादारी की फिक्र में खो जाते हैं, वहीं बजाज साहब के भीतर कला और वैराग्य का एक अद्भुत संगम आकार ले रहा था। गांव में जब कोई भी तीज त्योहार आता तो वे ढोलक और मजीरों की थाप पर होने वाले भजन कीर्तनों में पूरी तन्मयता से शामिल हो जाते। रामलीला के मंच पर सजने वाले किरदारों को एकटक निहारना, बंद कमरों में गीता के श्लोकों की गहराई को टटोलना और छुप छुप कर नई कहानियों और कविताओं को पढ़ना उनकी इस दीवानगी को और परवान चढ़ा रहा था।
3: उम्र के इस पड़ाव पर एक अजीब सा अल्हड़पन था, एक बेलौस बेफिक्री थी। ये जवानी का वो दौर था जहां आवारगी भी थी और कुछ नया सीखने सिखाने की असीम ललक भी। दोस्तों के साथ बेमकसद घूमना, घंटों कला और अदब पर बहस करना और जिंदगी के थपेड़ों से लड़ते हुए आगे बढ़ना। इसी उठती जवानी के शोर और सूफियाना तन्हाई के बीच राम गोपाल बजाज के भीतर का वो अंगार तैयार हो रहा था जिसकी तपिश आगे चलकर पूरे भारतीय थिएटर को महसूस करनी थी।
2: दरभंगा के सीएम कॉलेजों की बंदिशों से आजाद होकर जब वो नौजवान घर से बाहर कोलकाता पहुंचा तो जेब पूरी तरह खाली थी। न रहने का ठिकाना, न खाने का कोई सहारा। बजाज साहब स्वयं अपने इस दौर को याद करते हुए बताते हैं कि जब वे कलकत्ता के मशहूर ईडन गार्डन में बेबसी की हालत में बैठे हुए थे तो उन्होंने देखा कि वहां कुछ लोग घूम घूम कर चंपी कर रहे हैं, मालिश कर रहे हैं। बस पेट की आग और उस सूनेपन के बीच इस खुद्दार नौजवान के दिमाग में एक विचार आया कि ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ, कम से कम दो आना तो मिलेगा ही, जिससे दो वक्त की सूखी रोटी का इंतजाम हो सके और पेट भर सके।
3: कलकत्ता के उन मसरूफ और अजनबी सड़कों पर अपनी पहचान और वजूद तलाशते हुए बजाज साहब ने केवल थिएटर ही नहीं देखा बल्कि जिंदगी को बहुत करीब से भी महसूस किया। खुद को जिंदा रखने के लिए और पेट की आग बुझाने के लिए उन्होंने छोटे मोटे काम किए ताकि वे कलकत्ता में टिक सके, लेकिन उनका असली ठिकाना था वहां के थिएटर, ऑडिटोरियम और नुक्कड़।
2: उस दौर में कलकत्ता में पारसी थिएटर का असर तो था ही, साथ ही इप्टा की प्रगतिशील चेतना भी चरम पर थी। बजाज साहब घंटों भूखे प्यासे रहकर और बांग्ला रंगमंच के उस असीम अनुशासन को अपनी आंखों से समेटते। उन्होंने वहां केवल अभिनय की तकनीकें नहीं सीखी बल्कि उन्होंने देखा कि कैसे रंगमंच समाज की विसंगतियों पर सीधे प्रहार करता है। कलकत्ता के इसी साहित्यिक माहौल ने उनके भीतर छुपे अनुवादक और लेखक को भी जगाया, जहां उन्होंने बांग्ला और विश्व साहित्य के महान नाटकों को पढ़ना शुरू किया।
3: और वो अक्सर कहा करते थे कि कलकत्ता ने उन्हें वो दृष्टि दी जिसने उनके भीतर के अकेलेपन को एक वैचारिक गहराई में बदल दिया। वे समझ गए थे कि थिएटर महज मनोरंजन नहीं, एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है, और यही तजुर्बा, यही तपन और कलकत्ता का यही कड़ा संघर्ष आगे चलकर उनके जीवन का वो सबसे बड़ा आधार बना जिसने उन्हें सीधे दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया, जहां भारतीय रंगमंच का एक नया इतिहास उनका इंतजार कर रहा था। कलकत्ता के इसी साहित्यिक माहौल ने उनके भीतर छुपे अनुवादक और लेखक को भी जगाया, जहां उन्होंने बांग्ला और विश्व साहित्य के महान नाटकों को पढ़ना शुरू कर दिया।
2: कलकत्ता की गलियों में अपनी कलात्मक भूख और इस कड़े संघर्ष को जीने के बाद वे बिहार की राजधानी पटना आए और यहां से उन्होंने नए सिरे से अपने कॉलेज की पढ़ाई शुरू की। पर आर्थिक तंगी ने यहां भी पीछा नहीं छोड़ा। पटना विश्वविद्यालय में एमए हिंदी लिटरेचर की पढ़ाई के दौरान फीस भरने के पैसे नहीं थे। तब इस स्वाभिमानी लड़के ने अपनी कुशाग्र बुद्धि के दम पर वाद विवाद प्रतियोगिताएं जीती और इनाम के रूप में पुअर बॉयज फंड से अपनी आगे की पढ़ाई का खर्च निकाला। लेकिन जब तक ये बात रूढ़िवादी बजाज खानदान को पता चली तो खानदान के लोगों को झूठी शान की ठेस लगी। वे गुस्सा हो गए कि हमारी बिरादरी का लड़का पुअर बॉयज फंड से क्यों पढ़ेगा। पर इस फक्कड़ कलाकार को किसी की झूठी शान की परवाह कहाँ थी। उन्होंने दिन में कॉलेज की पढ़ाई की और रातों के अंधेरे में अपनी पहचान छुपाने के लिए भेष बदलकर पटना की सड़कों पर रिक्शा तक चलाया।
3: क्या बात है, संघर्षमयी मिट्टी से तपकर जब वे बाहर निकले तो उनका साहित्य से रिश्ता और भी ज्यादा गहरा हो चुका था। बचपन में अपनी पूज्य दादी माँ को भगवत गीता और रुक्मणी मंगल का पाठ पढ़कर सुनाने वाले बजाज साहब अब राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की कविताओं के दीवाने हो चुके थे। आगे चलकर आधुनिक कविता के पुरोधा अज्ञेय जी से उनकी मुलाकात हुई, जिन्होंने बजाज साहब के भीतर के उस संवेदनशील कवि को पहचान लिया। पटना में रहते हुए जब वे एमए प्रीवियस पास कर चुके थे तभी उनकी मुलाकात हिंदी के महान कथाकार परेश्वरनाथ रेणु जी से हुई।
2: रेणु जी इस नौजवान की आंखों में चमक और प्रतिभा भांप गए। उन्होंने बजाज साहब को पटना की एक स्थानीय ड्रामा मंडली से मिलवाया। उन्हीं दिनों पटना में एक सज्जन मिले, हामिद साहब, जो किराए पर कमरे चलाया करते थे। हामिद साहब ने इस बेसहारा कलाकार को न केवल छत दी बल्कि जब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय यानी NSD के इंटरव्यू का बुलावा आया तो अपनी जेब से कुछ पैसों की मदद भी की। हामिद साहब की उन्हीं पैसों का सहारा लेकर यह नौजवान दिल्ली पहुंचा। MA फाइनल की परीक्षा देने से पहले ही उसका सिलेक्शन सीधे NSD में हो गया। दिल्ली आकर उन्होंने रंग गुरु इब्राहिम अलकाजी साहब के कड़े अनुशासन में रंगमंच का काखा गा सीखा। सन 1965 में राम गोपाल बजाज जी का NSD में चयन हो गया था।
3: और राम गोपाल बजाज पटना विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में मास्टर की पढ़ाई बीच में ही छोड़ चुके और दिल्ली स्थित NSD चले गए। वे 1965 के बैच के छात्र रहे। उन्होंने अभिनय में अपना डिप्लोमा पूरा किया। NSD में उन्हें प्यार से बड़े छोटे सभी बज्जू भाई बज्जू सर कहते थे। वो हमेशा से सभी का साथ देने वाले मददगार दोस्त साथी और शिक्षक रहे। उन दिनों राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD में अंग्रेजी का माहौल बहुत ज्यादा था। खुद रंग गुरु इब्राहिम अलकाजी साहब बड़े सलीके से अंग्रेजी बोलते थे, जबकि राम गोपाल बजाज जी की हिंदी बेहद मुकम्मल शुद्ध और साफ थी। दोनों के बीच एक बेहद खूबसूरत और ऐतिहासिक सौदा हुआ। अलकाजी साहब ने बजाज साहब से कहा, तुम मुझे हिंदी सिखाना, मैं तुम्हें अंग्रेजी सिखाऊंगा।
2: भाषा का ऐसा अद्भुत आदान प्रदान रंगमंच के इतिहास में बिरला ही देखने को मिलता है। अलकाजी साहब हिंदी कविता और उसके ठहराव को सीखने के लिए इतने आतुर रहते थे कि कई बार सुबह बेहद तड़के भोर में ही बजाज साहब को बुला लिया करते और उनसे घंटों डूबकर हिंदी की कविताएं सुना करते थे।
3: अलकाजी साहब के उसी कड़े अनुशासन और प्यार की छाव में बज्जू भाई ने कई नाटकों में काम किया। उन्होंने अंधा युग, तुगलक जैसी कई ऐतिहासिक और कालजयी प्रस्तुतियों में साथ काम करके भारतीय रंगमंच का इतिहास बदल दिया। हालांकि किसी भी आधिकारिक दस्तावेज में उनके द्वारा साथ किए गए कुल नाटकों की कोई निश्चित संख्या दर्ज नहीं है, पर यह बात पूरी दुनिया जानती है कि इब्राहिम अलकाजी ने राम गोपाल बजाज को आधुनिक हिंदी रंगमंच का एक सशक्त, निडर और बेमिसाल अभिनेता बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। बजाज साहब आज भी जब अलकाजी साहब को याद करते हैं तो अंधा युग के वो दिन उनकी आंखों में एक जीवंत दृश्य की तरह तैरने लगते हैं।
2: न कोई जबां आड़े आई, न कोई दस्तूर आड़े आया, मुर्शिद ने जब मुरीद को अपनी रूह से मिलाया, एक दूजे को सौंप दी दोनों ने अपनी कायनात, उधर से इल्म बहा, इधर से अदब का दरिया आया। दिल्ली के राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD की चौखट पर कदम रखने के बाद इस खुद्दार नौजवान ने जैसे रंगमंच को ही अपनी इबादत बना लिया था। बजाज साहब ने वहां केवल अभिनय की बारीकियों को ही नहीं साधा बल्कि नाटक की मुकम्मल रूह को समझा। मंच की रोशनियां कैसे भावनाओं को उभारती हैं, सेट कैसे एक बेजान जगह को जिंदा करता है और वेशभूषा जैसे किसी किरदार को वजूद देती है। उन्होंने इन सब विधाओं को पूरी लगन से सीखा और इसके साथ ही उनका नाता विश्व और हिंदी साहित्य के महान लेखकों से और गहरा होता गया।
3: लेकिन इन सब चमक धमक और कला के शोर के बीच कई बार रातों के सन्नाटे में घर की याद उन्हें घेर लेती थी। अपनी पूज्य दादी माँ की ममता और उनके आंचल की खुशबू को याद करते हुए इस संवेदनशील कलाकार की आंखें भर आती थीं। उस वक्त जब मंडी हाउस की भीड़ अपने चरम पर होती, तब इस युवा रंगकर्मी का दिल करता कि वे इस हुजूम से अलग होकर कहीं दूर बिल्कुल एकांत में चले जाएं। दरअसल बजाज साहब भीतर से हमेशा एक बेहद आध्यात्मिक इंसान रहे, जो बाहरी दुनिया के शोर से थककर एकांत के उसी सन्नाटे में खुद को भीतर से शांत करते थे, अपने जख्मों को सहलाते थे। उनके लिए अकेलापन का वो सूनापन कोई सजा नहीं थी बल्कि एक रूहानी वरदान था, जिसे महसूस करते हुए अक्सर सोचते थे, अकेलेपन से बढ़कर आनंद नहीं, आराम नहीं, स्वर्ग है वो एकांत जहां शोर नहीं, धूमधाम नहीं। ऐसे भावों को लेकर मुझे DH लॉरेंस की लिखित और दिनकर की अनुवादित वो कविता याद आ रही है।
2: देश और काल के प्रसार में शून्यता, अशब्दता, अपार में चांद जब घूमता है कौन सुख पाता है, भेद यह मेरी समझ में तब आता है, होता हूं जब मैं अपने भीतर के प्रांत में, भीड़ से दूर किसी निभृत एकांत में, और तभी समझ यह पाता हूं पेड़ झूमता है किस मोद में, खड़ा हुआ एकाकी पर्वत की गोद में, बहता पवन मंद मंद है पत्तों के हिलने में छंद है, आह कितना आनंद है।
3: बिल्कुल, भीड़ से दूर अपने भीतर के इसी निभृत एकांत में बैठकर उन्हें ब्रह्मांड के इस परम सत्य का बोध होता था। प्रकृति के इस मूक संगीत, हिलते पत्तों के छंद और मंद मंद बहती हवा के इसी रूहानी आनंद ने उनके भीतर के अकेलेपन को एक दिव्य दार्शनिकता में बदल दिया, जिसने आगे चलकर उनके अभिनय और निर्देशन को एक अमर और कालजयी गहराई प्रदान की।
2: NSD से शिक्षा पूरी करने के बाद रामगोपाल बजाज जी केवल एक छात्र नहीं रहे, वे सालों तक इस प्रतिष्ठित संस्थान की फैकल्टी के रूप में नए कलाकारों को गढ़ते रहे और आगे चलकर नवंबर 1995 से सितंबर 2001 तक इसके निदेशक डायरेक्टर बने। बतौर निदेशक उनका यह कार्यकाल भारतीय रंगमंच का स्वर्ण युग साबित हुआ। वे सिर्फ अभिनय ही नहीं बल्कि थिएटर के हर विभाग जैसे मेकअप, स्टेज लाइटिंग और प्रोडक्शन डिजाइनिंग के एक सिद्ध ऑलराउंडर थे, जिन्होंने स्कूल की अकादमिक और कलात्मक रीढ़ को मजबूत किया।
3: उन्होंने विस्तार, प्रकाशन और दस्तावेजीकरण जैसे कार्यक्रमों को एक नई दिशा दी। रंगमंच की दुनिया में उनका सबसे ऐतिहासिक योगदान था भारत रंग महोत्सव। 1999 में आजादी की स्वर्ण जयंती पर शुरू हुआ देश का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल और पूरी तरह उन्हीं की कल्पना से उपजा जश्न बचपन व बाल संगम। इन उत्सवों ने देश विदेश के थिएटर समूहों, वयस्कों, बच्चों और पारंपरिक लोक कलाकारों को एक वैश्विक मंच दिया। स्कूल की शिक्षा प्रणाली में थिएटर को अनिवार्य करने की जोरदार वकालत करने वाले बजाज साहब दिल्ली के मशहूर देशांतर थिएटर ग्रुप के संस्थापक सदस्यों में से भी एक रहे हैं।
2: मंच, रेडियो, टीवी और फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनवाने वाले बजाज साहब के पास कविताओं के पाठ और उनकी प्रस्तुति का एक ऐसा जादुई हुनर है कि जब वे बोलते हैं तो शब्द जीवंत हो उठते हैं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की बुनियाद खड़ी करने में इब्राहिम अलकाजी की बड़ी भूमिका रही। ये भी असंदिग्ध है कि उन्होंने नाट्य प्रशिक्षण की जो आधारशिला रखी, उसकी वजह से कई अच्छे अभिनेता और निर्देशक रंगमंच के क्षितिज पर आए।
3: अलकाजी साहब अपनी तरह के अद्वितीय रंग व्यक्तित्व हैं और उनका कोई मुकाबला नहीं, किंतु उसके बाद NSD के सबसे कल्पनाशील निदेशक बज्जू भाई ही हुए और इस संस्था की परिधि का विस्तार जितना उन्होंने किया वो कोई और नहीं कर सका। उनके चलाए हुए कुछ कार्यक्रम तो अब लगभग बंद ही हो गए हैं, जैसे कि श्रुति। बज्जू भाई द्वारा बनाई गई परिधि अब छोटी पड़ती जा रही है। बजाज साहब ने अपने कार्यकाल में हिंदी की नाट्य पत्रिका रंग प्रसंग की शुरुआत की। उनके कार्यकाल के दौरान ही राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में श्रुति कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसमें हिंदी के वरिष्ठ या युवा लेकिन चर्चित कथाकार या कवि आकर रचना पाठ करते थे
2: और इसी कारण से हिंदी भाषी समाज और नाट्य विद्यालय का एक गहरा जीवंत रिश्ता बन गया था। बज्जू भाई ने ही बहावलपुर हाउस परिसर में सम्मुख थिएटर बनवाया और फिर अभिमंच बनाना शुरू किया, जो अंकुर जी के कार्यकाल में पूरा हुआ। 1996 में बज्जू भाई ने बतौर निर्देशक स्कूल के दीक्षांत समारोह के अवसर पर एकल अभिनय नाट्य समारोह करवाया, जिसमें लक्ष्मण देशपांडे, वीणा पाणी चावला से लेकर नसीरुद्दीन शाह जैसे अभिनेताओं ने शिरकत की। उस दीक्षांत समारोह में धर्मवीर भारती मुख्य अतिथि रहे।
3: निर्देशन की बात करें तो NSD और उसकी रिपेट्री कंपनी, जिसके वे 1988 से 1994 तक प्रमुख भी रहे, उनके नाटक भारतीय रंगमंच के मील के पत्थर बन गए। इस सफर की शुरुआत 1974 में सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक जैसे कालजयी नाटक से हुई। इसके बाद 1977 में जयशंकर प्रसाद का ऐतिहासिक स्कंदगुप्त, 1989 में मिर्जा गालिब के दर्द को समेटते कैदे हयात और 1992 में मोहन राकेश की अमर कृति आषाढ़ का एक दिन का निर्देशन कर उन्होंने निर्देशन कला की नई परिभाषाएं सीखी।
2: केवल निर्देशन ही नहीं, उनके भीतर का संवेदनशील लेखक भी उतना ही प्रखर था, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण गिरीश कर्नाड के कन्नड़ नाटक ताले दंड का रक्त कल्याण के नाम से किया गया उनका शानदार हिंदी अनुवाद है। इस अनुदित नाटक का निर्देशन पहले रिपेटरी के लिए स्वयं उनके रंग गुरु इब्राहिम अलकाजी ने और बाद में अस्मिता थिएटर के लिए अरविंद गौड़ ने किया। सचमुच कोशी अंचल की मिट्टी से निकला यह फक्कड़ और दार्शनिक कलाकार जब दिल्ली के मंडी हाउस के गलियारों में उतरा तो उसने न केवल खुद को साबित किया बल्कि समकालीन भारतीय थिएटर का पूरा भूगोल और इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया।
3: जी हाँ, रामगोपाल बजाज बज्जू भाई जी की देखरेख और मार्गदर्शन में भारतीय रंगमंच, सिनेमा और टेलीविजन की कई

0: कलाकारी का ऐसा रंग बिखेरा जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। आषाढ़ का एक दिन जैसे कालजयी नाटकों से अभिनय का ककहरा शुरू करने वाले बजाज साहब ने जब सिल्वर स्क्रीन की तरफ रुख किया तो वहां भी अपनी गहरी छाप छोड़ी। शेखर कपूर की मासूम 1983 हो या केतन मेहता की समीक्षकों द्वारा बेहद सराही गई मिर्च मसाला फिल्म 1985 हो या फिर यश चोपड़ा की ब्लॉकबस्टर फिल्म चांदनी 1989 हो, बजाज साहब ने हर बड़े निर्देशक के विजन में खुद को एक मुकम्मल अभिनेता के रूप में ढाला। उनकी अभिनय की रेंज इतनी व्यापक थी कि जहां एक तरफ वे लीक से हटकर दीपा मेहता की फायर 1996 जैसी फिल्मों का हिस्सा बने, वहीं दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने भारत का परचम लहराया जब वे ग्लोबल स्टार जैकी चैन की मशहूर फिल्म द मिथ 2005 में एक मार्शल आर्ट्स शिक्षक की दमदार भूमिका में नजर आए।
1: और वक्त बदला, सिनेमा का मिजाज बदला, लेकिन बजाज साहब की कला का जादू हमेशा नया बना रहा। सिनेमा के बदलते दौर के साथ कदम मिलाते हुए उन्होंने आधुनिक सिनेमा और OTT की दुनिया में भी उतनी ही सहजता से प्रवेश किया। उनका संजीदा अभिनय हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना बटोरने वाली फिल्में मैंगो ड्रीम्स, इन प्रस्तुतियों के जरिए उन्होंने साबित कर दिया कि एक सच्चा कलाकार कभी पुराना नहीं होता। उसकी कला वक्त के हर फ्रेम में बिल्कुल फिट बैठती है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के पूर्व निदेशक और देश के इस महान ऑलराउंडर का ये फिल्मी सफर महज कुछ फिल्मों की सूची नहीं है, बल्कि ये गवाही है इस बात की कि जब थिएटर की माटी में तपा हुआ कोई फनकार कैमरे के सामने खड़ा होता है तो सिनेमा की स्क्रीन भी उसकी शख्सियत के आगे छोटी पड़ जाती है।
0: प्रोफेसर बजाज को भारतीय रंगमंच में उनके चौतरफा रचनात्मक योगदान के लिए कुछ पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिसमें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, साहित्य कला परिषद पुरस्कार, नेशनल प्रेस इंडिया अवार्ड, साहित्य कला परिषद सम्मान, नंदीकर सम्मान शामिल हैं। और उन्हें 2003 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। वे आधिकारिक और व्यक्तिगत क्षमताओं में थिएटर, फिल्म, जनसंचार के क्षेत्र में कार्यकारी बोर्ड, जनरल काउंसिलिंग और विभिन्न संगठनों और संस्थानों के बोर्ड के सदस्य रहे हैं।
1: उन्हें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, पौंडीचेरी विश्वविद्यालय जैसे कई केंद्रीय विश्वविद्यालयों के आगंतुक के रूप में उनकी क्षमता के अनुसार भारत के माननीय राष्ट्रपति के नामित के रूप में बोर्डों और समितियों में सदस्य के रूप में नामित किया गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग के एक सदस्य के रूप में उन्हें नामित किया गया। उन्होंने सन 2000 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जूरी के सदस्य के रूप में भी और भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव सन 2001 के लिए पैनोरोमा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया।
0: श्रोताओं, आज भले ही बज्जू भाई दिल्ली की इस भागदौड़ से दूर कहीं और वक्त बिता रहे हों, पर सच तो ये है कि मानसिक रूप से उनका दिल आज भी दिल्ली में ही धड़कता है। जब भी उनसे गुफ्तगू हुई है, मंडी हाउस के गलियारों और NSD के किस्से उनकी बातों में जीवंत हो उठते हैं। रामगोपाल बजाज के प्रिय कवि रहे हैं अज्ञेय। उनकी कविता जो बज्जू सर को बहुत पसंद है, हम उन्हें अर्पित करते हैं। एक तनी हुई रस्सी है जिस पर मैं नाचता हूं, जिस तनी हुई रस्सी पर मैं नाचता हूं वह दो खंभों के बीच है, रस्सी पर मैं जो नाचता हूं वह एक खंभे से दूसरे खंभे तक का नाच है। दो खंभों के बीच जिस तनी हुई रस्सी पर मैं नाचता हूं उस पर तीखी रोशनी पड़ती है, जिसमें लोग मेरा नाच देखते हैं, न मुझे देखते हैं जो नाचता है, न रस्सी को जिस पर मैं नाचता हूं, न खंभों को जिस पर रस्सी तनी है, न रोशनी को ही जिसमें नाच दिखता है। लोग सिर्फ नाच देखते हैं, पर मैं जो नाचता, जो जिस रस्सी पर नाचता हूं, जो जिन खंभों के बीच है जिस पर रोशनी जो पड़ रही है, उस रोशनी में, उन खंभों के बीच, उस रस्सी पर, असल में मैं नाचता नहीं हूं। मैं केवल उस खंभे से इस खंभे तक दौड़ता हूं कि इस या उस खंभे से रस्सी खोल दूं, कि तनाव चुके और ढील में मुझे छुट्टी हो जाए। पर तनाव ढीलता नहीं और मैं इस खंभे से उस खंभे तक दौड़ता हूं, पर तनाव वैसा ही बना रहता है, सब कुछ वैसा ही बना रहता है, और वही मेरा नाच है जिसे सब देखते हैं।

0: मुझे नहीं, खंभे नहीं, रस्सी को नहीं, रोशनी नहीं, तनाव भी नहीं, देखते हैं नाच।
1: रेडियो आजाद हिंद की तरफ से हम सभी के प्यारे बज्जू सर, बज्जू भाई को दिल से ढेरों शुभकामनाएं हैं कि आप दीर्घायु हों, खूब जिए और अपनी कला से हम सभी को हमेशा यूं ही बहुत कुछ सिखाते रहें। आपकी ये अद्भुत रंगमंच की यात्रा, आपका फक्कड़पन, आपका स्वाभिमान और आपका कड़ा संघर्ष हम सभी के लिए, आने वाली हर पीढ़ी के लिए हमेशा प्रेरणा का एक अटूट स्रोत बना रहे। प्रणाम बज्जू भाई।
0: तो श्रोताओं, कला कल्लोलिनी में बस आज के लिए इतना ही। अब वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया था संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना अदिति गौड़ की थी, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग सतीश पाथम का, लेखन दीपक नेमा, और आपके साथ था मैं विजयकांत नायक,
1: और मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर रानी रैकवार भारती। इसी के साथ दीजिए हमें अनुमति, नमस्कार, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम कला कल्लोलिनी, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है, देश का चैनल देश के लिए।
3: साहस की बुलंद शुरुआत से लेकर आसमान की असीम ऊंचाइयों तक 8 अक्टूबर को पूरा देश मना रहा है भारतीय वायुसेना का 94वां वायुसेना दिवस।
4: वर्ष 1947-48, 1965 और 1971 के ऐतिहासिक युद्धों से लेकर ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन सफेद सागर तक विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायु सेना ने हर पल कर दिखाया है अदम्य पराक्रम, अत्याधुनिक तकनीक और सर्वोच्च बलिदान।
3: तो मध्य प्रदेश के जाबाज युवाओं, क्या आप तैयार हैं? बादलों को चीर कर देश का मान बढ़ाने के लिए तो बनिए अग्निवीर वायु, हासिल कीजिए वो मुकाम जो जिंदगी भर की पहचान बन जाए, और गर्व से कीजिए भारत माँ की सेवा।
4: भर्ती और पात्रता से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए
3: 15 एयरमैन चयन केंद्र के इंस्टाग्राम पेज 15ASC_भोपाल और आधिकारिक वेबसाइट IAFRecruitment.edcil.co.in पर विजिट करें।
4: नभस प्रशम दीप्तम।
3: जय हिंद।

0: दोपहिया वाहन की सवारी करते समय हेलमेट जरूर पहने। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।
1: जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्यार की एक घड़ी है बड़ी, प्यार कर ले हो प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी।
2: नमस्कार, मैं नितिन मुकेश, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
3: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून इन किया है रेडियो आज़ाद हिंद। प्रस्तुत है कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, रेडियो रूपक।
4: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: स्वामी विवेकानंद जी का उनके शिष्यों के साथ तथा विभिन्न व्यक्तियों के साथ समय समय पर विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर वार्तालाप होता था। आगामी खंडों में जो वार्तालाप संकलित किए गए हैं वे ऐसे व्यक्तियों के साथ स्वामी जी की बातचीत है जो उनके संपर्क में आए थे और प्रिय शिष्य बन गए थे। ये बातचीत अनेक विषयों पर हुई थी, जैसे धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, शिक्षा आदि। इन बातचीतों से विभिन्न विषयों पर स्वामी जी के विचारों की जानकारी प्राप्त होती है।
1: हमारे देश का पुनरुत्थान किस प्रकार हो सकता है तथा फिर से अपने प्राचीन गौरव का स्थान कैसे प्राप्त कर सकता है, इसका भी निर्देशन स्वामी जी ने अपनी ओजपूर्ण वाणी में इन वार्तालापों में किया है। राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए व्यक्ति का विकास होना चाहिए।
0: श्री प्रियनाथ सिंह स्वामी जी के करीबी लोगों में से थे। वे प्रियनाथ सिंह को सिंगी कहकर बुलाते थे। वे अक्सर स्वामी जी से विभिन्न विषयों पर बातचीत किया करते थे और स्वामी जी के विचारों को लिख लेते थे। प्रस्तुत है श्री प्रियनाथ सिंह जी और स्वामी जी की बातचीत के कुछ अंश।
2: बेलुड़ मठ के निर्माण के 2 वर्ष बाद की बात है। सभी स्वामी जी अब वहीं रहने लगे थे। इन्हीं दिनों मैं एक दिन सवेरे स्वामी विवेकानंद जी के दर्शन करने वहां गया हुआ था। मुझे देखकर स्वामी जी मुस्कुराए और बोले,
3: आज तो यहीं रहोगे ना?
2: मैंने कहा, अवश्य। इधर उधर की कुछ बातें करने के बाद मैंने पूछा, महाराज बच्चों की शिक्षा पद्धति कैसी होनी चाहिए?
3: गुरु गृहवास, गुरु के साथ रहना।
2: कैसे?
3: जैसे प्राचीन काल में होता था, किंतु आज की शिक्षा में पाश्चात्य विज्ञान का भी समावेश होना चाहिए। दोनों ही आवश्यक हैं।
2: पर आज की विश्वविद्यालय की शिक्षा में क्या दोष है?
3: इसमें दोष ही दोष भरे हैं। ये बाबू पैदा करने की मशीन के सिवाय कुछ नहीं है। अगर इतना ही होता तब भी ठीक था, पर नहीं, इस शिक्षा ने मनुष्यों की श्रद्धा और विश्वास की भावनाएं नष्ट कर दी हैं। वे कहते हैं कि गीता तो एक प्रक्षिप्त अंश है और वेद देहाती गीत मात्र हैं। वे भारतवर्ष के बाहर के देशों के संबंध में तो हर बात जानना चाहते हैं, पर यदि उनसे कोई अपने पूर्वजों के नाम पूछे तो 14 पीढ़ी तो दूर रही, 7 पीढ़ी तक भी नहीं बता सकते।
2: पर इससे क्या हुआ? वे अपने पूर्वजों के नाम नहीं जानते तो क्या हानि है?
3: नहीं, ऐसा मत सोचो। जिस राष्ट्र का कोई अपना इतिहास नहीं है वो अत्यंत ही हीन और नगण्य बना रहता है। क्या तुम सोचते हो कि कोई व्यक्ति जिसे सदैव इस बात का विश्वास और अभिमान है कि वो उच्च कुल में उत्पन्न हुआ है, कभी दुश्चरित्र हो सकेगा? ऐसा क्यों होता है? उसमें जो आत्मविश्वास और स्वाभिमान का भाव है वो सदैव उसके विचार और कार्य को इतना नियंत्रित रखता है कि ऐसा व्यक्ति सतमार्ग से च्युत होने की अपेक्षा हंसते हंसते मृत्यु का आलिंगन कर लेगा। इसी तरह राष्ट्र का गौरवमय अतीत राष्ट्र को नियंत्रण में रखता है और उसका अधः पतन नहीं होने देता। पर मैं जानता हूं तुम कहोगे कि हमारा ऐसा कोई अतीत, ऐसा इतिहास ही नहीं है।
2: पर सभी को अपने प्राचीन इतिहास का ज्ञान नहीं है। हम भारतीयों को अपने इतिहास पर गर्व भी नहीं है।
3: जो तुम्हारी तरह सोचते हैं उन्हीं के लिए हमारे राष्ट्र का कोई इतिहास नहीं है, और तुम्हारे विश्वविद्यालयों के उन तथा कथित विद्वानों के लिए नहीं है, और उन लोगों के लिए नहीं जो कि पाश्चात्य देशों का एक चक्कर मारकर यूरोपीय वेशभूषा से सुसज्जित हो भारत लौट आते हैं और बड़बड़ाने लगते हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो बस जंगली हैं। हाँ, ये सच है कि दूसरे देशों का जैसा इतिहास है वैसा हमारा नहीं है, पर इसका अर्थ ये तो नहीं होता कि हमारे पास कोई इतिहास ही नहीं है। जैसे हम भात खाते हैं और अंग्रेज लोग भात नहीं खाते, तो इस पर से क्या तुम ये निर्णय कर लोगे कि अंग्रेज भूखे मरते हैं और कुछ दिनों में नष्ट हो जाएंगे? उनके देश में उनकी जलवायु के अनुकूल जो सरलता से वे उत्पन्न कर लेते हैं वही खाकर वे पनपते और पुष्ट होते हैं। इसी तरह हमारे लिए जैसा आवश्यक है वैसा हमारा भी अपना इतिहास है, और अपनी आंखें बंद कर लेने और चिल्लाने से कि हमारा कोई इतिहास ही नहीं है वो क्या नष्ट हो जाएगा? जिनके पास देखने के लिए आंखें हैं वे जानते हैं कि हमारा इतिहास कितना उज्जवल है और वो देश को किस प्रकार जीवित रख रहा है।
2: इसे देखने के लिए उचित आंखें होनी चाहिए, हम में वो दृष्टि कहाँ?
3: आज उस इतिहास को फिर से लिखने की आवश्यकता है। पाश्चात्य शिक्षा से हमारे युवकों की बदली हुई विचारधारा और बुद्धि को सामने रखकर आज उस गौरवमय इतिहास को फिर से लिखना होगा, जिससे पाश्चात्य सभ्यता से चकित और चकाचौंध में भ्रमित हमारे युवक उसे समझ सकें।
2: ये किस प्रकार करना होगा?
3: ये एक बहुत बड़ा विषय है, इस पर कभी और चर्चा करेंगे। उसके लिए पहले हमें गुरु गृहवास और उस जैसी अन्य शिक्षा प्रणालियों को पुनर्जीवित करना होगा। आज हमें आवश्यकता है वेदांत युक्त पाश्चात्य विज्ञान की, ब्रह्मचर्य के आदर्श और श्रद्धा तथा आत्मविश्वास की। दूसरी बात जिसकी आवश्यकता है वो है उस शिक्षा पद्धति का निर्मूलन जो मार मार कर गधों को घोड़ा बनाना चाहती है।
2: इससे आपका क्या मतलब है?
3: देखो, कोई भी किसी को कुछ नहीं सिखा सकता। जो शिक्षक ये समझता है कि वो कुछ सिखा रहा है, सब गुड़ गोबर कर देता है। वेदांत का सिद्धांत है कि मनुष्य के अंतर में एक अबोध शिशु में भी ज्ञान का समस्त भंडार निहित है, केवल उसके जागृत होने की आवश्यकता है, और यही आचार्य का काम है। हमें बच्चों के लिए बस इतना ही करना है कि वे अपने हाथ पैर आंख कान का समुचित उपयोग भर करना सीख लें, और फिर सब आसान है। पर इस सब का मूल है धर्म, वही मुख्य है। धर्म तो भात के समान है, शेष सब वस्तुएं कढ़ी और चटनी जैसी हैं। केवल कढ़ी और चटनी खाने से अपथ्य हो जाता है, और केवल भात खाने से भी। हमारे शिक्षा शास्त्री हमारे बच्चों को केवल तोता बना रही हैं और रटा रटा कर उनके मस्तिष्क में कई विषय ठूंसते जा रही हैं। यदि एक दृष्टि से देखा जाए तो तुम्हें वाइस राय का आभार मानना चाहिए कि उन्होंने विश्वविद्यालयीन शिक्षा में सुधार करने का प्रस्ताव किया है।
2: परंतु स्वामी जी, हमें तो ये मालूम है कि भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने विश्वविद्यालय शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने के उद्देश्य से उसे इतना महंगा कर देना चाहा कि लड़कों की पहुंच के लगभग बाहर हो जाएगी।
3: हाँ, इससे शिक्षा करीब करीब बंद ही हो जाएगी, और देश को कम से कम कुछ सांस लेने और विचार करने का समय तो मिलेगा। वाह, ग्रेजुएट बनने के लिए क्या दौड़ धूप, क्या गहमा गहमी लगी है, और फिर कुछ दिन बाद सब कुछ ठंडा पड़ जाता है, और आखिर में वे सीखते क्या हैं? बस यही कि हमारा धर्म आचार विचार और रीति रिवाज सब खराब हैं, और पाश्चात्यों की सब बातें अच्छी हैं। इस तरह महानाश को निमंत्रित कर रहे हैं। आखिर इस उच्च शिक्षा के रहने या ना रहने से क्या बनता बिगड़ता है? ये कहीं ज्यादा अच्छा होगा कि ये उच्च शिक्षा प्राप्त कर नौकरी के लिए दफ्तरों की खाक छानने की बजाय पेट तो भर सकेंगे।
2: हाँ, मारवाड़ी इस बात में होशियार है, वे नौकरी नहीं करते और कोई ना कोई व्यापार में लग जाते हैं।
3: बकवास है, वे इस देश को रसातल में पहुंचा रही हैं। अपने स्वार्थ को भी नहीं समझते। उनसे तुम लोग कहीं ज्यादा अच्छे हो, क्योंकि तुम्हारा ध्यान कल कारखानों से वस्तुओं के निर्माण की ओर है। मारवाड़ी लोग अपने व्यापार में जो पैसा लगाते हैं और जिससे उन्हें थोड़ा बहुत मुनाफा होता है, उससे तो ज्यादातर विदेशियों की ही जेब भरते हैं। यही पैसा अगर वे कुछ कल कारखानों को खोलने में लगाएं तो देश की भलाई होगी और उनका मुनाफा भी बढ़ेगा। केवल काबुली लोग ही नौकरी की परवाह नहीं करते, उनकी नस नस में स्वतंत्रता की भावना भरी है। उनको जरा नौकरी कर लेने की बात कह दो, फिर देखो क्या होता है।
2: पर महाराज, यदि उच्च शिक्षा बंद हो गई तो लोग फिर पहले जैसे मूर्ख बने रहेंगे।
3: क्या मूर्खता भरी बात कहते हो? क्या कभी सिंह भी सियार हो सकता है? हमारे कहने का क्या मतलब है? क्या कभी संभव है कि सृष्टि के आदिकाल से जिस देश की संतान अखिल विश्व को शिक्षा देती आ रही है, केवल इसलिए मूर्ख बन जाएगी कि लॉर्ड कर्जन उच्च शिक्षा बंद कर रहे हैं?
2: पर जरा सोचिए तो कि हमारे देशवासी अंग्रेजों के आगमन के पूर्व क्या थे और अब क्या हो गए हैं?
3: भौतिक शास्त्रों का अध्ययन और दैनिक उपयोग की वस्तुओं का यंत्रों द्वारा उत्पादन, क्या यही उच्च शिक्षा का अर्थ है? उच्च शिक्षा का उद्देश्य है जीवन की जटिल समस्याओं को सुलझाना, और आज का सभ्य संसार आज भी इन्हीं समस्याओं पर गहन चिंतन कर रहा है, किंतु हमारे देश में सहस्त्रों वर्ष पूर्व ही ये गुत्थियां सुलझा ली गईं।
2: पर आपका वेदांत भी तो लुप्त प्राय ही हो रहा था।
3: संभव है, काल के प्रवाह में कभी कभी ऐसा भास होता है कि वेदांत का महान प्रकाश अब बुझा, अब बुझा। और जब ऐसी स्थिति आती है तब भगवान मानव देह धारण कर पृथ्वी पर आते हैं और फिर धर्म में पुनः एक ऐसी शक्ति, ऐसे जीवन का संचार हो जाता है कि वे फिर एकाध युग तक अदम्य उत्साह से आगे बढ़ता जाता है। आज वही शक्ति है और जीवन उसमें फिर आ गया है।
2: पर महाराज, इसका क्या प्रमाण है कि भारत ने ही शेष संसार को शिक्षित किया है?
3: संसार का इतिहास ही इसका साक्षी है। उचित शोध लगाने पर यही पाया जाता है कि विश्व में ज्ञान की जो विविध शाखाएं हैं, जो शास्त्र और उदात्त विचार हैं, उनका उद्गम भारत से ही हुआ।
0: प्रियनाथ जी से बात करते करते स्वामी जी थक गए थे, पर वे रुके नहीं। स्वामी जी का मुख एक अलौकिक आभा से दीप्त हो गया और वे बड़े उत्साह से इस विषय पर बड़ी देर तक बोलते रहे। उस समय उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था और बहुत ज्यादा गर्मी से उनका गला सूख रहा था। उन्हें बार बार प्यास लग रही थी और वे पानी पीते जाते थे। अंत में उन्होंने कहा, सिंगी, कृपया मेरे लिए एक बर्फ के पानी का ग्लास मंगाओ, मैं फिर तुमको सब अच्छी तरह समझा दूंगा। पानी पीकर वे फिर बोलने लगे।
3: समझे ना, आज आवश्यकता है विदेशी नियंत्रण हटाकर हमारे विविध शास्त्रों, विद्याओं का अध्ययन हो और साथ साथ अंग्रेजी भाषा और पाश्चात्य विज्ञान भी सीखा जाए, जिससे देश के युवक नौकरी ढूंढने के बजाय अपनी जीविका के लिए समुचित धनोपार्जन भी कर सकें और भविष्य के लिए कुछ बचा भी सकें।
2: टोलिया संस्कृत पाठशालाओं के बारे में आपका क्या कहना है?
3: क्या तुमने उपनिषदों की कथाएं नहीं पढ़ी है? मैं अभी एक कथा सुनाता हूँ। ब्रह्मचारी सत्यकाम गुरु के पास अध्ययन के लिए गया। गुरु ने उसे गाय चराने के लिए जंगल में भेज दिया। गाय चराते चराते कई मास व्यतीत हो गए, गायों की संख्या भी दुगनी हो गई। तब सत्यकाम ने आश्रम लौट चलने का विचार किया। मार्ग में एक वृषभ, अग्नि तथा कुछ अन्य प्राणियों ने सत्यकाम को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। जब शिष्य आश्रम में गुरु को प्रणाम करने पहुंचा तो गुरु ने उसे देखते ही जान लिया कि उसने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया है। इस कथा का सार यही है कि सच्ची शिक्षा सर्वदा प्रकृति के संपर्क में रहने से ही प्राप्त होती है। ज्ञान इसी प्रकार प्राप्त किया जा सकता है।
2: इससे आपका क्या मतलब है?
3: पंडितों के टोल और पाठशालाओं में पढ़कर तो मनुष्य जीवन भर बंदर बना रहता है। बाल्यावस्था से ही ज्वाजल्यमान उज्ज्वल चरित्र युक्त किसी तपस्वी महापुरुषों के सहवास में रहना चाहिए, जिससे कि उच्चतम ज्ञान का जीवित आदर्श सदैव दृष्टि के समक्ष रहे। केवल पढ़ लेने से कि मिथ्या भाषण पाप है कोई लाभ नहीं। हर एक को पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन करने का व्रत लेना चाहिए, तभी हृदय में श्रद्धा और भक्ति का उदय होगा। नहीं तो जिसमें श्रद्धा और भक्ति नहीं वो मिथ्या क्यों नहीं बोलेगा। हमारे देश में अध्ययन का महान कार्य सदैव निष्प्रह और त्यागी पुरुषों ने ही किया है। कालांतर में पंडितों ने ज्ञान और विद्याओं पर एकाधिपत्य कर पाठशालाओं की चार दीवारी में बंद कर दिया और इस तरह देश का अधः पतन होना शुरू हो गया। जब तक अध्यापन कार्य त्यागी पुरुषों ने किया तब तक भारत समृद्ध बना रहा।
2: महाराज, आपका क्या अर्थ है? दूसरे देशों में तो सन्यासी नहीं है, पर देखिए उनकी ज्ञान गरिमा से आज भारत उनके चरण चूम रहा है।
3: मेरे मित्र, व्यर्थ की बातें मत बोलो, मैं जो कहता हूँ उस पर ध्यान दो। जब तक इस देश में अध्यापन और शिक्षा का भार त्यागी और निष्प्रह वहन नहीं करेंगे तब तक भारत वर्ष को दूसरे देशों के तलुए चाटने पड़ेंगे। तुम नहीं जानते किस तरह एक निरक्षर युवक ने अपनी निष्प्रहता और त्याग के प्रभाव से तुम्हारे दिग्गज पंडितों के छक्के छुड़ा दिए। एक बार दक्षिणेश्वर के मंदिर में पुजारी से विष्णु प्रतिमा खंडित हो गई। पंडितों की एक सभा हुई और उन्होंने अपने पुराने पोथे और ग्रंथ देखकर निर्णय दिया कि खंडित मूर्ति का पूजन शास्त्र विरुद्ध है और नई मूर्ति की प्रस्थापना की जाए। इस पर काफी वाद विवाद और शोरगुल मचा। अंत में श्री राम कृष्ण बुलाए गए। उन्होंने सब कुछ सुनकर पूछा, क्या पति पंगु हो जाए तो पत्नी उसे त्याग देगी? फिर क्या हुआ? पंडितों ने ये तर्क सुना तो मुंह से शब्द नहीं निकला, मूक हो गए। और इस सरल कथन के सामने उनके शास्त्र और भाष्य एक ओर धरे के धरे रह गए। यदि पंडितों की शिक्षा प्रणाली ठीक थी तो श्री रामकृष्ण क्यों अवतार धारण करते और क्यों पुस्तकीय ज्ञान का उपहास करते? उनके साथ जिस नूतन जीवन शक्ति का आविर्भाव हुआ, उससे जब हमारी शिक्षा ओतप्रोत हो जाएगी तब ही सफलता प्राप्त होगी।
2: पर ये कहना सरल है, करना कठिन।
3: यदि ये कार्य सरल होता तो श्री रामकृष्ण को अवतार धारण करने की आवश्यकता न पड़ती। अब तुम्हें जो करना है वो ये कि नगर नगर और ग्राम ग्राम में एक मठ की स्थापना की जाए। क्या तुम ये नहीं कर सकते? अधिक नहीं, कुछ तो करो ही। कलकत्ते के बीच में एक मठ स्थापित करो। एक सुशिक्षित साधु उसका अध्यक्ष रहे और उसके निरीक्षण में दो सन्यासी विज्ञान व अन्य विषयों का अध्यापन करें।
2: आपको ऐसे सन्यासी कहाँ मिलेंगे?
3: हमें ऐसे सन्यासियों का निर्माण करना होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि कुछ ऐसे युवकों की आवश्यकता है जिनके हृदय में देशभक्ति और त्याग की भावना प्रज्वलित हो। एक त्यागी पुरुष जितना शीघ्र किसी विषय पर अधिकार प्राप्त कर सकता है उतना अन्य कोई नहीं कर सकता।
0: कुछ समय बाद स्वामी जी बोले,
3: सिंगी, हमारी शताब्दी में इतना अधिक काम करना है कि मेरे और तुम्हारे जैसे सहस्त्र सहस्त्र मानवों की आवश्यकता है। केवल बोलने से क्या हो सकता है? देखो, देश कितनी विपत्र और दयनीय स्थिति को प्राप्त हो गया है। इस समय कुछ करो। बच्चों के लिए उपयोगी एक पुस्तक तक तो इस देश में नहीं है।
2: क्यों, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की इतनी सारी किताबें तो हैं। मेरा ऐसे कहते ही स्वामी जी खिलखिलाकर हंस पड़े और बोले,
3: इनमें यही पढ़ते हो ना, ईश्वर निराकार चैतन्य स्वरूप, सुबल अति सुबोध बालक आदि आदि। पर इससे काम नहीं चलने का। हमें बंगाली और साथ साथ अंग्रेजी में कुछ ऐसी पुस्तकों का प्रकाशन करना चाहिए जिनमें बहुत ही सरल और सीधी भाषा में रामायण महाभारत और उपनिषदों की कथाओं का संग्रह हो और फिर ये पुस्तकें बालकों को पढ़ने के लिए दी जाएं।
2: 11 बज रहे थे, आकाश में बादल घिर आए थे और ठंडी हवा चलने लगी थी। वर्षा होने की संभावना से स्वामी जी प्रसन्न हो उठे। उन्होंने उठकर कहा, चलो सिंगी, चलो गंगा तट पर चलो। हम दोनों चल पड़े। मार्ग में स्वामी जी ने कालिदास के मेघदूत के कई श्लोक सुनाए, पर विचारधारा का अंततः प्रवाह एक ही था, भारत का हित। वे बोले,
3: सिंगी, तुम एक काम कर सकते हो, क्या कुछ दिनों तक हमारे युवकों के विवाह बंद नहीं कर सकते?
2: महाराज, ये कैसे होगा जब सभी बाबू विवाहों में होने वाले व्यय को कम करने का प्रयत्न कर रहे हैं।
3: तुम इसकी चिंता ना करो, काल का प्रवाह कौन बदल सकता है। इस प्रकार के सब आंदोलन व्यर्थ हैं। कुछ दिन शोरगुल रहेगा, फिर सब शांत हो जाएंगे। विवाह शादियां जितनी ज्यादा खर्चीली होती जाएंगी उतना ही देश का भला होगा। परीक्षाएं पास करने और फिर विवाह करने के लिए कितनी भगदड़ कितनी दौड़ धूप हो रही है। ऐसा लगता है कोई कुंवारा नहीं बचेगा। पर अगले वर्ष फिर वही हाल होता है।
2: फिर क्या करना चाहिए?
3: यदि मुझे कुछ अविवाहित ग्रेजुएट मिल जाएं, तो मैं उन्हें जापान भेजकर उन्हें यांत्रिक शिक्षा दिलाने का प्रबंध कर दूंगा, जिससे कि जब वे स्वदेश लौटें, तो अपने ज्ञान से भारत का कुछ हित कर सकें।
2: महाराज, इंग्लैंड की अपेक्षा जापान जाना क्या हमारे लिए ज्यादा लाभदायक होगा?
3: अवश्य। मेरे मत में हमारे शिक्षित धनी व्यक्ति यदि जापान जाएं और वहां का हालचाल देखें तो उनकी आंखें खुल जाएंगी।
2: वो कैसे?
3: जापान में तुम पाओगे कि उन्होंने दूसरों से जो सीखा है उसे आत्मसात कर अपना बना लिया है, पचा लिया है। हमने जो विदेशियों से सीखा उसे हम पचा नहीं पाए। उन्होंने यूरोप वासियों की हर चीज ग्रहण की, पर वे जापानी ही बने रहे, यूरोपीय नहीं बने। पर हमारे यहाँ तो पाश्चात्य ढंग से रहने का एक संक्रामक रोग पैदा हो गया है।
2: महाराज, मैंने कुछ जापानी चित्रकला के नमूने देखे हैं। उनकी कला की प्रशंसा किए बिना नहीं रहा जाता, और स्फूर्ति का स्रोत उनकी अपनी संस्कृति है, उसमें नकल उनकी प्रेरणा नहीं है।
3: बिल्कुल ठीक है। आज जापान एक महान राष्ट्र है और इसका कारण है उनकी कला। देखते नहीं, हमारे समान वे भी एशियावासी हैं, और यद्यपि आज हम अपना सर्वस्व खो बैठे हैं, फिर भी जो कुछ हमारे पास अवशेष है वही विश्व को चकित कर देने के लिए काफी है। एशिया की आत्मा ही कलात्मक है। एशिया का हृदय चिरकाल से कला की क्रीड़ा स्थली रहा है। एशियावासी कला शून्य वस्तु का कभी उपयोग ही नहीं करते, उसका उपयोग ही हर वस्तु कला से शोभित है। तुम नहीं जानते, हमारे यहाँ कला हमारे धार्मिक जीवन का एक अंग बन गई है। हमारे देश में कई युवती तीज त्योहार पर्व उत्सव के दिन यदि घर के आंगन और दीवार पर सुंदर चित्र बनाना जानती है तो उसकी कितनी प्रशंसा होती है। श्री राम कृष्ण स्वयं कितने महान कलाकार थे।
0: अंग्रेजों की कला भी अच्छी है, नहीं क्या?
3: तुम कितने अनाड़ी हो, पर तुम्हें दोष देने से क्या लाभ, जबकि सर्व साधारण की यही धारणा है। अफसोस, आज देश की यही दशा हो गई है। आज हम अपने सोने को पीतल समझ बैठे हैं और दूसरों का पीतल हमारे लिए सोना बन गया है। वो हमारी आधुनिक शिक्षा का जादू है। देखो, यूरोपीय जब एशिया के संपर्क में आए हैं तब से कहीं उन्होंने अपने जीवन को कलामय बनाने का प्रयत्न शुरू किया।
0: महाराज, यदि कोई आपकी बात सुनेंगे तो कहेंगे कि आप निराशावादी हो रहे हैं।
3: स्वाभाविक है, जो जड़ हो गए हैं वे और क्या सोच सकेंगे। उफ़, कोई मेरी आंखों से देखे, उनकी इमारतें देखो, वे कितनी साधारण कितनी अर्थशून्य हैं। इन विशाल सरकारी इमारतों को देखो, क्या उनका बाह्य स्वरूप देखकर कुछ अनुमान लगाया जा सकता है कि ये किस भाव किस आदर्श की प्रतीक हैं? नहीं, क्योंकि वे सब प्रतीक शून्य हैं। पाश्चात्यों का पहनावा ही लो, उनके तंग कोट सीधे पैंट शरीर पर इतने तंग और चिपके होते हैं कि बिल्कुल भद्दे मालूम देते हैं। नहीं, पर हम लोग पता नहीं उसमें क्या सुंदरता देखते हैं। जिसे देखो कोट पतलून ठांसे है। इस देश का भ्रमण तो करो, और यदि देखने के लिए आंखें हैं समझने के लिए बुद्धि है तो देखो इस देश की प्राचीन इमारतों को देखो। उनके देखने भर से ही मालूम होता है कितनी कला भरी है। उनका जलपात्र है कांच का गिलास, पर हमारा है धातु निर्मित लोटा। दोनों में कौन कलापूर्ण है? तुमने देहातों में किसानों के घर देखे?
0: जी हाँ, अवश्य।
3: उनमें क्या देखा?
0: महाराज, वे अत्यंत साफ सुथरे होते हैं और रोज उनका आंगन लीपा पोता जाता है।
3: क्या तुमने उनके अन्न भंडार देखे? उनमें कितनी कला है। उनकी मिट्टी की दीवारों पर भी कितने प्रकार के चित्र बने होते हैं। और जरा पाश्चात्य देशों में जाकर देखो निम्न वर्ग के लोग किस तरह रहते हैं, तब तुम्हें मालूम होगा कि दोनों में कितना महान अंतर है। उनका आदर्श है उपयोगिता, हमारा है कला। पश्चिम का निवासी हर एक वस्तु में उपयोगिता ढूंढता है और हम कला। पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त कर हमने कला पूर्ण लोटा तो फेंक दिया और उसके स्थान पर घरों में विदेशी इनामेल के गिलास विराजमान हो गए हैं। हमने इस उपयोगितावाद के आदर्श को इस सीमा तक अपना लिया है कि अब वो हास्यास्पद लगने लगा है। अब हमें उपयोगिता और कला के समन्वय की आवश्यकता है। जापान ये समन्वय लाने में जल्दी सफल हो गया और उसने अभूतपूर्व प्रगति कर ली। अब जापान पाश्चात्य देशों को भी सिखाने की क्षमता रखता है।
0: विश्व में किस राष्ट्र की वेशभूषा सर्वोत्तम है?
3: आर्यों की। यूरोप वासी भी इसे स्वीकार करते हैं। आर्यों के परिधान की पटलियां किस कलापूर्ण ढंग से लटकती हैं। अधिकांश देशों के राजवस्त्र आर्यों के वेशभूषा की ही नकल हैं। उनमें भी आर्यों के समान पटलियां बनाकर लटकाने का यत्न किया जाता है और इन राजवस्त्रों में व उन देशों के सर्वसाधारण की वेशभूषा में बहुत अंतर है। सिंगी, तुम भी ये भद्दे यूरोपीय कमीज पहनना छोड़ दो।
0: क्यों महाराज?
3: इसलिए कि पाश्चात्य लोग इसका केवल अंतर वस्त्र के रूप में ही प्रयोग करते हैं। वे उसे सदैव कोट और जैकेट के नीचे ही पहनते हैं, केवल कमीज कभी नहीं पहनते। पर हम भारतीय कितनी भूल कर रहे हैं, जिसे देखो कोट पतलून कमीज धारण करने में गर्व का अनुभव करता है, जैसे वेशभूषा के संबंध में कोई नियम ही ना हो, कोई विधि परिपाटी या प्रणाली ही ना हो, और जिसकी जो मर्जी आए और जो दिखे वही कपड़े पहन ले। हमारे यहाँ किसी और का छुआ अन्न यदि कोई खा लेता है तो उसे जात से बाहर कर देते हैं। यदि यही नियम विदेशी वेशभूषा धारण करने पे लगवाया जाए तो कितना अच्छा होगा। अपनी प्राचीन भारतीय वेशभूषा क्यों धारण नहीं की जाती? इस यूरोपीय कोट कमीज के पहनने में कौन सी शान है, क्या अर्थ है?
0: अब वर्षा होने लगी और भोजन बेला सूचक घंटी भी बज गई थी।
2: इसलिए सबके साथ हम भी प्रसाद ग्रहण करने गए। भोजन करते करते वे बोले,
3: भोजन ऐसा रहे कि मात्रा में कम पर पुष्टिकारक हो। पेट को ढेर सारे भात से ठूंस देना ही आलस्य का मूल है। जापानियों को देखो, वे दिन में 2-3 बार दाल के साथ भात खाते हैं। वे कई बार भोजन करते हैं पर हर समय खाते थोड़ा थोड़ा ही है। उसमें जो अच्छे घर के होते हैं वे प्रतिदिन मांस भी खाते हैं, पर हम दिन में 2 बार गले तक पेट को भात से भर लेते हैं और हमारी सारी शक्ति उस भात को पचाने में ही समाप्त हो जाती है।
2: क्या हम गरीब भारतीयों के लिए मांस मछली खाना संभव है?
3: क्यों नहीं, थोड़ा थोड़ा तो खा ही सकते हैं। एक दिन में पाव भर काफी है। हमारा सबसे बड़ा दोष है आलस, और यही हमारी गुलामी का कारण है। समझो किसी की नौकरी छूट गई या घर में जो 2-3 आदमी कमाने वाले थे उसमें से कोई मर गया तो लोग क्या करते हैं? वे या तो बच्चों का दूध बंद कर देते हैं या एक बार खाते हैं, कभी शाम को भात ही खाकर सो जाते हैं।
2: पर ऐसी परिस्थिति में और कर भी क्या सकते हैं?
3: पर वे ज्यादा मेहनत कर थोड़ा सा और कमा लेने का प्रयत्न क्यों नहीं करते, जिससे कम से कम 2 बार भोजन तो मिल ही जाए। पर नहीं, मेहनत कौन करे, उन्हें अड्डों पर जाकर गप्पे लगाने और समय नष्ट करने की आदत जो पड़ गई है। अगर वे जाने कि वे समय का कितना नाश और दुरुपयोग कर रही हैं, तो इस देश की काया पलट हो जाए।
1: आपने अब तक की बातचीत से स्वामी जी को विभिन्न विषयों पर बोलते सुना। इसी तरह की सारगर्भित बातचीत का अंश हम आपको आगे भी सुनाते रहेंगे। इन वार्तालापों से स्वामी जी के बहुमुखी व्यक्तित्व का ज्ञान हमें होता है। उनके सुस्पष्ट विचार हमेशा मौलिक हुआ करते थे। लोग शायद उनके सभी विचारों से सहमत ना हों, परंतु ये विचारोत्तेजक उद्गार हमें उन विषयों पर सोचने के लिए मजबूर करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: अभी आप सुन रहे थे रेडियो रूपक युग प्रवर्तक विवेकानंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर।
1: साहस की बुलंद शुरुआत से लेकर आसमान की असीम ऊंचाइयों तक 8 अक्टूबर को पूरा देश मना रहा है भारतीय वायुसेना का 94वां वायुसेना दिवस।
2: वर्ष 1947-48, 1965 और 1971 के ऐतिहासिक युद्धों से लेकर ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन सफेद सागर तक विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायु सेना ने हर पल कर दिखाया है अदम्य पराक्रम, अत्याधुनिक तकनीक और सर्वोच्च बलिदान।
1: तो मध्य प्रदेश के जाबाज युवाओं, क्या आप तैयार हैं? बादलों को चीरकर देश का मान बढ़ाने के लिए तो बनिए अग्निवीर वायु, हासिल कीजिए वो मुकाम जो जिंदगी भर की पहचान बन जाए और गर्व से कीजिए भारत माँ की सेवा।
2: भर्ती और पात्रता से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए
1: 15 एयरमैन चयन केंद्र के इंस्टाग्राम पेज 15ASC_भोपाल और आधिकारिक वेबसाइट IAFRecruitment.edcil.co.in पर विजिट करें।
2: नभस प्रशम दीप्तम।
3: जय हिंद।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। मध्यान्ह प्रसारण सेवा लेकर मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो मित्र भारती। दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक रहेगा आपका और हमारा साथ।

0: देश है तो हम हैं। राष्ट्रवंदना के सुमधुर स्वर सुनिए कार्यक्रम तराने आजादी में।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। आइए सुनिए देशभक्ति गीत।

और आइए श्रोताओ, देशभक्ति गीतों के इस कार्यक्रम में अब जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं उसके बोल हैं, क्या समझते हो कि हम खेल का डर करते हैं, हम जो करते हैं उसे होके निडर करते हैं।

और आइए अब हम आपको सुनवाते हैं ये देशभक्ति कव्वाली। ना सुना जाएगा हमसे ये फसाना हरगिज, हंसते हंसते हमें जालिम, ना रुलाना हरगिज।

और लीजिए अब सुनिए ये देशभक्ति रचना। आओ वीरो समर क्षेत्र में नवजीवन सरसाएगा, शीघ्र भारतीय हुंकारों से लंदन भी थर्राएगा।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है। लीजिए सुनिए तेरी अमृत आराधना, भारत न खो जाए कहीं। सौ सौ युगों की साधना, भारत न खो जाए कहीं।

हम अहिंसा के पुजारी हैं मगर बुजदिल नहीं, कायरों से आज तक ये काम है शामिल नहीं, आज मिटने को न हो जो वो दिल नहीं। हम अहिंसा के पुजारी हैं मगर बुजदिल नहीं। आइए सुनते हैं इसी गीत को।

देश की माटी देश का जल, हवा देश की देश के फल। सरस बने प्रभु सरस बने, सरस बने प्रभु सरस बने। आइए सुनते हैं गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर की इस रचना को।

कहते हैं अलविदा इस जहान को, जाकर खुदा के घर फिर आया न जाएगा। कहते हैं अलविदा इस जहान को।

0: आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत प्रमिला के साथ। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम तराने आजादी के, राष्ट्रभक्ति के सुमधुर स्वर। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर।
2: साहस की बुलंद शुरुआत से लेकर आसमान की असीम ऊंचाइयों तक 8 अक्टूबर को पूरा देश मना रहा है भारतीय वायुसेना का 94वां वायुसेना दिवस।
3: वर्ष 1947-48, 1965 और 1971 के ऐतिहासिक युद्धों से लेकर ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन सफेद सागर तक विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायु सेना ने हर पल कर दिखाया है अदम्य पराक्रम, अत्याधुनिक तकनीक और सर्वोच्च बलिदान।
2: तो मध्य प्रदेश के जाबाज युवाओं, क्या आप तैयार हैं? बादलों को चीरकर देश का मान बढ़ाने के लिए तो बनिए अग्निवीर वायु, हासिल कीजिए वो मुकाम जो जिंदगी भर की पहचान बन जाए और गर्व से कीजिए भारत माँ की सेवा।
3: भर्ती और पात्रता से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए
2: 15 एयरमैन चयन केंद्र के इंस्टाग्राम पेज 15AAC_भोपाल और आधिकारिक वेबसाइट IAFRecruitment.edcil.co.in पर विजिट करें।
3: नभास प्रशम दीप्तम।
4: जय हिंद।
1: मानव जाति की सभ्यता और संस्कृति परिलक्षित होती है उसके गीत संगीत, रहन सहन और खान पान पर। लोक संस्कृति पर आधारित कार्यक्रम भारत भारती प्रस्तुत है आपके लिए।

नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आजाद हिंद है और कार्यक्रम है भारत भारती। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कबीर गायन। कलाकार हैं प्रेम सिंह देपाल पुरिया और उनके साथी।

जी पंडित और मसान जी दोनों को सूझत नाई और अन को करे।

नमस्कार, मैं हूं चंदन दास, गज़ल गायक। 90.8 मेगा हॉर्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद पर। मैं हूँ कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। रेडियो आजाद हिंद के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: ये मेरा इंडिया।
0: देश के अमर शहीदों को मेरा नमन है जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जय हिंद। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

नमस्कार, आदाब। मैं हूं गुलाम अब्बास खान, क्लासिकल और गजल गायक, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। देश को आजादी दिलाने वाले हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मेरा शत शत नमन है। मेरे मुल्क भारत माता को अंग्रेजों की चंगुल से आजाद कराया। हमारा मुल्क सलामत रहे और इसकी सलामती के लिए जो सबसे बड़ा योगदान दे रहे हैं वो हमारे फौजी हैं। मैं अपने तमाम फौजी भाइयों की सलामती के लिए दुआ करता हूँ। अल्लाह ताला हमारा मुल्क सलामत रहे, हमारे मुल्क के फौजी सलामत रहें और इस मुल्क में चैन व अमन कायम रहे। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

हमें नाज है देश के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत माता के सभी महान सच्चे सपूतों को मेरा शत शत प्रणाम।

0: कार्यक्रम भारत भारती में अभी आप आनंद ले रहे थे कबीर गायन का। कलाकार थे प्रेम सिंह देपालपुरिया और उनके साथी। अगले कार्यक्रम में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लोक संस्कृति लोक धुनों पर आधारित हमारा कार्यक्रम भारत भारती। तो सुनते रहिए हमारे साथ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।

मैं हूं पिनाज मसानी और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको, दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको।

द ग्रेट ट्रिगोनोमेट्रिकल सर्वे GTS भारत को मापने का वैज्ञानिक पैनोप्टिकॉन। क्या आप जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को पहली बार किसी पर्वतारोही ने नहीं बल्कि कागजों और जटिल गणितीय गणनाओं के माध्यम से एक भारतीय गणितज्ञ ने मापा था। द ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे केवल एक मानचित्रण अभ्यास नहीं था, ये एक वैज्ञानिक पैनोप्टिकॉन था जिसे ब्रिटिश साम्राज्य को पूर्ण अधिकार के साथ भारत को देखने और जानने की शक्ति देने के लिए डिजाइन किया गया था। इस विशाल उपक्रम का उद्देश्य भारत के रहस्यमयी और धार्मिक स्थान को एक तर्कसंगत मानचित्रित शाही इकाई में बदलना था। इसकी शुरुआत 1799 में विलियम लेबेंटन के नेतृत्व में हुई। उन्होंने त्रिकोणीयकरण की नई तकनीक का उपयोग किया जिसमें दक्षिण प्रायद्वीप में 100 फीट लंबी स्टील की जंजीरों का उपयोग करके बड़ी सावधानी से दूरियों को मापा गया। महत्वाकांक्षा चौंका देने वाली थी। पृथ्वी की सतह के एक बड़े हिस्से को मापना ताकि ग्लोब के सटीक आयामों को निर्धारित किया जा सके। लेबेंटन के उत्तराधिकारी जॉर्ज एवरेस्ट के समय तक ये मिशन कन्याकुमारी से हिमालय की तलहटी तक 1500 मील तक फैले एक महान मध्यान चाप के माप में बदल गया था। सर्वेक्षण की वास्तविकता पर्यावरण के विरुद्ध एक क्रूर लड़ाई थी। सर्वेक्षण दलों को अभेद जंगलों से रास्ता काटना पड़ता था, जहां बाघों और अन्य वन्य जंतुओं का सामना करना पड़ता था। वहीं मलेरिया ने इस अभियान पर निकले दलों को तबाह कर दिया और सटीकता की इस खोज को घातक बना दिया। तकनीकी चुनौतियां भी कम नहीं थी। चिलचिलाती भारतीय धूप में मानक मापने वाले उपकरण तापीय विस्तार के शिकार हो जाते थे। इससे निपटने के लिए एवरेस्ट ने कॉल्बी के क्षतिपूर्ति बार उपयोग में लाना शुरू किए, जो तापमान के उतार चढ़ाव के बावजूद एक समान लंबाई बनाए रखते थे। ये ब्रिटिश अभियान पूरी तरह से भारतीय कौशल पर निर्भर था। 1831 में सर्वेक्षण में शामिल हुए राधानाथ सिकदर त्रिकोणीयकरण के लिए आवश्यक जटिल गणितीय गणनाओं में महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु थे। 1860 के बाद तिब्बत की निषिद्ध भूमि में सर्वेक्षण को गुप्त रूप से भारतीय पंडितों जैसे नैन सिंह रावत द्वारा ले जाया गया, जिन्होंने उन क्षेत्रों का मानचित्रण किया जहाँ ब्रिटिश सर्वेक्षक नहीं जा सकते थे। स्थानीय विशेषज्ञता पर इस निर्भरता के बावजूद सर्वेक्षण ने एक सख्त नस्लीय पदानुक्रम बनाए रखा। भारतीयों को अधीनस्थ पदों तक सीमित रखा गया ताकि इस धारणा को बल मिले कि वे ब्रिटिश वैज्ञानिक अनुसंधान करते थे और भारतीय केवल उनके सहायक मात्र थे। अंततः सर्वेक्षण ने एक विविध और अदम्य परिदृश्य को एक व्यवस्थित तर्कसंगत शाही स्थान में बदलने का प्रयास किया। हालांकि विद्वानों ने बाद में तर्क दिया कि ये समग्र दृष्टि एक अनुभवजन्य भ्रम थी, क्योंकि एक पूर्ण सर्वेक्षण कभी भी संभव नहीं था। फिर भी ये दशकों तक 19वीं सदी की सभ्यता और उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश प्रभुत्व के प्रतीक के रूप में खड़ा रहा।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून इन किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुनो कहानी।
1: सुनो कहानी, कहानी जो बचपन में नानी दादी सुनाया करती थी, कहानी जो हमें स्वप्न लोक और काल्पनिक लोक में ले जाया करती हैं, कहानी जिनको सुनते सुनते हम बड़े हो गए, कहानी जो मन को छू लेती हैं, दिल में उतर जाती हैं, जीवन के अनछुए मार्मिक और ज्ञानवर्धक पहलुओं पर प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम सुनो कहानी।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून इन किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो मित्र भारती। कार्यक्रम लेकर सुनो कहानी। आज हम कहानी सुनाएंगे आपको सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कहानी दृष्टिकोण।

निर्मला विश्व प्रेम की उपासिका थी। संसार में सबके लिए उसके भाव समान थे। उसके हृदय में अपने पराए का कोई भेदभाव नहीं था। स्वभाव से वो मिलनसार थी, सरल, हसमुख और नेक थी। साधारण पढ़ी लिखी थी, लेकिन अंग्रेजी में मैट्रिक पास थी। हिंदी का भी उसे बहुत अच्छा ज्ञान था। साहित्य के संसार में उसका आदर था। काव्य कुंज की वो एक मनोहारिणी कोकिला थी और निर्मला का जीवन नाम की ही तरह निर्मल भी था। दूसरों के आचरण को वो सदा ही भलाई की नजर से देखती थी। यदि कोई उसके साथ बुराई भी करता तो निर्मला यही सोचती कि उसका उद्देश्य बुरा नहीं रहा होगा, भूल से उसने ऐसा किया होगा। पतितों के लिए भी उसका हृदय उदार था, क्षमा का भंडार थी वो। यदि वो किसी को कोई अनुचित काम करते देखती तो भी वो उसका अपमान या तिरस्कार नहीं करती थी। बदले में मधुरतम व्यवहार से वो उसे समझाने का प्रयास करती थी। कठोर वचन कहकर किसी का दिल दुखाना निर्मला ने नहीं सीखा था, किंतु इसके साथ ही साथ जितनी वो नम्र, सुशील और दयालु थी, उतनी ही वो आत्माभिमानी, दृढ़ निश्चयी और न्यायप्रिय भी थी। नौकर चाकरों के प्रति भी निर्मला का व्यवहार बहुत दयापूर्ण था। बस ऐसी ही एक दिन की बात है, उसके घर की एक कहारिन ने तेल चुराकर एक पत्थर की आड़ में रख दिया। उसकी नियत ये थी कि घर जाते समय बाहर के बाहर चुपचाप लेती जाएगी, लेकिन किसी कार्य से रमाकांत जी उसी समय वहां पहुंच गए। तेल के कटोरे पर उनकी नजर पड़ गई। पत्नी को पुकार कर पूछा, निर्मला, यहाँ ये तेल किसने रखा है? निर्मला ने पास ही खड़ी कहारिन की ओर देखा। उसके चेहरे की रंगत स्पष्ट बता रही थी कि ये काम उसी का है, किंतु निर्मला ने पति को जवाब दे दिया, कुछ नहीं, मैंने ही रख दिया होगा, उठाने की मुझे याद नहीं। पति के जाने के बाद निर्मला ने कटोरे में जितना तेल था उतना ही और डालकर कहारिन को दे दिया और प्यार से बोली, सुनो, अब जब भी जिस चीज की जरूरत पड़े मांग लिया करो। क्या मैंने कभी इनकार किया है देने से? जो प्रभाव कदाचित डांट फटकार से भी ना पड़ता, वो निर्मला के मधुर और दयापूर्ण बर्ताव से पड़ा। बाबू रमाकांत जी का स्वभाव लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत था। थे तो वे डबल एमए, एक कॉलेज के प्रोफेसर थे, साहित्य सेवी और देशभक्त भी थे, उज्जवल चरित्र के नेक और उदार सज्जन थे, पर फिर भी पति पत्नी के स्वभाव में बहुत भिन्नता थी। कोई चाहे सच्चे हृदय से भी उनकी भलाई करने आता हो, वो उसमें कुछ ना कुछ बुराई देख लेते थे। वो सोचते कि इसकी तह में अवश्य कुछ ना कुछ भेद है, कुछ तो स्वार्थ होगा, तभी तो वो भल मनसाहत दिखाने आया है, नहीं तो मेरे पास आकर इसे ऐसी बात करने की आवश्यकता क्यों। पतितों को वो बड़ी घृणा की दृष्टि से देखते, उनकी हंसी उड़ाते। गिरने वालों को एक धक्का देकर वो गिरा दे भले, किंतु बाँह पकड़कर ऊपर उठाने वाले वो कभी नहीं थे। वो अपना हाथ अपवित्र नहीं कर सकते थे। वो पतितों की छाया से भी दूर रहते थे। अपने निकट संबंधियों की भलाई करने में यदि दूसरे की कुछ हानि भी हो जाए तो उन्हें इसमें कोई अफसोस नहीं था। वे सज्जन होते हुए भी सज्जनता के कायल नहीं थे। कोई उनके साथ बुराई करता तो उसके साथ वो दूनी बुराई करने में संकोच नहीं करते। लेकिन पति पत्नी दोनों को अगर अलग खड़ा किया जाए और अवगुण ढूंढा जाए तो तिल के बराबर भी धब्बा नहीं था। बाह जगत में उनकी तरह सफल जोड़ा, उनके जैसे सुखी जीवन कम देखने को मिलता था। दूसरों को उनके सौभाग्य पर ईर्ष्या होती थी। उनमें आपस में कभी भी किसी प्रकार का झगड़ा या अप्रिय व्यवहार नहीं हुआ। फिर भी दोनों में पद पद पर मतभेद होने के कारण उनका सुखी जीवन नहीं था। निर्मला दोनों समय घर के कामकाज के बाद मीलों घूमने निकल जाती थी। इससे शुद्ध वायु के साथ साथ कुछ समय का एकांत उसे मिलता था। कोई नई बात सोचने या लिखने के लिए वो इसे सहायक मानती थी, किंतु निर्मला की सास को अपनी बहू की ये हवाखोरी पसंद नहीं थी। उन्हें तो बस ये संदेह था कि ये घूमने के बहाने कहाँ जाती है, ना जाने किससे मिलती है, क्या बातें करती है। वो हमेशा ये देखा करती थी कि निर्मला किधर से गई और कहाँ से आई। कई बार निर्मला की सास ने उनसे पूछा भी, तुम गई तो इधर सी थी और इधर से लौट रही हो।
निर्मला इसका लेकिन कोई जवाब न देती, बस हंस कर रह जाती। किंतु निर्मला की सास बहू की इस चुप्पी का दूसरा अर्थ लगाती। उन्हें निर्मला के चरित्र पर संदेह होता था, किंतु इन मामलों में जब वो स्वयं रमाकांत को भी उदासीन पाती तो मन महसूस कर रह जाती। रमाकांत के सामने भी निर्मला क्योंकि निकल जाती थी और घंटों बाद लौटती थी, अन्य पुरुषों के सामने भी वो खुलकर बातें करती थी, परंतु पति रमाकांत को इसमें कोई परहेज नहीं था। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उनकी पत्नी किससे क्या बात करती है। किंतु जब सासू माँ के बर्दाश्त के बाहर हो जाता तो रमाकांत से कुछ ना कुछ कह बैठती, तो वो यही कहते, इसमें क्या बुराई है, और बात को टाल देते थे। उनकी समझ में रमाकांत इस प्रकार माँ की बात ना मानने के लिए ही पत्नी को शह देते थे। इसलिए वो प्रत्यक्ष रूप से तो निर्मला को कुछ नहीं कहती थी, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो बहुत अपने दिल का गुबार निकाल लेती थी। निर्मला सब सुनती समझती, किंतु जानकर भी अनजान बन जाती। वो अपना काम नियम पूर्वक करती, इन बातों का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कभी कभी उसे कष्ट तो होता था, किंतु वो प्रकट नहीं करती थी। वो सदा प्रसन्न रहती, यहाँ तक कि उसके चेहरे पर शिकन तक नहीं आती थी। वो स्वयं किसी की बुराई नहीं करना चाहती थी, उसके विरुद्ध चाहे कोई कुछ भी करता रहे। एक दिन जब रमाकांत कॉलेज से लौटे तो उन्होंने कहा, सुनो निर्मला, पता है आज क्या हुआ? आज एक बड़ा विचित्र किस्सा हुआ, निर्मला ने उत्सुकता से पूछा। ऐसा क्या हुआ? घृणा का भाव प्रकट करते हुए रमाकांत जी बोले, क्या हुआ? अरे यही कि वो तुम्हारी बिट्ठन है ना, उसको पता है गर्भ है और 4-5 माह का है। बात खुलते ही वो घर से निकाल दी गई है। मायके में उसे तो कोई जगह मिलेगी नहीं, सड़क पर बैठी रो रही है, पता है? बिट्ठन बाल विधवा थी, जन्म की दुखिया थी, इसलिए निर्मला सदा उससे प्रेम और आदर का व्यवहार करती थी। बिट्ठन की करुणाजनक अवस्था से निर्मला कातर हो उठी। उसने रमाकांत जी से पूछा, फिर अब उसका क्या होगा? अब वो कहाँ जाएगी? रमाकांत जी ने उपेक्षा से कहा, कहाँ जाएगी, मैं क्या जानू, जैसा किया है वैसा भरेगी। निर्मला के मुंह से ठंडी आह निकल गई। कुछ देर बाद ना जाने क्या सोचकर वो दृढ़ स्वर में बोली, तो मैं ही जाती हूँ और उसे लेकर आती हूँ। जब तक कोई दूसरा प्रबंध ना हो जाएगा वो मेरे साथ यहीं रहेगी। रमाकांत जी तो घबरा गए। अरे नहीं नहीं, ऐसी बेवकूफी मत करना, उसे अपने घर लाकर क्या बदनामी करवाओगी? तुम्हें तो कुछ नहीं कहेगा कोई, सब लोग मुझे बदनाम करेंगे, तुम पागल हो गई हो क्या? निर्मला ने दया भाव से कहा, अरे तो इतनी छोटी छोटी सी बातों से क्यों डरते हो? परमात्मा तो हमारे हृदय को पहचानेगा ना, मुझे तो उसकी अवस्था पर बड़ी दया आती है। तुम कहो तो मैं अभी जाकर उसे ले लाऊं ना। रमाकांत जी के कुछ बोलने के पहले ही अब उनकी माँ बोल उठी और बहुत अपशब्द कहे, ऐसी औरतों का तो इसे बड़ा दर्द है, देखो तो जरा घर में बुलाने जा रही है, जाए जहां जाना हो, पर याद रखना, खबरदार जो उसे तुमने इस घर में बुलाया। मैं अभी से कह देती हूँ बहू, अगर उसको तुमने घर में लाया या उसका पैर रखा तो अच्छा नहीं होगा। तब निर्मला ने धीरे से बोला, माँ जी अगर वो आ ही गई तो क्या करूंगी? अब तो अम्मा जी क्रोध से तिलमिला उठी, तड़प कर बोली, कैसे आएगी, मार के लकड़ी से पैर ना तोड़ दूंगी? तू तो रामू के सिर चढ़ी है, बढ़ चढ़ कर बोल रही है, मैं रामू से नहीं डरती। और सुन, तेरा और तेरे साथ रामू का भी मिजाज ठंडा कर दूंगी। ऐसी गलत औरतों की परछाई यहाँ नहीं होना चाहिए, बड़ी आई उसे घर बुलाने जा रही है। अब निर्मला ने भी कहा, पर अम्मा जी यदि वो आई तो मैं दूसरों की तरह उसे दरवाजे से नहीं दुत्कार सकती। मैं तो ये कहती नहीं कि उसे सदा अपने घर में रखो, पर हाँ भाई जब तक उसका कोई प्रबंध ना हो जाए, माँ जी तब तक इस घर में पड़ी रहेगी कोने में, क्या हानि है, और कौन वो हमारे चूल्हे चौके में जाएगी, है तो स्त्री ही ना, अब भूल किससे नहीं होती है। निर्मला की ये बात सुनकर अम्मा जी तो और क्रोध में आ गईं
और जोर से बोली, सुनती नहीं हो? एक बार कह दिया ना कि ऐसी औरतों को मैं घर में नहीं घुसने दूंगी, और तुम हो कि जुबान चलाए जा रही हो। वो तो अपनी कोई है नहीं, कोई अपनी सगी भी ऐसा करती तो भी मैं निकाल देती। अब बार बार पूछ करना, तुम मेरे गुस्से को मत बढ़ाओ, सुन लो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। निर्मला अभी भी नम्र थी, उसने बड़ी नम्रता से कहा, अम्मा जी पर तुम्हारा क्या बिगाड़ेगी वो, मेरे कमरे में पड़ी रहेगी। आप चाहो तो ऐसा प्रबंध कर दूंगी कि आपको सूरत नहीं देखने मिलेगी उसकी। और फिर अभी से उस पर इतनी बहस क्यों कर रहे हो? वो तो तब की बात है ना जब वो हमसे आश्रय मांगने आएगी। आप क्यों बहस कर रही हैं? अम्मा जी का क्रोध तो बढ़ता ही जा रहा था। उन्होंने तरीके से लताड़ लगाई निर्मला को। अच्छा, तो वो तेरे कमरे में रहेगी और मुझे उसकी सूरत नहीं दिखेगी, तो दूसरी बात हो जाएगी। वाह बहू वाह, कैसी उलटफेर की बात करती हो। तुम्हें अपने पढ़ने लिखने का घमंड हो गया है ना, उस घमंड में मत भूलो। ऐसी पढ़ी लिखी लड़कियां ठीक नहीं होती। धर्म कर्म से तो सदा 100 गज दूर है, और ऐसी औरतों पर तुम्हें दया आ रही है, धर्म कमाने चली हो। वाह क्या बात है, जिसे मोहल्ले भर में किसी ने अपने घर में नहीं रखा, तुम उसे अपने घर में रखोगी। सही कहा, तुम ही तो हो दुनिया की अनोखी, सब दूसरों को दिखाने के लिए कि बड़ा दयावंती हो तुम। जो भीतर का हाल है ना, जाने जाने कैसा है तुम्हारा। घर वालों को तो काटने दौड़ोगी और बाहर वालों को गले लगाती हो। निर्मला अब तक जो शांत थी, अब थोड़ा तेज हो गई और उसने भी जोर से कहा, तो अम्मा जी आप मुझे क्यों खरी खोटी सुना रही हैं? बीच ही में निर्मला को डांट कर चुप करते हुए रमाकांत जी बोल उठे, तो तुम चुप नहीं रहोगी निर्मला? कब से सुन रहा हूं तुम्हारी जुबान कैंची की तरह चल रही है। तुम्हारे हृदय में बिट्ठन के लिए बड़ी दया है और तुम उसके लिए मरी जा रही हो, तो जाओ उसे लेकर किसी धर्मशाला में रहो, लेकिन सुन लो, मेरे घर में उसके लिए कोई जगह नहीं। शायद निर्मला को पहली बार क्रोध आया था, उसने भी उसी प्रकार तेज स्वर में कहा, क्यों नहीं, तो क्या इस घर में मेरा इतना भी अधिकार नहीं कि मैं चाहूं तो किसी को एक दिन के लिए यहां ठहरा सकूं? अभी उस दिन आप लोगों ने बाबू राधेलाल जी को इतना आदर सम्मान दिया, क्यों, क्या उनका चरित्र कोई नहीं जानता कि उनके घर में एक गणिका रहती है और वो भी किसी दूसरे समाज की? उसके हाथ का खाते पीते हो, उसका आप आदर सत्कार करते हो, फिर बिचारी बिठन ने क्या किया है, इससे ज्यादा तो अपराध नहीं है ना उसका। अब तो अम्मा जी भी गरज उठी, अब उनका साहस बढ़ गया, क्योंकि अभी अभी ही पति रमाकांत जी ने निर्मला को डांटा है, तो वो भी चिल्ला उठी, चुप नहीं रही ना तुम निर्मला, तो जीप पकड़ कर खींच लूंगी, बड़ी बिठन वाली बनी हो। और तुम राधेलाल की बात कर रही हो ना, जो वो तो फूल का भौरा है, आदमी की जात है, उसे सब शोभा देता है, एक नहीं 20 करे, पर औरत आदमी की बराबरी कैसे कर सकती है? और हाँ ये याद रखना, औरत औरत होती है और आदमी को सब कुछ करने का हक है। निर्मला ने सतेज और दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, बस अम्मा जी मैं अब ज्यादा नहीं सुनूंगी, मैं बिठन सरी की हूं या नहीं ये अलग बात है, वो निराश्रिता है, कष्ट में है, मनुष्यता के नाते मैं उसे अगर आश्रय देना अपना धर्म समझती हूँ तो क्या गलत है, और मैं दूंगी उसे आश्रय। अब तो रमाकांत जी को भी गुस्सा आ गया, वो कमरे से निकल कर आंगन में आ गए और आग्नेय नेत्रों से निर्मला की ओर देखते हुए बोले, क्या कहा तुमने, तुम बिट्ठन को घर में आश्रय दोगी? निर्मला भी अब दृढ़ थी, जी हाँ, जितना इस घर में आपका अधिकार है उतना मेरा भी है। यदि आप अपने किसी चरित्रहीन पुरुष मित्र को आदर और सम्मान के साथ ठहरा सकते हैं, तो मैं किसी असहाय अबला को आश्रय नहीं दे सकती, ये कैसा भेदभाव है? रमाकांत और निर्मला और नजदीक आ गए और कठोर स्वर में बोले, मेरी इच्छा के विरुद्ध तुम यहां उसे आश्रय दोगी, तुम्हारी इतनी हिम्मत? निर्मला ने भी उसी स्वर में उन्हें उत्तर दिया, जी हाँ, मेरी इच्छा का भी तो कोई मूल्य है,
या मेरी इच्छा सदा ही आपकी इच्छा के सामने कुचली जाएगी। मेरा कोई मोल नहीं। अब रमाकांत जी अपने क्रोध को संभाल ना पाए। पत्नी के मुंह पर 3-4 तमाचे तड़ातड़ जड़ दिए। निर्मला चुप हो गई। बाबू रमाकांत क्रोध और ग्लानी के मारे कमरे में जाकर अंदर से सांकल लगाकर सो गए। अम्मा जी भी दरवाजे पर रखवाली के लिए बैठ गईं कि कहीं बिट्ठन किसी दरवाजे से भीतर ना आ जाए। अभी इस घटना को हुए 1 घंटा भी नहीं बीता था कि बिट्ठन आश्रय तलाशने निर्मला के पास आ गई अपने भाग्य की परीक्षा करने। दरवाजे पर ही उसे अम्मा जी मिल गई। बिट्ठन को देखते ही वो ललकार उठी। कौन है बिट्ठन? खबरदार, जो दहरी के भीतर पैर रखा तो। अम्मा जी की ललकार सुनकर बिट्ठन बाहर ही रुक गई, लेकिन निर्मला पास पहुंच गई उसके। शांत और कोमल स्वर में वो कहने लगी, बिट्ठन बाहर ही बैठो बहन, मैं वहीं तुम्हारे पास आती हूँ। और कहते हुए निर्मला दहरी से बाहर निकल गई। बिट्ठन और निर्मला दोनों बड़ी देर तक लिपट कर रोती रहीं। निर्मला ने बिट्ठन के आंसू पोछे और बड़े प्यार से कहा, तुम्हारी ही तरह मैं भी बिना घर की हूँ बहन। यदि इस घर में मेरा कुछ भी अधिकार होता ना, तो मैं तुम्हें इस कष्ट के समय कहीं नहीं जाने देती। क्या करूं, विवश हूं। लेकिन सुनो, तुम मेरा ये पत्र लेकर मेरे भाई ललित मोहन के पास चली जाओ, वो तुम्हारा सब प्रबंध कर देंगे। हाँ, तुम उनका स्थान तो जानती हो, पर सुनो, रात के समय पैदल मत जाना। ये रुपए रख लो, तांगा कर लेना तुम, और ईश्वर पर विश्वास रखना बहन। जिसका कोई नहीं होता, उसका साथ परमात्मा देता है। निर्मला ने 10 रुपए निकाल कर बिट्ठन को दे दिए और पत्र भी दिया। बिट्ठन पत्र लेकर चली गई। निर्मला घर में आ गई। एक चटाई डालकर वो बरामदे में ही डली रही। सवेरे उसकी आंख उस समय खुली जब रमाकांत उठ चुके थे। उनकी माँ नहाकर पूजा करने की तैयारी कर रही थी। निर्मला रोज की तरह उठकर घर का सब काम करने लगी, जैसे शाम की घटना की उसे कुछ याद ही ना हो। यदि वो मार खाने के बाद कुछ अधिक बकझक करती या रोती चिल्लाती, तो शायद अपनी इस हरकत पर रमाकांत जी को इतना पश्चाताप नहीं होता जितना अब हो रहा है। उन्हें बार बार ऐसा लग रहा था कि जैसे निर्मला ठीक थी, वे भूल पर थे। उनसे ऐसी भूल और कभी ना हुई थी। कल ना जाने क्यों, कैसे वो निर्मला पर हाथ चला बैठे थे। उनका व्यवहार उन्हीं को 100-100 बिच्छुओं के दंशन की तरह पीड़ा दे रहा था। अब वो अवसर ढूंढ रहे थे कि निर्मला उन्हें एकांत में मिल जाए तो वो पश्चाताप के आंसुओं से उसके पैर धो दें और उससे क्षमा मांग लें। किंतु निर्मला अब सतर्क थी। वो ऐसा मौका ही नहीं आने दे रही थी। वो उनसे बचकर रह रही थी और घर का पूरा काम कर रही थी। उसके चेहरे पर पहले जैसे कोई विशेष परिवर्तन नहीं।

0: तो दोस्तों, ये था आज का कार्यक्रम सुनो कहानी। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए लेखक की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम
2: अतुल्य भारत।
1: श्रोताओं, मैं हूं आपकी दोस्त कंचन।
3: और मैं हूं आपका दोस्त प्रमोद शर्मा। श्रोताओं, घाटों की नगरी वाराणसी, मंदिरों का शहर वाराणसी, एक धार्मिक स्थल वाराणसी। वाराणसी है ही ऐसा, इसे जितना जाना जाए उतना कम है। इसलिए आज हम आपको परिचित करा रहे हैं वाराणसी से जुड़े हुए कुछ खास खास साहित्यकारों से।
1: श्रोताओं, साहित्य विद्या की ही एक शाखा है और विद्या की देवी है सरस्वती।
3: बिल्कुल,
1: बिना सरस्वती की कृपा के साहित्य का सृजन हो ही नहीं सकता। ये कृपा व्यक्ति पर भी होती है और स्थान पर भी। यही कारण है कि कुछ स्थानों पर साहित्य की फसल खूब लहलहाती है।
3: ये आपने बिल्कुल ठीक कहा।
1: हाँ, क्योंकि वहाँ की मिट्टी में सरस्वती की कृपा का सिंचन कुछ अधिक ही होता है।
3: जी, वाराणसी के संदर्भ में बात करें तो यह बात साफ दिखाई देती है कि प्रयाग में सरस्वती आज भले ही अदृश्य हो गई हो, पर उसकी धारा गंगा में जरूर मिलती है और बहती हुई वाराणसी तक पहुंचती है और शायद यहाँ आकर खाली भी हो जाती है।
1: श्रोताओं, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कबीरदास जी की। माँ सरस्वती की कृपा से वाराणसी में साहित्य की जो अक्षय खदान खुदी हुई है, उसके एक चमचमाते रत्न हैं कबीरदास जी। भारत में तो शायद ही कोई हो जिसने इनका नाम न सुना हो। क्या हिंदू क्या मुसलमान, सबको पसंद है वे। बिना लाग लपेट के अपनी बात कहने वाले ये निर्गुण संत वाराणसी से लगे लहरतारा नाम के स्थान पर एक जुलाहे के घर में पले बढ़े।
3: पर शायद ईश्वर से योग की प्यास पिछले जन्मों से ही लिखा कर लाए थे वे, सो बालपन में ही गुरु की खोज में निकल पड़े। किसी ने कहा, रामानंद से बढ़कर कोई गुरु नहीं। पर वे जल्दी किसी को शिष्य बनाते नहीं हैं। बस फिर क्या था, कबीर तो कबीर थे और कबीर के नाम का अर्थ होता है महान।
1: पता चला कि बाबा रामानंद जी मुंह अंधेरे ही गंगा स्नान को आते हैं। फिर क्या था, कबीर जी चुपचाप घाट की सीढ़ियों पर लेट गए। अंधेरे में बाबा को दिखा नहीं तो उनका पैर कबीर जी की छाती पर पड़ गया। बाबा चौंक उठे, ये क्या, ये तो कोई मानव तन है। एकदम से पीछे हटे और बोले, राम राम बोल बच्चा, तुम्हें चोट तो नहीं लगी।
3: बस फिर क्या था, कबीर बोले, अपना शिष्य बना लीजिए बाबा। कहते हुए कबीर ने उनके पांव पकड़ लिए। श्रोताओं, आपने कबीर को थोड़ा भी पढ़ा हो तो आप जानते होंगे कि निर्गुण संत होने के बावजूद कबीर की रचनाओं में राम का नाम बार बार आया है। चलिए उनकी कुछ चौपाइयां हम आपके ध्यान में लाते हैं।
1: कबीरा कोता राम का, मुतिया मेरा नाव, गले राम की जेहणी, जित खींचे तित जाऊं, दुल्हिन गावहू मंगल चार, तोरे घर आए राजा राम भरतार। और इसी तरह एक और चौपाई है, चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जो कछु चितवे राम बिन सोई काल की पाश।
3: श्रोताओं, कबीर वे रामानंद के संबंध में एक मुहावरा सामने आता है, गुरु तो गुड़ ही रह गए और चेला शकर बन गया। एक घटना हम आपको बताते हैं।
1: एक बार की बात है, रामानंद जी मंदिर में राम जी की पूजा कर रहे हैं। बाहर कबीर और उनके दूसरे शिष्य बैठे हैं। रामानंद जी राम का श्रृंगार कर रहे हैं। जब मुकुट पहना दिए तो ध्यान आया कि माला पहनाना तो भूल ही गए। माला छोटी थी, मुकुट के ऊपर से पहनाई नहीं जा सकती थी, पर मुकुट उतारना निषिद्ध था। गुरु क्या करें, चिंतित हो उठे वे।
3: बस फिर क्या था, बाहर बैठे कबीर निर्गुण के ध्यान में डूबे हुए थे और आंखों से सारा तमाशा देख रहे थे। सहसा बोल उठे, गुरुजी माला का गांठ खोल करके पहना दीजिए राम जी को और फिर दोबारा गांठ लगा दीजिए।
1: ये सुनते ही रामानंद जी सन्न रह गए। उन्होंने बाहर आते ही कबीर जी को गले से लगा लिया। आखिरकार ये सिद्ध हो चुका था कि निर्गुण और सगुण इनमें कोई भेद नहीं।
3: बिल्कुल,
1: तभी तो कुछ लोग कबीर जी की भक्ति को देखकर अचरज में पड़ जाते हैं।
3: हाँ, वे समझ ही नहीं पाते कि जो दिखाई नहीं देता, जिसका कोई शरीर नहीं है, उसके प्रति कबीर का इतना अनुराग कैसे? कैसे वे उनके वियोग के बावले हो जाते हैं? कैसे वे कहते हैं कि गोविंदा गुनगाइए? कैसे वे कहते हैं कि हरि जननी मैं बाकुल तेरा? जब हरि निर्गुण है तो उसके गुण कैसे गाए जा सकते हैं? जब उसका कोई शरीर ही नहीं है तो वे माता कैसे हो गया?
1: ये सब हृदयहीन बौद्धिक व्याख्याएं हैं। निर्गुण का मतलब गुणहीन नहीं बल्कि गुणातीत है। उसमें गुणों की कमी नहीं, परंतु उसे गुणों में बांधा भी नहीं जा सकता। अगर सगुण से कबीर जी का इतना ही बैर होता तो रामानंद जी जैसे एक सगुण उपासक को वे अपना गुरु कैसे बनाते?
0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद पर आप सुन रहे हैं अतुल्य भारत और आज हम चर्चा कर रहे हैं वाराणसी के कुछ खास साहित्यकारों की और इसी श्रृंखला में अब हम चर्चा करते हैं तुलसीदास की। कबीर दास के संदर्भ में निर्गुण सगुण की जो चर्चा चली उसे पूर्ण विराम दिया तुलसीदास ने। उन्होंने साफ कह दिया कि निर्गुण सगुण नहीं कुछ भेदा।
1: तुलसीदास जी का रिश्ता वाराणसी से बहुत गहरा रहा है। उनका जन्म वैसे तो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में माना जाता है, पर उनकी कर्मभूमि वाराणसी ही थी। जन्म का नाम था रामबोला और उनके गुरु थे नरहरिदास।
3: जी हाँ, नरहरिदास रामानंद के शिष्य परंपरा में थे। वहीं रामानंद जो कबीर के गुरु थे, अनाथ रामबोला को उन्होंने ही अपनाया और तुलसीदास नाम दिया और उन्होंने अयोध्या में उन्हें आरंभिक शिक्षा भी दी। पर उच्च शिक्षा के लिए वे अपने इस होनहार शिष्य को वाराणसी भेजना चाहते थे।
1: श्रोताओं, इससे आप तो समझ ही सकते हैं कि वाराणसी उस समय शिक्षा का कितना बड़ा केंद्र था।
3: बिल्कुल।
1: हाँ, तो वाराणसी में नरहरिदास के एक मित्र थे शेष सनातन। नरहरिदास ने तुलसीदास जी को आगे की पढ़ाई के लिए उन्हीं के पास भेज दिया। शेष सनातन महान विद्वान थे। उनके सानिध्य में तुलसीदास जी ने संस्कृत व्याकरण, ज्योतिष शास्त्र, चारों वेद, छह वेदांग और छह दर्शनों की शिक्षा पाई।
3: 15-16 सालों की पढ़ाई के बाद तुलसीदास अब पुराने तुलसीदास नहीं रहे। वे प्रकांड विद्वान बन चुके थे और उनका श्रेय जाता है भोलेनाथ की इस नगरी को। इसके पास वे वापस लौट आए, पर अपने जीवन के उत्तरार्ध में एक बार फिर वाराणसी लौटे।
1: इस बार की उपलब्धि विद्या नहीं बल्कि भक्ति थी। आज जहाँ पर संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है, उसी स्थान पर हनुमान जी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए और वो भी एक प्रेत की कृपा से। कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी प्रतिदिन एक पेड़ पर जल चढ़ाया करते थे। इस पेड़ के भीतर एक प्रेत रहा करता था, तो प्रसन्न होकर उसने ही तुलसीदास जी को वो विधि बताई कि हनुमान जी के दर्शन कैसे होंगे।
3: लेकिन तुलसीदास की इच्छा तो राम से मिलने की थी, तो हनुमान जी ने उन्हें बताया कि राम जी के दर्शन तो उन्हें चित्रकूट में होंगे। यह एक लंबी कहानी है, अतः विषयांतर से बचने के लिए हम इसे यहीं छोड़ते हैं।
1: गोस्वामी तुलसीदास जी को महर्षि वाल्मीकि जी का अवतार भी माना जाता है। वही वाल्मीकि जी जिन्होंने महान ग्रंथ रामायण की रचना संस्कृत भाषा में की थी। लेकिन लगता है कि बाद में जब संस्कृत आम जनता की भाषा नहीं रही, तब वाल्मीकि जी ने ही हिंदी भाषा में रामायण की रचना करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में फिर से जन्म लिया।
3: खैर, इस नए रामायण की रचना तुलसीदास ने रामचरितमानस के नाम से राम की जन्मभूमि अयोध्या में और अयोध्या की ही बोली अवधि में की। वैसे वे संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे और चाहते तो संस्कृत में राम कथा लिख करके विद्वानों की वाहवाही लूट सकते थे, पर उनका उद्देश्य तो राम की कथा जनता को सुनाना था, सो उन्होंने जनता की ही भाषा चुनी।
1: रामचरितमानस के आरंभ और अंत की तिथियां भी ज्योतिष शास्त्र के द्वारा निर्धारित की गई थी। आपने सुना है कि तुलसीदास जी ज्योतिष शास्त्र में माहिर थे, तो इस ग्रंथ की रचना मंगलवार के दिन रामनवमी को शुरू की गई, ग्रह नक्षत्रों की उसी स्थिति में जिसमें राम जी का जन्म हुआ था।
3: बिल्कुल ठीक कहा आपने, और इसका समापन विवाह पंचमी पर हुआ। यह वह तिथि थी जब राम व जानकी का विवाह हुआ था।
1: अब गोस्वामी तुलसीदास जी की मंजिल एक बार फिर वाराणसी थी। उन्हें अपनी रचना शिव पार्वती जी को सुनानी जो थी बाबा विश्वनाथ के मंदिर में, लेकिन वाराणसी के ब्राह्मण गोस्वामी तुलसीदास जी से नाराज थे क्योंकि उन्होंने रामचरितमानस की रचना संस्कृत में न करके एक लोक भाषा अवधि में की थी।
3: वहां के पंडितों का दावा था कि ईश्वर की कृपा सिर्फ संस्कृत भाषा में लिखे ग्रंथों को ही मिलती है। परीक्षा लेने के लिए उन्होंने वेद, शास्त्र, पुराण जैसे संस्कृत ग्रंथों के ढेर के नीचे अवधि में रचित रामचरितमानस को विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में रख करके बाहर से ताला लगा दिया।
1: और श्रोताओं, सुबह जब ताला खोलकर देखा गया तो पाया गया कि रामचरितमानस पर सत्यम शिवम सुंदरम अंकित था और उसके नीचे शिव जी के हस्ताक्षर थे। यहाँ तक कि बाहर जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने भी सत्यम शिवम सुंदरम का उद्घोष भी सुना। शिव जी ने गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना पर अपनी मोहर लगा दी थी।
3: खैर, ये तो कुछ किंवदंतियां हैं। अपने जीवन का अंतिम समय तुलसीदास ने वाराणसी में ही बिताया, पर दार्शनिक तथ्य इसमें यह है कि वे अपने जीवन का अंत वाराणसी में करना चाहते थे। उन्होंने ऐसा किया भी। असी घाट पर उन्होंने देह त्यागा। इस संबंध में भी एक रोचक कथा मिलती है।
1: जब गोस्वामी तुलसीदास जी वाराणसी के असी घाट पर निवास कर रहे थे तो जीवन की संध्या बेला में कलयुग ने उन्हें सताना शुरू कर दिया। इस पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी का स्मरण किया। तब हनुमान जी ने उनसे कहा कि वे अपनी अर्जी राम जी के दरबार में लगाएं। ये अर्जी ही उनकी विनय पत्रिका है। राम जी ने इस पर अपने हस्ताक्षर भी किए हैं।
3: श्रोताओं, गोस्वामी तुलसीदास की विनय पत्रिका वाराणसी के असी घाट पर ही रची गई थी। इसकी भाषा थी ब्रज भाषा और यह उनकी अंतिम कृति थी। उत्कृष्टता के विद्वान रामचरितमानस के बाद उन्होंने विनय पत्रिका को ही लिखा था। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 MHz, देश का चैनल देश के लिए।
1: श्रोताओं, 90.8 MHz पर रेडियो आजाद हिंद से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अतुल्य भारत, और अब हम बात करते हैं आधुनिक काल के साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में। वाराणसी से संबंधित आधुनिक कालीन साहित्यकारों की बात करें तो पहला नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र का आता है।
3: बिल्कुल,
1: उन्हें आधुनिक हिंदी का आदि पुरुष कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आधुनिक काल में खड़ी बोली हिंदी की नींव डालने वालों में वे प्रमुख थे।
3: श्रोताओं, आपको बता दें कि हिंदी की अनेक बोलियों में एक बोली का नाम है खड़ी बोली, जिसे कोरवी भी कहते हैं। कोरवी इसलिए क्योंकि इसका जन्म कुरुक्षेत्र के इलाके में हुआ। वही कुरुक्षेत्र जहां महाभारत का युद्ध हुआ, वही कुरुक्षेत्र जहां कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था।
1: तो अपभ्रंश भाषा से हिंदी भाषा का जब विकास हो रहा था तो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में इसके भिन्न भिन्न रूप विकसित हुए, जैसे अवध में

0: के अनुराग का वर्णन अत्यंत मर्यादा के साथ किया गया है। प्रसंगवश तुलसीदास जी की कविता यहाँ पर याद आती है।
1: कौन सी कविता?
0: राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाही, ताते सबे सुध भूल गई, कर टेक रही पलटारत नाही।
1: वाह,
0: ये प्रसंग उस समय का है जब राम जानकी जी का विवाह हो रहा था। माता जानकी भगवान श्री राम को देखना चाहती हैं, पर देखें कैसे, लोकलाज और मर्यादा की दीवार जो सामने है। तो उन्होंने अपने कंगन में लगे नग में राम जी की छवि देखी,
1: लेकिन हाथ हिला नहीं सकती थी, क्योंकि यदि ऐसा किया तो राम की छवि हट जाएगी। पलके भी नहीं झपका सकती थी, क्योंकि इतनी देर के लिए राम पलकों से ओझल हो जाएंगे। इसलिए वे अपना हाथ स्थिर कर लेती हैं और पलके नहीं गिराती।
0: धन्य धन्य है गोस्वामी तुलसीदास, जिन्होंने मर्यादा के साथ इतनी सुंदर श्रृंगारिक रचना की। श्रृंगार का मर्यादित रूप भी कितना सुंदर हो सकता है।
1: बिल्कुल,
0: ये आज के कलाकारों को इनसे सीखने की जरूरत है।
1: जी हाँ, खैर जब बाहर तेंदु का अवतरण इस दुनिया में हुआ तो साहित्य के क्षेत्र में ब्रजभाषा का बोलबाला था, लेकिन भारतेंदु महसूस कर रहे थे कि आधुनिक ज्ञान विज्ञान के लिए यह भाषा उपयुक्त नहीं है, इसके लिए खड़ी बोली अधिक उपयुक्त है। सो उन्होंने विशेषकर गद्य की भाषा के रूप में खड़ी बोली को आगे बढ़ाया।
0: चूंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र एक साहित्यकार मात्र ही नहीं थे, बल्कि साहित्यकारों की पूरी मंडली रखते थे, इसलिए उनकी प्रेरणा से खड़ी बोली का व्यापक इस्तेमाल शुरू हो गया।
1: सन 1850 में जन्मे भारतेंदु बचपन से ही पैसे को पैसा नहीं समझते थे। खूब संपदा विरासत में मिली थी तो दीपक में तेल की जगह वे इत्र जलाया करते थे। पूछा जाता तो कहते कि इस धन ने मेरे पुरखों को जलाया है, अब मैं इसे जला रहा हूं। लेकिन उनका यही स्वभाव, हिंदी साहित्य की फसल सींच गया।
0: उन्होंने अपना निजी पैसा खर्च करके साहित्यकारों को उसी तरह आश्रय दिया जिस तरह कभी राजे महाराजे किया करते थे। आज हिंदी में जितनी भी विधाएं हम देखते हैं उनमें से अधिकतर की नींव उन्होंने ही डाली। नाटक, निबंध, पत्रकारिता, कविता, कुछ भी नहीं छोड़ा उन्होंने। खास करके नाटकों के विकास के लिए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हमेशा याद रखा जाएगा।
1: जी हाँ, श्रोताओं आप जानते हैं कि नाटक पढ़ने के लिए नहीं बल्कि खेलने के लिए लिखे जाते हैं, और इन्हें खेलने के लिए रंगमंच की भी जरूरत होती है। लेकिन भारतेंदु के समय में हिंदी में रंगमंच ना के बराबर थे, सो भारतेंदु ने ना केवल नाटक लिखे बल्कि उन्हें खेलने के लिए मंचों की भी स्थापना की। वे अच्छे अभिनेता व निर्देशक भी थे, सो वे अपने लिखे नाटकों में अभिनय भी करते थे और निर्देशन भी करते थे।
0: श्रोताओं, हिंदी पत्रकारिता की नींव भी भारतेंदु जी ने ही डाली थी। उन्होंने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र पत्रिका, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधिनी जैसी हिंदी पत्रिकाओं का प्रकाशन और संपादन किया। भारतेंदु जी को केवल एक साहित्यकार समझना उनके प्रति अन्याय होगा। हम तो कह सकते हैं कि वे पूरा एक युग थे, इसलिए हिंदी साहित्य में उनका काल भारतेंदु काल कहलाता है।
1: हाँ, एक साहित्यकार के होने के साथ साथ भारतेंदु एक राष्ट्रभक्त भी थे। उन्हें अंग्रेजों के शोषण से बड़ी पीड़ा पहुंचती थी, जिसकी अभिव्यक्ति उनकी रचनाओं में देखने को मिलती है, खास करके भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी और नील दर्पण में तो उस काल का पूरा भारत ही देखा जा सकता है।
0: राष्ट्रभाषा की अवधारणा संभवतः सबसे पहले उन्होंने ही दी। अपनी भाषा को हेय मानकर विदेशी भाषा के पीछे भागने की प्रवृत्ति से उन्हें दुख पहुंचता था, इसलिए तो उन्होंने कहा कि निज भाषा उन्नति अहि, सब उन्नति को मूल। अर्थात जो समाज अपनी भाषा की उन्नति नहीं कर पाता, उसकी स्वयं की उन्नति भी नहीं हो पाती।
1: वाराणसी में स्थित काशी नगरी प्राचीरणी सभा आज हिंदी भाषा व साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए महत्वपूर्ण संस्था है। इसकी स्थापना की कहानी भी बड़ी ही रोचक है।
0: सन 1893 की बात है। वाराणसी के क्विंस कॉलेज में नवी कक्षा के 3 छात्र श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह देख रहे थे कि अंग्रेजी और फारसी जैसी भाषाओं का इस्तेमाल तो लोग बड़े फक्र के साथ करते हैं, परंतु हिंदी का इस्तेमाल करने में खुद को हेय समझते हैं।
1: हाँ, सो हिंदी को एक सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए उन्होंने इस संस्था की स्थापना अपने छात्रावास के बरामदे में बैठकर की। इसकी बैठक वाराणसी के घुड़साल में होती थी। इसकी खुद की इमारत तो बाद में जाकर के बनी है।
0: इस सभा ने हिंदी की जो सेवा की उसकी गिनती भी करना मुश्किल है। उस समय उत्तर प्रदेश में सरकारी भाषा के रूप में अंग्रेजी और उर्दू का प्रचलन था, जबकि आम जनता की भाषा हिंदी थी। संयोग से मदन मोहन मालवीय भी तब तक इस सभा से जुड़ चुके थे, तो इसीलिए इन लोगों के प्रयत्नों से उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए उर्दू के साथ ही हिंदी का ज्ञान भी अनिवार्य कर दिया गया।
1: हिंदी की तितर बितर पांडुलिपियों को ढूंढ कर प्रकाशित करने का जो काम नागरी सभा ने किया, उसका मूल्यांकन करना भी संभव नहीं है हमारे लिए। इसके संग्रहालय में आज हिंदी भाषा की लगभग 15,000 हस्तलिखित पांडुलिपियां मौजूद हैं।
0: और आलम ये है कि अगर आप हिंदी विषय में शोध कर रहे हैं तो काशी नागरी प्रचारिणी सभा की लाइब्रेरी में जाए बिना आपका काम नहीं चलने वाला।
1: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। कार्यक्रम है अतुल्य भारत और आज हम चर्चा कर रहे हैं वाराणसी से जुड़े हुए कुछ महान साहित्यकारों के बारे में। और इसी कड़ी में अगला नाम है जयशंकर प्रसाद का। साल 1885 हिंदी के लिए एक दुखद साल था। मात्र 34 साल की उम्र में भारतेंदु दुनिया छोड़कर के चले गए, लेकिन इसके 5 साल बाद ही वाराणसी के ही सुगनी साहू के घर में मानो उन्होंने पुनर्जन्म ले लिया। इस बार उनका नाम था जयशंकर प्रसाद, लेकिन इस बार भगवान ने उन्हें एक साधारण घर में पैदा किया था। पिछले जन्म में तो उन्होंने बहुत पैसा उड़ाया था, शायद इसीलिए उन्हें इस बार एक गरीब घर में जन्म लेना पड़ा।
0: अभी 8वीं कक्षा में ही पढ़ रहे थे प्रसाद कि पिता चल बसे। अब दुकान भी संभालनी थी, पढ़ाई छूट गई, पर साहित्य की ललक मन में थी। घर में रहकर पढ़ना शुरू कर दिया और एक दिन खुद साहित्यकारों की अगली पंक्ति में पहुंच गए। आज हालत यह है कि 8वीं दर्जा पास प्रसाद की रचनाएं विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती हैं और उनकी एक एक कविता पर लोग PhD कर रहे हैं।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर हिंदी नाटकों की बात करें तो पहला युग यदि भारतेंदु युग है तो दूसरा युग प्रसाद युग है।
0: बिल्कुल ठीक,
1: बात साफ है। भारतेंदु के ही समान प्रसाद भी युग पुरुष थे, खास करके नाटक व कविता के क्षेत्र में तो उनका कोई सानी नहीं था।
0: भारतेंदु हरिश्चंद्र की ही तरह प्रसाद जी में भी राष्ट्रभक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी और उनकी ये राष्ट्रभक्ति ही उनकी रचनाओं में बखूबी देखने को मिलती है।
1: जिस जमाने में अंग्रेज भारत के पढ़े लिखे लोगों को यह घुट्टी पिला रहे थे कि भारत तो शुरू से ही दीनहीन पिछड़ा व दरिद्र रहा है और ये अंग्रेज ही है जो इस देश की तरक्की कर रहे हैं, तो उस जमाने में प्रसाद ने अपने नाटकों के माध्यम से यह दिखाया कि नहीं, प्राचीन काल से ही भारत एक महान एवं ओजस्वी देश है।
0: उन्होंने पश्चिमी विद्वानों द्वारा परोसा गया ये इतिहास नहीं माना कि सिकंदर ने भारत को हराया था। अपने चंद्रगुप्त नाम के नाटक में उन्होंने ये सिद्ध भी कर दिया कि भारत विजय का सपना देखने वाला सिकंदर इसलिए भारत के किनारे से ही लौट गया क्योंकि वो भारत की शक्ति को जान गया था।
1: बिल्कुल ठीक। और इसी नाटक में प्रसाद ने वह प्रसिद्ध गीत भी लिखा है जो आजादी की लड़ाई के लिए भारतीय लोगों का उद्बोधन गीत बन गया था। उसकी कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं।
0: हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बड़े चलो बड़े चलो। कहते हैं स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में इस गीत को गा देने से देशभक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती थी।
1: हाँ, अगर कविताओं की बात करें तो प्रसाद को हिंदी छायावाद काव्यधारा के संस्थापकों में से एक माना जाता है। कामायनी नाटक उनका महाकाव्य तो न केवल छायावाद का बल्कि आधुनिक हिंदी का भी महाकाव्य है। यह महाकाव्य जीवन दर्शन से भरपूर है। इसकी अनेक पंक्तियां जीवन के अंधेरे पलों में राह दिखाती हैं।
0: इनमें से कुछ पंक्तियां हम आपको सुनाते हैं।
1: जी।
0: प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल। इन पंक्तियों के माध्यम से प्रसाद ने ये बताया कि विनाश से ही सृजन होता है। जब फूल बासी हो जाते हैं तो वे झड़ जाते हैं और फिर नए फूल एक बार फिर से निकलते हैं।
1: मैं रीति की प्रतिकृति लज्जा हूँ, मैं शालीनता सिखाती हूँ। लज्जा सर की इन पंक्तियों में महाकवि का संदेश है कि लज्जा नारियों में शालीनता उत्पन्न करती है और उन्हें अनेक परेशानियों से बचाती है।
0: इसी सर्ग में वो विश्व प्रसिद्ध काव्य पंक्ति भी है जिसे अपने निबंधों में लिखते हुए हम बड़े हुए हैं, जिसका उपयोग वक्ता सभा पर अपनी छाप छोड़ने के लिए करते हैं। तो लीजिए, आप पर भी अपनी छाप छोड़ने के लिए हम भी इसे आपको सुना देते हैं।
1: नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पद तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में।
0: एक जमाने में संस्कृत भाषा में लिखा गया था कि यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसके बाद प्रसाद जी ने ये पंक्तियां लिखकर समाज में स्त्रियों का महत्व बताया। अब कुछ बातें कामायनी के मूल संदेश की भी कर लेते हैं श्रोताओं।
1: बिल्कुल।
0: इस काव्य में महाकवि का संदेश है समरसता, संतुलन और समन्वय। मध्यम मार्ग की वकालत की गई है इसमें। अति से बचो, अति भोग से बचो, नहीं तो प्रकृति के कहर से बच नहीं पाओगे, ऐसा बताया गया है इसमें। आज जबकि हमारे कर्मों की प्रतिक्रिया प्रकृति बार बार कर रही है, तो इन संदेशों को ग्रहण करने की कुछ ज्यादा ही जरूरत है हमें।
1: श्रोताओं, अब हम क्षमा चाहते हैं आपसे। सोच तो हम यह रहे थे कि इस कार्यक्रम में वाराणसी के अधिक से अधिक साहित्यकारों के बारे में जानकारी आपको दे दें, लेकिन क्या करें, कबीर, तुलसी, भारतेंदु, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद जैसे युग पुरुषों पर चंद बातें करते करते हम भावनाओं में बह गए। अतः शेष बचे लोगों के लिए कुछ एक के बारे में कुछ खास बातें बताकर हम इस कार्यक्रम को समाप्त कर रहे हैं।
0: श्रोताओं, एक जमाने में दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला चंद्रकांता कार्यक्रम आपको याद होगा। ये कार्यक्रम चंद्रकांता नामक जिस उपन्यास पर आधारित था, उसके लेखक देवनंदन खत्री वाराणसी के ही निवासी थे और उन्हें हिंदी में मिस्ट्री नॉवेल्स का जन्मदाता कहा जाता है।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्या निवास मिश्र, राधा कृष्ण दास, मुंशी प्रेमचंद जैसे हिंदी साहित्यकारों ने ही वाराणसी शहर को इज्जत बख्शी है।
0: श्रोताओं, चलिए अब मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में भी कुछ चर्चा हम आपसे कर लेते हैं। हिंदी में मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट कहा जाता है और हिंदी उपन्यास का पूरा एक काल ही प्रेमचंद काल कहलाता है। इनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है गोदान। 1930 के दशक में लिखा गया ये उपन्यास भारत के गांवों की इतनी संपूर्ण तस्वीर खींचता है कि इसे ग्रामीण जीवन का महाकाव्य तक कहा गया है।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने। विश्व की लगभग सभी भाषाओं में इसका रूपांतरण हो चुका है। इसके रूसी रूपांतरण पर तो रशिया का सबसे बड़ा साहित्यकार पुरस्कार तक मिल चुका है। एक किसान होरी की कहानी है इसमें, जिसके जीवन काल की केवल एक ही महत्वाकांक्षा थी कि घर के आंगन में एक गाय हो।
0: उसकी ये महत्वाकांक्षा पूरी होती भी है और नहीं भी। वो कर्जदार हो जाता है, किसान से मजदूर हो जाता है और अंत में दम तोड़ देता है। भारत के किसान की बेबसी और लाचारी अगर आपको देखनी हो तो गोदान उपन्यास आप अवश्य पढ़ें। होरी जब मरता है तो ऐसा लगता है कि हमारे भीतर भी कुछ दरक गया।
1: श्रोताओं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे थे कार्यक्रम अतुल्य भारत। आज का विषय था वाराणसी से जुड़े हुए कुछ साहित्यकारों के बारे में चर्चा। इसका आलेख तैयार किया था श्रीमती पूनम जायसवाल ने और स्वर थे प्रमोद शर्मा
0: और कंचन राजानी के।
1: अब हमें आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: साहस की बुलंद शुरुआत से लेकर आसमान की असीम ऊंचाइयों तक 8 अक्टूबर को पूरा देश मना रहा है भारतीय वायुसेना का 94वां वायुसेना दिवस।
3: वर्ष 1947-48, 1965 और 1971 के ऐतिहासिक युद्धों से लेकर ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन सफेद सागर तक विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायु सेना ने हर पल कर दिखाया है अदम्य पराक्रम, अत्याधुनिक तकनीक और सर्वोच्च बलिदान।
2: तो मध्य प्रदेश के जाबाज युवाओं, क्या आप तैयार हैं? बादलों को चीर कर देश का मान बढ़ाने के लिए तो बनिए अग्निवीर वायु। हासिल कीजिए वो मुकाम जो जिंदगी भर की पहचान बन जाए और गर्व से कीजिए भारत माँ की सेवा।
3: भर्ती और पात्रता से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए
2: 15 एयरमैन चयन केंद्र के इंस्टाग्राम पेज 15ASC_भोपाल और आधिकारिक वेबसाइट IAFRecruitment.edcil.co.in पर विजिट करें।
3: नभस प्रशम दीप्तम।
4: जय हिंद।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है।

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8,
1: देश का चैनल देश के लिए। हम हैं
0: रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आजादी दिलाई।
1: रेडियो आजाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
0: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

0: देश है तो हम हैं। राष्ट्र वंदना के सुमधुर स्वर सुनिए कार्यक्रम तराने आजादी में।
1: मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम तराने आजादी के राष्ट्रभक्ति के सुमधुर स्वर। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए 90.8 मेगाहर्ट्ज पर।
2: साहस की बुलंद शुरुआत से लेकर आसमान की असीम ऊंचाइयों तक 8 अक्टूबर को पूरा देश मना रहा है भारतीय वायुसेना का 94वां वायुसेना दिवस।
3: वर्ष 1947-48, 1965 और 1971 के ऐतिहासिक युद्धों से लेकर ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन सफेद सागर तक विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायु सेना ने हर पल कर दिखाया है अदम्य पराक्रम, अत्याधुनिक तकनीक और सर्वोच्च बलिदान।
2: तो मध्य प्रदेश के जाबाज युवाओं, क्या आप तैयार हैं? बादलों को चीरकर देश का मान बढ़ाने के लिए तो बनिए अग्निवीर वायु, हासिल कीजिए वो मुकाम जो जिंदगी भर की पहचान बन जाए और गर्व से कीजिए भारत माँ की सेवा।
3: भर्ती और पात्रता से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए
2: 15 एयरमैन चयन केंद्र के इंस्टाग्राम पेज 15ASC_भोपाल और आधिकारिक वेबसाइट IAFRecruitment.edcil.co.in पर विजिट करें।
3: नभस प्रशम दीप्तम।
2: जय हिंद।

0: मैं हूं पवन सिन्हा और आप मुझे सुन रहे हैं 90.8 रेडियो आजाद हिंद पर। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, भारत को प्रणाम कीजिए, यह है तो हम हैं। हम जिन्हें पूजते हैं वो भी इसी भारत माता की संतान है। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं,

0: नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड़। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
1: कुछ यादें उन्हें भी कर लो।
2: मैं हूं मधुश्री, सुनते रहिए 90.8 रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: झूलो के घर न आए।
3: मानव जाति की सभ्यता और संस्कृति परिलक्षित होती है उसके गीत संगीत, रहन सहन और खान पान पर। लोक संस्कृति पर आधारित कार्यक्रम भारत भारती प्रस्तुत है आपके लिए।

नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। प्रस्तुत है कार्यक्रम भारत भारती। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं भक्ति गायन। कलाकार हैं संजय द्विवेदी और उनके साथी।

0: एक बार की बात है, आदि शंकराचार्य जी बनारस की गलियों से गुजर रहे थे तो देखते हैं कि 90 वर्ष के एक वृद्ध व्यक्ति संस्कृत की एक धातु को रट रहे थे, जैसे कि काशी में पठन पाठन की परंपरा है। तो आदि शंकराचार्य जी जो कि महान दार्शनिक थे, उनको ये देख के बड़ा आश्चर्य होता है कि जिस व्यक्ति की उम्र 90 वर्ष के लगभग है और अब इनको तो परलोक गमन की तैयारी करनी चाहिए और वे अभी तक डुक्रियंकरणे में उलझे हुए हैं, तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है। और देखते हैं कि संसार के तमाम व्यक्ति इसी तरह किसी न किसी मोह माया के जाल में उलझे हुए हैं, तो उनसे मुक्ति कैसे संभव हो। तो उस समय वे एक स्तोत्र की रचना करते हैं, चरपट पंजरिका स्तोत्रम, जिसको भजगोविंदम के नाम से जानते हैं। बहुत ही दार्शनिक है, वे कहते हैं,
1: दिनमपि रजनी
0: दिनों रात सायं प्रातः सांझ सवेरा आते हैं चले जाते हैं।

0: दिन होता है, रात होती है, फिर भोर होती है, फिर सांझ होती है, ऋतुएं वर्ष पे वर्ष बीतते जाते हैं और हम पुराने होते चले जाते हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि जब साक्षात काल हमारे सामने आके उपस्थित होता है और हम निरुत्तर होते हैं। तो उसकी क्या तैयारी हो, उसकी बात इस स्तोत्र में।
1: दिनम अभिरजने
0: भज गोविंदम बहुत फेमस है, तो इसमें हम भी राग दरबारी की छाया है इसमें, तो वो भी आपको दिखाएंगे।
1: दिनम अभिरजने सायं प्रातः शिशिर बसन्त।

ललितम शंकराचार्य जी कहते हैं कि धीरे धीरे शरीर के अंग काम करना बंद कर देते हैं। अंगम गलितम बलितम मुंडम, सिर के सुंदर सुंदर बाल एक एक करके झड़ना शुरू हो जाते हैं। दशन विहीनम जातम गुंडम, और ये जो चेहरे की सुंदर सी स्माइल है, जब दांत नहीं बचते तो कैसा चेहरा हो जाता है। बराबर शंकराचार्य जी चेतावनी देते हैं

बार जन्म लेना, पुनरपि जननम और पुनः पुनः मृत्यु को प्राप्त होना, पुनरपि मरणम और फिर मां के गर्भ में 9 महीने का कष्ट, पुनरपि जननी जठरे शयनम।

बार मृत्यु को प्राप्त होगा, फिर मांगेगा तुम्हें, फिर और फिर मृत्यु। ऐसा कब तक? जब तक कि आपकी सारी कामनाएं पूरी ना हो जाए। इसलिए सावधान, बहुत सोच समझ के मन में कोई कामना का जन्म होने दें।

कहा एक नदी का जल है और एक नाले का जल है, गंगा जी में, लेकिन जब नाला मिल जाता है तो वो गंगा जी हो जाता है। वैसे ही सुदास कहते हैं प्रभु, वैसे ही।

अब अंतिम पद में सूरदास जी का भगवान से झगड़ा हो जाता है, भक्त हैं, जिद करते हैं। वे कहते हैं कि एक जीव और एक ब्रह्म दोनों में भेद क्यों? सूरदास जीव है और श्याम सुंदर ब्रह्म है, तो दोनों में भेद क्यों? अभेद होना चाहिए। तो इस बात पे सुनकर झगड़ा हो जाता है।

कार्यक्रम भारत भारती में अभी आप आनंद ले रहे थे भक्ति गायन का। कलाकार थे संजय द्विवेदी और उनके साथी। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लोक संस्कृति लोक धुनों पर आधारित हमारा कार्यक्रम भारत भारती। तो सुनते रहिए हमारे साथ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए 90.8 MHz पर।
1: साहस की बुलंद शुरुआत से लेकर आसमान की असीम ऊंचाइयों तक 8 अक्टूबर को पूरा देश मना रहा है भारतीय वायुसेना का 94वां वायुसेना दिवस।
2: वर्ष 1947-48, 1965 और 1971 के ऐतिहासिक युद्धों से लेकर ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन सफेद सागर तक विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायु सेना ने हर पल कर दिखाया है अदम्य पराक्रम, अत्याधुनिक तकनीक और सर्वोच्च बलिदान।
1: तो मध्य प्रदेश के जाबाज युवाओं, क्या आप तैयार हैं? बादलों को चीरकर देश का मान बढ़ाने के लिए तो बनिए अग्निवीर वायु, हासिल कीजिए वो मुकाम जो जिंदगी भर की पहचान बन जाए और गर्व से कीजिए भारत माँ की सेवा।
2: भर्ती और पात्रता से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए
1: 15 एयरमैन चयन केंद्र के इंस्टाग्राम पेज 15ASC_भोपाल और आधिकारिक वेबसाइट IAFRecruitment.edcil.co.in पर विजिट करें।
2: नभः स्पृशं दीप्तम्।
3: जय हिंद।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8,
1: देश का चैनल देश के लिए। हम हैं
0: रूहानी सिस्टर्स। हम सलाम करते हैं उन देश के जवानों को जो सरहदों पर दिन रात तैनात होकर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और हम उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर हमें ये आज़ादी दिलाई।
1: रेडियो आज़ाद हिंद देश का पहला और एकमात्र ऐसा रेडियो चैनल है जो वीर जवानों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अमर गाथाओं को समर्पित है।
0: तो सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। हम हैं रूहानी सिस्टर्स। नमस्कार।

श्रोताओं, शाम के 5 बज रहे हैं। अब अपनी रेडियो मित्र भारती को दीजिए मध्याह्न प्रसारण सेवा समाप्त करने की अनुमति। लेकिन याद रखिए, रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण जारी रहेगा रात 10 बजे तक। बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय।

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज सुनिए ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के सूक्त 37 से वाचन। ऋषि हैं ग्रत्समत एवं भार्गव शौनक, देवता है सविता और छंद है त्रिष्टुप।
1: मंदस्व होत्रादनु जोश मंदसो ध्वर्यवः सपूर्णाम् वष्टया सिचम् तस्मा एतम् भरत तद्वशो ददिर होत्रात् सोमम् द्रविणोदः पिब ऋतुभिः। हे धन प्रदाता अग्निदेव, होताओं के द्वारा समर्पित किए गए सोमरस का प्रसन्नता पूर्वक पान करके हर्षित हो। हे अध्वर्युगण, अग्निदेव पूर्णाहुति की कामना करते हैं, अतः उनके लिए सोमरस प्रदान करें। सोम की कामना वाले ये अग्निदेव तुम्हें धन प्रदान करेंगे। हे अग्निदेव, यज्ञ में होताओं के द्वारा समर्पित किए गए इस सोमरस का ऋतु के अनुरूप पान करें। यमु पूर्व महुवे तमिदम हुवे सेदु हव्यो ददिर्यो नाम पत्यते अध्वर्युभिः प्रस्थितम् सोम्यम् मधु पोत्रात् सोमम् द्रविणोदः पिब ऋतुभिः। जिन अग्निदेव को हमने पहले भी बुलाया था उन्हें अब भी आवाहित करते हैं। ये अग्निदेव निश्चित ही याजकों को धन प्रदान करने वाले तथा सभी के स्वामी हैं, आवाहन के योग्य हैं। इन देव के लिए याजकों द्वारा सोमरस शोधित किया गया है। हे अग्निदेव, इस पवित्र यज्ञ में ऋतु के अनुरूप सोमरस का पान करें। मेद्यन्तु ते वहनयो ये भी रीयसे ऋषण्यन् वीडयस्वा वनस्पते आयुया धृष्णो अभिगूर्या त्वं नेष्ट्रात् सोमं द्रविडोदः पिब ऋतुभिः। हे द्रविडोदादेव, आप जिस अश्व पर आरूढ़ होते हैं वह तृप्त हो। हे वनस्पति देव, आप हमें हिंसित न करके शक्तिशाली बनाएं। हे शत्रुनाशक देव, आप यज्ञ में पधार कर याज्ञिकों द्वारा समर्पित किए गए सोमरस का पान ऋतु के अनुरूप करें। अपाद्धोत्रादुत पोत्रादमत्तोत्त नेष्ट्रादजुषत प्रयोहितम् तुरीयम् पात्र ममृक्त ममर्त्यम् द्रविडोदाह पिबतु द्राविडोदसः। जो द्रविडोदादेव नेष्ट्रा के यज्ञ में पवित्र सोमरस का पान करके आनंदित हुए वे धन प्रदाता देव भली भांति शोधित किए गए अमरत्व प्रदान करने वाले सोमरस का पान करें। अर्वांच मध्य यैयम् नृवाहणम् रथम् युञ्जाथामिह वाम विमोचनम् प्रिंक्तम् हवींषि मधुना हि कम् गतमथा सोमम् पिबतम् वाजिनी वसु। हे अश्विनी कुमारो, आप अपने अभीष्ट स्थान पर ले जाने वाले द्रुतगामी रथ को हमारे यज्ञ स्थल में आने के लिए नियोजित करें। हमारे यज्ञ में आकर हमारे हविष्यान्न को सुस्वादु बनाएं। हे आश्रय प्रदाता अश्विनी कुमारों, आप दोनों सोमरस का पान करें। जोष्यग्ने समिधम जोष्याहुतिम जोषी ब्रह्मजन्यम जोषी सुष्टुतिम विश्वेभिर्विश्वाम ऋतुना वसो मह उषंदेवाम उषतः पायया हविहि। हे अग्निदेव, आप हमारी समिधाओं से प्रदीप्त होकर आहुतियों को ग्रहण कर याजकों द्वारा की गई सुंदर स्तुतियों को स्वीकार करें। सोमपान की अभिलाषा वाले हे अग्निदेव, आप सभी के आश्रयदाता हैं। आप सभी देवों, ऋभुओं और विश्वे देवों के साथ सोमरस का पान करें।
0: अभी आप सुन रहे थे ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के सूक्त 37 वाचन, प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षय निधि। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। लीजिए सुनिए कार्यक्रम भक्ति संगीत।

मार्ग बताए गए हैं, उनमें सबसे सरल मार्ग ईश्वर का नाम स्मरण करना है। नाम स्मरण करने का कोई नियम नहीं है। भक्त जहां भी हो, चाहे जिस हालत में हो, ईश्वर का नाम स्मरण कर सकता है।

हम ईश्वर की भक्ति ईश्वर को पाने के लिए करते हैं। भक्ति का वास्तविक अर्थ है ईश्वर से मिलने के लिए चलना, और यदि हम ईश्वर को पा लिए तो इसी को मोक्ष कहते हैं।

निस्वार्थ भाव से ईश्वर की भक्ति करना ही सच्ची भक्ति है और यही हमारा परम कर्तव्य है। प्रभु का सच्चा भक्त वही है जो भगवान से ही प्रेम करता है, सच्चे हृदय से उन्हें याद करता है, किंतु उनसे संसार की कोई वस्तु नहीं मांगता। वह प्रभु से कहता है कि हे प्रभु, मुझे सिर्फ आपका प्रेम चाहिए।

इसी भक्ति रचना के साथ आज का कार्यक्रम सांदगीत पूरा होता है। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।

आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।

भारतीय स्वाधीनता संघर्ष का इतिहास अविस्मरणीय घटनाओं का दस्तावेज है और हमारी इस स्वाधीनता की लड़ाई पर यदि किसी घटना ने सबसे अधिक प्रभाव डाला तो वो घटना थी जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसकी गूंज बरसों बरस बनी रही। एक ऐसी हृदय विदारक घटना जिसके बाद भारत में ब्रिटिश राज के अंत की शुरुआत हुई। जलियांवाला बाग की चर्चा शुरू होते ही सबसे पहले जो नाम याद आता है वो है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू का, जो जलियांवाला बाग के हीरो कहलाए। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने रोलेट एक्ट का विरोध करते हुए ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला कर रख दी। वो एक महान स्वाधीनता संग्राम सेनानी, खिलाफत आंदोलन के नेता, एक प्रसिद्ध वकील और महान राष्ट्रवादी नायक के रूप में याद किए जाते हैं। सैफुद्दीन किचलू का जन्म 15 जनवरी सन 1888 को पंजाब के अमृतसर में हुआ। उनके पिता का नाम अजीजुद्दीन किचलू और माता का नाम दानबीवी था। उनके पिता का पश्मीना और केसर का व्यवसाय था, जो मूल रूप से बारामूला के ब्राह्मण परिवार से संबद्ध थे। सैफुद्दीन किचलू बचपन से ही अत्यंत होनहार विद्यार्थी थे। उनकी आरंभिक शिक्षा अमृतसर में ही हुई। आगे की पढ़ाई के लिए वो कैम्ब्रिज गए, जहां से उन्होंने वकालत की पढ़ाई पूरी की और फिर जर्मनी से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो भारत वापस लौटे तथा अमृतसर आकर उन्होंने वकालत शुरू की। अपने छात्र जीवन से ही वो पराधीन भारत की स्थिति को लेकर अत्यंत संवेदनशील थे। अपने देश पर विदेशियों का राज उनसे सहन नहीं होता था। कैम्ब्रिज में शिक्षा के दौरान ही उनके भीतर क्रांति की चिंगारी सुलगने लगी थी। विदेश में पढ़ रहे भारतीय छात्रों ने पराधीन भारत की दशा पर विमर्श के लिए मजलिस नाम की एक सोसाइटी बनाई थी। सैफुद्दीन किचलू इसमें नियमित रूप से शामिल होते रहे। कैम्ब्रिज में शिक्षा के दौरान ही उन्होंने वैश्विक क्रांति से संबद्ध अनेक पुस्तकें पढ़ी। वो फ्रांसीसी क्रांति से अत्यंत प्रभावित थे। इस तरह उनके भीतर स्वातंत्र्य चेतना और राष्ट्रवाद का जन्म हुआ।

जर्मनी से डॉक्टरेट की उपाधि ग्रहण करने के बाद डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू अमृतसर आकर वकालत अवश्य करने लगे, लेकिन उनकी नजर देश की हालत पर थी। देश की आर्थिक स्थिति बहुत विकट हो रही थी। सूद और अन्य मदों में बड़ी धनराशि बाहर जा रही थी। उस पर हर साल अनाज और कपास आदि कच्चे मालों का निर्यात देश को कंगाल बना रहा था। गांव में सेना की नई भर्ती भी हुई, परिणाम स्वरूप खेती करने वालों की संख्या भी कम हो गई। स्वाभाविक रूप से इन परिस्थितियों में अनाज की उपज कम हुई, इसलिए अनाज बहुत अधिक महंगा हो गया। उस समय के सरकारी आंकड़े बताते हैं कि उस दौरान अनाज की कीमत 93% तक बढ़ गई थी। कपड़ों के दाम भी दुगने हो गए थे। महंगाई बढ़ने के साथ साथ अनाज और कपड़ा लगभग दुर्लभ सा हो गया था, जिसके कारण आम जन का जीवन बहुत कठिन हो गया। यही वो समय था जब मजदूर संघों की स्थापना हुई और जगह जगह हड़तालें हुईं। उधर पूंजीवादियों पर भी अतिरिक्त लाभ कर लगा दिया गया था। इस तरह जनता की बेचैनी और प्रतिक्रिया बढ़ती ही जा रही थी। इन्हीं परिस्थितियों में इंग्लैंड के हाईकोर्ट के जज सर सिडनी रोलेट के सभापतित्व में रोलेट कमेटी बनी। इस समिति ने जो सिफारिशें दी वो रोलेट एक्ट कहलाया, जिसे काला कानून कहा गया। इस कानून से ब्रिटिश सरकार को ये अधिकार प्राप्त हो गया कि वो किसी भी भारतीय पर अदालत में मुकदमा चलाए बिना उसे जेल में बंद कर सकती है। राजद्रोह के मुकदमे की सुनवाई के लिए एक अलग न्यायालय स्थापित हुआ। मुकदमे के फैसले के बाद किसी उच्च न्यायालय में अपील का अधिकार भी छीन लिया गया। सरकार को ये अधिकार मिल गया कि वो बलपूर्वक प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार छीन ले और अपनी इच्छानुसार किसी व्यक्ति को कारावास की सजा दे दे या देश से निष्कासित कर दे। ऐसे कई प्रावधान इस कानून में थे। रोलेट एक्ट के विरुद्ध जनता के भीतर गहरा असंतोष और रोष व्याप्त था। कुल मिलाकर सरकार इस कानून के माध्यम से अपने खिलाफ होने वाले आंदोलनों को कुचल देना चाहती थी। इस कानून के माध्यम से वो चाहती थी कि भारतीय किसी भी आंदोलन में भाग न लें। देश भर में इस कानून का विरोध हुआ। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने लोगों से आग्रह किया कि वे अपने सभी काम छोड़कर हड़ताल करें, सरकार के विरुद्ध सत्याग्रह में भाग लें। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू गांधी जी से अत्यंत प्रभावित थे। उनकी अपील ने पंजाब के लोगों में जोश भर दिया। 30 मार्च सन 1919 को उन्होंने सार्वजनिक सभा की, जिसमें 30,000 लोग शामिल हुए। उनके दमदार भाषण ने लोगों को जगाकर खड़ा कर दिया। 9 अप्रैल सन 1919 को डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल ने अमृतसर के बीचों बीच एक सरकार विरोधी जुलूस निकाला। इस जुलूस में अनगिनत लोग शामिल हुए। रोलेट एक्ट के विरुद्ध ये जनता का प्रबल प्रतिकार था।

रोलेट एक्ट के विरुद्ध जो आंदोलन खड़ा हुआ था उसकी शुरू से ही ये विशेषता थी कि उसमें हिंदू, मुसलमान और सिख सभी मन से एक होकर सम्मिलित हो गए थे। 9 अप्रैल को जो जुलूस निकला था उसमें भी जितने हिंदू थे उतने ही मुसलमान भी थे। ये रामनवमी का दिन था। इस अवसर पर त्योहार तो हर साल ही मनाया जाता था, लेकिन उस समय नगरवासियों ने उसे एक राष्ट्रीय त्योहार जैसा बना दिया। इस जुलूस का नेतृत्व डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल कर रहे थे। जुलूस बहुत बड़ा लेकिन शांतिपूर्ण था। चारों ओर महात्मा गांधी की जय, डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की जय के नारे लग रहे थे। अंग्रेज तिलमिला उठे। 10 अप्रैल को सुबह 10 बजे डिप्टी कमिश्नर ने डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को मिलने के लिए अपने बंगले में बुलाया और वहीं से दोनों को गिरफ्तार कर निर्वासित कर दिया। जनता को जब दोनों नेताओं की गिरफ्तारी का समाचार मिला तो वो उद्वेलित हो उठी। डिप्टी कमिश्नर से मिलने के लिए लोग निकल पड़े। पुलिस ने लोगों पर गोलियां चलाई, लेकिन आम जन अपने नेताओं की रिहाई चाहते थे। और फिर 13 अप्रैल सन 1919 को वो भयावह बैसाखी आई, जब जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा आयोजित थी। कुछ लोग यूं ही त्योहार मनाते हुए भी वहां पहुंच गए थे कि तभी ब्रिगेडियर जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंचा और एकत्रित भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दिया। और वो बर्बर नरसंहार की घटना इतिहास में दर्ज हुई, जिसे याद करके आज भी भारत की मिट्टी का मन भीग जाता है। दिसंबर सन 1919 में डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू रिहा किए गए। जैसे ही वो जेल से बाहर आए, अमृतसर में भारी भीड़ जमा हो गई और उन्हें अपने कंधों पर बैठाकर शहर भर में जुलूस निकला। गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन आरंभ किया तब डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू भी इसमें शामिल हुए। सन 1919 में ही वो अमृतसर शहर के नगर आयुक्त भी चुने गए थे। स्वाधीनता आंदोलन में शामिल होने के लिए उन्होंने अपनी वकालत भी छोड़ दी थी। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को अखिल भारतीय खिलाफत समिति का प्रमुख भी नियुक्त किया गया था। हालांकि तुर्की की बदलती परिस्थितियों के कारण भारत में खिलाफत आंदोलन विफल हो गया, लेकिन डॉक्टर किचलू ने एकजुट राष्ट्रवाद की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन ब्रिटिश साम्राज्यवाद है, हम सभी को एक साथ मिलकर इसे हराना होगा। वो धार्मिक आधार पर भारत के विभाजन के भी विरोधी थे। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू जामिया मिलिया विश्वविद्यालय के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और वो अपने जीवन के अंतिम दिनों तक इससे जुड़े रहे। उन्होंने तंजीम नाम से एक पत्रिका भी निकाली तथा इसके माध्यम से मुसलमानों से राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होने की अपील की। डॉक्टर किचलू सरदार भगत सिंह की नौजवान भारत सभा के भी संस्थापक सदस्य थे। भारत की आजादी के बाद डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने शांति की बहाली और सोवियत भारत संबंधों को फिर से परिभाषित करने के लिए काम करना जारी रखा। सन 1952 में वो लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने। एकता, सद्भाव और शांति के लिए हर पल प्रयास करते हुए 9 अक्टूबर सन 1963 को वो इस संसार से विदा हो गए। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिव शेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: साहस की बुलंद शुरुआत से लेकर आसमान की असीम ऊंचाइयों तक 8 अक्टूबर को पूरा देश मना रहा है भारतीय वायुसेना का 94वां वायुसेना दिवस।
2: वर्ष 1947-48, 1965 और 1971 के ऐतिहासिक युद्धों से लेकर ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन सफेद सागर तक विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायु सेना ने हर पल कर दिखाया है अदम्य पराक्रम, अत्याधुनिक तकनीक और सर्वोच्च बलिदान।
1: तो मध्य प्रदेश के जाबाज युवाओं, क्या आप तैयार हैं? बादलों को चीरकर देश का मान बढ़ाने के लिए तो बनिए अग्निवीर वायु, हासिल कीजिए वो मुकाम जो जिंदगी भर की पहचान बन जाए और गर्व से कीजिए भारत माँ की सेवा।
2: भर्ती और पात्रता से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए
1: 15 एयरमैन चयन केंद्र के इंस्टाग्राम पेज 15ASC_भोपाल और आधिकारिक वेबसाइट IAFRecruitment.edcil.co.in पर विजिट करें।
2: नभस प्रशम दीप्तम।
3: जय हिंद।

पद्मश्री नेचुरली मैंने जो मुझे मिला, और वो भी मेरे बहुत प्रिय प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम जी से जब मुझे मिला तो मुझे बहुत फ़ख्र हो रही थी, गर्व भी हो रहा था। और फिर एक एक्चुअली स्ट्रेंज है कि उस टाइम से एक भारतीय होने के नाते एक गर्व था कि ओके आई बिलोंग टू दिस कंट्री, मैं भारतीय हूँ, मैं भारत में रहती हूँ और भारत ने मुझे मेरा काम रिकग्नाइज किया है।

0: कॉलेज में हेमंत कुमार जी मिले, उनके साथ स्टेज पे गाते गाते एक दिन अचानक हेमंत कुमार जी का फ़ोन आया कि कल कॉलेज मत जाओ, राजकमल स्टूडियो में आ जाओ, गाना है। तो चार लाइन लिखवाया उन्होंने और लता जी के साथ मैंने टैगोर सॉन्ग गाया।
1: ये बातचीत हमने उनसे की जब वो भोपाल आई स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आज़ादी का महापर्व कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति देने।
2: ये दुनिया।

0: कविता जी से बातचीत के बीच में आप उन गीतों को भी सुनेंगे जिन गीतों की प्रस्तुति हुई कार्यक्रम आजादी का महापर्व में। तो आइए सुनते हैं मशहूर पार्श्व गायिका कविता कृष्णमूर्ति से ये बातचीत।
1: थोड़ा सा आपको बचपन में लेके जाऊंगा मैं, क्योंकि आप लोग धरोहर हैं, आपका बचपन कहाँ बीता? हालांकि हम लोगों को मालूम है, लेकिन पीढ़ियों के लिए हमारे पास आपकी रिकॉर्डिंग्स रहनी चाहिए। बचपन कहाँ बीता, क्या संगीत का माहौल था, क्या किस्मत आपको संगीत में ले आई?
2: मैं दिल्ली में पैदा हुई हूँ और बिल्कुल टिपिकल साउथ इंडियन फैमिली, तमिलियन फैमिली में, और मेरे हमारे बहुत क्लोज फ्रेंड्स जो एक ही घर में हम रहते थे, बंगाली भट्टाचार्यस, हम कृष्णमूर्ति, तो दो दो माएँ, दो दो फादर्स के साथ बड़ी हुई हूँ। तो दोनों कल्चर में आप जानते हैं कि संगीत बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। तो होते होते मेरे फादर गवर्नमेंट सर्विस में थे, फिर भी जब मैं 7-8 साल की थी, पहले मैं टैगोर सॉन्ग, रविंद्र संगीत सीखती थी, क्योंकि कालीबाड़ी के पास रहती थी। वहाँ मुझे एक अवार्ड मिला पहले कंपटीशन में, मैं कह रही हूँ मुझे अवार्ड मिला होगा 1960 में। तो उसके बाद म्यूज़िक टीचर ढूंढ के हिंदुस्तानी, हालांकि मम्मी को कर्नाटिक म्यूज़िक आता है, पर वो बोली नहीं, तुम दिल्ली में हो तो यहाँ हिंदुस्तानी म्यूज़िक के टीचर बेटर मिलेंगे आपको, तो यहाँ से हिंदुस्तानी शुरू करते हैं। तो मेरे बलरामपुरी मेरे सबसे पहले गुरु जी, और फिर गंधर्व महाविद्यालय जाके मैं एग्ज़ाम से थी, तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। पर कोई फिल्म म्यूज़िक में आने का कुछ था नहीं, क्योंकि माहौल तो था नहीं, और मैं सोची इंडियन फॉरेन सर्विस जाऊंगी, मेरा वही शौक था। लेकिन हमारे इलाके में रहती थी हेमा मालिनी जी लेक स्क्वायर में रहती थी, बचपन की दोस्त हैं मेरी सिस्टर और वो बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो हेमा मालिनी जी ड्रीम गर्ल बन गई, बहुत बड़ी स्टार बन गई। तो ये मेरी आंटी हैं, बंगाली आंटी हैं, जिनको मैं मामूनी कहती हूँ, उन्होंने कहा नहीं, मैं तुम्हारी फ्यूचर प्लेबैक सिंगिंग में देख रही हूँ। तो स्कूल ख़त्म होते उन्होंने मेरे फादर को कहा कि मेरी बेटी तो आपकी बेटी और आपकी बेटी मेरी बेटी, तो मैं इसको तो बॉम्बे लेके जाऊँगी। तो बॉम्बे गई मैं, वहाँ पे कुछ पेइंग गेस्ट के हिसाब से यहाँ वहाँ रहे, हेमा जी का सब, और हेमा जी की मम्मी जया चक्रवर्ती जी का सपोर्ट रहा, तो उन्होंने कुछ लोगों से इंट्रोड्यूस करवाया। तो यहाँ प्रोग्राम्स, फिर कॉलेज में ग्रेजुएशन करना सेंट जेवियर्स में, कॉलेज में हेमंत कुमार जी मिले, उनके साथ स्टेज पे गाते गाते एक दिन अचानक हेमंत कुमार जी का फ़ोन आया कि कल कॉलेज मत जाओ, राजकमल स्टूडियो में आ जाओ, गाना है। तो चार लाइन लिखवाया उन्होंने, और लता जी के साथ मैंने टैगोर सॉन्ग गाया श्रीमान पृथ्वीराज फिल्म में। वहीं से मेरी करियर आस्ते आस्ते आस्ते आस्ते बढ़ती बढ़ती गई। और जब कॉलेज ख़त्म किया, मेरे फादर तब स्विट्ज़रलैंड में थे, वो इंटरनेशनल वाइपो में थे, तो उन्होंने मेरे लिए एक सीट लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में रखा था। पर मैंने फादर को कहा, मैंने कहा, फादर यू प्लीज़ गिव अवे द सीट, आई वांट टू डू माय म्यूज़िक, आई डोंट वांट टू डू माय मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स, आई वांट टू डू माय म्यूज़िक। तो उन्होंने वो सीट सरेंडर, ही सेज़ आर यू श्योर यू वांट टू डू योर सिंगिंग, आई सेड यस एब्सोल्युटली। तो वो मतलब वहाँ से मेरी US की टूर्स मन्नादा के साथ, फिर थोड़ा यहाँ जिंगल्स गाना ऐसे करते करते
1: वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। एक बीच में आपसे एक सवाल ज़रूर पूछूंगा, अभी आपने भी कहा था क्लासिकल सिंगिंग और फिल्मी सिंगिंग, तो उस ज़माने में मन्ना डे जी जो हैं, रफ़ी साहब हैं, एक लंबी लिस्ट, लता जी हैं, सब सीख के ही आए, और अब इतने बरस बीत गए हैं, अभी आपने जिक्र किया, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं, तो क्या क्या कुछ आप फ़र्क महसूस करती हैं? आपने क्योंकि खय्याम साहब का जिक्र किया, नौशाद साहब हैं, सबका जिक्र किया, और अब नई पीढ़ी, जो दो तीन बड़े फ़र्क हैं वो आपकी नज़र में क्या है?
2: एक्चुअली उस टाइम ना एक परिवार की तरह काम होता था, जैसे लक्ष्मीकांत जी के सिटिंग रूम होता था, तो हम पहले ही पहुंच जाते थे, गाना याद करते थे, राइटर बख्शी साहब होते थे, प्रोड्यूसर डायरेक्टर होते थे, एक टीम जैसे होते थे। फिर स्टूडियो में जाओ तो 100 म्यूजिशियंस, 80 म्यूजिशियंस, सबके साथ काम होता था, और राइटर रहते थे, कुछ मैंने गलत गाया, या फिर डायरेक्टर आके बताते ये सिचुएशन है तुम इसलिए गा रहे हो। वो अभी नहीं है, अभी कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि मैंने गाया है और म्यूज़िक डायरेक्टर है अभी नहीं वहाँ पर, असिस्टेंट नहीं रिकॉर्डिंग करवाया, और कभी ऐसा भी हुआ है कि मेरे साथ ड्यूएट कौन गाने वाला है, या किस पे फिल्माया जा रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिलेगा। तो ये सब फ़र्क है। और पहले लिपसिंक होता था हमारे गाने पे, अब वो गाने काफ़ी बैकग्राउंड में भी चला जाता है। अभी मैं परदेस फिल्म का एक गाना सुना रही हूँ,

0: शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
1: अगर आप अपने संगीत सफर पर और कुछ कहें, रियाज को लेकर कुछ बातें हमारे श्रोताओं से साझा करना चाहें तो।
2: पहले नेचुरली रियाज ज़्यादा होता था, अब रोज़ एक कैप्सूल के तरह रियाज होता है, क्योंकि जब जैसे आज गाना है मुझे तो मैं बहुत ज़्यादा रियाज करूँगी सुबह तो स्टेज पे आते आते थक जाऊँगी, इसलिए एक छोटा सा मेरा स्वर साधना होता है जिसमें नॉर्मली स्टैंडिंग नोट्स का, क्योंकि एक स्टैंडिंग नोट ही स्पेशली हर संगीत में, लाइट म्यूजिक में भी स्टैंडिंग नोट का बहुत स्टेडी होना ज़रूरी है, तो वो स्टेडीनेस के लिए जैसे योगा होता है वैसे ही ब्रीदिंग सिंगिंग की जो होती है, तो उसके लिए एक लॉन्ग नोट का, प्लस फिल्म गानों में रेंज बहुत ज़रूरी होते, तो फिर ऊपर की नोट्स खुला रहे इसलिए एक नीचे से मंत्र सप्तक से तार सप्तक तक एक जो रन जो होता है वो करना बहुत ज़रूरी होता है, वो एक मेंटेन होता है वॉइस उससे, तो वो मैं रोज़ करती हूँ। और बाकी यहाँ वहाँ गाना हो जाता है, पर घर पे भी हूँ तो संगीत का एटमॉस्फेयर है मेरे घर पे। एक्चुअली आफ्टर आई मैरिड माय हस्बैंड उसके बाद ग्लोबल म्यूज़िक की तरफ ज़्यादा मैं मुड़ी, और उनके वजह से बहुत सिम्फनी ऑर्केस्ट्रास के साथ, कुछ जैज़ आर्टिस्टों के साथ काम करने का मौका मिला, तो बहुत मेरी आँख में कहते हैं खुली भी है, क्योंकि हम पहले ज़्यादा फिल्मी म्यूज़िक के तरफ मेरा ध्यान था, उसके बाद मैंने देखा कि ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंटलिस्ट से मिली जो अपनी ज़िंदगी अपने इंस्ट्रूमेंट के लिए दे चुके हैं, और फिर वो इंस्ट्रूमेंट ह्यूमन वॉइस के तरह बोलता है, और अक्रॉस द लैंग्वेजेस बैरियर्स भी, जब संगीत एक स्टेज पे आते हैं लगता है कि लैंग्वेज या रिलीजन कोई भी बैरियर नहीं होता है, ये बाउंड्री सब क्रॉस हो जाता है, संगीत वो सात सुर में हम इंटरनेशनली लोगों से मिल सकते हैं, और सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा में भी जैसे एक भारत सिम्फनी करके है और नवग्रह सिम्फनी है जो मेरे हस्बैंड ने मेरे वॉइस के लिए लिखा है, उसमें मैंने देखा कि अलग प्रांतों का, जैसे कजाकिस्तान में गई मैं तो वहाँ के जो क्वायर है वो मेरे साथ संस्कृत के श्लोक गा रहे थे, उनको मैंने थोड़ा उच्चारण बताया पर अपने से उठाकर एकदम सही गाते हैं, और तब इतना अच्छा लगता है कि उनकी आवाज़ से संस्कृत के श्लोक जब मैं सुनती थी मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो आई फील कि म्यूज़िक इज़ इंटरनेशनल और इससे बहुत बियॉन्ड बॉर्डर्स जो बोलते हैं, इट गोज़ बियॉन्ड बॉर्डर्स।
1: जब 90 का दशक आया और वो जो दौर था, फ्यूचर अगर मैं सीधा पूछूं जो फ्यूचर है सिंगिंग का, उसको आप कैसे देखती हैं?
2: पर मुझे लगता है कि फ्यूचर जो होना भी चाहिए कि इंडिपेंडेंट म्यूज़िक का होना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो हैं वो भी मेहनत कर रहे हैं अपने हिसाब से, तो उनके जो गाने हैं वो यूट्यूब में डालना, फिर उनका चैनल शुरू करना, उसमें से जो अच्छे गाते हैं बच्चे अवार्ड्स में, उनको अवार्ड्स मिलना, तो इंडिपेंडेंट म्यूज़िक का ही फ्यूचर मैं देख रही हूँ। वो ज़माना चला गया जब लोग को लगे कि मैं फिल्मों में गाऊँ तभी मेरा नाम होगा, फिल्मों में 4-5 गाने हिट हो जाएं तो मेरा फ्यूचर बन गया, अभी वो नहीं हो सकता क्योंकि फिल्म आता है और जाता है, पता भी नहीं चलता उसमें क्या गाना है, तो फिल्मों के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए, इंडिपेंडेंट म्यूज़िक मेहनत करते इंडियन इंडिपेंडेंट म्यूज़िक अपना चैनल अपना स्टाइल बरकरार रखते होते, पता चला एक दिन वो स्टाइल लोगों को पसंद है, तो दैट इज़ द ओनली फ्यूचर आई एम सीइंग इंडिपेंडेंट म्यूज़िक। देखिए वैसे मैं आजकल के बच्चों को कुछ सिखा नहीं सकती क्योंकि वो बहुत तेज़ हैं, और जो रियलिटी कॉन्टेस्ट में जो बच्चे गाते हैं तो मैं तो दंग रह जाती हूँ उनका गाना सुनकर, और ये डेफिनेटली सोशल मीडिया या इंस्टाग्राम या यूट्यूब के वजह से वो जो गाते हैं सुन सुन सुन के उन्होंने इंटरनेशनल म्यूज़िक सुना है जो हम बचपन में नहीं सुने, हमको ये मौका नहीं था, उस सबको सुन के कुछ अपने हिसाब से तैयार होते हैं और अपनी तैयारी से वो गाते हैं, तो उस हिसाब से दे आर वेरी वेरी स्मार्ट, उनको मैं कुछ एडवाइस दे नहीं सकती, पर ये कहूँगी कि गुरु शिष्य परंपरा हमारे देश की एक बहुत बड़ी पूंजी है, हमारे देश नहीं पूरे इंटरनेशनल में भी जहाँ पे भी लोग अपना कला अपनी लेगेसी बच्चों को ग्रैंड चिल्ड्रन को स्टूडेंट्स को बांटा है, ये बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुरु के साथ कैसे बैठना कैसे उठना कैसे गाना सीखना और फिर उसे टेप नहीं करना, कानों से सुनकर याद रखना, हमारे ज़माने टेप रिकॉर्डर नहीं था तो एक आदत सी हो जाती है कि सुन सुन के याद करने की, अल्फाज हो या गाना भी हो सुन सुन के, तो वो सब है वो अपने आप को और भी मजबूत बनाता है, तो गुरु शिष्य परंपरा इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, आप सीख लो वो उसके बाद अपना जो भी कुछ आप करना चाहते हो करो, पर बेसिक फाउंडेशन तो मेरे हिसाब से वो होना चाहिए।
0: एंड नाउ फॉर आवर नेक्स्ट सॉन्ग।

0: शुक्रिया, थैंक यू।
1: कार्यक्रम आमने सामने में आप सुन रहे थे मशहूर प्लेबैक सिंगर कविता कृष्णमूर्ति से बातचीत। हमें उम्मीद है आपको यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगले कार्यक्रम तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: दोपहिया वाहन की सवारी करते समय हेलमेट जरूर पहने। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में जारी।
1: साहस की बुलंद शुरुआत से लेकर आसमान की असीम ऊंचाइयों तक 8 अक्टूबर को पूरा देश मना रहा है भारतीय वायुसेना का 94वां वायुसेना दिवस।
2: वर्ष 1947-48, 1965 और 1971 के ऐतिहासिक युद्धों से लेकर ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन सफेद सागर तक विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायु सेना ने हर पल कर दिखाया है अदम्य पराक्रम, अत्याधुनिक तकनीक और सर्वोच्च बलिदान।
1: तो मध्य प्रदेश के जाबाज युवाओं, क्या आप तैयार हैं? बादलों को चीर कर देश का मान बढ़ाने के लिए तो बनिए अग्निवीर वायु, हासिल कीजिए वो मुकाम जो जिंदगी भर की पहचान बन जाए और गर्व से कीजिए भारत माँ की सेवा।
2: भर्ती और पात्रता से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए
1: 15 एयरमैन चयन केंद्र के इंस्टाग्राम पेज 15ASC_भोपाल और आधिकारिक वेबसाइट IAFRecruitment.edcil.co.in पर विजिट करें।
2: नभस प्रशम दीप्तम।
3: जय हिंद।

गंदे हाथों से कभी खाना मत खाना, कीटाणु पेट में चले जाएंगे और तुम बीमार हो जाओगे। इसीलिए तो खाना बनाने के पहले और खाने से पहले हाथों को धोना जरूरी है। धुलकर

शौच के बाद हाथों को साबुन से ही धोना। नाखूनों को साफ रखो, तुम बीमार नहीं होगे। पीने का पानी और खाने का सामान अच्छी तरह से ढककर रखना बहुत जरूरी है।

पानी अनमोल है, यह सबको जीवन देता है। पानी साफ ना हो तो यह बीमार कर देता है। इसीलिए परिवार को स्वस्थ रखने के लिए पीने का पानी साफ रखना बहुत जरूरी है।

0: इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं रचना पाठ, व्याख्यान और बहुत कुछ। आज आपको लिए चल रहे हैं मुशायरे में
1: कि हर शख्स दौड़ता है यहाँ भीड़ की तरफ, फिर ये भी चाहता है उसे रास्ता मिले।
2: आए, वाह वाह,
1: हर शख्स दौड़ता है यहाँ भीड़ की तरफ।
2: क्या कहने से, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह।
1: हर शख्स दौड़ता है यहाँ भीड़ की तरफ, फिर ये भी चाहता है उसे रास्ता मिले।
0: ये अखिल भारतीय मुशायरा आयोजित किया गया मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी, मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद, संस्कृति विभाग द्वारा, कार्यक्रम यादे बशीर बद्र के तहत।

0: तो आइए चलते हैं कुछ पलों के लिए मुशायरे में।
1: जोरदार तालियों से इस्तकबाल कर लीजिए जनाबे चित्रांश खरे।
2: एक मतलब और दो चार शेर देखें कि बहुत दिन से किनारा कर रहे हैं, बहुत दिन से किनारा कर रहे हैं, बिछड़ने का इरादा कर रहे हैं, बहुत दिन से किनारा कर रहे हैं, मोहब्बत दिल की बीमारी है जिसमें सब अपना वक्त जाया कर रहे हैं। मोहब्बत दिल की बीमारी है जिसमें सब अपना वक्त जाया कर रहे हैं। और शेर सुने कि मोहब्बत चल रही है रफ्ता रफ्ता, मोहब्बत चल रही है रफ्ता रफ्ता, मगर दो दिल तमाशा कर रहे हैं। मोहब्बत चल रही है रफ्ता रफ्ता, मगर दो दिल तमाशा कर रहे हैं। तुम्हें कुछ दिन निभाना चाहिए था, तुम्हें कुछ दिन निभाना चाहिए था, मुझे भी आजमाना चाहिए था। तुम्हें कुछ दिन निभाना चाहिए था, मुझे भी आजमाना चाहिए था। और शेर सुने कि मैं अब कमजोर साबित हो चुका हूँ, मैं अब कमजोर साबित हो चुका हूँ, मुझे आंसू छुपाना चाहिए था।
1: वाह वाह।
2: मैं अब कमजोर साबित हो चुका हूँ, शुक्रिया
1: मुझे,
2: मैं अब कमजोर साबित हो चुका हूँ, मुझे आंसू छुपाना चाहिए था। शेर सुने कि तेरे जलवों में बस चिंगारियां थीं, तेरे जलवों में बस चिंगारियां थीं, मुझे लहजा पुराना चाहिए था। तेरे जलवों में बस चिंगारियां थीं, मुझे लहजा पुराना चाहिए था। और शेर सुने कि नजाकत और बढ़ जाती तुम्हारी, नजाकत और बढ़ जाती तुम्हारी, जरा सा रूठ जाना चाहिए था।
1: वाह वाह वाह वाह वाह।
2: नजाकत और बढ़ जाती तुम्हारी, जरा सा रूठ जाना चाहिए था। अब थोड़ी बड़ी बहर की तरफ बढ़ता हूँ, ये गजल सुने कि दिल की धड़कन और फिर आंखों का पानी हो गए। बशीर बदर साहब के साथ मेरा बहुत बैठना उठना रहा है शुरुआती दौर में, और मेरी ये खुशनसीबी है कि मुझे बशीर बदर साहब का भी साया मिला, और वसीम साहब के साथ तो मैंने 13-13, 14-14 दिन एक साथ हम लोग रहे और काम किया।
1: क्या बात,
2: मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण लम्हात हैं ये।
1: क्या बात।
2: सुने कि दिल की धड़कन और फिर आंखों का पानी हो गए, तुम जुदा भी तब हुए जब जिंदगानी हो गए।
1: वाह वाह वाह वाह।
2: दिल की धड़कन और फिर आंखों का पानी हो गए, तुम जुदा भी तब हुए जब जिंदगानी हो गए। शेर सुने कि दिल मेरा कब से इसी गम के कफस में कैद है, दिल मेरा कब से इसी गम के कफस में कैद है, तुम भला कैसे हकीकत से कहानी हो गए। दिल मेरा कब से इसी गम के कफस में कैद है, तुम भला कैसे हकीकत से कहानी हो गए। और ये शेर सुने कि वो मोहब्बत के सफर से रूबरू होता गया, वो मोहब्बत के सफर से रूबरू होता गया, याद मेरे शेर जिसको मुंह जुबानी हो गए।
1: क्या कहने है?
2: वो मोहब्बत के सफर से रूबरू होता गया, याद मेरे शेर जिसको मुंह जुबानी हो गए।
1: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खूब पढ़ा आपने। ये थे जनाबे चित्रांश खरे।

0: जोरदार तालियों में इस्तकबाल कर लीजिए जनाबे फरहान मंजर।
1: गजल का मतलब पेश कर रहा हूं, बतौर खास समात फरमाइएगा। अर्ज किया है कि तेरी एक निगाह अमीक ने मुझे क्या से क्या ये बना दिया, तेरी एक निगाह अमीक ने मुझे क्या से क्या ये बना दिया, मैंने जो पढ़ा था भुला दिया, मैंने जो लिखा था मिटा दिया। तेरी एक निगाह अमीक ने मुझे क्या से क्या ये बना दिया, मैंने जो पढ़ा था भुला दिया, मैंने जो लिखा था मिटा दिया। बहुत शुक्रिया हजरत, ये शेर भी आपकी समातों के हवाले। मेरे तजुर्बे ने कहा यही जिसे सोजे दिल की खबर नहीं, मेरे तजुर्बे ने कहा यही जिसे सोजे दिल की खबर नहीं, वो चराग कोई चराग है जिसे आंधियों ने बुझा दिया। मेरे तजुर्बे ने कहा यही, मेरे तजुर्बे ने कहा यही जिसे सोजे दिल की खबर नहीं, नवाजिश। वो चराग कोई चराग है जिसे आंधियों ने बुझा दिया, जिसे आंधियों ने बुझा दिया। और हजरत ये शेर भी समाप्त फरमाइएगा कि तेरी एक नजर का कमाल है भला और किसकी मजाल है, तेरी एक नजर का कमाल है भला और किसकी मजाल है, जिसे तूने चाहा उठा दिया, जिसे तूने चाहा गिरा दिया। तेरी एक नजर का कमाल है, तेरी एक नजर का कमाल है भला और किसकी मजाल है, जिसे तूने चाहा उठा दिया, जिसे तूने चाहा गिरा दिया, जिसे तूने चाहा उठा दिया, जिसे तूने चाहा गिरा दिया। जो किनारे नाव लगी मेरी तू कहा शनावर वक्त ने, जो किनारे नाव लगी मेरी तू कहा शनावर वक्त ने, तेरा डूबना तो नसीब था तुझे पार किसने लगा दिया।
0: वाह वाह वाह वाह वाह।
1: जो किनारे नाव लगी मेरी तू कहा शनावर वक्त ने, तेरा डूबना तो नसीब था तुझे तुझे पार किसने लगा दिया, तुझे पार किसने लगा दिया। नवाजिश हो रही है इस गजल का आखिरी शेर के, रहूं उम्र भर मेरे साथ साथ मुझे तुमसे कोई गिला नहीं, रहूं उम्र भर मेरे साथ साथ मुझे तुमसे कोई गिला नहीं, मगर आफतों ये बता तो दो मेरे घर का किसने पता दिया। रहूं उम्र भर मेरे साथ साथ मुझे तुमसे कोई गिला नहीं,
0: वाह,
1: मगर आफतों ये बता तो दो मेरे घर का किसने पता दिया, मेरे घर का किसने पता दिया। बड़ी ही खूबसूरती के साथ आप समाअत फरमा रहे हैं हजरत। एक गजल पढ़ने से कबल दो चार शेर और आपकी समातों के हवाले। अर्ज किया है कि बहुत छोटी सी बहर में गजल कहने की कोशिश की है। अर्ज किया है कि लुत्फे दीदारे यार टूटेगा, लुत्फे दीदारे यार टूटेगा ख्वाब का जब हिसार टूटेगा, लुत्फे दीदारे यार टूटेगा ख्वाब का जब हिसार टूटेगा, कैसे धड़केगा ये किसी के लिए, कैसे धड़केगा ये किसी के लिए, दिल अगर बार बार टूटेगा। लुत्फे दीदारे यार टूटेगा, नवाजिश, लुत्फे दीदारे यार टूटेगा ख्वाब का जब हिसार टूटेगा, कैसे धड़केगा ये किसी के लिए, दिल अगर बार बार टूटेगा, दिल अगर बार बार टूटेगा, फिर तुझे इंतजार है उसका, फिर तेरा एतबार टूटेगा, फिर तुझे इंतजार है उसका,
0: फिर तेरा
1: एतबार, तुझे इंतजार है उसका, फिर तुझे इंतजार है उसका, फिर तेरा एतबार टूटेगा, फिर तेरा एतबार टूटेगा। मतलब पढ़ता हूँ कि उजाले भर गई जब से हयात आंखों में, उजाले भर गई जब से हयात आंखों में, सिमट के आ गई कुल कायनात आंखों में, उजाले भर गई जब से हयात आंखों में, सिमट के आ गई कुल कायनात आंखों में, हमारी आंखों को इतना तो जब्त लाजिम है कि कोई पढ़ न सके मुश्किलात आंखों में, हमारी आंखों को इतना तो जब्त लाजिम है कि कोई पढ़ ना सके मुश्किलात आंखों में, कि कोई पढ़ ना सके मुश्किलात आंखों में। और ये मक्ता पढ़ता हूँ हजरत और आपकी ज़हमत तमाम के कोई पढ़ ना सके मुश्किलात आंखों में। यकीन दिलाते हो जिस बात का हमें फरहान, यकीन दिलाते हो जिस बात का हमें फरहान, दिखाई दे भी तू हमको वो बात आंखों में, दिखाई दे भी तू हमको। बहुत बहुत शुक्रिया हजरत।
0: वाह वाह वाह वाह वाह। दोस्तों ये थे जनाब फरहान मंजर साहब, जिनका कोरवई से ताल्लुक़ था और अपने कलाम से नवाज रहे थे और आपको महसूस कर रहे थे।

0: मोहतरमा ज्योति आजाद खत्री ने कलाम से नवाजा।
1: मतलब अर्ज किया है, दिल को एक दिल का तलबगार किया जाता है, दिल को एक दिल का तलबगार किया जाता है, इस तरह हिजर से भी प्यार किया जाता है।
0: वाह।
1: दिल को एक दिल का तलबगार किया जाता है, इस तरह हिजर से भी प्यार किया जाता है। और शेर मुलायजा फरमाए, उसको समझाओ खुली आंखें कोई शर्त नहीं, उसको समझाओ खुली आंखें कोई शर्त नहीं, बंद आंखों से भी दीदार किया जाता है। उसको समझाओ खुली आंखें कोई शर्त नहीं, बंद आंखों से भी दीदार किया जाता है। और एक ही बात को हम थक गए कहते कहते, एक ही बात को हम थक गए कहते कहते, और कैसे भला इंकार किया जाता है। एक ही बात को हम थक गए कहते कहते, और कैसे भला इंकार किया जाता है। मतला चंद शेर और देखें, कोई अव्वल है न सानी है तुम्हें देखना है, कोई अव्वल है न सानी है तुम्हें देखना है, कितना इन बातों में मानी है तुम्हें देखना है। कोई अव्वल है न सानी है तुम्हें देखना है, कितना इन बातों में मानी है तुम्हें देखना है। और शेर देखें कि हम तो हर हाल में राजी हैं निभाने को मगर, हम तो हर हाल में राजी हैं निभाने को मगर, किस तरह तुमने निभानी है तुम्हें देखना है। कि हम तो हर हाल में राजी हैं निभाने को मगर, किस तरह तुमने निभानी है तुम्हें देखना है। और मैंने तो रंग गिराए हैं फकत कागज पर, मैंने तो रंग गिराए हैं फकत कागज पर, किसकी तस्वीर बनानी है तुम्हें देखना है।
0: वाँ वाँ वाँ।
1: कि मैंने तो रंग गिराए हैं फकत कागज पर, किसकी तस्वीर बनानी है तुम्हें देखना है।
0: देखना है।
1: एक गजल से चंद अशआर और देखें, मतलब है कि ऐसा नहीं कि मुझको पुकारा नहीं गया, ऐसा नहीं कि मुझको पुकारा नहीं गया, उस समत दिल ही मेरा दोबारा नहीं गया, ऐसा नहीं कि मुझको पुकारा नहीं गया, उस समत दिल ही मेरा दोबारा नहीं गया, आंखों में ख्वाब इसलिए जिंदा रखे गए, आंखों में ख्वाब इसलिए जिंदा रखे गए, अरमान दिल में कोई भी मारा नहीं गया। कि आंखों में ख्वाब इसलिए जिंदा रखे गए, अरमान दिल में कोई भी मारा नहीं गया, ऐसा नहीं कि मुझको पुकारा नहीं गया, उस संत दिल ही मेरा दोबारा
0: नहीं
1: गया।
0: क्या कहने हैं भाई, वाह वाह वाह वाह वाह।
1: मतला चंद शेर और देखें, हो इजाजत तो कुछ सुनाऊं मैं, हो इजाजत तो कुछ सुनाऊं मैं, तेरी मुश्किल का हल बताऊं मैं।
0: वाह।
1: हो इजाजत तो कुछ सुनाऊं मैं, तेरी मुश्किल का हल बताऊं मैं, जब ठिकाना कोई मेरा पूछे, जब ठिकाना कोई मेरा पूछे, क्या तेरे दिल को घर बताऊं मैं। कि जब ठिकाना कोई मेरा पूछे, क्या तेरे दिल को घर बताऊं मैं। और अब तो आंसू भी आहें भरने लगे, अब तो आंसू भी आहें भरने लगे, हाल दिल का अगर सुनाऊं मैं। कि अब तो आंसू भी आहें भरने लगे, हाल दिल का अगर सुनाऊं मैं। आखिरी गजल से चंद अशआर
0: जी, अशआर
1: मतला अर्ज किया है, तसव्वुरात की जागीर देखते रहना, तसव्वुरात की जागीर देखते रहना, हमारे ख्वाब की ताबीर देखते रहना, तसव्वुरात की जागीर देखते रहना, हमारे ख्वाब की ताबीर देखते रहना। शेर मुलाहजा फरमाए कि मैं सामने हूं अभी गुफ्तगू करो मुझसे, मैं सामने हूँ अभी गुफ्तगू करो मुझसे, कि बाद में मेरी तस्वीर देखते रहना। बहुत शुक्रिया। कि मैं सामने हूँ अभी गुफ्तगू करो मुझसे, कि बाद में मेरी तस्वीर देखते रहना। और शेर की, मैं अपनी आंखों से दुनिया को जीत लाऊंगी, मैं अपनी आंखों से दुनिया को जीत लाऊंगी, तू मेरे पाँव की जंजीर देखते रहना। मैं अपनी आंखों से दुनिया को जीत लाऊंगी, तू मेरे पाँव की जंजीर देखते रहना, तसव्वुरात की जागीर देखते रहना, हमारे ख्वाब की ताबीर देखते रहना। बहुत शुक्रिया।
0: वाह वाह वाह वाह। ये थी मोहतरमा ज्योति आज़ाद खत्री साहिबा।

0: दरख्त जब कलम बन जाए तो वो जनाबे प्रोफेसर वसीम बरेलवी का रूप धार लेते हैं।
1: पेश करता हूं कि दियों का कद घटाने के लिए
0: रातें बड़ी कर,
1: दियों का कद घटाने के लिए रातें बड़ी करना, बड़े शहरों में रहना हो तो फिर बातें बड़ी करना, दियों का कद घटाने के लिए रातें बड़ी करना, बड़े शहरों में रहना हो तो फिर बातें बड़ी करना, ये क्या जाने, ये सुन के बताइए शेर, ये क्या जाने, ये दिल कच्ची जमी का इस्तियारा है। भोपाल में बताने की जरूरत नहीं है, मिसरा पढ़ रहा हूं कि ये क्या जाने, ये क्या जाने, ये दिल कच्ची जमी का इस्तियारा है, इन आंखों को तो बस आता है बरसातें बड़ी करना।
0: वाह,
1: इन आंखों को तो बस आता है बरसातें बड़ी करना, मोहब्बत में बिछड़ने का हुनर सबको नहीं आता।
0: वाह,
1: मोहब्बत में बिछड़ने का हुनर सबको नहीं आता, किसी को छोड़ना हो तो मुलाकातें बड़ी करना। मोहब्बत में बिछड़ने का हुनर सबको नहीं आता,
0: जिंदाबाद,
1: जिंदाबाद, सबको नहीं आता। मोहब्बत में बिछड़ने का हुनर सबको नहीं आता, किसी को छोड़ना हो तो
0: मुलाकातें
1: बड़ी करना, किसी को छोड़ना हो तो मुलाकातें बड़ी करना। आइए अब मतलब सुनाता हूँ, पेश करता हूँ कि फैसला हो ही नहीं पाया बहुत बातों के बाद।
0: वाह,
1: फैसला हो ही नहीं पाया बहुत बातों के बाद, कौन खुलता है यहाँ कितनी मुलाकातों के बाद। फैसला हो ही नहीं पाया बहुत बातों के बाद, कौन खुलता है यहाँ कितनी मुलाकातों के बाद, कौन खुलता है यहाँ कितनी मुलाकातों के बाद। आंसुओं के सामने पत्थर दिली की क्या बिसात, आंसुओं के सामने पत्थर दिली की क्या बिसात, अच्छे अच्छे घर दरक जाते हैं बरसातों के बाद। आंसुओं के सामने पत्थर दिली की क्या बिसात, अच्छे अच्छे घर दरक जाते हैं बरसातों के बाद, अच्छे अच्छे घर दरक जाते हैं बरसातों के बाद। कि हर शख्स दौड़ता है यहाँ भीड़ की तरफ, फिर ये भी चाहता है उसे रास्ता मिले।
0: आए, वाह वाह,
1: हर शख्स दौड़ता है यहाँ भीड़ की तरफ,
0: क्या कहने से, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह,
1: हर शख्स दौड़ता है यहाँ भीड़ की तरफ, फिर ये भी चाहता है उसे रास्ता मिले। पेश करता हूँ कि मालिक तेरा करम कि बड़ी लंबी उम्र दी।
0: आहा,
1: सुने बहुवाल, मालिक तेरा करम के बड़ी लंबी उम्र दी, और उस पे ये के बोझ किसी पर नहीं हुए।
0: वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह वाह वाह वाह सर, वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह सर, वाह वाह वाह वाह वाह वाह।
1: मालिक तेरा करम के बड़ी लंबी उम्र दी, और इस पे ये के बोझ किसी पर नहीं हुए। आखिर में तीन चार शेर और सुनाऊंगा, ये भी नई गजल सुनाऊंगा। मतलब सुनिए, बहुत अच्छा सुना है आप, आपने वहां पहुंचा दिया जहां पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी था। अना को राह में आने न देना, अना को
0: राह में आने न देना,
1: आने न देना। साहब वो शायरी ही नहीं होती जो बनाई जाए, शायरी वही होती जो होती है।
0: वाह,
1: आइए, मैं तो एक एक लफ्ज का गुलाम हूँ, पूरी जिंदगी एक एक लफ्ज, मैं तो क्या कह सकता था, बस मुझे उसने कहा है, मैंने नहीं कहा, लफ्जों ने मुझे कहा।
0: क्या बात है,
1: पेश करता हूँ कि अना के बीच, मैंने अर्ज किया था आपसे कि अना को राह में आने न देना, कोई आवाज दे तो लौट आना।
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह,
1: राह में आने न देना, अना को राह में आने न देना, कोई आवाज दे तो
0: लौट आना,
1: अना को राह में आने न देना, कोई आवाज दे तो लौट आना। ताल्लुक जिंदा रखने को बहुत है, गजल वालों, भोपाल वालों, गजल वालों सुनो, कि ताल्लुक जिंदा रखने को बहुत है, ताल्लुक जिंदा रखने को बहुत है, बिछड़ते वक्त आंखें भीग जाना।
0: वाह,
1: ताल्लुक जिंदा रखने को बहुत है,
0: बिछड़ते।

0: साहस की बुलंद शुरुआत से लेकर आसमान की असीम ऊंचाइयों तक 8 अक्टूबर को पूरा देश मना रहा है भारतीय वायुसेना का 94वां वायुसेना दिवस।
1: वर्ष 1947-48, 1965 और 1971 के ऐतिहासिक युद्धों से लेकर ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन सफेद सागर तक विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायु सेना ने हर पल कर दिखाया है अदम्य पराक्रम, अत्याधुनिक तकनीक और सर्वोच्च बलिदान।
0: तो मध्य प्रदेश के जाबाज युवाओं, क्या आप तैयार हैं? बादलों को चीरकर देश का मान बढ़ाने के लिए तो बनिए अग्निवीर वायु, हासिल कीजिए वो मुकाम जो जिंदगी भर की पहचान बन जाए और गर्व से कीजिए भारत माँ की सेवा।
1: भर्ती और पात्रता से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए
0: 15 एयरमैन चयन केंद्र के इंस्टाग्राम पेज 15ASC_भोपाल और आधिकारिक वेबसाइट IAFRecruitment.edcil.co.in पर विजिट करें।
1: नभः स्पृशं दीप्तम्।
2: जय हिंद।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। मैं हूं आपका रेडियो मित्र प्रमोद शर्मा।
2: और मैं हूं मोनिका तिवारी।
1: और श्रोताओं, कार्यक्रम है देश का रतन रतन टाटा। श्रोताओं, स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध लेखक कार्लाइल ने मैनचेस्टर में दिए अपने भाषण में कहा था कि जिस देश का लोहे पर नियंत्रण हो जाता है, उसका शीघ्र ही सोने पर भी नियंत्रण हो जाता है।
2: श्रोताओं, मैनचेस्टर में दिए इस भाषण को भारत के एक नवयुवक ने भी सुना और बहुत प्रभावित भी हुआ। उसने अपने व्यापार को एक नई दिशा दी और आगे चलकर भारतीय औद्योगिक विकास की एक महत्वपूर्ण कड़ी बन गया। नाम था उसका जमशेद जी नौशेरवान जी टाटा, टाटा समूह का संस्थापक।
1: श्रोताओं, गुजरात के पारसी खानदान में जन्मे जमशेद जी की फितरत कुछ अलग ही थी। शिक्षा पूरी होने के बाद उनके पिता ने उन्हें एक वकील के साथ लगा दिया, लेकिन उनका दिल तो व्यापार में लगा था। उन्होंने वकील का दफ्तर छोड़ा और पिताजी का कारोबार संभाल लिया।
2: कारोबार को भारत से बाहर भी फैलाने के लिए वो चीन और हांगकांग गए, वहाँ अपनी शाखाएं खोली। इसी कड़ी में आगे वो इंग्लैंड भी गए। उस समय उनकी उम्र महज 25 साल की थी। 4 सालों तक वो वहाँ के सूती वस्त्र उद्योग का अध्ययन करते रहे।
1: और श्रोता, उन्होंने पाया कि इंग्लैंड वाले भारत से कपास कोड़ियों के मोल खरीदते हैं और अपनी मिलों में इससे कपड़ा बना करके भारत को कई गुना ज्यादा कीमतों पर बेच देते हैं। उनका मन बहुत दुखी हुआ। यह तो देश के संसाधनों की लूट है। उन्होंने इरादा किया कि ऐसी ही मिलें वे भारत में भी खोलेंगे।
2: सन 1877 में उन्होंने नागपुर में एम्प्रेस मिल नाम से एक सूती मिल खोली। कठिनाइयां बहुत आईं, लेकिन स्वदेशी का जुनून उन्हें आगे बढ़ाता गया। 3 साल बाद उनके मन में इस्पात उद्योग की अभिलाषा उत्पन्न हुई। अंग्रेज सरकार से इतने बड़े उद्योग को स्वीकृति करना आसान नहीं था उनके लिए। काफी संघर्ष के बाद उन्हें इसकी इजाजत मिली।
1: और श्रोताओं, इसके बाद खनिज सर्वेक्षण का काम शुरू हुआ, लेकिन इसी बीच उनकी मृत्यु हो गई। तब यह काम उनके छोटे बेटे दोराब जी टाटा ने पूरी की। 1911 में टाटा आयरन स्टील की स्थापना की गई। जमशेद जी का यह महान सपना पूरा हुआ। आज के झारखंड के साक्ची गांव में जंगलों को साफ करके यह कारखाना लगाया गया। और श्रोताओं, यह गांव आज एक महानगर का रूप ले चुका है, जिसका नाम भी जमशेदपुर रखा गया है। चलिए श्रोताओं, बात करते हैं रतन टाटा जी के बारे में। श्रोताओं, आपने कहावत सुनी होगी, लीक छोड़े तीनों चले सायर सिंह सपूत, यानी कि सागर, सिंह और सुपुत्र, ये तीनों परंपराओं के बंदी नहीं होते हैं, ये तो खुद नई परंपराएं बनाते हैं। भारत के विशालकाय टाटा समूह के चेयरमैन रहे रतन टाटा पर यह उक्ति पूरी तरह से लागू होती है। सन 2012 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन के पद से रिटायर हो चुके हैं वे, लेकिन आभा मंडल उनका अब भी उतना ही विराट है।
2: श्रोताओं, रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर सन 1937 को सूरत शहर में हुआ था। पिता का नाम था नवल टाटा। जब वो 10 साल के थे और उनके छोटे भाई जिमी 7 साल के थे, तब उनके माता पिता एक दूसरे से अलग हो गए। तब दोनों भाइयों का लालन पालन उनकी दादी नवजबाई टाटा ने किया।
1: रतन टाटा की शुरुआती पढ़ाई मुंबई के कैंपियन स्कूल में हुई और उनकी माध्यमिक शिक्षा कैथेड्रल एंड जॉन कनन स्कूल में हुई। और इसके बाद उन्होंने अपना बीएस वास्तुकला में और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के साथ कॉर्मल यूनिवर्सिटी से किया और फिर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से 1975 में एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया।
2: भारत लौटने से पहले रतन टाटा ने लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में कुछ समय काम किया। उन्होंने टाटा ग्रुप के साथ अपने करियर की शुरुआत सन 1961 में की थी। शुरुआती दिनों में उन्होंने टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम किया था। इसके बाद वो अपने ग्रुप की अन्य कंपनियों से जुड़ गए।
1: श्रोता, 1971 में उन्हें नालको में डायरेक्टर इन इंचार्ज बनाया गया। उस समय यह कंपनी भारी घाटे में चल रही थी, लेकिन रतन टाटा के आते ही इसकी हालत बदलने लगी और इसका मार्केट 2% से बढ़कर के 25% हो गया। लेकिन इसके बाद इमरजेंसी लग गई और नई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो गई। यह कंपनी एक बार फिर टूटने के कगार पर पहुंच गई।
2: वर्ष 1991 में जेआरडी टाटा ने टाटा ग्रुप का अध्यक्ष पद छोड़ा और रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने नई बुलंदियों को छुआ। टाटा कंसल्टेंसी ने पब्लिक इशू जारी किया। टाटा मोटर्स न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध की गई।
1: श्रोता, 1998 में टाटा मोटर्स ने अपनी पहली पूर्णतः भारतीय कार इंडिका पेश की। तत्पश्चात टाटा की टेटली, टाटा मोटर्स ने जैगवार लैंड रोवर, टाटा स्टील ने कोरस का अधिग्रहण किया। 2008 में आई टाटा नैनो रतन टाटा के सपने के पूरा होने जैसा था।
2: 2012 में रतन टाटा रिटायर हो गए। हालांकि टाटा ग्रुप इसके पहले दो और बार इस मोड़ पर आ चुका था, लेकिन हर बार उन्होंने उन्हें जाने से रोक लिया। सर्वप्रथम उनका रिटायरमेंट 2002 में शेड्यूल किया गया था, जब वो 65 साल के थे, लेकिन टाटा सन्स ने फटाफट उन्हें नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में अगले 5 सालों के लिए उन्हें रीडेजिग्नेट कर दिया।
1: 3 साल बाद बोर्ड ने नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के रिटायरमेंट एज बढ़ा करके 75 साल कर दी। संदेश बिल्कुल साफ था कि रतन टाटा को छोड़ना संभव नहीं है कंपनी के लिए। केवल बोर्ड ही ऐसा नहीं चाहता था, बल्कि शेयर होल्डर्स भी समर्थन में चिल्ला रहे थे। टाटा स्टील के एजीएम के एक शेयर होल्डर ने तो यहाँ तक कह दिया था कि हम अपना रतन खो नहीं सकते।
2: सचमुच टाटा ग्रुप के रतन ही थे वो। हालांकि वर्ष 1991 में इस ग्रुप के चेयरमैन वो इसलिए बने थे कि उनका सरनेम टाटा था, लेकिन लगभग 20 सालों के काम के दौरान उन्होंने ये साबित कर दिया था कि इस सरनेम से हटकर भी बहुत कुछ है वो। उनके कार्यकाल में टाटा ग्रुप का रेवेन्यू 40 गुना बढ़ गया और शुद्ध मुनाफा 4 गुना बढ़ गया था।
1: श्रोताओं, रतन टाटा की उपलब्धियों को देखते हुए उन्हें भारी संख्या में पुरस्कार और सम्मान मिले। कई यूनिवर्सिटीज ने उन्हें मानद उपाधियां प्रदान की। भारत सरकार भी उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित कर चुकी है। चलिए श्रोताओं, अब एक विषय को हम और उठाते हैं कि अपनी विरासत अपने बेटों को सौंपने की परंपरा नहीं है टाटा परिवार में।
2: श्रोताओं, आपको सुनकर शायद आश्चर्य होगा कि भारत के सबसे बड़े औद्योगिक घरानों में एक टाटा ग्रुप में इसके फाउंडर मेंबर को छोड़कर किसी भी चेयरमैन का बेटा या बेटी उसका वारिस नहीं बना है।
1: हाँ श्रोताओं, 1887 में टाटा एंड सन्स की स्थापना करने वाले जमशेद जी नुसेरवान जी, टाटा की विरासत उनके बड़े बेटे सर दोराब जी टाटा को मिली थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। अतः 1932 में उनकी मृत्यु के बाद कंपनी की कमान उनकी बहन के बेटे सर नावरोजी सकटवाला को दी गई और सन 1938 में सर नावरोजी सकटवाला की आकस्मिक मृत्यु के बाद यह कमान जेआरडी टाटा के हाथों में आ गई। जेआरडी टाटा जमशेद जी टाटा के चचेरे भाई थे, जिन्होंने भारत में पहली एयरलाइंस की सुविधा मुहैया कराई थी। लेकिन अफसोस कि जेआरडी टाटा के भी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए 1991 में कंपनी की कमान रतन टाटा को सौंपी गई। वे नवल टाटा के बेटे थे, जिन्हें जेआरडी टाटा ने गोद लिया था।
2: अगर रतन टाटा ने शादी की होती और उनकी अपनी संतान होती तो स्वाभाविक रूप से वही उनकी उत्तराधिकारी होती, लेकिन तब इतिहास अपने आप को दोहरा ना पाता। वर्ष 2012 में उनके रिटायरमेंट के बाद उनकी विरासत साइरस मिस्त्री को मिली। साइरस मिस्त्री रतन टाटा के सौतेले भाई के सगे साले हैं।
1: चलिए श्रोताओं, बात करते हैं रतन टाटा की ड्रीम कार नैनो कार की कहानी के बारे में। श्रोताओं, रतन टाटा का नाम नैनो से अभिन्न रूप से जुड़ा है। यह उन्हीं का सपना था और उन्हीं की लगन से संभव भी हुआ, लेकिन इसकी एक लंबी कहानी है जो संक्षेप में हम आपको सुनवाते हैं।
2: श्रोताओं, मुनाफा कमाने से बढ़कर लोगों की सेवा करना ही रतन टाटा की दिली इच्छा रही है। उनकी इस इच्छा का परिणाम थी नैनोकार। एक पत्रिका के अनुसार एक बार रतन जी टाटा जब बेंगलुरु की ट्रैफिक में फंस गए तब उन्होंने एक पूरे परिवार को एक स्कूटर पर जाते हुए देखा। यहीं से उनके मन में नैनो कार का विचार कौन था। और श्रोताओं, एक इंटरव्यू में रतन टाटा ने कहा,
1: मेरे अंतर मन के कोने में हमेशा एक बात रही है कि भारत के लिए कुछ करना चाहिए। क्योंकि ट्रांसपोर्ट मेरी दिलचस्पी का क्षेत्र है, इसलिए मुझे लगता है कि मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ। शहरीकरण जब रफ्तार पकड़ता है तो प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स एक बड़ा मुद्दा बन जाता है, खास करके उस समय जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुलभ न हो। दोपहिया वाहन जिसे पिता चलाता है, बड़ी संतान आगे खड़ी होती है और बच्चे को गोद में लिए पत्नी पीछे बैठती है, भारत के जीवन में रच बस गया है। लेकिन दोपहिया वाहन परिवार को कहीं ले जाने के लिए अपेक्षाकृत असुरक्षित माध्यम है। और इससे मेरे मन में यह विचार आया कि ट्रांसपोर्ट की अपेक्षाकृत एक सुरक्षित मोड़ का निर्माण करना चाहिए।
2: शुरू में रतन टाटा स्कूटर की टेढ़ी मेढ़ी डिजाइनें खींचा करते थे ताकि लोग सुरक्षित यात्रा कर सकें। उन्होंने एक उद्योग संघ से संपर्क किया और टाटा मोटर्स के साथ मिलकर एक एशियाई कार बनाने का सुझाव दिया। एक ऐसी कार जिसका बड़े पैमाने पर उत्पादन हो, जिसमें तमाम देश शामिल हों और विभिन्न विभिन्न लोग विभिन्न विभिन्न पुर्जे बनाएं।
1: लेकिन उन्हें यह निराशाजनक उत्तर मिला। टाटा मोटर्स ने जब इंडिका बनाने का फैसला किया था तो उस समय भी ऐसा ही निराशाजनक उत्तर उन्हें मिला था। रतन टाटा ने एक औद्योगिक संस्था के सामने प्रस्ताव रखा कि क्यों न पार्टनरशिप में एक ऐसी कार बनाई जाए जो भारत में ही अभिकल्पित और विकसित व पूरी तरह से निर्मित हो। इसे याद करते हुए बताते हैं, हर एक ने मेरी हंसी उड़ाई, कुछ ने तो कटाक्ष भी किए, लेकिन टाटा मोटर्स निराश नहीं हुई। इंडिका कार बाजार में आई 1998 में और इसकी सफलता से उत्साहित होकर के टाटा मोटर्स और उसकी टीम ने एक असाधारण काम करने के बारे में सोचने लगे। कम कीमत वाली एक ऐसी कार जो व्यक्तिगत गतिशीलता के क्षेत्र में क्रांति ला दे।
2: श्रोताओं, वर्ष 2003 में जेनेवा मोटर शो में रतन टाटा ने एक अनौपचारिक टिप्पणी की जिसने नैनो की कीमत 1,00,000 रुपए तय करने के विचार को जन्म दिया था। ब्रिटिश समाचार पत्र फाइनेंशियल टाइम्स द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने सहज ढंग से कहा कि उनकी कार की कीमत $2,500 के आसपास हो सकती है।
1: शुदा अगले दिन अखबारों में खबर छपी कि टाटा समूह लखटकिया कार के निर्माण की योजना बना रहा है। इस तरह 1,00,000 रुपए कीमत की कार बनाना उनका लक्ष्य बन गया है और यह वादा जिसे निभाना उनके लिए जरूरी भी था।
2: उनकी टीम उनके इस लक्ष्य को पूरा करने में जुट गई। हालांकि ऑटोमोबाइल उद्योग के हर पेशेवर ने लखटकिया कार के उनके इस लक्ष्य का खूब मजाक उड़ाया। भारत में सबसे बड़ी विदेशी कार निर्माता कंपनी सुजुकी के चेयरमैन ओसामू सुजुकी ने घोषणा की कि इस लागत पर कार बनाना संभव ही नहीं है।
1: श्रोताओं, लागत की सीमा के कारण रतन टाटा ने परियोजना के प्रारंभिक चरण में एक ग्रामीण कार की परिकल्पना की थी। एक ऐसी कार जिसमें दरवाजे व खिड़कियां ना हो, संभवतः नीचे सरकाए जाने लायक प्लास्टिक के पर्दे हों। यह वस्तुतः ऑटो रिक्शे का चार पहिए वाला एक बेहतर संस्करण था।
2: लेकिन जब परियोजना ने मूर्त रूप लेना शुरू किया तब टाटा मोटर्स के इंजीनियरों ने महसूस किया कि यह उनकी परीक्षा की घड़ी है और प्लास्टिक के पर्दे जैसी बकवास चीजों को छोड़ दिया जाए। राय ये बनी कि यह सचमुच की कार होनी चाहिए, न कि नाम की कार।
1: हाँ श्रोताओं, और यह बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार था। समय बीतने के साथ महंगाई बढ़ रही थी लेकिन लागत को स्थिर रखना था, फीचर्स भी बढ़ाने थे। रतन टाटा के उर्वर दिमाग से तमाम आइडियाज निकल रहे थे। एक विचार यह बना कि इंजीनियरिंग प्लास्टिक और नए पदार्थों का इस्तेमाल करके यह कार बनाई जाए जिसमें वेल्डिंग की जगह विमानन में प्रयुक्त चिपकने वाले पदार्थ इस्तेमाल किए जाए और एक पुर्जा कई सारे काम करे। लेकिन ये सब विचार यथार्थ की कठोर धरातल का सामना नहीं कर सके। प्लास्टिक का विचार छोड़ दिया गया क्योंकि यह पाया गया कि पेंट की हुई प्लास्टिक इस्पात के मुकाबले महंगी पड़ेगी।
2: श्रोताओं, एक विचार ये भी आया कि लागत कम रखने के लिए चौपहिया साइकिल कार बनाई जानी चाहिए। सुरक्षा के लिए शटर लगाने का भी सुझाव दिया गया। शुरुआती ड्राइंग्स को देखने पर समझ आता है कि इनमें से कोई भी ड्राइंग आज की नैनो कार से बिल्कुल भी नहीं मिलती है।
1: बड़े पैमाने पर उत्पादन नैनो के समीकरण का अंग था। रतन टाटा ने बताया कि हर साल 2 लाख कारों का उत्पादन करना चाहिए, लेकिन वे संतुष्ट न हुए। वे चाहते थे कि या तो हर साल 10 लाख कारों का उत्पादन हो या एक भी नहीं। प्रतिवर्ष एक ही मॉडल की 10 लाख कारें, भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ था और इसके लिए अरबों डॉलर के निवेश की आवश्यकता थी। नैनो के विकास की कहानी शुरू से लेकर के आखिर तक रोमांच और अनूठेपन से भरी रही। टाटा मोटर्स नैनो को सही मायने में एक आधुनिक उत्पाद बनाने की कोशिश कर रहा था। शुरुआती अनिश्चितताएं हट जाने के बाद एक चीज स्पष्ट थी कि नैनो एक वास्तविक कार होगी। और रतन टाटा ने स्पष्ट कहा कि हम आधी कार नहीं बनाने जा रहे हैं, हम पूरी कार बनाने जा रहे हैं।
2: श्रोताओं, अप्रैल 2003 में रतन टाटा के साथ स्मॉल कार टीम की बैठक से समझ में आता जा रहा था कि कार अब भी इन्वेंशन की स्टेज पर ही थी। इस बैठक में अनेक प्रकार की डिजाइनों पर चर्चा हुई। बैठक रतन टाटा के इस सुझाव के साथ खत्म हुई कि टीम 6 महीनों तक इस परियोजना पर पूर्णकालिक काम करेगी। टीम को भी नए तरह से पुनर्गठित किया गया था।
1: श्रोताओं, कार की डिजाइनिंग में सुरक्षा मानकों, इंजन की क्वालिटी और उत्सर्जन स्तर सहित तमाम आधुनिकताओं को शामिल करने पर ध्यान दिया गया। रतन टाटा किसी भी तरह के कंप्रोमाइज के मूड में बिल्कुल नहीं थे। सस्ती कार तो चाहते थे वो, लेकिन घटिया कार नहीं चाहते थे। ग्राहकों की नब्ज वे पहचानते थे।
2: 2005 में छोटी कार का एक शुरुआती संस्करण तैयार किया गया जो सिंगल सिलेंडर वाला था। रतन टाटा का ड्राइविंग एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा। लंबे डील डोल वाले रतन टाटा इस कार में कैसे बैठे, ये भी एक रहस्य ही है। लेकिन कार से निकलने के बाद उन्होंने कहा, मुझे इसे चलाना ही नहीं चाहिए था।
1: और श्रोताओं, इस तरह समय बीतता गया, हताशा बढ़ती गई। कुछ दिनों बाद छोटी कार का दूसरा संस्करण सामने आ गया। 2 सिलेंडर वाला था वो। पहले वाले से ये कुछ बेहतर था, लेकिन इसमें भी सुधार की जरूरत थी।
2: परियोजना बिना किसी मानक के कोरे कागज पर शुरू हुई थी, लेकिन टाटा मोटर्स के इंजीनियर्स जानते थे कि उन्हें मारुति 800 का मुकाबला करना है। इसके लिए इंजीनियरिंग का कमाल दिखाना बहुत जरूरी हो गया था। नैनो के एक्सलोरेशन, ड्राइविंग कंफर्ट, स्पेस और रंग रोगन सब कुछ को बेहतर बनाना था, वो भी अपने प्रतिद्वंदी की आधी से भी कम कीमत पर।
1: और रतन टाटा तो इस परियोजना में गले तक डूबे हुए थे, लेकिन वे टीम लीडर के बजाय टीम प्लेयर की भूमिका में अधिक थे। युवा इंजीनियर उन्हें अपने बीच पाकर के उत्साहित हो जाते थे। 98 से अधिक कंपनियों और 3.5 लाख से अधिक कर्मचारियों का नेतृत्व करने वाला यह व्यक्ति अपना बहुमूल्य समय निकाल करके उन्हें दे रहा था। यह बात उन्हें जोश और श्रद्धा से भर देती है। यह बेमेल संबंध समय गुजरने के साथ साथ एकात्मकता व प्रगाढ़ता में बदल गया। रतन टाटा और टीम के बीच संवाद ईमेल या फोन पर नहीं होता, बल्कि काम के माहौल में आमने सामने बैठ करके होता। खैर, रतन टाटा ने इस परियोजना में स्वयं को पूरी तरह से झोंक दिया और नतीजा यह हुआ कि अगले परीक्षण के बाद नैनो में सुधार होता गया। रतन टाटा ने ग्राहकों से किया अपना वादा निभाया और 2008 में 1 लाख रुपए में नैनो कार बाजार में उतार दी। इसमें डबल सिलेंडर वाला 623 सीसी का इंजन था और इसका माइलेज 25-30 किलोमीटर प्रति लीटर था। चलिए श्रोताओं, हम बात करते हैं रतन टाटा बनाम जीआरडी टाटा की।
2: श्रोताओं, टाटा समूह में रतन टाटा का जिक्र होते ही जेआरडी टाटा से उनकी सहज तुलना होने लगती है। दोनों महान हस्तियां थे, स्वप्नदर्शी थे। दोनों ने टाटा समूह को बुलंदियों पर पहुंचा दिया।
1: जेआरडी टाटा समूह का पूरा नाम जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा था और रतन टाटा रतन नावल जी टाटा थे, यानी कि रतन कॉमन था इनमें। और इसी तरह इनके व्यक्तित्व में भी कुछ समानताएं और कुछ असमानताएं थी। दोनों बहुत सहज और जमीनी व्यक्ति थे। उन्हें लोगों का अपने पीछे भागना पसंद बिल्कुल नहीं था। दोनों ने ही जीवन का अधिकांश समय कंपनी के किराए के मकान में ही गुजारा था। लेकिन दोनों के व्यक्तित्व में कई सारी असमानताएं भी थी। जैसे जीआरडी टाटा बहिर्मुखी थे, लोगों से मिलने जुलने वाले व खुलकर बात करने वाले थे, जबकि रतन टाटा अंतर्मुखी थे। पार्टियों में जीआरडी टाटा हर तरह के लोगों से मिलकर के बात करना पसंद करते थे, जबकि रतन टाटा चुनिंदा लोगों के साथ ही डिनर करना पसंद करते थे। उनकी चलती तो वे अकेले ही डिनर कर लेते थे, पार्टी में जाना उन्हें पसंद नहीं था। छुट्टियों के दिनों में जीआरडी टाटा जमशेदपुर जाते और जनजातीय कल्याण संघों सहित अस्पताल तक के तमाम लोगों से मिलते जुलते थे। रतन टाटा इसके उलट पुणे स्थित लोक हाउस पर ही जाते थे।
2: हालांकि जीआरडी टाटा और रतन टाटा दोनों ही लाइसेंसधारी पायलट थे, 70 के दशक तक जीआरडी टाटा एयर इंडिया के प्रमुख रहे। रतन टाटा भी कुछ समय के लिए इसके चेयरमैन हुए। लेकिन एरोनॉटिक्स जहां जीआरडी टाटा का जुनून था, वहीं रतन टाटा की अधिक दिलचस्पी ऑटोमोबाइल सेक्टर में थी।
1: चर्चाओं, अब हम अंत में बात करते हैं रतन टाटा के कुछ प्रेरणादायक विचारों पर। श्रोताओं, लोग आते हैं चले जाते हैं, लेकिन उनके विचार भावी पीढ़ियों का मार्गदर्शन करते रहते हैं। हमारी तमाम सुक्तियां इन्हीं में से ही बनती हैं। तो सुनते हैं रतन टाटा के प्रेरणादायी विचार, हो सकता है इनमें से कोई आपके जीवन की भी दशा बदल दे।
2: मैं कभी भी सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं करता, मैं निर्णय लेकर उसे सही साबित करने में विश्वास करता हूँ।
1: जीवन में आगे बढ़ने के लिए उतार चढ़ाव बड़ा महत्व है, यहाँ तक कि ईसीजी में भी सीधी लकीर मौत की ओर इशारा करती है।
2: उन सारे पत्थरों को अपने पास रख लें जिन्हें लोग आपस में फेंकते हैं, उनका प्रयोग कर एक मजबूत इमारत बनाएं।
1: लोहे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, यह कार्य उसका अपना जंग ही करता है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता सिवाय उसकी मानसिकता के।
2: अगर आप तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चलिए, लेकिन अगर आप दूर तक जाना चाहते हैं तो साथ साथ चलिए।
1: हमें चाहिए कि हम वे प्रश्न पूछे जो अभी तक पूछे नहीं गए हैं, नए विचारों को आगे रखें, नए आइडियाज पर विमर्श करें, ताकि दुनिया को और भी बेहतरीन बनाया जा सके।
2: लोगों की सेवा करने के लिए व्यवसायियों को अपने कंपनी हितों से ऊपर उठने की जरूरत होती है।
1: मैं उन लोगों की प्रशंसा करता हूं जो बहुत सफल हैं, लेकिन अगर वह सफलता निर्ममता से पाई गई है तो मैं उस व्यक्ति की प्रशंसा तो करूंगा किंतु आदर नहीं करूंगा। श्रोताओं, ये थे भारत के रत्न रतन टाटा। श्रोताओं, इस कार्यक्रम को अब हम यही समाप्त करते हैं। नमस्कार, नमस्कार।

0: साहस की बुलंद शुरुआत से लेकर आसमान की असीम ऊंचाइयों तक 8 अक्टूबर को पूरा देश मना रहा है भारतीय वायुसेना का 94वां वायुसेना दिवस।
1: वर्ष 1947-48, 1965 और 1971 के ऐतिहासिक युद्धों से लेकर ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन सफेद सागर तक विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायु सेना ने हर पल कर दिखाया है अदम्य पराक्रम, अत्याधुनिक तकनीक और सर्वोच्च बलिदान।
0: तो मध्य प्रदेश के जाबाज युवाओं, क्या आप तैयार हैं? बादलों को चीरकर देश का मान बढ़ाने के लिए तो बनिए अग्निवीर वायु, हासिल कीजिए वो मुकाम जो जिंदगी भर की पहचान बन जाए और गर्व से कीजिए भारत माँ की सेवा।
1: भर्ती और पात्रता से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए
0: 15 एयरमैन चयन केंद्र के इंस्टाग्राम पेज 15ASC_भोपाल और आधिकारिक वेबसाइट IAFRecruitment.edcil.co.in पर विजिट करें।
1: नभस प्रशम दीप्तम।
2: जय हिंद।

इसका निर्देशन किया कुलदीप कुणाल ने। आइए चलते हैं कुछ पलों के लिए रविंद्र भवन सभागार में और सुनते हैं इस नाटक के संपादित अंश।

0: नाविल लिखी है हमारे
1: उपन्यास है।
0: उपन्यास ना है, नाविल है, मोटी भाई किताब कहानी।
1: ठीक है भाई, नाविल है तो नाविल है, करना क्या है इसका।
0: तो पढ़े लिखे हो, पढ़ के बताए देते कैसी।
1: अच्छा, पढ़ के बताना है। अरे अब इसको भाई दिन भर ऑफिस में लिए कहाँ घूमूंगा मैं। एक काम कर, तू इसको अभी अपने पास रख, जब मैं शाम को लौटूंगा तब मैं तेरे से ले लूंगा। ठीक है
0: सांझ को।
1: हाँ सांझ को।
0: तो तुम तो जानता हूँ कहाँ रहता है।
1: वो टेंट हाउस में रहता है ना।
0: हाँ हाँ, टेंट हाउस में, गोदाम में।
1: अच्छा गोदाम में रहता है।
0: हाँ
1: ठीक है, वहीं से ले लूंगा। ठीक है
0: कहता है।
1: हाँ चलो ध्यान रखो। ठीक है ना।
0: तुम हमारे संग में क्या करोगे? तुम जाओ खेलो।

और फिर दिन में वही मजनू और वही

some

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं ये देशभक्ति गीत, गीतकार ख्वाजा अल्ताफ हुसैन,

0: हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।
1: भारत की आजादी का एक कारण भारत के लोकमानस में आई आजादी की वो चेतना थी जो सुदूर वन प्रांतरों में बसे टोलों में स्वतंत्रता के लिए पनपी थी। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह के जरिए ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दी तो मध्य प्रदेश में नमक की जगह जंगल सत्याग्रह ने ले ली। प्रदेश भर में ये आंदोलन बड़े उत्साह के साथ चलाया गया। अनेकों देशभक्त शहीद हुए, लाठियां खाई, जेल की यातनाएं भोगी, पर टस से मस नहीं हुए। आंदोलन के इस दौर में सिवनी जिले का विशिष्ट योगदान रहा है। सिवनी जिले के ग्राम टूरिया में उठी आंदोलन की आंधी बिना प्रशिक्षण और बिना किसी योजना के उठी एक ऐसी चिंगारी थी जिसने अंग्रेजों के पूरे साम्राज्य को हिलाकर रख दिया था। सत्याग्रह के तहत सिवनी जिले के स्वयंसेवक शासकीय जंगल चंदन बगीचा में जाकर घास काटकर सत्याग्रह करते। इसकी कार्यवाही के तहत सरकार द्वारा फॉरेस्ट एक्ट के अंतर्गत मुकदमा चलाया जाता व सजा तथा जुर्माना तय किया जाता। जुर्माने की वसूली अत्यंत निर्ममता से की जाती। इसमें संपत्ति, जानवर, जमीन, बर्तन सब कुछ कुड़की में नीलाम कर दिए जाते। बावजूद इसके आंदोलनकारी नहीं रुके, उनका जत्था दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। 9 अक्टूबर 1930 को चंदन बगीचा में घास काट कर सत्याग्रह किया जाना तय हुआ। इस अभियान में लगभग 500 व्यक्ति शामिल थे। पुलिस ने उन्हें जोर जबरदस्ती से रोकने का प्रयास किया, मगर सत्याग्रही भला कब रुकने वाले थे। पुलिस ने आंदोलन के नेतृत्वकर्ता मुका को गिरफ्तार कर लिया। इस पर लोग भड़क उठे। लोगों की उत्तेजना के विरोध में उन पर गोलियां बरसाई गईं। आंदोलनकारियों को वृक्षों से बांधकर कोड़े मारे गए। लहूलुहान आजादी के दीवानों को कांजी हाउस में बंद कर दिया गया। टूरिया गांव चीत्कार कर उठा। मगर अमर शहीदों के खून से भीगी जंगल की देह ने अपनी सशक्त भागीदारी सुनिश्चित करते हुए पीढ़ियों तक आक्रांताओं के खिलाफ आवाज उठाकर अपनी गौरव गाथा को बरकरार रखा। स्वाधीनता के लिए उठा ये विप्लव देश की आजादी तक नहीं थमा।

0: यार ये गजबी काका का खाना इतना लजीज बनता है, क्या बताएं यार।
1: अरे वो इसलिए कि काका केवल खाना ही नहीं देते बल्कि उसमें अपने पन का बघार भी लगाते हैं।
0: बिल्कुल सचमुच ऐसा खाना मिले तो यार मैं तो कभी शादी ही ना करूं।
1: बिल्कुल सही। अरे जब काका का खाना हो तो फिर शादी की जरूरत ही क्या है।
0: सही बात है।
1: लेकिन यार आज पूरा वातावरण महक रहा है, ऐसी कौन सी अगरबत्ती लगाई है काका ने?
0: अरे अभी पूछ लेते हैं। काका, ओ काका, अरे ये तो बताओ आज आपने कौन सी अगरबत्ती जलाई है जो पूरे वातावरण को महका रही है?
2: ये चंदन की अगरबत्ती है बेटा।
0: चंदन की अगरबत्ती? क्या इस अगरबत्ती से आपका कोई खास लगाव है?
2: अब क्या बताएं बेटा, चंदन की अगरबत्ती जलती है तो न जाने कितनी आहें इतिहास से टकरा कर लौट आती हैं।
0: क्या चंदन की इस अगरबत्ती का भी कोई इतिहास है काका?
2: लगता है आज एक बार फिर तुम सब ने मिलकर काका को फंसा ही लिया। अब तुम्हें चंदन के जंगल और टुरिया सत्याग्रह के बारे में सब कुछ बताना ही होगा।
0: हाँ काका बताओ ना, यही तो हम सुनने आए हैं, हमें अच्छा लगेगा अपने पुरखों का इतिहास जानकर।
2: तो सुनो, ये कहानी है जंगल सत्याग्रह की।
0: अच्छा।
2: इसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि किस तरह अंग्रेज हम भारतीयों पर जुल्म ढाते थे, किस तरह निर्दोषों पर गोली चलाकर उन्हें मार डालने में कोताही नहीं बरतते थे।
0: अच्छा।
2: फिर चाहे वो डिप्टी कमिश्नर सीमेन हो या फिर पुलिस इंस्पेक्टर सदरुद्दीन, आतंक का चेहरा सब तरफ एक जैसा ही होता है।
3: अरे ये तो हद हो गई भैया।
1: अरे ऐसा का हुआ जो इतना चिल्ला रहे हो?
3: क्या, अरे तुम्हें पता नहीं ये जो अंग्रेज अब हमारे जंगल पर भी अपना अधिकार जमाने लगे हैं?
1: वो तो हमारे देश में मेहमान बनकर आए और अब पूरे देश पर कब्जा जमा लिया।
3: हा?
1: तो जंगल भी उन्हीं के होंगे ना?
3: पर भैया ये तो अति हो गई। जब जंगल पर ही उनका कब्जा हो जाएगा तो हम लकड़ी कहाँ से लाएंगे और हमारे पशु कहाँ चरेंगे?
1: कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा।
3: अच्छा सुनो।
1: हाँ।
3: तुम्हें पता है कि हमारे गांधी बापू ने कोई सत्याग्रह किया है?
1: हाँ, नमक बनाने के लिए उन्होंने दांडी यात्रा की थी। इस तरह से उन्होंने अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ जंग ही छेड़ दी। मुझे तो बस इतना ही मालूम है।
3: अच्छा, इससे अधिक जानकारी हमें भाई मूका और राम प्रसाद से ही मिल पाएगी।
1: हाँ
3: है ना, वो ही हमें बताएंगे क्योंकि वो आसपास ही नहीं पूरी दुनिया की खबर रखते हैं।
1: तो फिर चलो उनसे ही पूछते हैं।
3: हाँ।
1: इसका कोई उपाय है भी? हाँ। या नहीं?
3: चलो चलो चलो, चलो, चलो।
2: तो ये थी एक चिंगारी जो मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के ग्राम टुरिया से उठी। यह चिंगारी आग बनकर जंगल सत्याग्रह के रूप में पूरे देश में फैल गई। सन 1929-30 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक नया आंदोलन प्रारंभ किया।
0: अच्छा।
2: जिसे नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता था। इस नमक सत्याग्रह को मध्य प्रदेश में एक नया स्वरूप दिया गया जिसे आज जंगल सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है।
3: तो मूका भाई, आप ही हमें कुछ सलाह दो ताकि हम इन अंग्रेजों के अत्याचार से मुक्त हो सकें।
4: अंग्रेजों का अत्याचार तो कभी कम नहीं होगा साथियों, हमें ही कुछ करना होगा।
3: आप तो देख ही रहे हैं मूका भाई, अभी कुछ ही दिनों पहले ही अंग्रेजों के पिट्ठू बने हमारे ही भारतीय भाइयों ने किस तरह से हमारे साथियों को पेड़ों पर बांध कर 40-40 कोड़े मारकर उन्हें लहूलहान कर दिया।
1: कुछ को तो कांजी हाउस में ही बंद कर दिया गया और उन्हें वहाँ भी कोड़े फटकारे गए।
5: भाई यदि हमें भोजन के लिए ईंधन और पशुओं के लिए चारे की पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो मजबूरन हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा।
4: हमें जंगल सत्याग्रह करना पड़ेगा ताकि हम ईंधन और चारे की सुविधाएं प्राप्त कर सकें।
3: ये कैसे होगा मुका भाई, अरे आखिर हमें भी तो कुछ बताएं।
5: देखो भाई, हमें गांधी जी को अपना आदर्श मानकर बिना अस्त्र और शस्त्र लिए चंदन के बगीचों में जाकर घास काटने का काम करना होगा।
4: और हाँ, ये काम हम छोटे छोटे टुकड़ों में मिलकर करेंगे ताकि भीड़ इकट्ठी ना हो। इससे अंग्रेज और अधिक आक्रामक हो जाएंगे।
5: जिस तरह से गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा नमक पर कर लगाने के विरोध में दांडी यात्रा की और नमक बनाया, उसी तरह हम अपने जंगल में घास काटकर विरोध दर्ज करेंगे ताकि अंग्रेजों को पता चल जाए कि हम में भी एकता है। हमारा नारा होगा आदिवासियों की हुंकार,
6: डोले की गोरी सरकार,
7: आदिवासियों की हुंकार।

0: लो भाई, जंगल सत्याग्रह तो शुरू हो ही गया।
1: ये दुर्गा शंकर मेहता जी भी कमाल के आदमी हैं। कांग्रेस कार्यालय में शिविर प्रारंभ कर आदिवासियों के उत्थान के लिए लगातार हमारे अधिकारों के बारे में बता रहे हैं।
0: भैया कितनी अच्छी बात है।
1: हाँ।
0: कि हमारे साथी चंदन बागीचे में रोज ही जाकर घास काटने का काम कर रहे हैं।
1: अरे घास काटने के पहले नोटिस भी तो देते हैं, तभी तो चार पांच लोग मिलकर जा पाते हैं।
0: इसके एवज में जुर्माना जो भरना पड़ता है वो?
1: अरे वो तो हमें भरना ही पड़ेगा, आखिर देश के लिए हमारा भी तो कुछ कर्तव्य है कि नहीं।
0: तुमने देखा
1: क्या,
0: पहले तो इन अंग्रेजों ने हम पर जुर्माना किया।
1: हाँ।
0: फिर हमारे बर्तन भाड़े रख लिए, लेकिन अब जब सत्याग्रहियों की संख्या बढ़ गई तो सबको गिरफ्तार नहीं करते बल्कि जंगल में ही कहीं दूर ले जाकर छोड़ देते हैं।
1: इन्हें भी पता चल गया है कि हमारे मूका भाई की ताकत दिनों दिन बढ़ रही है, लोग उनकी एक आवाज पर मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं।
0: सही कहा।
2: इधर जंगल सत्याग्रह चल ही रहा था, पर अंग्रेज सरकार भला कैसे चुप रह सकती थी। वो भी ताक में थी कि किस तरह ये आदिवासी भड़कें और गोरी सरकार अपना वास्तविक रूप दिखा सके। तब वहां डिप्टी कमिश्नर सीमेन थे, उन्हें जब मूका एवं उसके साथियों द्वारा किए जा रहे जंगल सत्याग्रह करने की बात का पता चला तब उसने भी कुछ करने की ठान ली।
3: अच्छा।
2: उसकी इस जिद ने टुरिया सत्याग्रह की नींव रखी।
4: सदरुद्दीन
5: जी साहब,
4: ये क्या हो रहा है?
5: टुरिया में लोग जमा हो रहे हैं साहब।
4: तुम क्यों कुछ नहीं करते?
5: मैं अकेले क्या कर सकता हूँ साहब?
4: क्यों, तुम्हारे साथ रेंजर मेहता नहीं है क्या?
5: वो तो हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं साहब।
4: तो फिर कमी किस बात के है?
5: बात ये है साहब कि आदिवासी कई बार आक्रामक होते हैं, हमारे पास ऐसा कोई आदेश नहीं है कि हम उन पर गोली चला सकें। ऐसे में हम पर कभी भी हमला हो सकता है।
4: तुम चिंता मत करो, तुमको आदेश भी मिलेगा और पुलिस फोर्स भी।
5: थैंक यू साहब, तब तो समझो काम हो गया।
4: सद्दुद्दीन, तुम इन आदिवासियों को ऐसा सबक सिखाना ताकि और कोई आदिवासी सर न उठा सके।
5: जी साहब।
4: टीच देम ए लेसन, समझा?
5: जी साहब।
4: तुमको आदेश चाहिए, ये लो आदेश।
5: समझ गया साहब, समझ गया। चलो मेहता, अब हमें कोई डर नहीं है, साहब भी हमारे साथ हैं। अब तो जो भी सामने आएगा उसे भून कर रख देंगे।
6: पर इंस्पेक्टर साहब, आदिवासियों में जबरदस्त एकता है, उसका क्या करें?
5: उनकी एकता के पीछे मुंह का लुहार है, उसको गिरफ्तार कर लो बस काम पूरा।
6: ऐसे में कहीं स्थिति विस्फोटक हो गई तो?
5: अरे उससे निपटने के लिए हमारे पास बंदूकें तो हैं ही। तुम चिंता मत करो मेहता, मेरे पास सीमेन साहब का ये लिखित आदेश है कि टूरिया गांव के लोगों को जोरदार सबक सिखाना है ताकि फिर कभी कोई मुंह का लुहार पैदा ही ना हो पाए।
6: कैसा आदेश है साहब?
5: ये देख रहे हो?
6: हाँ।
5: ये सीमेन साहब का आदेश।
6: अच्छा।
5: जिसमें साफ साफ लिखा है कि टूरिया गांव के लोगों को ऐसा सबक सिखाओ जिससे कभी कोई सर ऊंचा ना कर पाए।
6: यार सदरुद्दीन, ये सीमेन तो बहुत ही कमीना साहब है यार।
5: अरे ये तो इतना कमीना है कि जब भी वाइसराय को चिट्ठी लिखता है तो गांधी जी के मरने की कामना करता है।
6: हम ऐसे ही कमीने अफसर के साथ कब तक काम करते रहेंगे यार?
7: क्या करें यार, अंग्रेजों की खा रहे हैं ना तो उनकी बजानी भी होगी।
6: हाँ।
0: भैया सुना?
1: हाँ।
0: ये इंस्पेक्टर सदरुद्दीन के नखरे आजकल बहुत ही बढ़ गए हैं।
1: अरे जब से वो सीमेन साहब से मिलकर आया है ना, तब से न जाने कहां से उसके पर उगाए हैं, हमेशा मार डालने की धमकी देता रहता है।
0: मार डालने की धमकी देता है यूं नहीं देगा, पर जिस दिन वो मूका भाई के हत्थे चढ़ गया ना तो सारी हेकड़ी निकल जाएगी।
1: पर मूका है कहाँ, आजकल वो कर क्या रहा है पता ही नहीं चलता।
0: अरे वो आजकल गांव गांव घूम कर लोगों को जागृत कर रहे हैं ताकि ये गोरी सरकार कुछ सबक सीख सके।
1: हाँ, लगता है अब कुछ ना कुछ होकर रहेगा।
0: ऐसा कैसे कह रहे हो भाई?
1: मुझे लगता है कि सदरुद्दीन के तेवर कुछ और ही कह रहे हैं।
0: हे ईश्वर, हमारे गांव को बुरी नजर से बचाना।
1: अरे भाई, बुरी नजर तो लग ही गई है, अब तो कुछ होकर ही रहेगा।
0: तुमने सुना है, जंगल सत्याग्रह की आग अब पूरे देश में फैल रही है।
1: हाँ,
3: सुनो साथियों, बैतूल के पास चिकलार गांव में 22 अगस्त को हमारा एक साथी शहीद हो चुका है।
0: अरे, ये आपको कैसे पता चला मूका भाई?
3: वहां से मुझ तक खबर आई कि दीपचंद गोठी के नेतृत्व में बैतूल के पास चिकलार ग्राम में और गंजन सिंह कोरकू के नेतृत्व में बंजारी ढाल में जंगल सत्याग्रह हो चुका है। इसी में हमारे साथी कोका गौंड पुलिस की गोली से शहीद हो चुके हैं।
1: अब तो हमें भी कुछ करना ही होगा, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे।
3: तो हम सब मिलकर तय करते हैं कि 9 अक्टूबर 1930 को हम सब घास सत्याग्रह करेंगे।
1: हाँ,
3: इसके लिए गोरी सरकार को नोटिस भेजने का काम मैं कर देता हूँ। धरती की माटी है, साधारण वस्तु नहीं, सोने चांदी से अधिक कीमती माटी है। जो मूल्यवान सर्वाधिक प्राण हुआ करते, वे प्राण धरा हित देने की परिपाटी है। जिस धरती की है गंध हमारी सांसों में, अभिमान उसी के प्रति अपना अपनापन है। उस माँ के प्रति ममता वो सबसे बड़ा गर्व, उसका कहलाना ही गौरव संवर्धन है।
0: चलो भाई, आज 9 अक्टूबर है, सब नदी किनारे चलो।
1: हाँ,
0: वहाँ आज मूका भाई और रामप्रसाद सत्याग्रह करेंगे। इसके लिए उसने गोरी सरकार को नोटिस भी दे दिया है।
1: तभी मैं सोचूं कि आज हमारे गांव के आसपास इतनी पुलिस क्यों दिखाई दे रही है।
0: अरे वो तो आएगी ही, आखिर उन्हें भी तो अपनी ड्यूटी करनी ही है।
1: हाँ चलो, सभी लोग उसी ओर जा रहे हैं, अपन भी चलते हैं। चलो।
0: हाँ, हाँ, चलो भाई आओ। चलो, अरे वाह, इसमें तो औरतें भी शामिल हैं।
1: अरे उधर देखो, वो बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल हैं।
0: अरे आखिर ऐसा क्या होने वाला है भाई?
1: अरे भाई, हमारे मूका भाई और राम प्रसाद जी अपना भाषण करेंगे और बताएंगे कि ये आंदोलन कितना जरूरी है।
0: हाँ, चलो, चलो,
1: चलो चलो,
0: आज नहीं जाएंगे तो फिर कब जाएंगे। हाँ चलो, उठो बैठे।
2: आज की ये तारीख एक इतिहास रचने जा रही है। पूरा गांव ही इस नदी के किनारे जमा हो गया है, पुलिस भी अपनी तैयारी में है।
7: अच्छा,
2: कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। इतिहास ऐसे ही नहीं रचे जाते, कई कुर्बानियों के बाद ही इतिहास रचा जाता है। पुलिस इस सत्याग्रह को रोकने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रही थी। ग्रामीणों से मारपीट तो अब आम बात हो गई थी, लोगों का आक्रोश उबल पड़ने को तैयार था। पूरा गांव ही मानो बारूद के ढेर पर बैठ गया था, किसी को भी अपनी जान की फिक्र नहीं थी, सभी के सर पर मौत का कफन था।
8: मीटिंग बड़ी जोरदार होने वाली है, आज मौका भाई जो है ना, उसके ऊपर बात करने वाले।
3: साथियों, ये गोरी सरकार हम पर लगातार जुल्म ढा रही है। हमें जंगल से लकड़ी और घास काटने की इजाजत नहीं मिलती। आखिर हमें भी तो भोजन के लिए लकड़ी और हमारे पशुओं के लिए चारा चाहिए, हम कहां से लाएं ये सब? यदि इस जंगल पर हम आदिवासियों का हक नहीं होगा तो आखिर किसका होगा? बोलो साथियों।
5: बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने, सही कह रहे हैं मुका भाई।
3: इसी भूमि पर हम पैदा हुए, बड़े हुए, अब इस जंगल पर हमारा नहीं तो फिर किसका अधिकार होगा? आखिर हम इस जंगल के पेड़ों को तो नहीं काट रहे, हम तो यहाँ से लकड़ी और घास ही तो काट रहे हैं। फिर ये गोरी सरकार हम पर क्यों जुल्म करती है? ये कौन होती है हमारा हक मारने वाली? साथियों, आज तो हम घास काट कर सत्याग्रह करके ही रहेंगे।
5: बिल्कुल
9: बिल्कुल,
3: चाहे
9: बिल्कुल,
3: इसके लिए हमें अपनी जान की बाजी ही क्यों नहीं लगानी पड़े। साथियों, बस मुझे इतना ही कहना है, जो कुछ बच गया है उसे भाई राम प्रसाद पूरा करेंगे।
5: मूका भाई, हम तुम्हारे साथ हैं,
9: हम तुम्हारे साथ हैं।
5: मूका भाई, हम तुम्हारे साथ हैं,
9: हम तुम्हारे साथ हैं।
10: साथियों, भाई मूका सच कह रहे हैं, मैं उनकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। गांधी जी ने कहा है कि जुल्म करने वाले से अधिक दोषी तो जुल्म सहने वाला होता है। हमने इस गोरी सरकार का बहुत जुल्म सह लिया, अब हम और अधिक दोषी नहीं बनना चाहते। हमें गांधी जी के इस उपदेश को सामने रखकर गोरी सरकार के इस अत्याचार के खिलाफ एक होना होगा और उसके लिए इसका विरोध करना होगा, तब ये सरकार जीतेगी। कहां तो ये गोरे हमारे देश में मेहमान बनकर आए और कहां ये हम पर ही राज करने लग गए। अब सहन नहीं होता ये सब, इसलिए आओ साथियों, आज हम चंदन के इस बाग में पेड़ों को नुकसान पहुंचाए बिना केवल घास ही काटेंगे। इस संकल्प के साथ आओ, हम सब मिलकर घास काटें।
11: हाँ हाँ,
12: हम सब तुम्हारे साथ
13: मूका भाई, हम तुम्हारे साथ है।
14: मूका भाई, हम तुम्हारे साथ है।
15: मूका भाई, हम तुम्हारे साथ है।
16: मूका भाई, हम तुम्हारे साथ है।
17: मूका, तुम घास नहीं काट सकते, तुम्हें अपनी गिरफ्तारी देनी होगी।
18: गिरफ्तारी? आखिर किस जुर्म में? मैंने तो कोई जुर्म नहीं किया।
17: इतने सारे लोगों को सरकार के खिलाफ भड़काते हो और कह रहे हो मैंने कोई जुर्म नहीं किया।
10: लोगों को उनके अधिकारों के बारे में बताना जुर्म नहीं है?
17: ये तुमसे ज्यादा हम अच्छी तरह से जानते हैं।
18: तुम क्या जानोगे क्या होती है देशभक्ति? तुम तो बिक चुके हो, हमारे ही साथी होकर हम पर बंदूक तानते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती?
17: लगता है बहुत गर्मी चढ़ गई है, इन्हें गिरफ्तार कर लो। मूका, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है।
18: कर लो गिरफ्तार।
17: सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो उनको।
18: कर लो गिरफ्तार, इसका परिणाम भी सोच लो।
17: वह तो बाद में देख ही लेंगे।
0: अरे साथियों, सुना तुमने, हमारे मूका भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब वो गोरी सरकार के कैदी बन गए हैं, उनके साथ कुछ भी हो सकता है, इसलिए चलो उनके आखिरी दर्शन तो कर लें, क्या पता अब उनसे कब भेंट हो पाए। तो चलो साथियों, चलो उठो, आओ चलो चलो।
5: रेंजर मेहता
9: जी,
5: देख रहे हो इस जनसराब को?
9: हाँ देख रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब, भीड़ का गुस्सा भी देख रहा हूँ।
5: जानते हो इनसे कैसे निपटना है?
9: हमारे पास इन बंदूकों के सिवाय और कुछ भी नहीं है इंस्पेक्टर साहब।
5: नहीं मेहता, तुम भूल रहे हो, हमारे पास पूरी पुलिस फोर्स है।
9: वो तो है इंस्पेक्टर साहब, पर भीड़ को देखते हुए हमारी फोर्स बहुत कम दिखाई देती है।
5: अरे मेहता, तुम कैसी बेवकूफ जैसी बात कर रहे हो, हमारे जवानों के पास भरी हुई बंदूकें भी तो हैं।
9: ये सभी मूका के दर्शन के लिए जा रहे हैं, ये उसका अभिवादन करना चाहते हैं। एक गिरफ्तार व्यक्ति का अभिवादन, यही है हमारी भारतीय परंपरा।
5: अरे तुम देखते रहो मेहता, कौन किसका किस तरह से अभिनंदन करता है।
9: हे भगवान।
5: सिपाहियों तैयार हो जाओ, इस भीड़ पर अत्याचार शुरू कर दो।
9: देख रहे इंस्पेक्टर साहब, लोग अत्याचार सहकर भी हमारे सिपाहियों का मुकाबला कर रहे हैं।
5: वही तो मैं चाहता हूँ रेंजर मेहता, ये लोग उत्तेजित होकर कुछ ऐसा करें कि गोली चलाने के लिए मेरे हाथ खुल जाएं।
9: तुम हाथ खुलने की बात कर रहे हो सदरुद्दीन, उधर लोग हसिया लेकर के इधर ही पड़ रहे हैं।
5: मुझे तो इसी घड़ी का इंतजार था। सिपाहियों तैयार हो जाओ, ये लोग उस पॉइंट से आगे बढ़े तो गोली चला देना।
9: अरे ये तो आगे बढ़ रहे हैं। अरे सदरुद्दीन, ये तो आगे बढ़ रहे हैं, कुछ करो वरना हमारी भी जान खतरे में।
5: सिपाहियों फायर।
2: तो इस तरह से गोरी सरकार ने जो चाहा वो हो कर रहा। अंततः इस मनोरम शांतिपूर्ण घाटी में पुलिस की बंदूकें गरज उठी, परिणाम स्वरूप 4 लोग शहीद हो गए।
7: अरे?
2: और 30 लोग घायल हो गए।
7: ओ।
2: विशाल जन समुदाय पर गोली चलाकर आखिर ये गोरी सरकार क्या समझती थी, कि उसने कोई तीर मार लिया? इस अंधाधुंध गोलीबारी में एक महिला ने तो घटना स्थल पर ही दम तोड़ दिया। दो अन्य महिलाओं एवं एक पुरुष को सिवनी अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। इन चारों शहीदों के नाम थे गुड्डेबाई साकिन खामरीट, श्रीमती रेनीबाई साकिन खंबा, श्रीमती देवोबाई साकिन भीलवा और बिरजू भोई साकिन मुरझोड़। ये चारों अमर शहीद आदिवासी थे। जंगल सत्याग्रह की लपटें सतपुड़ा के जंगलों में उठी तो खंडवा, बुरहानपुर, रुस्तमपुर, मूंदी, पंधाना, हरसूद, डोंगरगांव आदि स्थानों पर आंदोलन तेज हो गया। क्रांतिकारी चेतना को लोक आश्रय मिला, हुकूमत के प्रतिरोध की भावना को पंख लग गए। 103 सेनानी जेल पहुंचे। अंग्रेजों के जुल्म की ये दास्तां यहीं खत्म नहीं होती।
0: अरे भाई सुना, ये सदरुद्दीन ने जो गोली चलाई,
1: हाँ,
0: उससे कितने लोग मारे गए हैं?
1: हाँ 4 लोग मारे गए हैं और 30 लोग घायल भी हुए हैं। पर ये गोरी सरकार तो बहुत ही जल्लाद निकली।
0: क्यों क्या हुआ क्या?
1: अरे तुमने नहीं सुना, अभी तक शहीदों की लाश उनके परिवार वालों को नहीं दी गई है। यही नहीं, घायलों से भी नहीं मिलने दिया जा रहा है।
0: हाँ हाँ हाँ, ये तो सुना, और ये भी सुना कि सिवनी अस्पताल में भी कड़ा पहरा लगा रखा है।
1: पर ऐसा आदेश दिया किसने होगा?
0: अरे वही है पुलिस कप्तान पैरी, ये उसी की हरकत है।
1: कैसे कैसे लोग होते हैं, इन्हें ना तो लाशों पर दया आती है और ना ही विवश घायलों पर, पूरी कौम ही जल्लाद है।
0: अरे भाई, विदेशी सरकार के स्वदेशी पुलिस कर्मियों के बारे में ये कहा जाता है कि वे साम्राज्य के प्रति इतने अधिक वफादार होते हैं जितना कि खुद सम्राट भी नहीं होगा।
1: इसीलिए सदरुद्दीन ने सीमेन के आदेश का बहुत ही अच्छी तरह से पालन किया और उनके सबक सिखाने का आदेश अपने पास सुरक्षित रख लिया था, ताकि यदि मुकदमा चले तो उसके आधार पर खुद को बचाया जा सके।
0: पर भाई अब होगा क्या? अरे हमें मिलाकर पूरे 18 लोगों पर मुकदमा चलाने का आदेश सीमेन ने जो दिया है।
1: सीमेन अपने को जितना चतुर समझता है ना, वो है नहीं। देखना वो अपने ही जाल में किस तरह से फंसता है। हमारे क्षेत्र के दो वकीलों प्रभाकर जठार और नितेंद्र नाथ शील ने हम लोगों का मुकदमा लड़ने का फैसला किया है।
0: अरे वाह, देश को ऐसे ही देशभक्तों की आवश्यकता है।
1: अब देखना भाई, ये दोनों किस तरह से अदालत में पुलिस कर्मियों की बर्बरता का कच्चा चिट्ठा खोलते हैं।

0: इस तरह से उन दो वकीलों ने ग्रामीणों का बचाव करने के लिए मुकदमा लड़ना शुरू किया। सीमेन का तबादला सिवनी से कहीं और हो गया।
1: अच्छा,
0: पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र ने अपनी किताब लिविंग इन एरा में इस घटना का जिक्र पृष्ठ क्रमांक 166 पर विस्तार से किया है।
1: अच्छा,
0: यद्यपि कुछ ब्रिटिश अधिकारी भारतीय सत्याग्रहियों और राजनीतिक बंदियों, खास तौर से बड़े नेताओं के प्रति सहानुभूति बरतते थे, लेकिन सीमेन उन कट्टर अधिकारियों में से था जो महात्मा गांधी और उनके अनुयायियों के प्रति अत्यधिक सख्ती बरतने का हामी था। शुक्ल जी ने अपने अभिनंदन ग्रंथ में भी इस घटना का जिक्र किया है।
1: अच्छा,
0: तो ऐसा था अंग्रेजों का शासन, देखा कितना जुल्म ढाते थे वे हम पर।
1: पर काका, मूका लोहार और रामप्रसाद जी का क्या हुआ?
0: रामप्रसाद जी को गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा चलाया गया।
1: अच्छा,
0: फिर उन्हें 6 माह की सजा दे दी गई। रही बात मूका लोहार की, तो तुम्हें बताएं कि देश को आजादी मिलने के बाद 26 जनवरी 1950 को टुरिया के जंगल में सत्याग्रहियों के स्मारक का उद्घाटन भव्य समारोह के साथ किया गया।
1: अच्छा,
0: इसमें टुरिया एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से हजारों लोगों ने भाग लिया और अमर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। टुरिया ग्राम के पटेल सीताराम ने टुरिया जंगल सत्याग्रह के नेता मुका लुहार तथा उनके साथियों को महाकौशल प्रांतीय प्रतीक स्वरूप ताम्र पत्र भेंट कर उन्हें सम्मानित किया।
1: वाह काका वाह, आज तो आपने हमें इतिहास की बड़ी मूल्यवान जानकारी दी है।
0: देखो बेटा, आखिर ये आजादी हमें इतने सस्ते में तो मिली नहीं।
1: हाँ।
0: कि इसका सही मूल्य भी ना जान पाए। लाखों कुर्बानियों के बाद हमें ये आजादी मिली है, इसे हमें ही संभाल कर रखना पड़ेगा बेटा।
2: निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। प्रस्तुत है कार्यक्रम कला कल्लोलनी।
2: हाजिर है कला, संस्कृति और अदब का आपका पसंदीदा कार्यक्रम कला कल्लोलनी, जहां कला लहर बनकर बहती है और कलाकारों की आवाज वक्त की बंदिशों को तोड़कर सदियों तक गूंजती रहती है। आज की विशेष कड़ी किसी आम सफर की नहीं, बल्कि भारतीय रंगमंच के उस वटवृक्ष की दास्तान है, जिसने आधी सदी से भी ज्यादा समय तक अपनी सांसों से थिएटर को सींचा है। जी हाँ, रंगमंच महज लकड़ी का एक बेजान तख्ता या कुछ चमकदार रोशनियों का कौतूहल नहीं है। यह मनुष्य की आत्मा का वह खुला चौक है, जहां समाज अपनी तमाम अच्छाइयों और बुराइयों के साथ नग्न खड़ा होता है। जब थिएटर का पर्दा उठता है तो सिर्फ एक नाटक शुरू नहीं होता, बल्कि जिंदगी अपने सारे मुखौटे उतारकर सच से आंखें मिलाती है। सिनेमा जहां कट और रीटेक के कंक्रीट के पीछे छुप सकता है, वहीं रंगमंच एक जलती हुई भट्टी है और यहां वही टिक सकता है जो तपने का मादा रखता हो। इस भट्टी में तपकर जो कुंदन बना और जिसने भारतीय थिएटर को एक नई गरिमा, एक नया अनुशासन और एक नया दर्शन दिया, उस महानायक का नाम है रामगोपाल बजाज। बजाज साहब का रंगमंच पर होना ऐसा है जैसे किसी घने पुराने जंगल में एक शांत और विशाल वटवृक्ष का होना।
3: वक्त की इस नाव पर सवार होकर आज हम सब रुख करते हैं बिहार के सहरसा जिले के उस कोशी अंचल की तरफ, जहां की लहरों में जितना बहाव है, आदरणीय बजाज साहब के भीतर की कला में भी उतनी ही गहराई है। 1 जुलाई 1940 को इसी अंचल की गोद में एक ऐसे बालक का जीवन शुरू हुआ जिसका बचपन बाहरी पाबंदियों से कहीं ज्यादा अपने भीतर के एक अनकहे सन्नाटे से गुजरा। रामगोपाल बजाज का बचपन घोर अभाव में बीता था। गांव या मोहल्लों में रामलीला का मंचन सजता या कोई पारंपरिक नौटंकी आती तो ये बालक सब कुछ भूलकर अपनी पढ़ाई की किताबें छोड़कर बस उन कलाकारों के चेहरों, उनकी बुलंद आवाजों और मंच की उस तिलिस्मी रोशनी को निहारता रहता। घर से डांट पड़ती, पाबंदियां लगती, मगर जो चिंगारी भीतर सुलग रही हो उसे बाहर की पाबंदियां भला कैसे बुझा सकती थी। वो छुप छुप कर नाटकों की किताबें पढ़ते और बचपन का यही मानसिक और कलात्मक संघर्ष दरअसल उनके भीतर के उस महान रंगकर्मी को जन्म दे रहा था।
2: रंगमंच की तरफ पहला झुकाव बजाज साहब ने खुद बताया था कि बचपन में उनके घर के पास एक मारवाड़ी पुस्तकालय था और पास में ही ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय या स्थानीय क्लबों के माध्यम से कभी कभी नाटक होते थे। बचपन में उन्होंने जहां पारसी थिएटर शैली के नाटक और स्थानीय रामलीलाएं देखी, उन नाटकों के संवादों का लहजा और मंच की दुनिया उनके बाल मन में ठहर गई थी। वह छुपकर नाटक देखने जाते थे क्योंकि घर में पता चलने पर सख्त मनाही थी। उनके भीतर कला को लेकर एक अजीब सी तड़प थी। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था और कोशी अंचल की मिट्टी में पला बढ़ा वो मासूम बालक अब धीरे धीरे किशोरावस्था की दहलीज लांघकर जवानी के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। इस उम्र में जहां अमूमन लड़के दुनियादारी की फिक्र में खो जाते हैं, वहीं बजाज साहब के भीतर कला और वैराग्य का एक अद्भुत संगम आकार ले रहा था। गांव में जब कोई भी तीज त्योहार आता तो वे ढोलक और मजीरों की थाप पर होने वाले भजन कीर्तनों में पूरी तन्मयता से शामिल हो जाते। रामलीला के मंच पर सजने वाले किरदारों को एकटक निहारना, बंद कमरों में गीता के श्लोकों की गहराई को टटोलना और छुप छुप कर नई कहानियों और कविताओं को पढ़ना उनकी इस दीवानगी को और परवान चढ़ा रहा था।
3: उम्र के इस पड़ाव पर एक अजीब सा अल्हड़पन था, एक बेलौस बेफिक्री थी। ये जवानी का वो दौर था जहां आवारगी भी थी और कुछ नया सीखने सिखाने की असीम ललक भी। दोस्तों के साथ बेमकसद घूमना, घंटों कला और अदब पर बहस करना और जिंदगी के थपेड़ों से लड़ते हुए आगे बढ़ना। इसी उठती जवानी के शोर और सूफियाना तन्हाई के बीच राम गोपाल बजाज के भीतर का वो अंगार तैयार हो रहा था जिसकी तपिश आगे चलकर पूरे भारतीय थिएटर को महसूस करनी थी।
2: दरभंगा के सीएम कॉलेजों की बंदिशों से आजाद होकर जब वो नौजवान घर से बाहर कोलकाता पहुंचा तो जेब पूरी तरह खाली थी। न रहने का ठिकाना, न खाने का कोई सहारा। बजाज साहब स्वयं अपने इस दौर को याद करते हुए बताते हैं कि जब वे कलकत्ता के मशहूर ईडन गार्डन में बेबसी की हालत में बैठे हुए थे तो उन्होंने देखा कि वहां कुछ लोग घूम घूम कर चंपी कर रहे हैं, मालिश कर रहे हैं। बस पेट की आग और उस सूनेपन के बीच इस खुददार नौजवान के दिमाग में एक विचार आया कि ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। कम से कम दो आना तो मिलेगा ही, जिससे दो वक्त की सूखी रोटी का इंतजाम हो सके और पेट भर सके।
3: कलकत्ता के उन मसरूफ और अजनबी सड़कों पर अपनी पहचान और वजूद तलाशते हुए बजाज साहब ने केवल थिएटर ही नहीं देखा बल्कि जिंदगी को बहुत करीब से भी महसूस किया। खुद को जिंदा रखने के लिए और पेट की आग बुझाने के लिए उन्होंने छोटे मोटे काम किए ताकि वे कलकत्ता में टिक सके, लेकिन उनका असली ठिकाना था वहां के थिएटर, ऑडिटोरियम और नुक्कड़।
2: उस दौर में कलकत्ता में पारसी थिएटर का असर तो था ही, साथ ही इप्टा की प्रगतिशील चेतना भी चरम पर थी। बजाज साहब घंटों भूखे प्यासे रहकर और बांग्ला रंगमंच के उस असीम अनुशासन को अपनी आंखों से समेटते। उन्होंने वहां केवल अभिनय की तकनीकें नहीं सीखी बल्कि उन्होंने देखा कि कैसे रंगमंच समाज की विसंगतियों पर सीधे प्रहार करता है। कलकत्ता के इसी साहित्यिक माहौल ने उनके भीतर छुपे अनुवादक और लेखक को भी जगाया, जहां उन्होंने बांग्ला और विश्व साहित्य के महान नाटकों को पढ़ना शुरू किया।
3: और वो अक्सर कहा करते थे कि कलकत्ता ने उन्हें वो दृष्टि दी जिसने उनके भीतर के अकेलेपन को एक वैचारिक गहराई में बदल दिया। वे समझ गए थे कि थिएटर महज मनोरंजन नहीं, एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है। और यही तजुर्बा, यही तपन और कलकत्ता का यही कड़ा संघर्ष आगे चलकर उनके जीवन का वो सबसे बड़ा आधार बना जिसने उन्हें सीधे दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया, जहां भारतीय रंगमंच का एक नया इतिहास उनका इंतजार कर रहा था। कलकत्ता के इसी साहित्यिक माहौल ने उनके भीतर छुपे अनुवादक और लेखक को भी जगाया, जहां उन्होंने बांग्ला और विश्व साहित्य के महान नाटकों को पढ़ना शुरू कर दिया।
2: कलकत्ता की गलियों में अपनी कलात्मक भूख और इस कड़े संघर्ष को जीने के बाद वे बिहार की राजधानी पटना आए और यहां से उन्होंने नए सिरे से अपने कॉलेज की पढ़ाई शुरू की। पर आर्थिक तंगी ने यहां भी पीछा नहीं छोड़ा। पटना विश्वविद्यालय में एमए हिंदी लिटरेचर की पढ़ाई के दौरान फीस भरने के पैसे नहीं थे। तब इस स्वाभिमानी लड़के ने अपनी कुशाग्र बुद्धि के दम पर वाद विवाद प्रतियोगिताएं जीती और इनाम के रूप में पुअर बॉयज फंड से अपनी आगे की पढ़ाई का खर्च निकाला। लेकिन जब तक ये बात रूढ़िवादी बजाज खानदान को पता चली तो खानदान के लोगों को झूठी शान की ठेस लगी। वे गुस्सा हो गए कि हमारी बिरादरी का लड़का पुअर बॉयज फंड से क्यों पढ़ेगा। पर इस फक्कड़ कलाकार को किसी की झूठी शान की परवाह कहाँ थी। उन्होंने दिन में कॉलेज की पढ़ाई की और रातों के अंधेरे में अपनी पहचान छुपाने के लिए भेष बदलकर पटना की सड़कों पर रिक्शा तक चलाया।
3: क्या बात है, संघर्षमयी मिट्टी से तपकर जब वे बाहर निकले तो उनका साहित्य से रिश्ता और भी ज्यादा गहरा हो चुका था। बचपन में अपनी पूज्य दादी माँ को भगवत गीता और रुक्मणी मंगल का पाठ पढ़कर सुनाने वाले बजाज साहब अब राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की कविताओं के दीवाने हो चुके थे। आगे चलकर आधुनिक कविता के पुरोधा अग्गे जी से उनकी मुलाकात हुई, जिन्होंने बजाज साहब के भीतर के उस संवेदनशील कवि को पहचान लिया। पटना में रहते हुए जब वे एमए प्रीवियस पास कर चुके थे तभी उनकी मुलाकात हिंदी के महान कथाकार परेश्वरनाथ रेणु जी से हुई।
2: रेणु जी इस नौजवान की आंखों में चमक और प्रतिभा भांप गए। उन्होंने बजाज साहब को पटना की एक स्थानीय ड्रामा मंडली से मिलवाया। उन्हीं दिनों पटना में एक सज्जन मिले, हामिद साहब, जो किराए पर कमरे चलाया करते थे। हामिद साहब ने इस बेसहारा कलाकार को न केवल छत दी बल्कि जब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय यानी एनएसडी के इंटरव्यू का बुलावा आया तो अपनी जेब से कुछ पैसों की मदद भी की। हामिद साहब की उन्हीं पैसों का सहारा लेकर यह नौजवान दिल्ली पहुंचा। एमए फाइनल की परीक्षा देने से पहले ही उसका सिलेक्शन सीधे एनएसडी में हो गया। दिल्ली आकर उन्होंने रंग गुरु इब्राहिम अलकाजी साहब के कड़े अनुशासन में रंगमंच का काखा गा सीखा। सन 1965 में राम गोपाल बजाज जी का एनएसडी में चयन हो गया था।
3: और राम गोपाल बजाज पटना विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में मास्टर की पढ़ाई बीच में ही छोड़ चुके और दिल्ली स्थित एनएसडी चले गए। वे 1965 के बैच के छात्र रहे। उन्होंने अभिनय में अपना डिप्लोमा पूरा किया। एनएसडी में उन्हें प्यार से बड़े छोटे सभी बज्जू भाई बज्जू सर कहते थे। वो हमेशा से सभी का साथ देने वाले मददगार दोस्त साथी और शिक्षक रहे। उन दिनों राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एनएसडी में अंग्रेजी का माहौल बहुत ज्यादा था। खुद रंग गुरु इब्राहिम अलकाजी साहब बड़े सलीके से अंग्रेजी बोलते थे, जबकि राम गोपाल बजाज जी की हिंदी बेहद मुकम्मल शुद्ध और साफ थी। दोनों के बीच एक बेहद खूबसूरत और ऐतिहासिक सौदा हुआ। अलकाजी साहब ने बजाज साहब से कहा, तुम मुझे हिंदी सिखाना, मैं तुम्हें अंग्रेजी सिखाऊंगा।
2: भाषा का ऐसा अद्भुत आदान प्रदान रंगमंच के इतिहास में बिरला ही देखने को मिलता है। अलकाजी साहब हिंदी कविता और उसके ठहराव को सीखने के लिए इतने आतुर रहते थे कि कई बार सुबह बेहद तड़के भोर में ही बजाज साहब को बुला लिया करते और उनसे घंटों डूबकर हिंदी की कविताएं सुना करते थे।
3: अलकाजी साहब के उसी कड़े अनुशासन और प्यार की छांव में बज्जू भाई ने कई नाटकों में काम किया। उन्होंने अंधा युग, तुगलक जैसी कई ऐतिहासिक और कालजयी प्रस्तुतियों में साथ काम करके भारतीय रंगमंच का इतिहास बदल दिया। हालांकि किसी भी आधिकारिक दस्तावेज में उनके द्वारा साथ किए गए कुल नाटकों की कोई निश्चित संख्या दर्ज नहीं है, पर यह बात पूरी दुनिया जानती है कि इब्राहिम अलकाजी ने राम गोपाल बजाज को आधुनिक हिंदी रंगमंच का एक सशक्त, निडर और बेमिसाल अभिनेता बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। बजाज साहब आज भी जब अलकाजी साहब को याद करते हैं तो अंधा युग के वो दिन उनकी आंखों में एक जीवंत दृश्य की तरह तैरने लगते हैं।
2: न कोई जबां आड़े आई, न कोई दस्तूर आड़े आया, मुर्शिद ने जब मुरीद को अपनी रूह से मिलाया, एक दूजे को सौंप दी दोनों ने अपनी कायनात, उधर से इल्म बहा, इधर से अदब का दरिया आया। दिल्ली के राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एनएसडी की चौखट पर कदम रखने के बाद इस खुद्दार नौजवान ने जैसे रंगमंच को ही अपनी इबादत बना लिया था। बजाज साहब ने वहां केवल अभिनय की बारीकियों को ही नहीं साधा बल्कि नाटक की मुकम्मल रूह को समझा। मंच की रोशनियां कैसे भावनाओं को उभारती हैं, सेट कैसे एक बेजान जगह को जिंदा करता है और वेशभूषा जैसे किसी किरदार को वजूद देती है। उन्होंने इन सब विधाओं को पूरी लगन से सीखा और इसके साथ ही उनका नाता विश्व और हिंदी साहित्य के महान लेखकों से और गहरा होता गया।
3: लेकिन इन सब चमक धमक और कला के शोर के बीच कई बार रातों के सन्नाटे में घर की याद उन्हें घेर लेती थी। अपनी पूज्य दादी माँ की ममता और उनके आंचल की खुशबू को याद करते हुए इस संवेदनशील कलाकार की आंखें भर आती थी। उस वक्त जब मंडी हाउस की भीड़ अपने चरम पर होती, तब इस युवा रंगकर्मी का दिल करता कि वे इस हुजूम से अलग होकर कहीं दूर बिल्कुल एकांत में चले जाएं। दरअसल बजाज साहब भीतर से हमेशा एक बेहद आध्यात्मिक इंसान रहे, जो बाहरी दुनिया के शोर से थककर एकांत के उसी सन्नाटे में खुद को भीतर से शांत करते थे, अपने जख्मों को सहलाते थे। उनके लिए अकेलापन का वो सूनापन कोई सजा नहीं थी बल्कि एक रूहानी वरदान था, जिसे महसूस करते हुए अक्सर सोचते थे, अकेलेपन से बढ़कर आनंद नहीं, आराम नहीं, स्वर्ग है वो एकांत जहां शोर नहीं, धूमधाम नहीं। ऐसे भावों को लेकर मुझे डीएच लॉरेंस की लिखित और दिनकर की अनुवादित वो कविता याद आ रही है।
2: देश और काल के प्रसार में शून्यता, अशब्दता, अपार में चांद जब घूमता है कौन सुख पाता है, भेद यह मेरी समझ में तब आता है, होता हूं जब मैं अपने भीतर के प्रांत में, भीड़ से दूर किसी निभृत एकांत में, और तभी समझ यह पाता हूं पेड़ झूमता है किस मोद में, खड़ा हुआ एकाकी पर्वत की गोद में, बहता पवन मंद मंद है पत्तों के हिलने में छंद है, आह कितना आनंद है।
3: बिल्कुल, भीड़ से दूर अपने भीतर के इसी निभृत एकांत में बैठकर उन्हें ब्रह्मांड के इस परम सत्य का बोध होता था। प्रकृति के इस मूक संगीत, हिलते पत्तों के छंद और मंद मंद बहती हवा के इसी रूहानी आनंद ने उनके भीतर के अकेलेपन को एक दिव्य दार्शनिकता में बदल दिया, जिसने आगे चलकर उनके अभिनय और निर्देशन को एक अमर और कालजयी गहराई प्रदान की।
2: एनएसडी से शिक्षा पूरी करने के बाद रामगोपाल बजाज जी केवल एक छात्र नहीं रहे, वे सालों तक इस प्रतिष्ठित संस्थान की फैकल्टी के रूप में नए कलाकारों को गढ़ते रहे और आगे चलकर नवंबर 1995 से सितंबर 2001 तक इसके निदेशक डायरेक्टर बने। बतौर निदेशक उनका यह कार्यकाल भारतीय रंगमंच का स्वर्ण युग साबित हुआ। वे सिर्फ अभिनय ही नहीं बल्कि थिएटर के हर विभाग जैसे मेकअप, स्टेज लाइटिंग और प्रोडक्शन डिजाइनिंग के एक सिद्ध ऑलराउंडर थे, जिन्होंने स्कूल की अकादमिक और कलात्मक रीढ़ को मजबूत किया।
3: उन्होंने विस्तार, प्रकाशन और दस्तावेजीकरण जैसे कार्यक्रमों को एक नई दिशा दी। रंगमंच की दुनिया में उनका सबसे ऐतिहासिक योगदान था भारत रंग महोत्सव। 1999 में आजादी की स्वर्ण जयंती पर शुरू हुआ देश का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल और पूरी तरह उन्हीं की कल्पना से उपजा जश्न बचपन व बाल संगम। इन उत्सवों ने देश विदेश के थिएटर समूहों, वयस्कों, बच्चों और पारंपरिक लोक कलाकारों को एक वैश्विक मंच दिया। स्कूल की शिक्षा प्रणाली में थिएटर को अनिवार्य करने की जोरदार वकालत करने वाले बजाज साहब दिल्ली के मशहूर देशांतर थिएटर ग्रुप के संस्थापक सदस्यों में से भी एक रहे हैं।
2: मंच, रेडियो, टीवी और फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनवाने वाले बजाज साहब के पास कविताओं के पाठ और उनकी प्रस्तुति का एक ऐसा जादुई हुनर है कि जब वे बोलते हैं तो शब्द जीवंत हो उठते हैं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की बुनियाद खड़ी करने में इब्राहिम अलकाजी की बड़ी भूमिका रही। ये भी असंदिग्ध है कि उन्होंने नाट्य प्रशिक्षण की जो आधारशिला रखी उसकी वजह से कई अच्छे अभिनेता और निर्देशक रंगमंच के क्षितिज पर आए।
3: अलकाजी साहब अपनी तरह के अद्वितीय रंग व्यक्तित्व हैं और उनका कोई मुकाबला नहीं, किंतु उसके बाद एनएसडी के सबसे कल्पनाशील निदेशक बज्जू भाई ही हुए और इस संस्था की परिधि का विस्तार जितना उन्होंने किया वो कोई और नहीं कर सका। उनके चलाए हुए कुछ कार्यक्रम तो अब लगभग बंद ही हो गए हैं, जैसे कि श्रुति। बज्जू भाई द्वारा बनाई गई परिधि अब छोटी पड़ती जा रही है। बजाज साहब ने अपने कार्यकाल में हिंदी की नाट्य पत्रिका रंग प्रसंग की शुरुआत की। उनके कार्यकाल के दौरान ही राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में श्रुति कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसमें हिंदी के वरिष्ठ या युवा लेकिन चर्चित कथाकार या कवि आकर रचना पाठ करते थे
2: और इसी कारण से हिंदी भाषी समाज और नाट्य विद्यालय का एक गहरा जीवंत रिश्ता बन गया था। बज्जू भाई ने ही बहावलपुर हाउस परिसर में सम्मुख थिएटर बनवाया और फिर अभिमंच बनाना शुरू किया, जो अंकुर जी के कार्यकाल में पूरा हुआ। 1996 में बज्जू भाई ने बतौर निर्देशक स्कूल के दीक्षांत समारोह के अवसर पर एकल अभिनय नाट्य समारोह करवाया, जिसमें लक्ष्मण देशपांडे, वीणा पाणी चावला से लेकर नसीरुद्दीन शाह जैसे अभिनेताओं ने शिरकत की। उस दीक्षांत समारोह में धर्मवीर भारती मुख्य अतिथि रहे।
3: निर्देशन की बात करें तो एनएसडी और उसकी रिपेट्री कंपनी, जिसके वे 1988 से 1994 तक प्रमुख भी रहे, उनके नाटक भारतीय रंगमंच के मील के पत्थर बन गए। इस सफर की शुरुआत 1974 में सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक जैसे कालजयी नाटक से हुई। इसके बाद 1977 में जयशंकर प्रसाद का ऐतिहासिक स्कंदगुप्त, 1989 में मिर्जा गालिब के दर्द को समेटते कैदे हयात और 1992 में मोहन राकेश की अमर कृति आषाढ़ का एक दिन का निर्देशन कर उन्होंने निर्देशन कला की नई परिभाषाएं सीखी।
2: केवल निर्देशन ही नहीं, उनके भीतर का संवेदनशील लेखक भी उतना ही प्रखर था, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण गिरीश कर्नाड के कन्नड़ नाटक ताले दंड का रक्त कल्याण के नाम से किया गया उनका शानदार हिंदी अनुवाद है। इस अनुदित नाटक का निर्देशन पहले रिपेटरी के लिए स्वयं उनके रंग गुरु इब्राहिम अलकाजी ने और बाद में अस्मिता थिएटर के लिए अरविंद गौड़ ने किया। सचमुच कोशी अंचल की मिट्टी से निकला यह फक्कड़ और दार्शनिक कलाकार जब दिल्ली के मंडी हाउस के गलियारों में उतरा तो उसने न केवल खुद को साबित किया बल्कि समकालीन भारतीय थिएटर का पूरा भूगोल और इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया।
3: जी हाँ, रामगोपाल बजाज बज्जू भाई जी की देखरेख और मार्गदर्शन में भारतीय रंगमंच, सिनेमा और टेलीविजन की कई उत्कृष्ट पीढ़ियां तैयार हुईं। उनके प्रमुख शिष्यों में नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी, राजपाल यादव, संजय मिश्रा, आशुतोष राणा, सीमा विश्वास, गोविंद नामदेव, यशपाल शर्मा और स्वर्गीय श्री वल्लभ व्यास जैसे दिग्गज नाम शामिल हैं, जिन्होंने उनसे अभिनय और थिएटर के कड़े अनुशासन की बारीकियां सीखकर आज पूरी दुनिया में अपनी कला का परचम लहराया है।
2: पद्मश्री से सम्मानित राम गोपाल बजाज केवल थिएटर के ही बेताज बादशाह नहीं रहे, बल्कि भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा के पर्दे पर भी उन्होंने अपनी अदाकारी का ऐसा रंग बिखेरा जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। आषाढ़ का एक दिन जैसे कालजयी नाटकों से अभिनय का ककहरा शुरू करने वाले बजाज साहब ने जब सिल्वर स्क्रीन की तरफ रुख किया तो वहां भी अपनी गहरी छाप छोड़ी। शेखर कपूर की मासूम 1983 हो या केतन मेहता की समीक्षकों द्वारा बेहद सराही गई मिर्च मसाला फिल्म 1985 हो या फिर यश चोपड़ा की ब्लॉकबस्टर फिल्म चांदनी 1989 हो, बजाज साहब ने हर बड़े निर्देशक के विजन में खुद को एक मुकम्मल अभिनेता के रूप में ढाला। उनकी अभिनय की रेंज इतनी व्यापक थी कि जहां एक तरफ वे लीक से हटकर दीपा मेहता की फायर 1996 जैसी फिल्मों का हिस्सा बने, वहीं दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने भारत का परचम लहराया जब वे ग्लोबल स्टार जैकी चैन की मशहूर फिल्म द मिथ 2005 में एक मार्शल आर्ट्स शिक्षक की दमदार भूमिका में नजर आए।
3: और वक्त बदला, सिनेमा का मिजाज बदला, लेकिन बजाज साहब की कला का जादू हमेशा नया बना रहा। सिनेमा के बदलते दौर के साथ कदम मिलाते हुए उन्होंने आधुनिक सिनेमा और OTT की दुनिया में भी उतनी ही सहजता से प्रवेश किया। उनका संजीदा अभिनय हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना बटोरने वाली फिल्में मैंगो ड्रीम्स, इन प्रस्तुतियों के जरिए उन्होंने साबित कर दिया कि एक सच्चा कलाकार कभी पुराना नहीं होता। उसकी कला वक्त के हर फ्रेम में बिल्कुल फिट बैठती है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के पूर्व निदेशक और देश के इस महान ऑलराउंडर का ये फिल्मी सफर महज कुछ फिल्मों की सूची नहीं है, बल्कि ये गवाही है इस बात की कि जब थिएटर की माटी में तपा हुआ कोई फनकार कैमरे के सामने खड़ा होता है तो सिनेमा की स्क्रीन भी उसकी शख्सियत के आगे छोटी पड़ जाती है।
2: प्रोफेसर बजाज को भारतीय रंगमंच में उनके चौतरफा रचनात्मक योगदान के लिए कुछ पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिसमें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, साहित्य कला परिषद पुरस्कार, नेशनल प्रेस इंडिया अवार्ड, साहित्य कला परिषद सम्मान, नंदीकर सम्मान शामिल हैं। और उन्हें 2003 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। वे आधिकारिक और व्यक्तिगत क्षमताओं में थिएटर, फिल्म, जनसंचार के क्षेत्र में कार्यकारी बोर्ड, जनरल काउंसिलिंग और विभिन्न संगठनों और संस्थानों के बोर्ड के सदस्य रहे हैं।
3: उन्हें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, पौंडीचेरी विश्वविद्यालय जैसे कई केंद्रीय विश्वविद्यालयों के आगंतुक के रूप में उनकी क्षमता के अनुसार भारत के माननीय राष्ट्रपति के नामित के रूप में बोर्डों और समितियों में सदस्य के रूप में नामित किया गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग के एक सदस्य के रूप में उन्हें नामित किया गया। उन्होंने सन 2000 के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जूरी के सदस्य के रूप में भी और भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव सन 2001 के लिए पैनोरोमा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया।
2: श्रोताओं, आज भले ही बज्जू भाई दिल्ली की इस भाग दौड़ से दूर कहीं और वक्त बिता रहे हों, पर सच तो ये है कि मानसिक रूप से उनका दिल आज भी दिल्ली में ही धड़कता है। जब भी उनसे गुफ्तगु हुई है, मंडी हाउस के गलियारों और NSD के किस्से उनकी बातों में जीवंत हो उठते हैं।

0: न मुझे देखते हैं जो नाचता है, न रस्सी को जिस पर मैं नाचता हूँ, न खंभों को जिस पर रस्सी तनी है, न रोशनी को ही जिसमें नाच दिखता है। लोग सिर्फ नाच देखते हैं, पर मैं जो नाचता, जो जिस रस्सी पर नाचता हूँ, जो जिन खंभों के बीच है जिस पर रोशनी जो पड़ रही है, उस रोशनी में, उन खंभों के बीच, उस रस्सी पर, असल में मैं नाचता नहीं हूँ। मैं केवल उस खंभे से इस खंभे तक दौड़ता हूँ कि इस या उस खंभे से रस्सी खोल दूँ, कि तनाव चुके और ढील में मुझे छुट्टी हो जाए। पर तनाव ढीलता नहीं और मैं इस खंभे से उस खंभे तक दौड़ता हूँ, पर तनाव वैसा ही बना रहता है, सब कुछ वैसा ही बना रहता है, और वही मेरा नाच है जिसे सब देखते हैं। मुझे नहीं, खंभे नहीं, रस्सी को नहीं, रोशनी नहीं, तनाव भी नहीं, देखते हैं नाच।
1: रेडियो आजाद हिंद की तरफ से हम सभी के प्यारे बज्जू सर, बज्जू भाई को दिल से ढेरों शुभकामनाएं हैं कि आप दीर्घायु हों, खूब जिएं और अपनी कला से हम सभी को हमेशा यूं ही बहुत कुछ सिखाते रहें। आपकी ये अद्भुत रंगमंच की यात्रा, आपका फक्कड़पन, आपका स्वाभिमान और आपका कड़ा संघर्ष हम सभी के लिए, आने वाली हर पीढ़ी के लिए हमेशा प्रेरणा का एक अटूट स्रोत बना रहे। प्रणाम बज्जू भाई।
0: तो श्रोताओं, कला कल्लोलिनी में बस आज के लिए इतना ही। अब वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया था संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना अदिति गौड़ की थी, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, समन्वय सहयोग सतीश पाथम का, लेखन दीपक नेमा, और आपके साथ था मैं विजयकांत नायक,
1: और मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर रानी रेखवार भारती। इसी के साथ दीजिए हमें अनुमति, नमस्कार, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: साहस की बुलंद शुरुआत से लेकर आसमान की असीम ऊंचाइयों तक 8 अक्टूबर को पूरा देश मना रहा है भारतीय वायुसेना का 94वां वायुसेना दिवस।
3: वर्ष 1947-48, 1965 और 1971 के ऐतिहासिक युद्धों से लेकर ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन सफेद सागर तक विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायु सेना ने हर पल कर दिखाया है अदम्य पराक्रम, अत्याधुनिक तकनीक और सर्वोच्च बलिदान।
2: तो मध्य प्रदेश के जाबाज युवाओं, क्या आप तैयार हैं? बादलों को चीरकर देश का मान बढ़ाने के लिए तो बनिए अग्निवीर वायु, हासिल कीजिए वो मुकाम जो जिंदगी भर की पहचान बन जाए, और गर्व से कीजिए भारत माँ की सेवा।
3: भर्ती और पात्रता से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए
2: 15 एयरमैन चयन केंद्र के इंस्टाग्राम पेज 15ASC_भोपाल और आधिकारिक वेबसाइट IAFRecruitment.edcil.co.in पर विजिट करें।
3: नभस प्रशम दीप्तम।
2: जय हिंद।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।
2: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: स्वामी विवेकानंद जी का उनके शिष्यों के साथ तथा विभिन्न व्यक्तियों के साथ समय समय पर विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर वार्तालाप होता था। आगामी खंडों में जो वार्तालाप संकलित किए गए हैं वे ऐसे व्यक्तियों के साथ स्वामी जी की बातचीत है जो उनके संपर्क में आए थे और प्रिय शिष्य बन गए थे। ये बातचीत अनेक विषयों पर हुई थी, जैसे धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, शिक्षा आदि। इन बातचीतों से विभिन्न विषयों पर स्वामी जी के विचारों की जानकारी प्राप्त होती है।
1: हमारे देश का पुनरुत्थान किस प्रकार हो सकता है तथा फिर से अपने प्राचीन गौरव का स्थान कैसे प्राप्त कर सकता है, इसका भी निर्देशन स्वामी जी ने अपनी ओजपूर्ण वाणी में इन वार्तालापों में किया है। राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए व्यक्ति का विकास होना चाहिए।
0: श्री प्रियनाथ सिंह स्वामी जी के करीबी लोगों में से थे। वे प्रियनाथ सिंह को सिंगी कहकर बुलाते थे। वे अक्सर स्वामी जी से विभिन्न विषयों पर बातचीत किया करते थे और स्वामी जी के विचारों को लिख लेते थे। प्रस्तुत है श्री प्रियनाथ सिंह जी और स्वामी जी की बातचीत के कुछ अंश।
2: बेलोड़ मठ के निर्माण के 2 वर्ष बाद की बात है। सभी स्वामी जी अब वहीं रहने लगे थे। इन्हीं दिनों मैं एक दिन सवेरे स्वामी विवेकानंद जी के दर्शन करने वहां गया हुआ था। मुझे देखकर स्वामी जी मुस्कुराए और बोले,
3: आज तो यहीं रहोगे ना?
2: मैंने कहा, अवश्य। इधर उधर की कुछ बातें करने के बाद मैंने पूछा, महाराज बच्चों की शिक्षा पद्धति कैसी होनी चाहिए?
3: गुरु गृहवास, गुरु के साथ रहना।
2: कैसे?
3: जैसे प्राचीन काल में होता था, किंतु आज की शिक्षा में पाश्चात्य विज्ञान का भी समावेश होना चाहिए। दोनों ही आवश्यक हैं।
2: पर आज की विश्वविद्यालय की शिक्षा में क्या दोष है?
3: इसमें दोष ही दोष भरे हैं। ये बाबू पैदा करने की मशीन के सिवाय कुछ नहीं है। अगर इतना ही होता तब भी ठीक था, पर नहीं, इस शिक्षा ने मनुष्यों की श्रद्धा और विश्वास की भावनाएं नष्ट कर दी हैं। वे कहते हैं कि गीता तो एक प्रक्षिप्त अंश है और वेद देहाती गीत मात्र हैं। वे भारतवर्ष के बाहर के देशों के संबंध में तो हर बात जानना चाहते हैं, पर यदि उनसे कोई अपने पूर्वजों के नाम पूछे तो 14 पीढ़ी तो दूर रही, 7 पीढ़ी तक भी नहीं बता सकते।
2: पर इससे क्या हुआ? वे अपने पूर्वजों के नाम नहीं जानते तो क्या हानि है?
3: नहीं, ऐसा मत सोचो। जिस राष्ट्र का कोई अपना इतिहास नहीं है वो अत्यंत ही हीन और नगण्य बना रहता है। क्या तुम सोचते हो कि कोई व्यक्ति जिसे सदैव इस बात का विश्वास और अभिमान है कि वो उच्च कुल में उत्पन्न हुआ है कभी दुश्चरित्र हो सकेगा? ऐसा क्यों होता है? उसमें जो आत्मविश्वास और स्वाभिमान का भाव है वो सदैव उसके विचार और कार्य को इतना नियंत्रित रखता है कि ऐसा व्यक्ति सतमार्ग से च्युत होने की अपेक्षा हंसते हंसते मृत्यु का आलिंगन कर लेगा। इसी तरह है, राष्ट्र का गौरवमय अतीत राष्ट्र को नियंत्रण में रखता है और उसका अधः पतन नहीं होने देता। पर मैं जानता हूं तुम कहोगे कि हमारा ऐसा कोई अतीत, ऐसा इतिहास ही नहीं है।
2: पर सभी को अपने प्राचीन इतिहास का ज्ञान नहीं है। हम भारतीयों को अपने इतिहास पर गर्व भी नहीं है।
3: जो तुम्हारी तरह सोचते हैं उन्हीं के लिए हमारे राष्ट्र का कोई इतिहास नहीं है और तुम्हारे विश्वविद्यालयों के उन तथा कथित विद्वानों के लिए नहीं है और उन लोगों के लिए नहीं जो कि पाश्चात्य देशों का एक चक्कर मारकर यूरोपीय वेशभूषा से सुसज्जित हो भारत लौट आते हैं और बड़बड़ाने लगते हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो बस जंगली हैं। हाँ, ये सच है कि दूसरे देशों का जैसा इतिहास है वैसा हमारा नहीं है, पर इसका अर्थ ये तो नहीं होता कि हमारे पास कोई इतिहास ही नहीं है। जैसे हम भात खाते हैं और अंग्रेज लोग भात नहीं खाते, तो इस पर से क्या तुम ये निर्णय कर लोगे कि अंग्रेज भूखे मरते हैं और कुछ दिनों में नष्ट हो जाएंगे? उनके देश में उनकी जलवायु के अनुकूल जो सरलता से वे उत्पन्न कर लेते हैं वही खाकर वे पनपते और पुष्ट होते हैं। इसी तरह हमारे लिए जैसा आवश्यक है वैसा हमारा भी अपना इतिहास है और अपनी आंखें बंद कर लेने और चिल्लाने से कि हमारा कोई इतिहास ही नहीं है वो क्या नष्ट हो जाएगा? जिनके पास देखने के लिए आंखें हैं वे जानते हैं कि हमारा इतिहास कितना उज्ज्वल है और वो देश को किस प्रकार जीवित रख रहा है।
2: इसे देखने के लिए उचित आंखें होनी चाहिए, हम में वो दृष्टि कहाँ।
3: आज उस इतिहास को फिर से लिखने की आवश्यकता है। पाश्चात्य शिक्षा से हमारे युवकों की बदली हुई विचारधारा और बुद्धि को सामने रखकर आज उस गौरवमय इतिहास को फिर से लिखना होगा, जिससे पाश्चात्य सभ्यता से चकित और चकाचौंध में भ्रमित हमारे युवक उसे समझ सकें।
2: ये किस प्रकार करना होगा,
3: ये एक बहुत बड़ा विषय है, इस पर कभी और चर्चा करेंगे। उसके लिए पहले हमें गुरु गृहवास और उस जैसी अन्य शिक्षा प्रणालियों को पुनर्जीवित करना होगा। आज हमें आवश्यकता है वेदांत युक्त पाश्चात्य विज्ञान की, ब्रह्मचर्य के आदर्श और श्रद्धा तथा आत्मविश्वास की। दूसरी बात जिसकी आवश्यकता है वो है उस शिक्षा पद्धति का निर्मूलन जो मार मार कर गधों को घोड़ा बनाना चाहती है।
2: इससे आपका क्या मतलब है?
3: देखो, कोई भी किसी को कुछ नहीं सिखा सकता। जो शिक्षक ये समझता है कि वो कुछ सिखा रहा है, सब गुड़ गोबर कर देता है। वेदांत का सिद्धांत है कि मनुष्य के अंतर में एक अबोध शिशु में भी ज्ञान का समस्त भंडार निहित है, केवल उसके जागृत होने की आवश्यकता है, और यही आचार्य का काम है। हमें बच्चों के लिए बस इतना ही करना है कि वे अपने हाथ पैर आंख कान का समुचित उपयोग भर करना सीख लें, और फिर सब आसान है। पर इस सब का मूल है धर्म, वही मुख्य है। धर्म तो भात के समान है, शेष सब वस्तुएं कढ़ी और चटनी जैसी हैं। केवल कढ़ी और चटनी खाने से अपथ्य हो जाता है, और केवल भात खाने से भी। हमारे शिक्षा शास्त्री हमारे बच्चों को केवल तोता बना रही हैं और रटा रटा कर उनके मस्तिष्क में कई विषय ठूंसते जा रही हैं। यदि एक दृष्टि से देखा जाए तो तुम्हें वाइस राय का आभार मानना चाहिए कि उन्होंने विश्वविद्यालयीन शिक्षा में सुधार करने का प्रस्ताव किया है।
2: परंतु स्वामी जी, हमें तो ये मालूम है कि भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने विश्वविद्यालय शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने के उद्देश्य से उसे इतना महंगा कर देना चाहा कि लड़कों की पहुंच के लगभग बाहर हो जाएगी।
3: हाँ, इससे शिक्षा करीब करीब बंद ही हो जाएगी, और देश को कम से कम कुछ सांस लेने और विचार करने का समय तो मिलेगा। वाह, ग्रेजुएट बनने के लिए क्या दौड़ धूप, क्या गहमा गहमी लगी है, और फिर कुछ दिन बाद सब कुछ ठंडा पड़ जाता है, और आखिर में वे सीखते क्या हैं? बस यही कि हमारा धर्म आचार विचार और रीति रिवाज सब खराब हैं, और पाश्चात्यों की सब बातें अच्छी हैं। इस तरह महानाश को निमंत्रित कर रहे हैं। आखिर इस उच्च शिक्षा के रहने या ना रहने से क्या बनता बिगड़ता है? ये कहीं ज्यादा अच्छा होगा कि ये उच्च शिक्षा प्राप्त कर नौकरी के लिए दफ्तरों की खाक छानने की बजाय पेट तो भर सकेंगे।
2: हाँ, मारवाड़ी इस बात में होशियार है, वे नौकरी नहीं करते और कोई ना कोई व्यापार में लग जाते हैं।
3: बकवास है, वे इस देश को रसातल में पहुंचा रही हैं, अपने स्वार्थ को भी नहीं समझते। उनसे तुम लोग कहीं ज्यादा अच्छे हो, क्योंकि तुम्हारा ध्यान कल कारखानों से वस्तुओं के निर्माण की ओर है। मारवाड़ी लोग अपने व्यापार में जो पैसा लगाते हैं और जिससे उन्हें थोड़ा बहुत मुनाफा होता है, उससे तो ज्यादातर विदेशियों की ही जेब भरते हैं। यही पैसा अगर वे कुछ कल कारखानों को खोलने में लगाएं तो देश की भलाई होगी और उनका मुनाफा भी बढ़ेगा। केवल काबुली लोग ही नौकरी की परवाह नहीं करते, उनकी नस नस में स्वतंत्रता की भावना भरी है। उनको जरा नौकरी कर लेने की बात कह दो, फिर देखो क्या होता है।
2: पर महाराज, यदि उच्च शिक्षा बंद हो गई तो लोग फिर पहले जैसे मूर्ख बने रहेंगे।
3: क्या मूर्खता भरी बात कहते हो, क्या कभी सिंह भी सियार हो सकता है? हमारे कहने का क्या मतलब है? क्या कभी संभव है कि सृष्टि के आदिकाल से जिस देश की संतान अखिल विश्व को शिक्षा देती आ रही है, केवल इसलिए मूर्ख बन जाएगी कि लॉर्ड कर्जन उच्च शिक्षा बंद कर रहे हैं?
2: पर जरा सोचिए तो कि हमारे देशवासी अंग्रेजों के आगमन के पूर्व क्या थे और अब क्या हो गए हैं?
3: भौतिक शास्त्रों का अध्ययन और दैनिक उपयोग की वस्तुओं का यंत्रों द्वारा उत्पादन, क्या यही उच्च शिक्षा का अर्थ है? उच्च शिक्षा का उद्देश्य है जीवन की जटिल समस्याओं को सुलझाना, और आज का सभ्य संसार आज भी इन्हीं समस्याओं पर गहन चिंतन कर रहा है। किंतु हमारे देश में सहस्त्रों वर्ष पूर्व ही ये गुत्थियाँ सुलझा ली गईं।
2: पर आपका वेदांत भी तो लुप्त प्राय ही हो रहा था।
3: संभव है, काल के प्रवाह में कभी कभी ऐसा भास होता है कि वेदांत का महान प्रकाश अब बुझा। और जब ऐसी स्थिति आती है तब भगवान मानव देह धारण कर पृथ्वी पर आते हैं और फिर धर्म में पुनः एक ऐसी शक्ति, ऐसे जीवन का संचार हो जाता है कि वे फिर एकाध युग तक अदम्य उत्साह से आगे बढ़ता जाता है। आज वही शक्ति है और जीवन उसमें फिर आ गया है।
2: पर महाराज, इसका क्या प्रमाण है कि भारत ने ही शेष संसार को शिक्षित किया है?
3: संसार का इतिहास ही इसका साक्षी है। उचित शोध लगाने पर यही पाया जाता है कि विश्व में ज्ञान की जो विविध शाखाएं हैं, जो शास्त्र और उदात्त विचार हैं, उनका उद्गम भारत से ही हुआ।
0: प्रियनाथ जी से बात करते करते स्वामी जी थक गए थे, पर वे रुके नहीं। स्वामी जी का मुख एक अलौकिक आभा से दीप्त हो गया और वे बड़े उत्साह से इस विषय पर बड़ी देर तक बोलते रहे। उस समय उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था और बहुत ज्यादा गर्मी से उनका गला सूख रहा था। उन्हें बार बार प्यास लग रही थी और वे पानी पीते जाते थे। अंत में उन्होंने कहा, सिंगी, कृपया मेरे लिए एक बर्फ के पानी का ग्लास मंगाओ, मैं फिर तुमको सब अच्छी तरह समझा दूंगा। पानी पीकर वे फिर बोलने लगे।
3: समझे ना, आज आवश्यकता है विदेशी नियंत्रण हटाकर हमारे विविध शास्त्रों, विद्याओं का अध्ययन हो और साथ साथ अंग्रेजी भाषा और पाश्चात्य विज्ञान भी सीखा जाए, जिससे देश के युवक नौकरी ढूंढने के बजाय अपनी जीविका के लिए समुचित धनोपार्जन भी कर सकें और भविष्य के लिए कुछ बचा भी सकें।
2: टोलिया संस्कृत पाठशालाओं के बारे में आपका क्या कहना है?
3: क्या तुमने उपनिषदों की कथाएं नहीं पढ़ी है? मैं अभी एक कथा सुनाता हूँ। ब्रह्मचारी सत्यकाम गुरु के पास अध्ययन के लिए गया। गुरु ने उसे गाय चराने के लिए जंगल में भेज दिया। गाय चराते चराते कई मास व्यतीत हो गए, गायों की संख्या भी दुगनी हो गई। तब सत्यकाम ने आश्रम लौट चलने का विचार किया। मार्ग में एक वृषभ, अग्नि तथा कुछ अन्य प्राणियों ने सत्यकाम को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। जब शिष्य आश्रम में गुरु को प्रणाम करने पहुंचा तो गुरु ने उसे देखते ही जान लिया कि उसने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया है। इस कथा का सार यही है कि सच्ची शिक्षा सर्वदा प्रकृति के संपर्क में रहने से ही प्राप्त होती है। ज्ञान इसी प्रकार प्राप्त किया जा सकता है।
2: इससे आपका क्या मतलब है?
3: पंडितों के टोल और पाठशालाओं में पढ़कर तो मनुष्य जीवन भर बंदर बना रहता है। बाल्यावस्था से ही ज्वाजल्यमान उज्ज्वल चरित्र युक्त किसी तपस्वी महापुरुषों के सहवास में रहना चाहिए, जिससे कि उच्चतम ज्ञान का जीवित आदर्श सदैव दृष्टि के समक्ष रहे। केवल पढ़ लेने से कि मिथ्या भाषण पाप है कोई लाभ नहीं। हर एक को पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन करने का व्रत लेना चाहिए, तभी हृदय में श्रद्धा और भक्ति का उदय होगा। नहीं तो जिसमें श्रद्धा और भक्ति नहीं वो मिथ्या क्यों नहीं बोलेगा? हमारे देश में अध्ययन का महान कार्य सदैव निष्प्रह और त्यागी पुरुषों ने ही किया है। कालांतर में पंडितों ने ज्ञान और विद्याओं पर एकाधिपत्य कर पाठशालाओं की चार दीवारी में बंद कर दिया और इस तरह देश का अधः पतन होना शुरू हो गया। जब तक अध्यापन कार्य त्यागी पुरुषों ने किया तब तक भारत समृद्ध बना रहा।
2: महाराज, आपका क्या अर्थ है? दूसरे देशों में तो सन्यासी नहीं है, पर देखिए उनकी ज्ञान गरिमा से आज भारत उनके चरण चूम रहा है।
3: मेरे मित्र, व्यर्थ की बातें मत बोलो, मैं जो कहता हूँ उस पर ध्यान दो। जब तक इस देश में अध्यापन और शिक्षा का भार त्यागी और निष्प्रह वहन नहीं करेंगे तब तक भारत वर्ष को दूसरे देशों के तलुए चाटने पड़ेंगे। तुम नहीं जानते किस तरह एक निरक्षर युवक ने अपनी निष्प्रहता और त्याग के प्रभाव से तुम्हारे दिग्गज पंडितों के छक्के छुड़ा दिए। एक बार दक्षिणेश्वर के मंदिर में पुजारी से विष्णु प्रतिमा खंडित हो गई। पंडितों की एक सभा हुई और उन्होंने अपने पुराने पोथे और ग्रंथ देखकर निर्णय दिया कि खंडित मूर्ति का पूजन शास्त्र विरुद्ध है और नई मूर्ति की प्रस्थापना की जाए। इस पर काफी वाद विवाद और शोरगुल मचा। अंत में श्री राम कृष्ण बुलाए गए। उन्होंने सब कुछ सुनकर पूछा, क्या पति पंगु हो जाए तो पत्नी उसे त्याग देगी? फिर क्या हुआ? पंडितों ने ये तर्क सुना तो मुंह से शब्द नहीं निकला, मूक हो गए। और इस सरल कथन के सामने उनके शास्त्र और भाष्य एक और धरे के धरे रह गए। यदि पंडितों की शिक्षा प्रणाली ठीक थी तो श्री रामकृष्ण क्यों अवतार धारण करते और क्यों पुस्तकीय ज्ञान का उपहास करते? उनके साथ जिस नूतन जीवन शक्ति का आविर्भाव हुआ, उससे जब हमारी शिक्षा ओतप्रोत हो जाएगी तब ही सफलता प्राप्त होगी।
2: पर ये कहना सरल है, करना कठिन।
3: यदि ये कार्य सरल होता तो श्री रामकृष्ण को अवतार धारण करने की आवश्यकता न पड़ती। अब तुम्हें जो करना है वो ये कि नगर नगर और ग्राम ग्राम में एक मठ की स्थापना की जाए। क्या तुम ये नहीं कर सकते? अधिक नहीं, कुछ तो करो ही। कलकत्ते के बीच में एक मठ स्थापित करो। एक सुशिक्षित साधु उसका अध्यक्ष रहे और उसके निरीक्षण में दो सन्यासी विज्ञान व अन्य विषयों का अध्यापन करें।
2: आपको ऐसे सन्यासी कहाँ मिलेंगे?
3: हमें ऐसे सन्यासियों का निर्माण करना होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि कुछ ऐसे युवकों की आवश्यकता है जिनके हृदय में देशभक्ति और त्याग की भावना प्रज्वलित हो। एक त्यागी पुरुष जितना शीघ्र किसी विषय पर अधिकार प्राप्त कर सकता है उतना अन्य कोई नहीं कर सकता।
0: कुछ समय बाद स्वामी जी बोले,
3: सिंगी, हमारी शताब्दी में इतना अधिक काम करना है कि मेरे और तुम्हारे जैसे सहस्त्र सहस्त्र मानवों की आवश्यकता है। केवल बोलने से क्या हो सकता है? देखो देश कितनी विपत्र और दयनीय स्थिति को प्राप्त हो गया है। इस समय कुछ करो। बच्चों के लिए उपयोगी एक पुस्तक तक तो इस देश में नहीं है।
2: क्यों, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की इतनी सारी किताबें तो हैं। मेरा ऐसे कहते ही स्वामी जी खिलखिलाकर हंस पड़े और बोले,
3: इनमें यही पढ़ते हो ना, ईश्वर निराकार चैतन्य स्वरूप, सुबल अति सुबोध बालक आदि आदि। पर इससे काम नहीं चलने का। हमें बंगाली और साथ साथ अंग्रेजी में कुछ ऐसी पुस्तकों का प्रकाशन करना चाहिए जिनमें बहुत ही सरल और सीधी भाषा में रामायण महाभारत और उपनिषदों की कथाओं का संग्रह हो और फिर ये पुस्तकें बालकों को पढ़ने के लिए दी जाएं।
2: 11 बज रहे थे, आकाश में बादल घिर आए थे और ठंडी हवा चलने लगी थी। वर्षा होने की संभावना से स्वामी जी प्रसन्न हो उठे। उन्होंने उठकर कहा, चलो सिंगी, चलो गंगा तट पर चलो। हम दोनों चल पड़े। मार्ग में स्वामी जी ने कालिदास के मेघदूत के कई श्लोक सुनाए, पर विचारधारा का अंततः प्रवाह एक ही था, भारत का हित। वे बोले,
3: सिंगी, तुम एक काम कर सकते हो, क्या कुछ दिनों तक हमारे युवकों के विवाह बंद नहीं कर सकते?
2: महाराज, ये कैसे होगा जब सभी बाबू विवाहों में होने वाले व्यय को कम करने का प्रयत्न कर रहे हैं।
3: तुम इसकी चिंता ना करो, काल का प्रवाह कौन बदल सकता है। इस प्रकार के सब आंदोलन व्यर्थ हैं। कुछ दिन शोरगुल रहेगा फिर सब शांत हो जाएंगे। विवाह शादियां जितनी ज्यादा खर्चीली होती जाएंगी उतना ही देश का भला होगा। परीक्षाएं पास करने और फिर विवाह करने के लिए कितनी भगदड़ कितनी दौड़ धूप हो रही है। ऐसा लगता है कोई कुंवारा नहीं बचेगा। पर अगले वर्ष फिर वही हाल होता है।
2: फिर क्या करना चाहिए?
3: यदि मुझे कुछ अविवाहित ग्रेजुएट मिल जाएं, तो मैं उन्हें जापान भेजकर उन्हें यांत्रिक शिक्षा दिलाने का प्रबंध कर दूंगा, जिससे कि जब वे स्वदेश लौटें, तो अपने ज्ञान से भारत का कुछ हित कर सकें।
2: महाराज, इंग्लैंड की अपेक्षा जापान जाना क्या हमारे लिए ज्यादा लाभदायक होगा?
3: अवश्य। मेरे मत में हमारे शिक्षित धनी व्यक्ति यदि जापान जाएं और वहां का हालचाल देखें तो उनकी आंखें खुल जाएंगी।
2: वो कैसे?
3: जापान में तुम पाओगे कि उन्होंने दूसरों से जो सीखा है उसे आत्मसात कर अपना बना लिया है, पचा लिया है। हमने जो विदेशियों से सीखा उसे हम पचा नहीं पाए। उन्होंने यूरोप वासियों की हर चीज ग्रहण की, पर वे जापानी ही बने रहे, यूरोपीय नहीं बने। पर हमारे यहाँ तो पाश्चात्य ढंग से रहने का एक संक्रामक रोग पैदा हो गया है।
2: महाराज, मैंने कुछ जापानी चित्रकला के नमूने देखे हैं। उनकी कला की प्रशंसा किए बिना नहीं रहा जाता, और स्फूर्ति का स्रोत उनकी अपनी संस्कृति है, उसमें नकल उनकी प्रेरणा नहीं है।
3: बिल्कुल ठीक है। आज जापान एक महान राष्ट्र है और इसका कारण है उनकी कला। देखते नहीं, हमारे समान वे भी एशियावासी हैं, और यद्यपि आज हम अपना सर्वस्व खो बैठे हैं, फिर भी जो कुछ हमारे पास अवशेष है वही विश्व को चकित कर देने के लिए काफी है। एशिया की आत्मा ही कलात्मक है। एशिया का हृदय चिरकाल से कला की क्रीड़ा स्थली रहा है। एशियावासी कला शून्य वस्तु का कभी उपयोग ही नहीं करते, उसका उपयोग ही हर वस्तु कला से शोभित है। तुम नहीं जानते, हमारे यहाँ कला हमारे धार्मिक जीवन का एक अंग बन गई है। हमारे देश में कई युवती तीज त्योहार पर्व उत्सव के दिन यदि घर के आंगन और दीवार पर सुंदर चित्र बनाना जानती है तो उसकी कितनी प्रशंसा होती है। श्री राम कृष्ण स्वयं कितने महान कलाकार थे।
0: अंग्रेजों की कला भी अच्छी है, नहीं क्या?
3: तुम कितने अनाड़ी हो, पर तुम्हें दोष देने से क्या लाभ, जबकि सर्व साधारण की यही धारणा है। अफसोस, आज देश की यही दशा हो गई है। आज हम अपने सोने को पीतल समझ बैठे हैं और दूसरों का पीतल हमारे लिए सोना बन गया है। वो हमारी आधुनिक शिक्षा का जादू है। देखो, यूरोपीय जब एशिया के संपर्क में आए हैं तब से कहीं उन्होंने अपने जीवन को कलामय बनाने का प्रयत्न शुरू किया।
0: महाराज, यदि कोई आपकी बात सुनेंगे तो कहेंगे कि आप निराशावादी हो रहे हैं।
3: स्वाभाविक है, जो जड़ हो गए हैं वे और क्या सोच सकेंगे। उफ, कोई मेरी आंखों से देखे, उनकी इमारतें देखो, वे कितनी साधारण कितनी अर्थशून्य हैं। इन विशाल सरकारी इमारतों को देखो, क्या उनका बाह्य स्वरूप देखकर कुछ अनुमान लगाया जा सकता है कि ये किस भाव किस आदर्श की प्रतीक है? नहीं, क्योंकि वे सब प्रतीक शून्य हैं। पाश्चात्यों का पहनावा ही लो, उनके तंग कोट सीधे पैंट शरीर पर इतने तंग और चिपके होते हैं कि बिल्कुल भद्दे मालूम देते हैं। नहीं, पर हम लोग पता नहीं उसमें क्या सुंदरता देखते हैं। जिसे देखो कोट पतलून ठांसे है। इस देश का भ्रमण तो करो, और यदि देखने के लिए आंखें हैं समझने के लिए बुद्धि है तो देखो इस देश की प्राचीन इमारतों को। देखो, उनके देखने भर से ही मालूम होता है कितनी कला भरी है। उनका जलपात्र है कांच का गिलास, पर हमारा है धातु निर्मित लोटा। दोनों में कौन कलापूर्ण है? तुमने देहातों में किसानों के घर देखे?
0: जी हाँ, अवश्य।
3: उनमें क्या देखा?
0: महाराज, वे अत्यंत साफ सुथरे होते हैं और रोज उनका आंगन लीपा पोता जाता है।
3: क्या तुमने उनके अन्न भंडार देखे? उनमें कितनी कला है। उनकी मिट्टी की दीवारों पर भी कितने प्रकार के चित्र बने होते हैं। और जरा पाश्चात्य देशों में जाकर देखो निम्न वर्ग के लोग किस तरह रहते हैं, तब तुम्हें मालूम होगा कि दोनों में कितना महान अंतर है। उनका आदर्श है उपयोगिता, हमारा है कला। पश्चिम का निवासी हर एक वस्तु में उपयोगिता ढूंढता है, और हम कला। पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त कर हमने कलापूर्ण लोटा तो फेंक दिया, और उसके स्थान पर घरों में विदेशी इनामेल के गिलास विराजमान हो गए हैं। हमने इस उपयोगितावाद के आदर्श को इस सीमा तक अपना लिया है कि अब वो हास्यास्पद लगने लगा है। अब हमें उपयोगिता और कला के समन्वय की आवश्यकता है। जापान ये समन्वय लाने में जल्दी सफल हो गया और उसने अभूतपूर्व प्रगति कर ली। अब जापान पाश्चात्य देशों को भी सिखाने की क्षमता रखता है।
0: विश्व में किस राष्ट्र की वेशभूषा सर्वोत्तम है?
3: आर्यों की। यूरोपवासी भी इसे स्वीकार करते हैं। आर्यों के परिधान की पटलियां किस कलापूर्ण ढंग से लटकती हैं। अधिकांश देशों के राजवस्त्र आर्यों के वेशभूषा की ही नकल हैं। उनमें भी आर्यों के समान पटलियां बनाकर लटकाने का यत्न किया जाता है, और इन राजवस्त्रों में व उन देशों के सर्वसाधारण की वेशभूषा में बहुत अंतर है। सिंगी, तुम भी ये भद्दे यूरोपीय कमीज पहनना छोड़ दो।
0: क्यों महाराज?
3: इसलिए कि पाश्चात्य लोग इसका केवल अंतर वस्त्र के रूप में ही प्रयोग करते हैं। वे उसे सदैव कोट और जैकेट के नीचे ही पहनते हैं, केवल कमीज कभी नहीं पहनते। पर हम भारतीय कितनी भूल कर रहे हैं, जिसे देखो कोट पतलून कमीज धारण करने में गर्व का अनुभव करता है, जैसे वेशभूषा के संबंध में कोई नियम ही ना हो, कोई विधि परिपाटी या प्रणाली ही ना हो, और जिसकी जो मर्जी आए और जो दिखे वही कपड़े पहन ले। हमारे यहाँ किसी और का छुआ अन्न यदि कोई खा लेता है तो उसे जात से बाहर कर देते हैं। यदि यही नियम विदेशी वेशभूषा धारण करने पे लगवाया जाए तो कितना अच्छा होगा। अपनी प्राचीन भारतीय वेशभूषा क्यों धारण नहीं की जाती? इस यूरोपीय कोट कमीज के पहनने में कौन सी शान है? क्या अर्थ है?
2: अब वर्षा होने लगी और भोजन बेला सूचक घंटी भी बज गई थी, इसलिए सबके साथ हम भी प्रसाद ग्रहण करने गए। भोजन करते करते वे बोले,
3: भोजन ऐसा रहे कि मात्रा में कम पर पुष्टिकारक हो। पेट को ढेर सारे भात से ठूंस देना ही आलस्य का मूल है। जापानियों को देखो, वे दिन में 2-3 बार दाल के साथ भात खाते हैं। वे कई बार भोजन करते हैं पर हर समय खाते थोड़ा थोड़ा ही है। उसमें जो अच्छे घर के होते हैं वे प्रतिदिन मांस भी खाते हैं, पर हम दिन में 2 बार गले तक पेट को भात से भर लेते हैं और हमारी सारी शक्ति उस भात को पचाने में ही समाप्त हो जाती है।
2: क्या हम गरीब भारतीयों के लिए मांस मछली खाना संभव है?
3: क्यों नहीं, थोड़ा थोड़ा तो खा ही सकते हैं। एक दिन में पाव भर काफी है। हमारा सबसे बड़ा दोष है आलस, और यही हमारी गुलामी का कारण है। समझो किसी की नौकरी छूट गई या घर में जो 2-3 आदमी कमाने वाले थे उसमें से कोई मर गया तो लोग क्या करते हैं? वे या तो बच्चों का दूध बंद कर देते हैं या एक बार खाते हैं, कभी शाम को भात ही खाकर सो जाते हैं।
2: पर ऐसी परिस्थिति में और कर भी क्या सकते हैं?
3: पर वे ज्यादा मेहनत कर थोड़ा सा और कमा लेने का प्रयत्न क्यों नहीं करते, जिससे कम से कम 2 बार भोजन तो मिल ही जाए। पर नहीं, मेहनत कौन करे। उन्हें अड्डों पर जाकर गप्पे लगाने और समय नष्ट करने की आदत जो पड़ गई है। अगर वे जाने कि वे समय का कितना नाश और दुरुपयोग कर रही हैं, तो इस देश की काया पलट हो जाए।
1: आपने अब तक की बातचीत से स्वामी जी को विभिन्न विषयों पर बोलते सुना। इसी तरह की सारगर्भित बातचीत का अंश हम आपको आगे भी सुनाते रहेंगे। इन वार्तालापों से स्वामी जी के बहुमुखी व्यक्तित्व का ज्ञान हमें होता है। उनके सुस्पष्ट विचार हमेशा मौलिक हुआ करते थे। लोग शायद उनके सभी विचारों से सहमत ना हों, परंतु ये विचारोत्तेजक उद्गार हमें उन विषयों पर सोचने के लिए मजबूर करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। साहस की बुलंद शुरुआत से लेकर आसमान की असीम ऊंचाइयों तक 8 अक्टूबर को पूरा देश मना रहा है भारतीय वायुसेना का 94वां वायुसेना दिवस।
1: वर्ष 1947-48, 1965 और 1971 के ऐतिहासिक युद्धों से लेकर ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन सफेद सागर तक विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायु सेना ने हर पल कर दिखाया है अदम्य पराक्रम, अत्याधुनिक तकनीक और सर्वोच्च बलिदान।
0: तो मध्य प्रदेश के जाबाज युवाओं, क्या आप तैयार हैं? बादलों को चीर कर देश का मान बढ़ाने के लिए तो बनिए अग्निवीर वायु, हासिल कीजिए वो मुकाम जो जिंदगी भर की पहचान बन जाए और गर्व से कीजिए भारत माँ की सेवा।
1: भर्ती और पात्रता से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए
0: 15 एयरमैन चयन केंद्र के इंस्टाग्राम पेज 15ASC_भोपाल और आधिकारिक वेबसाइट IAFRecruitment.edcil.co.in पर विजिट करें।
1: नभः स्पृशं दीप्तम्।
2: जय हिंद।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। श्रोताओं, रात्रि के 10 बजे हैं, हमारी यह सभा अब संपन्न होती है। कल प्रातःकालीन सभा में 7 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।